पत्नियों से बड़े प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। अर्जुन ने कहा, 1000 समान तेजस्वी नाग मेरे पुत्र हूँ। विनीता बोली, तेज शरीर का बल विक्रम में कद्रु के पुत्रों से शेष केवल 2 ही पुत्र मुझे प्राप्त हैं। ऋषभ जी ने एवं अस्तु कहा, दोनों प्रसन्न हो गए। सावधानी से गर्भ रक्षा करने की आज्ञा लेकर कश्यप ऋषि वन में चले गए। समय आने पर कद्रु ने 1000 और विनीता ने 2 अंडे दिए। दासी ने प्रसन्न होकर गर्म बर्तनों में उन्हें रख दिया। 500 वर्ष पूरे होने पर कद्रु के तो 1000 पुत्र निकल आए, परंतु विनीता के 2 बच्चे नहीं निकले। विनीता ने अपने हाथों 1 अंडा फोड़ डाला। उस अंडे का शिशु आधे शरीर से तो पुष्ट था, परंतु उसका नीचे का आधा शरीर अभी कच्चा था। नवजात शिशु ने क्रोधित होकर अपनी माता को श्राप दिया, माता तूने लोभवश मुझे अधूरे शरीर को ही निकाल दिया है, फिर तू अपनी उसी साथ की 500 वर्ष तक दासी रहेगी, उसे दाह करती है। यदि मेरी तरह तूने दूसरे अंडे को भी फोड़कर उसके बालक को अंगहीन या विकृतांग ना किया तो वही तुझे इस श्राप से मुक्त करेगा। यदि तेरी ऐसी इच्छा है तो मेरा दूसरा बालक बलवान हो और धैर्य के साथ 500 वर्ष तक प्रतीक्षा कर। इस प्रकार श्राप देकर बालक आकाश में उड़ गया और सूर्य का सारथी बना। प्रातःकालीन लालिमा उसकी झलक थी और उसका बालक का नाम अरुण हुआ। एक बार कद्रु और विनीता दोनों बहनें एक साथ घूम रही थी, उन्हें 5 ही उच्च श्रवा नाम का घोड़ा दिखाई दिया। ये घोड़ा अश्वरत्न अमृत मंथन से उत्पन्न हुआ था। असमस्त अश्वों में श्रेष्ठ, बलवान, विजयी, सुंदर, अजर, दिव्य और सब शुभ शुभ लक्षणों से युक्त था। उसे देखकर वे दोनों आपस में वर्णन करने लगी, देवताओं के अमृत मंथन ने किस स्थान पर और क्यों किया था? अमृत मंथन के समय उच्च श्रवा घोड़ा किस प्रकार उत्पन्न हुआ? उच्च श्रवा महर्षि शौनक आदि का प्रश्न सुन के उनसे अमृत मंथन की कथा कहने लगे। देवता लोग इकट्ठे होकर अमृत प्राप्ति के लिए सलाह करने लगे। उनमें भगवान नारायण और ब्रह्मा जी भी थे। नारायण ने देवता से कहा, देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करें, इस मंथन के फलस्वरूप अमृत की प्राप्ति होगी। देवताओं ने भगवान नारायण के परामर्श से मंदराचल को उखाड़ने की चेष्टा की। ये पर्वत मेघों के समान ऊंची चोटियों से युक्त 11,000 योजन ऊंचा और उतने से ही नीचे धसा हुआ था। जब सर्वश्रेष्ठ देवता पूरी शक्ति लगाकर उसे नहीं उखाड़ सके, तब उन्होंने विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनते श्री नारायण और ब्रह्मा जी ने शेष नाग को मंदराचल उखाड़ने के लिए प्रेरित किया। महाबली शेष नाग ने वन और वनवासियों के साथ मंदराचल को उखाड़ लिया। अब मंदराचल के साथ देवगण समुद्र तट पर पहुँचे और समुद्र से कहा कि हम लोग अमृत के लिए तुम्हारा जल मथेंगे। समुद्र ने कहा, यदि आप लोग अमृत में मेरा भी हिस्सा रखे तो मैं मंदराचल को घुमाने से जो कष्ट होगा वह सह लूंगा। देवता और असुरों ने समुद्र की बात स्वीकार करके कच्छप राज से कहा, आप इस पर्वत के आधार बनिए। कच्छप राज ने कहा, ठीक है, कहकर मंदराचल को अपनी पीठ पर ले लिया। अब यंत्र के द्वारा मंदराचल को घुमाने लगे। इस प्रकार देवताओं और असुरों ने मंदराचल की मथानी वासुकी नाग की डोरी बनाकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया। वासुकी नाग के मुंह की ओर असुर और पूंछ की ओर देवता लगे थे। बार बार खींचे जाने के कारण वासुकी नाग के मुख से धुएं और अग्नि ज्वाला के साथ सांस निकलने लगी। सांस थोड़ी देर में मेघ बन जाती और मेघ थके मांदे देवताओं पर जल बरसाने लगते। पर्वत के शिखर से पुष्पों की झड़ी लग गई। पहाड़ पर वृक्ष आपस में टकरा कर उनकी रगड़ से आग लग गई। इंद्र ने मेघों द्वारा जल बरसवा कर उसे शांत किया। वृक्षों के दूध और औषधियों के रस चू चू कर समुद्र में आने लगे। औषधियों के अमृत के समान प्रभावशाली रस और दूध सुवर्ण में मंदराचल की अनेक दिव्य प्रभावशाली मणियों को से चूने वाली जल के स्पर्श से ही देवता अमरत्व को प्राप्त होने लगे। उन उत्तम रसों के सम्मिश्रण से समुद्र का जल दूध बन गया और दूध से घी बनने लगा। देवताओं ने मत्ते मत्ते थक कर ब्रह्मा जी से कहा, भगवान नारायण के अतिरिक्त सभी देवता और असुर थक गए हैं। समुद्र मत्ते मत्ते इतना समय बीत गया परंतु अभी तक अमृत नहीं निकला। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान आप इन्हें बल दीजिए। विष्णु भगवान ने कहा, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं मैं उन्हें बल दे रहा हूँ। सब लोग पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल को घुमाएं।
समझ को शुद्ध कर।

0: भगवान जी इतना कहते ही देवता और असुरों का बल बढ़ गया। वे बड़े वेग से मचने लगे, सारा समुद्र शुद्ध हो गया। इसी समय समुद्र से अनगिनत किरणों वाला शीतल प्रकाश से युक्त श्वेत वन का चंद्रमा प्रकट हुआ। चंद्रमा के बाद भगवती लक्ष्मी और सुरा देवी निकली। इसी समय श्वेत वन का उच्च सवा घोरा भी पैदा हुआ। भगवान नारायण के वक्ष स्थल पर सुशोभित होने वाली दिव्य किरणों से उज्ज्वल कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, काम धेनु भी उसी समय निकले। लक्ष्मी, सुरा, चंद्रमा, उच्च सवा ये सब आकाश मार्ग के देवताओं के लोक में चले गए। के बाद दिव्य शरीरधारी धन्वंतरी देव प्रकट हुए। वे अपने हाथ में अमृत से भरा श्वेत कमंडल लिए हुए थे। यह अद्भुत चमत्कार देखकर दानवों में ये मेरा है, मेरा है, ऐसा कोलाहल मच गया। तदनंतर चार श्वेत दांतों से युक्त विशाल इरावत हाथी निकला। उसे इंद्र ने ले लिया। तब समुद्र का मंथन किया गया। तब उसमें कालकूट विष निकला। उसकी गंध से ही लोगों की चेतना जाती गई। ब्रह्मा की प्रार्थना से भगवान शंकर जी ने कंठ में धारण कर लिया। तभी से वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये सब देखकर दानवों की आशा टूट गई। अमृत और लक्ष्मी के लिए उन्होंने बड़ा बैर, विरोध और फूट हो गया। उसी समय भगवान विष्णु मोहिनी श्री अवेश धारण करके दानवों के पास गए। मूर्खों ने उनकी माया न जानकर मोहिनी रूपधारी भगवान को अमृत का पात्र दे दिया। उस समय वे सभी मोहिनी के रूप पर लट्टू हो रहे थे। प्रकार विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके दैत्य और दानवों से अमृत छीन लिया और देवताओं ने उनके पास जाके उसे पी लिया। इसी समय राहु दानव भी देवताओं का रूप धारण करके अमृत पीने लगा। अभी अमृत उसके कंठ तक ही पहुंचा था कि चंद्रमा और सूर्य ने उसका भेद बतला दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत ही चक्र से उसका सिर काट डाला और राहु का पर्वत शिखर के समान सिर आकाश में उड़कर गरजने लगा और उसका धड़ पृथ्वी पर गिरकर सबको कपाता हुआ तड़फड़ाने लगा। तभी से राहु के साथ चंद्रमा और सूर्य का पैर हो गया। विष्णु भगवान ने अमृत लाने के बाद अपनी मोहिनी रूप त्याग दिया और तरह तरह के घरावने अस्त्र शस्त्र से असुरों को डराने लगे। खारे समुद्र के तट पर देवता और असुरों का भयंकर संग्राम छिड़ गया। देवासुर संग्राम कहा जाता है इसमें। भांति भांति के अस्त्र शस्त्र बरसने लगे। भगवान के चक्र से कट कट कर कोई कोई असुर खून उगलने लगा। कोई कोई देवताओं के खड़क शक्ति और गदा से घायल होकर धरती पर लौटने लगे। चारों ओर से यही आवाज सुनाई पड़ती, मारो, काटो, दौड़ो, गिरा दो, पीछा करो। इस प्रकार भयंकर युद्ध हो ही रहा था कि विष्णु भगवान ने दो रूप नर और नारायण युद्ध भूमि दिखाए। नर का दिव्य धनुष देख कर नारायण ने अपने चक्र का स्मरण किया। भगवान नारायण के चलाने पर चक्र शत्रु दल में घूम घूम कर कालाग्नि के समान सहस्र सहस्रों का सहार करने लगे। देव शिरोमणि नर ने बाणों के द्वारा पर्वतों की चोटियां काट काट कर उन्हें आकाश मार्ग में बिछा दिया। सुदर्शन चक्र घास फूस की तरह दैत्यों को काटने लगे। इससे भयभीत होकर असुरगण पृथ्वी और समुद्र में छिप गए। देवताओं की जीत हुई। मंदराचल को सम्मान पूर्वक यथास्थान पहुँचा दिया गया।
1: जी, तो श्रोताओं बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहे हैं और समुद्र मंथन की कथा अभी रागले खदासी जी से हमने जानी कि किस तरह से देवताओं को अमृत मिला और ये सारी कथाएं बहुत सुंदर जो है इस महाभारत के अंतर्गत हम जान रहे हैं। आगे और भी कथाएं प्रसंग हैं जो हम जानेंगे रागले खदासी जी से, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कथाएं प्रसंग जानते हैं। जी,
0: उच्च सवा घोड़े को देखकर कद्रु ने वनिता से कहा, बहन जल्दी से बताओ इस घोड़े का किस रंग का है। वनिता ने कहा, बहन ये अश्वराज श्वेत वर्ण का है, तुम इसे किस रंग का समझती हो। कद्रु ने कहा, अवश्य ही इस घोड़े का रंग सफेद है परंतु पूछ काली है। आओ हम दोनों इस विषय में बाजी लगाए। यदि तुम्हारी बात ठीक हो तो मैं तुम्हारी दासी रहूं और मेरी बात ठीक हो तो तुम मेरी दासी रहना। इस प्रकार दोनों बहनें आपस में बाजी लगाकर दूसरे दिन घोड़े देखने का निश्चय करके घर चली गई। कद्रु ने वनिता को धोखा देने के विचार से अपने हजार पुत्रों को आज्ञा दी, पुत्रों तुम लोग शीघ्र ही काले बाल बनकर उच्च सभा की पूछ ढक लो, इससे मुझे दासी ना बनना पड़े। जिन सर्पों ने उसकी आज्ञा न मानी उसने उन्हें श्राप दिया कि जाओ तुम लोग अग्नि जलने दे के सर्प अग्नि जलकर भस्म हो जाओगे। कद्रु और वनिता ने दासी बनने की बाजी लगाकर बड़े रोष और आवेश में रात बिताई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही निकट से घोड़े को देखने के लिए दोनों चल पड़े। सर्पों ने परस्पर विचार करके निश्चय किया कि हमें माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस कि चलो हम लोग घोड़े की पूंछ को काली कर दी। ऐसा निश्चय करके उसे शवा की पूंछ से बाल बनकर लिपट गए और जिसे काली जान पड़ने लगी। वे कद्रू और नीता बाजी लगाकर आकाश मार्ग से समुद्र को देखते देखते दूसरे पार जाने लगे। दोनों ही दूसरे पार पहुँच कर नीचे उतर पड़े। उन्होंने देखा कि घोड़े का सारा शरीर तो चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल है, परंतु पूछ काली है। ये देखकर अनीता उदास हो गई। कद्दू ने उसे अपनी दासी बना लिया। समय पूरा होने पर माँ तेजस्वी गरुड़ माता की सहायता के बिना ही अंडा फोड़े ही उससे बाहर निकल आए। जनते ही आकाश में ऊपर उड़ने लगे। उस समय वैसे जान पड़ते थे माना दूसरा बड़वा नर ही हो। अग्नि के साथ जाकर देवता और ऋषियों ने गरुड़ की स्तुति की। ऋषियों की स्तुति सुनकर गरुड़ जी ने कहा, मेरे भयंकर शरीर को देखकर जो लोग घबरा गए थे अब वे भयभीत न हो। मैं अपने शरीर को छोटा और तेज को कम कर लेता हूँ। सब लोग प्रसन्नता पूर्वक लौट गए। एक दिन विनीता ने अपने पुत्र को पास बिठाया और कद्रू ने उसे बुलाकर कहा, मुझे समुद्र के भीतर नागों का एक दर्शनीय स्थान देखना है, वहां तू मुझे ले चल। और वनिता ने कद्रू को और गरुड़ जी ने माता की आज्ञा से सर्पों को अपने कंधों पर बिठा लिया। उनके अभी स्थान को चले। तीक्ष्ण गर्मी के कारण सर्प बेहोश हो गए। कद्रू ने इंद्र की प्रार्थना करके सारे आकाश को मेघ मंडल से आच्छादित कर दिया। वर्षा हुई, सब सर्प सुखी हो गए। मनोहर व नादि उदर देखकर यथेष्ट उन्होंने विहार किया और खूब खेल कूद कर गरुड़ से कहा, तुमने तो आकाश में उड़ते उड़ते बहुत से सुंदर सुंदर द्वीप देखे होंगे, अब हमें किसी द्वीप में ले चलो। गरुड़ कुछ चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोच विचार कर अपनी माता से पूछा, माँ मुझे सर्पों की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए? विनीता ने कहा, बेटा इन सर्पों के छल से मैं बाजी हार गई और दुर्भाग्यवश अपनी सौत कद्रू की दासी हो गई। अपनी माता के दुख से गरुड़ भी बड़े दुखी हो गए। उन्होंने सर्पों से कहा, सर्पगण ठीक ठीक बताओ, मैं तुम्हें कौन सी वस्तु ला दूं, किस बात का पता लगा दूं, अथवा तुम लोग का कौन सा उपकार कर दूं जिससे मैं और मेरी माता दासत्व से मुक्त हो जाएं। सर्पों ने कहा, गरुड़ यदि तुम अपने पराक्रम से हमारे लिए अमृत ला दो तो हम तुम्हें और तुम्हारी माता को दासत्व से मुक्त कर देंगे। सर्पों की बात सुनकर गरुड़ जी माता विनीता से कहा, माता मैं अमृत लेने के लिए जा रहा हूँ, इसके पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ खाऊंगा क्या। नीता ने कहा, बेटा समुद्र में निषादों की बस्ती है, इसे खाकर तुम अमृत ले आओ। स्मरण रखना, ब्राह्मण का वध कभी ना करना, ये सबके लिए अवध्य है। गरुड़ जी माता की आज्ञा के अनुसार उस द्वीप के निषादों को खाकर आगे बढ़े। गलती से एक ब्राह्मण उनके मुँह में आ गया, जिससे उनका तालू जलने लगा। उसे छोड़कर वे कश्यप जी के पास गए। कश्यप जी ने पूछा, बेटा तुम लोग सकुशल तो हो, आवश्यकता अनुसार भोजन तो मिल जाता है ना? गरुड़ जी ने कहा, मेरी माता सकुशल है, हम भी आनंद है। यथेष्ट भोजन न मिलने से कुछ दुख रहता है। मैं अपनी माता को दासीपन से छुड़ाने के लिए सर्पों के कहने से अमृत लाने के लिए जा रहा हूँ। अब आप कोई ऐसी खाने की वस्तु बताइए जिसे खाकर मैं अमृत ला सकूँ। कश्यप जी ने कहा, बेटा यहाँ पर थोड़ी दूर पर एक विश्वविख्यात सरोवर है, उसमें एक हाथी और कछुआ रहता है। वे दोनों पूर्व जन्म में भाई थे, परंतु एक दूसरे के शत्रु है। अब वे दोनों एक दूसरे से उलझे रहते हैं। अच्छा, उनके पूर्व जन्म की कथा सुनो। प्राचीन काल में विभावसु नामक एक बड़े क्रोधी ऋषि थे। उनका छोटा भाई था तपस्वी सुप्रतीक। सुप्रतीक अपने धन को बड़े भाई के साथ नहीं रखना चाहता था, वह जितने बंटवारे के लिए कहा करता। विभावसु ने अपने छोटे भाई से कहा, सुप्रतीक धन के मोह के कारण लोग उसका बंटवारा चाहते हैं और बंटवारा हो जाने पर एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। अब शत्रु भी उनके अलग अलग मित्र बन जाते हैं और भाई भाई में भेद डाल देते हैं। तू भेदभाव के कारण धन अलग अलग करना चाहता है, जा तुझे हाथी की योनि प्राप्त होगी। सुप्रतीक ने कहा, मैं हाथी होऊंगा तो तुम कछुआ होगे। गरुड़ इस प्रकार दोनों भाई धन के लालच में एक दूसरे को श्राप देकर हाथी और कछुआ हो गए। तुम जाकर उन दोनों भयंकर जंतुओं को खा जाओ और अमृत ले आओ। कश्यप जी की आज्ञा प्राप्त कर गरुड़ जी सरोवर पे गए। उन्होंने एक नख से हाथी को और दूसरे से कछुए को पकड़ लिया और आकाश में ऊंचे उड़कर अलम्ब तीर्थ से जा पहुंचे। वहां सुवर्ण गिरी पर बहुत से देव वृक्ष लहलहा रहे थे। गरुड़ को देखते ही वो भय से कांपने लगे और कहीं उनके धक्के से हम टूट ना जाए। उनको भयभीत देखकर गरुड़ जी दूसरी ओर निकल गए। उधर एक बड़ा सा वट वृक्ष था। वट वृक्ष ने गरुड़ जी को मन के वेग से उठते देखकर कहा, तुम मेरी 100 योजन लंबी शाखा पर बैठकर हाथी और कछुए को खा लो। जो ही गरुड़ जी ने उसकी शाखा पर बैठे तो ही वे चढ़ाकर टूट गई और गिरने लगी। गरुड़ जी ने गिरते गिरते शाखा को पकड़ लिया और बड़े आश्चर्य से देखा, उसमें नीचे की ओर सिर करके बालखिल्ले नामक ऋषिगण लटक रहे थे। गरुड़ जी ने सोचा, यदि शाखा गिर गई तो तपस्वी ब्रह्म ऋषि मर जाएंगे। अब उन्होंने झपट कर अपनी चोट से रस्सी शाखा पकड़ ली और हाथी और कछुए को पंजे में दबाया, आकाश में उड़ने लगे। कहीं भी बैठने का स्थान न पाकर वे आकाश में उड़ते ही रहे। उस समय उनके पंखों की हवा से पहाड़ भी कांप उठते थे। बालखिल्ले ऋषियों के ऊपर दया भाव होने के कारण वे कहीं बैठ ना सके। उड़ते उड़ते गंधमादन पर्वत पर गए। कश्यप जी ने उन्हें इस अवस्था में देखकर कहा, बेटा कहीं सहसा साहस का काम न करना, घर बैठना। सूर्य की किरण पीकर तपस्या करने वाले बालखिल्ले ऋषि ने क्रोध होकर कहीं तुम्हें भस्म न कर दे। पुत्र से इस प्रकार कहकर उन्होंने तप शुद्ध बालखिल्ले ऋषियों से प्रार्थना की। तपोधनों, जरूर प्रजा के हित के लिए एक महान कार्य करना चाहते हैं, आप लोग इसे आज्ञा दीजिए। बालखिल्ले ऋषियों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर वटवृक्ष शाखा छोड़ दिया। तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। गरुड़ जी ने वे शाखा फेंक दिया, पर्वत की चोटी पर बैठकर हाथी और कछुए को खाया। गरुड़ जी खा पी कर उस पर्वत की चोटी से ही ऊपर की ओर उड़े। समय देवताओं ने देखा कि उनके यहाँ भयंकर उत्पात हो रहे हैं। देवराज इंद्र ने बृहस्पति से पूछा, भगवान एकाएक बहुत से उत्पात क्यों होने लगे? इंद्र, तुम्हारे अपराध और प्रमाद से महात्मा बालखिल्ले ऋषियों के तपोबल से वनिता नंदन गरुड़ अमृत पीने के लिए यहाँ आ रहे हैं। वे अपनी शक्ति से असाध्य कार्य को साध सकते हैं। इंद्र ने अमृत की रक्षा रक्षकों को सावधान करके कहा कि देखो, परम पराक्रमी बक्षीराज गरुड़ यहाँ से अमृत ले जाने के लिए आ रहे हैं, सचेत रहो, वे बलपूर्वक अमृत ना ले जाने पाओ। सभी देवताओं और स्वयं इंद्र अभी अमृत को घेर कर उसकी रक्षा के लिए डट गए। गरुड़ जी वहाँ पहुँचते ही पंखों की हवा से इतनी धूल उड़ाई कि देवता अंधे से हो गए और वे धूल से ढककर मूर से मन गए। सभी रक्षक की आंखें खराब होने के डर हो गए, वे एक क्षण तक गरुड़ को देख भी नहीं सके। सारा स्वर्ग शुद्ध हो गया। चोर पंखों की चोट से देवताओं के शरीर जर्जरित हो गए। इंद्र ने वायु को आज्ञा दी, तुम इस धूल का पर्दा फाड़ दो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। वायु ने वैसे ही किया, चारों ओर उजाला हो गया। देवता उनका प्रहार करने लगे। धूल में उड़ते उड़ते गरज कर उनके प्रहार फैलिए और आकाश से भी ऊंचे पहुंच गए। देवताओं ने शस्त्रों के प्रहार से करुण तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनके आक्रमण को विफल देखकर गरुड़ की पंखों और चोंचों की चोट से देवताओं की चमड़ी उधर गई और शरीर खून से लथपथ हो गया। वे घबरा कर स्वयं ही तितर बितर हो गए। उसके बाद गरुड़ आगे बढ़े। उन्होंने देखा अमृत के चारों ओर आग की लाल लाल लपटें उठ रही हैं। अब गरुड़ ने अपने शरीर को 8100 मुंह बनाए और बहुत सी नदियों का जल पीकर उसे दहकती हुई आग पर उड़ेल दिया। अग्नि शांत होने पर छोटा सा शरीर धारण करके वे आगे बढ़े। सूर्य की किरणों के समान उज्जवल और सुनहरा शरीर धारण करके गरुड़ ने बड़े वेग से अमृत के स्थान में प्रवेश किया। उन्होंने वहां देखा अमृत के पास एक लोहे का चक्र निरंतर घूम रहा है, उसकी धार तीखी है, उसमें सहस्त्रों अस्त्र लगे हुए हैं। वह भयंकर चक्र सूर्य और अग्नि के समान जान पड़ता था। उसका काम ही था अमृत की रक्षा। गरुड़ जी चक्र के भीतर घुसने का मार्ग देखते रहे। एक क्षण में ही उन्होंने अपने शरीर को संकुचित किया, चक्र के आरों के बीच में से भीतर घुस गए। अब उन्होंने देखा कि अमृत की रक्षा के लिए दो भयंकर सर्प नियुक्त हैं। उनकी दृष्टि से विष का संचार होता था। गरुड़ जी ने धूल झोंक कर उनकी आंखें बंद कर दी, चूचों और पंजों से मार मार कर उन्हें कुचल दिया, चक्र को तोड़ डाला और बड़े वेग से अमृत पात्र को लेकर वे उड़ चले। उन्होंने स्वयं अमृत नहीं पिया, बस आकाश में उड़कर सर्पों के पास चल दिए। आकाश में उन्हें विष्णु भगवान के दर्शन हुए। गरुड़ जी ने मन में अमृत पीने का लोभ नहीं है ये जानकर भगवान उन पर प्रसन्न हो गए और बोले, गरुड़ मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, मन चाहे वस्तु मांग लो। गरुड़ जी ने कहा, भगवान एक तो आप मुझे अपनी ध्वजा में रखिए, दूसरा मैं अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊँ। भगवान ने कहा, तथास्तु, मैं भी आपको वर देना चाहता हूँ। गरुड़ जी ने कहा, मुझसे कुछ मांग लीजिए। भगवान ने कहा, तुम मेरे वाहन बन जाओ। गरुड़ जी ने कहा, ऐसे ही होगा, और कहकर उनकी अनुमति से अमृत लेकर यात्रा की। अब तक इंद्र की आंखें खुल चुकी थी। उन्होंने गरुड़ को अमृत के जाते देखकर क्रोध में भरकर बदल चलाया। गरुड़ ने मजा हाथ होकर भी हंसते हुए कोमल वाणी से कहा, इंद्र जिनकी हड्डी से ये वज्र बना है उनके सम्मान के लिए मैं अपना एक पंख छोड़ देता हूँ, तुम कभी अंत नहीं पा सकूंगी। मुझे कभी भी पीड़ा नहीं हुई। फिर उन्हें अपना एक काम गिरा दिया, उसे देखकर लोग

0: बहुत दुख देंगे। गरुड़ जी ने कहा, देवराज अमृत को ले जाने का एक कारण है, मैं इसे किसी को पिलाना नहीं चाहता हूँ, मैं इसे जहाँ रखूँ वहाँ से आप उठा ले जाइए। इंद्र ने संतुष्ट होकर कहा, गरुड़ उसे मुंह मांगा वर मांग लो। गरुड़ जी ने सर्पों की दुष्टता और उसके छल के कारण होने वाले माता के दुख का स्मरण हो आया। उन्होंने वर मांगा, ये बलवान सर्प ही मेरे भोजन की सामग्री हो। देवराज इंद्र ने कहा, तथास्तु। इंद्र से विदा लेने के बाद गरुड़ सर्पों के स्थान पर आए, वहीं उनकी माता भी थी। उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, सर्पों से कहा, ये लो मैं अमृत ले आया, परंतु पीने में जल्दी मत करो, मैं इसे कुशों पर रखता हूँ, स्नान करके पवित्र हो लो फिर इसे पीना, स्नान करके पवित्र हो लो फिर इसे पीना। अब तुम लोगों के कथा अनुसार मेरी माता दासीपन से छूट गई, क्योंकि मैंने तुम्हारी बात पूरी कर दी है। सर्पों ने स्वीकार कर लिया। जब सर्पों प्रसन्नता से भरकर स्नान करने गए, तब इंद्र अमृत कलश को लेकर स्वर्ग में चले गए। मंगल कृत्य से लौट कर सर्पों ने देखा, अमृत उस पर नहीं था स्थान पर। उन्होंने समझ लिया कि हमारी विनीता को दासी बनाने के लिए जो कपट किया था उसी का फल है। फिर ये समझकर अमृत रखा गया था, इसलिए संभव है इसमें कुछ अंश लगा हो। सर्पों ने कुशों को चाटना शुरू कर दिया। ऐसे करते ही उनके जीभ के दो टुकड़े हो गए। अमृत का स्पर्श होने से कुश पवित्र माना जाने लगा। अब गरुड़ कृत्य होकर आनंद से अपनी माता के साथ रहने लगे। वे पक्षी राज हुए और उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई और माता सुखी हो गई।
1: जी श्रोताओं, बहुत ही सुंदर कथा हमने जानेंगे किस तरह से अपनी माता के लिए गरुड़ जो है अमृत का कलश लेने गए और उसमें वो सफल भी हुए और किस तरह से वो भगवान जी का वाहन बने, ये भी हमने जाना। और ये पूरी कथा जो है हमने जानी इस महाभारत काव्य के अंतर्गत। तो श्रोताओं, इसमें ऐसी बहुत सारी कथाएं प्रसंग हैं जो हम जानते रहेंगे रागले खदासी जी से, लेकिन अभी जो वक्त है आपसे इजाजत लेने का हो चुका है। तो रागले खदासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी, तो श्रोताओं, आज के लिए कार्यक्रम आत्मदर्शन में बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी कथाएं प्रसंग हम जानेंगे, लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड फील लाइव।
2: अभी न जाओ छोड़ कर।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मैं हूँ आपकी कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला और मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ शिव पुराण, जिससे कि आप सबका कल्याण हो सके। तो दोस्तों, शिव पुराण का सुनवाने के लिए हमने अपने स्टूडियो में लीना जी को आमंत्रित किया हुआ है। लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: दोस्तों, शिव का अर्थ ही है कल्याण स्वरूप और कल्याण प्रदाता। परम ब्रह्म के इस कल्याण रूप की उपासना उच्च कोटि के सिद्धों, आत्म कल्याण कामी साधकों एवं सर्वसाधारण आस्तिक जनों सभी के लिए मंगलमय एवं सर्व सिद्धिदायक हैं। तो श्रोताओं, हम भी क्यों ना इस तरह से अपने जीवन की सारी सिद्धियां प्राप्त करें, क्यों कैसे कि शिव पुराण की व्याख्या सुनकर। तो लीना जी, आपने जो पिछली एपिसोड में जो आपने वर्णन सुनाया था हमारे श्रोताओं को, कि ब्रह्मा जी ने कहा कि हिमालय सब सुनकर अपने परिवार वालों से कहने लगे कि सुमेरों, और परिवार कौन था, सारे पर्वत, सुमेरों पर्वत राजों सुनो, मुझे क्या करना चाहिए। पर्वत राजों ने कहा, अब क्या विचार करना है, इसका जन्म तो कल्याण के लिए ही हुआ है, इसे शिव जी को दे दीजिए। फिर हिमालय ने निर्णय लिया कि मैं अपनी कन्या शिव जी को ही दूंगा, सब कुछ मैंने सोच लिया है। तो आप सारे के सारे जो मंगल पर्वत राज थे और ऋषि मुनि थे, सबने कहा आप दाता हो और शिव जी भिक्षुक, अब बताइए इससे बड़ा आपका सम्मान और क्या हो सकता है। सप्तऋषियों ने जब ऐसा कहा और विश्वास दिलाया तो गिरिराज और मैना ने अपनी कन्या भगवान शिव को देने की सोच ली। तो उसके बाद सबने मिलकर शिव जी के पास गए और उनको कहा कि आप सभी देवों को आमंत्रित कीजिए और हिमालय अपनी पुत्री आपको देने के लिए तैयार है। अब आगे लीला जी, कैसे ये कथा बढ़ती है, अब क्या होता है, तो जरा हमें बताइए।
1: बिल्कुल, एक रोचक कहानी हम लोग सुन रहे हैं।
0: हाँ।
1: और इस रोचक कहानी में पार्वती और शिव के विवाह प्रस्ताव की चर्चा है।
0: हाँ जी, हाँ।
1: अब शिव पुराण के रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 37वां अध्याय शुरू हो रहा है और इस 37वें अध्याय में देखिए क्या होता है
0: जी।
1: नारद उवाच, तात प्राज्ञ बदेद इदानीम सप्तर्षिषु गतेषु च किम आकर्षित धर्मगिरी तन्मे कृत्वा कृपां प्रभो। कहते हैं हे प्राज्ञ, उन सात मुनियों के चले जाने पर हिमालय ने क्या किया। जो सप्तर्षि थे वो तो प्रस्ताव लेकर के गए थे हिमालय के पास, पार्वती के विवाह का प्रस्ताव लेकर के। तो अब वो लोग जब चले गए तब हिमालय ने क्या किया, कृपा करके कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अब ब्रह्मा जी सुना रहे हैं उस बात को, कहते हैं गतेषु तेषु मुनिषु सप्तसु अपि मुनीश्वर सारुन्धतीषु हिमवान यद आकर्षीद ब्रवीमि ते तत आमंत्रिय स्वभ्रातृन मेवार्दिन ससुत प्रिय महामना स मुमुदे हिमवान पर्वतेश्वर। कहते हैं ब्रह्मा जी की हे मुनिवर, अरुंधति सहित तो उन सप्तर्षियों के चले जाने पर हिमालय ने जो किया वह मैं तुमसे कह रहा हूँ। उसके बाद पुत्रों सहित मेरु आदि अपने भाइयों को आमंत्रित कर वह पर्वतराज हिमालय प्रसन्न हुआ। उसने प्रसन्न होकर अपने पुरोहित गर्गाचार्य से लग्न पत्री दिखवा कर शिव जी के पास उसे भिजवा दिया। देखिए उस समय लग्न पत्री भी चलती थी और लोग उसे मानते भी थे, आज भी चलती है लेकिन बहुत कम लोग उसे मानते हैं। लेकिन लग्न पत्री आवश्यक है क्योंकि इससे क्या होता है, ये वर और वधु जो भी बनने वाले हैं भविष्य में उनके साथ क्या क्या हो सकता है और अगर नहीं मिलान होता है तो वो हर समय दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं भोग सकते, इसलिए ये जो है लग्न पत्री आवश्यक होती है कि दाम्पत्य जीवन का वो सुख भोग पाए, ऐसे उचित वर या वधु से विवाह हो सके, इसलिए लग्न।
0: जैसे लीना जी, आजकल ये देखने को मिल रहा है कि ज्यादातर हमारे समाज में भी आधुनिक युग में कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, मंदिर में मैरिज कर रहे हैं। चलो मंदिर में तो पंडित सारे जो श्लोक हैं मंत्र हैं उनसे ही करवाएगा, या कहीं भी विवाह कर लेते हैं तो अग्नि को, कहीं भी अग्नि को साक्षी मान के कहीं भी निर्जन स्थान में कर लेते हैं। तो अब ये जो हमारी लग्न पत्रिका है या पहले से उनके नक्षत्र लग्न सब दिखवाए जाते हैं, तो और वो जो सारा का सब पत्रिका, उनकी जन्म पत्रिकाएँ मिलवाई जाती हैं, गुण मिलवाए जाते हैं, वो उनका महत्व फिर क्या, मतलब क्या रह जाता है उन सब के लिए?
1: बिल्कुल महत्व तो नहीं रह जाता है, चाहे माने या नहीं माने। हाँ। अगर हम शास्त्र वचन मानते हैं तो शास्त्र को नेत्र कहा गया है। अगर शास्त्र वचन नहीं मानते हैं तो समझिए हमारे, हम अपनी आंखें ही बंद किए हुए हैं। और आंखें बंद करके जब आप रास्ते पर चलेंगे तो कहाँ गड्ढा है, कहाँ खाई है, कहाँ पर्वत है, कहाँ नदियां है, हम नहीं जान पाएंगे। और हम कहीं भी गिर सकते हैं। इसलिए आज के युग में आप देखेंगे कि दाम्पत्य संबंधों में वह मधुरता नहीं रह गई है जो होनी चाहिए। हाँ। एक ही छत के नीचे पति पत्नी रहते हैं लेकिन वह प्रेम नहीं दिखता, वह संगीत मधुर नहीं दिखता जो दाम्पत्य संबंधों में होना चाहिए।
0: हाँ।
1: और जो कोर्ट मैरिज करें या कोई भी मैरिज करें, लेकिन वो मधुरता तभी होगी जब हम एक दूसरे का मिला के स्वभाव का मिलान करेंगे। वास्तव में तमोगुणी लड़की है और सतोगुणी लड़का है तो फिर मिलान नहीं होगा।
0: हाँ।
1: अगर सतोगुणी लड़की है तमोगुणी लड़का है तब भी मिलान नहीं होगा, क्योंकि तमोगुणी लड़का मांस मदिरा खाएगा, सतोगुणी मांस मदिरा से परहेज करेगी, दोनों में लड़ाई झगड़े होंगे। ठीक उसी तरह लड़के और लड़की दोनों में सेम बातें हैं। तो इसलिए जो लग्न पत्री होती है उसमें गुणों का मिलान होता है।
0: तो अब ये भी देखने को मिल रहा है लीना जी समाज में कि सारे गुण भी मिले, लग्न पत्रिका भी लिखवाई, उसके बाद भी एक साल बाद ही उनका डिवोर्स भी हो गया, उनका तलाक भी हो गया। उसमें ना वर ने सोचा कुछ आगे के बारे में, ना वधू ने सोचा, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने।
1: इसका भी कारण ये है कि विवेक का अभाव रहता है।
0: हाँ।
1: दंपत्ति के बीच में विवेक बहुत आवश्यक है, एक दूसरे पर विश्वास भी आवश्यक है और एक दूसरे के हितों के विषय में सोचकर आगे बढ़ना भी आवश्यक है। आप देखिएगा अधिकांश घरों में क्या होता है, शादी तो हो जाती है, लड़की लड़के के ससुराल को, लड़के के परिवार वालों को स्वीकार भी कर लेती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन लड़की के परिवार वालों को स्वीकार नहीं जब ससुराल करता है तो लड़की पर क्या बीतती है ये कोई नहीं सोचता
0: नहीं।
1: तो लड़की भी चाहती है कि उसके परिवार वालों को भी वही आदर वही सम्मान मिले जो वह अपने ससुराल के में सबको देती है।
0: हाँ।
1: चाहे वो ससुर हो ननद हो सभी जगह। हाँ। मैं ये नहीं कहूंगी कि सभी लड़कियां ऐसी होती हैं, सभी लड़के ऐसे ही होते हैं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन प्रायः आप देखिएगा कि बच्चियां जो भी होती हैं जिनकी भी शादी होती है वो स्वीकार कर लेती हैं और जैसे भी हो आदर करती हैं। लेकिन वहीं पर अगर बच्चियां चाहेंगी कि हम अपने मायके जाएं तो 10 बातें बताई जाती हैं कि अभी क्या करोगी, अभी तो आई थी, अभी तो ऐसा हुआ था। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए और ना ही लड़की की तरफ से होना चाहिए कि हर समय मायके मायके मायके करते रहें और मोबाइल फोन से चिपके रहें, तो ये भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमेशा विवेक से काम लेना होता है कि जितना आपको दिया जा रहा है उतना ही आप वापस भी दीजिए, तो दोनों के हृदय का मिलन होगा। हृदय से हृदय का जब तक मिलन नहीं होगा तब तक हृदय से हृदय का स्पंदन नहीं होगा और उसमें पुलकन नहीं उठेगी। जब पुलकन नहीं उठेगी, रोम रोम पुलकित ही नहीं होंगे तो घर में आनंद कैसे होगा। तो इसलिए विवेक आवश्यक है। ठीक है, प्रेम हृदय का हृदय से प्रेम होना चाहिए। तो जब शिव और पार्वती की हम लोग बातें कर रहे हैं तो शिव और पार्वती में हृदय का हृदय से प्रेम है और ऐसा प्रेम अद्वितीय प्रेम है जो कि हमें कहीं देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये ध्यान देना होगा कि पार्वती ही हम लोगों के हृदय में बसी हुई है, शिव ही हम लोगों के हृदय में बसे हुए हैं। तो शिव और पार्वती का जो प्रेम है वो आत्मा और परमात्मा का प्रेम है और ये एक उदाहरण है हम लोगों के लिए कि हम भी पार्वती बत प्रेम करें, हम भी शिव बत प्रेम करें। लेकिन जब प्रेम नहीं मिलता है एक दूसरे से तो फिर हम
0: संबंध नहीं बन पाते,
1: अच्छे संबंध नहीं बना पाते। अब देखिए यहाँ कहते हैं कि लग्न पत्री बना करके शिव जी के पास उसे भिजवा दिया और प्रसन्न चित्त होकर अनेक प्रकार के फल पकवान तथा मिठाइयां भी भिजवाई तथा उन लोगों ने कैलाश में शिव जी के पास जाकर फल आदि सहित वह लग्न पत्रिका दी और शिव जी को तिलक किया। शिव जी ने भी उन सब का यथोचित सम्मान किया। उसके बाद वे हिमालय के पास लौट आए। अब कौन लौट आए? जो सप्त मुनि थे वो लौट आए। और दूसरी बात कि हिमालय ने अपने पुत्रों सहित मेरु आदि अपने भाइयों को आमंत्रित किया था और गर्गाचार्य से जनपत्री लिखवा कर उसे भिजवाया था अपने पुत्रों से। तो फिर वो सब दिए वहां जाकर के और शिव जी ने उन्हें ग्रहण किया। अब देखिए क्या होता है कि अपने लोगों का शिव जी ने विशेष प्रकार से सम्मान किया, ये बड़ी बात है। यह जानकर हिमालय मन में प्रसन्न हुआ। तब उसने प्रसन्न होकर अनेक देशों में स्थित अपने बंधुजनों को सुखद निमंत्रण भेजा। तब उसने आदर से विवाहोचित अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री का संग्रह करवाया, क्योंकि शादी ब्याह में तो समय लगता ही है और बहुत सारी चीजें देनी होती हैं। तो उसने संग्रह करवाया, हिमालय ने चावल तथा चूड़ों के पहाड़ लगा दिए, उसी प्रकार गुड़ चीनी नमक के ढेर लगा दिए, दूध दही तथा घी की बावड़ियां बना डाली। देखिए बावड़ी बना डालना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शिव पार्वती का विवाह था तो पूरे संसार से लोग आने वाले थे, तो अब किसी को वो मना तो कर नहीं सकते थे, तो इसलिए उसने बावड़ी बना दी। जौ गेहूं के आटे का संग्रह करा दिया, लड्डुओं पूड़ियों स्वस्तिकों चीनियों चीनी के ढेर लगा दिए, अमृत तथा ईख के रसों से बावरियां भर गईं, मक्खन आसव तथा अनेक प्रकार के पकवान तथा स्वादयुक्त रसों के ढेर लग गए, अनेक प्रकार के व्यंजन जो देवताओं तथा शिव जी के गणों के लिए बनाए गए थे, बहुमूल्य अनेक प्रकार के शुद्ध वस्त्र, अनेक प्रकार के मणि रत्न सोने चांदी से बने हुए आभूषण तथा पात्रों को विधि पूर्वक संग्रह करके शुभ मुहूर्त में हिमालय ने मंगलाचार आरम्भ कर दिया और पर्वत की स्त्रियाँ पार्वती का श्रृंगार करने लगी। देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं और इसमें अतिशयोक्ति हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि युग पुरुष का युग स्त्री से विवाह हुआ था, काल पुरुष का काल स्त्री से विवाह हुआ था, तो होगा तो ऐसा ही। विवाह कोई साधारण मनुष्य का तो था नहीं, साधारण नर और नारी का था नहीं, ये प्रकृति का पुरुष के साथ संयोग था। और प्रकृति यानी संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण जगत, संपूर्ण माया के साथ, सौंदर्य के साथ विराजमान थी और उन माया के मायापति उनसे मिलन के लिए आ रहे थे। उनका विवाह होने वाला था, प्रकृति का पुरुष से परमेश्वर से विवाह होने वाला था, तो ऐसा अचंभा ऐसा अद्वितीय तो होना ही था। कहते हैं कि मंगलम कर्तुम आरभे गिरिर्मंगल कृद्दिने संस्कारम कार्यामासु पार्वत्या पर्वत स्त्रिय ता मंगलम मुदा चक्रुर्भूषिता भूषण स्वयं पुरद्विज स्त्रियो हृष्टा लोकाचारम प्रचक्रिरे सोत्सवम विविधम तत्र सुमंगल पुर सरम हिमालयो अपि हृष्टात्मा कृत्वाचारम सुमंगलम। अब कहते हैं मंगल ही मंगल था हर तरफ, क्योंकि मंगल पुरुष का मंगल स्त्री से विवाह हो रहा था, तो फिर मंगल ही मंगल क्यों नहीं होता। अब देखिए कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में हिमालय ने मंगलाचार आरंभ कर दिया और पर्वत की स्त्रियां पार्वती का श्रृंगार करने लगी। वे स्वयं अनेक आभूषणों से सुशोभित होकर मंगलाचार करने लगी और ब्राह्मणों की स्त्रियां भी उस लोकाचार में सम्मिलित हुई। वहां मंगलाचार के साथ हिमालय भी लोकाचार करने लगे। बंधुओं के आने से वह प्रसन्न हुआ। इसी बीच उसने दूसरे बंधु बांधवों को भी निमंत्रित किया। वे सब अपने स्त्री पुत्र नौकर चाकरों के साथ आए। हे देवर्षि, उन पहाड़ों के आने की चर्चा आदर से सुनो, मैं संक्षेप से शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कह रहा हूँ। देखिए अब पहाड़ों की चर्चा है। कभी जो है कौन है लेखक, इसके वेद व्यास है, वेद व्यास जो व्यास यानी कि व्यापक और व्यापक रूप से वो वर्णन कर रहे हैं। और पुराण का वर्णन कब किया गया है वेद व्यास के द्वारा, जब वो महाभारत लिख करके बहुत ज्यादा उद्विग्न हो गए थे, क्योंकि महाभारत में युद्ध की चर्चा थी और रक्तपात की चर्चा थी, हत्या मारकाट की चर्चा थी, तो वे बड़े उद्विग्न हो गए थे। तो उन उद्विग्न वेद व्यास को नारद जी ने कहा कि आप भक्ति कारण की गंगा बहाइए तो आपको आनंद आएगा। तो भक्ति की गंगा बहाने में भक्त को भी उतना ही आनंद आता है जितना कि पाठकों को श्रोताओं को आनंद आता है। जैसे कि हमको आपको आनंद आ रहा है भक्ति रस में अवगाहन करने पर, अब श्रोता गण सुनेंगे तो उनको भी आनंद आएगा। हम भाव विभोर होकर के इसे पढ़ रहे हैं, भाव विभोर होकर के इसे सुन भी रहे हैं और हमें लग रहा है कि वास्तव में शिव पुराण है तो क्या।
0: लीना जी, यह जो जिस प्रकार से यहाँ वर्णन किया जा रहा है पार्वती और शिव के विवाह का और तैयारियों का, तो ऐसा लग रहा है कि हम बैठे हैं और सामने ये सारा कुछ हो रहा है, सारा विवाह का वर्णन हो रहा है, विवाह की तैयारियां हो रही हैं और सारे सीन ऐसा लग रहा है कि हम लोग भी देख रहे हैं, हम भी शामिल हो रहे हैं। तो वो जो आनंद हम महसूस कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगी अपने श्रोताओं से कि हर व्यक्ति, हर श्रोता उस आनंद को महसूस करे, क्योंकि
1: यह अपूर्व दृश्य है,
0: अपूर्व दृश्य,
1: अभूतपूर्व दृश्य है, रोमांचक दृश्य है।
0: जी जी,
1: तो इस दृश्य का वर्णन वेदव्यास जी किस तरह से भाव विभोर होकर कर रहे हैं, यह हमें सुनना चाहिए। अब देखिए, पर्वतों के विषय में वो वर्णन कर रहे हैं। हम लोग कितने पर्वत का नाम जानते हैं, हिमालय है, अरावली है, सतपुरा है, सतपुरा के घने जंगल, अरावली के पर्वत है, सतपुरा के घने जंगल,
0: देखा तो सबने एक दो को ही
1: है, आल्प्स है,
0: नाम है,
1: तो बहुत सारे पर्वत
0: सारे
1: अगर पर्वत। हम नाम लेना चाहें तो बस गिन करके 10-15 पर्वत के नाम लेंगे। अब यहाँ वेदव्यास जी कितने पर्वतों का नाम ले रहे हैं, और हर पर्वत एक से एक बढ़कर, जिनके नाम हम जानते भी नहीं है, लेकिन उस समय ये पर्वत तो अवश्य होंगे, तभी उन्होंने नाम लिया है। अब देखते हैं किन किन पर्वतों का इन्होंने नाम लिया है। वो कहते हैं वेदव्यास जी कि आजगमु स स्त्रियो हिष्टा स सुता स परिच्छदा तदेव शृणु देवर से गिरिया गमन आद्रिता वर्णयामी समासेन शिव प्रीति विवृधय देवालय गृढ़ो ही दिव्य रूप धरो महान। अब वो देवालय पर्वत के विषय में बताते हैं। हिमालय तो है ही, अब देवालय पर्वत है। कहते हैं देवालय नाम के महान पर्वत दिव्य रूप धारण कर, अनेक रत्नों को धारण कर अपने समाज तथा परिवार के साथ आए। वे अपने साथ अनेक मणि तथा रत्न लेकर पहुंचे। अब देवालय पर्वत का वर्णन करने के बाद वो किसका वर्णन कर रहे हैं, मंदराचल, जिनका नाम हमने हमेशा सुना है मंदराचल। वो कहते हैं कि सुवेशा अलंकृता श्रीमान जगाम च हिमालयम नाना रत्न परिभ्राजत समाज सपरिच्छद नाना मणि महारत्न सारन आदाय यत्नतः। सुवेशालंकृतः श्रीमान जगाम च हिमालयम मंदर सर्वसौभाग्य स नारी तनयो गिरो। अब वो कहते हैं कि श्रीमान मंदराचल सुंदर वेश धारण कर, अनेक रत्नों को धारण कर अपने समाज तथा परिवार के साथ आए। वे अपने साथ अनेक मणि तथा रत्न लेकर पहुंचे। श्रीमान मंदराचल सुंदर वेश धारण कर स्त्री पुरुष सहित हिमालय के घर पधारे। अब आम व्यक्ति में जिज्ञासा हो सकती है कि ये पर्वत थे तो आए कैसे, सुंदर वेश धारण कर कैसे आए, तो ये जिज्ञासा भी यही शांत हो जानी चाहिए कि वास्तव में ये पर्वत, ये नदियाँ, ये सभी आत्मावान थे, वो जो चाहे रूप धारण कर सकते थे। अब जैसे अगस्त मुनि की पत्नी है लोपामुद्रा, आज वो नदी के रूप में है दक्षिण भारत में, तो नदी क्यों बनी, क्योंकि उस जगह पानी नहीं था, कहीं भी पानी नहीं था, और अगस्त मुनि बड़े परोपकारी थे, मुनि थे, ऋषि थे, बहुत परोपकारी थे, उन्होंने अपनी पत्नी को नदी बना दिया। गंगा नदी बन गई, यमुना नदी बन गई, कोशी नदी बन गई,
0: आज भी ली नदी इनको माता की, गंगा माता, यमुना मैया, माँ कहकर ही पुकारते हैं इनको।
1: जी, जी।
0: तो और ये जब हमारा महाभारत हम देखते हैं तो भीष्म अपनी माँ गंगा को सामने ही जब प्रार्थना करते थे वो आती थी,
1: बिल्कुल,
0: तो साक्षात अभी भी अगर कोई बिल्कुल सात्विक मन से माँ गंगा को पुकारे, माँ यमुना को पुकारे, वो अपना उसी रूप में दर्शन देती हैं। तो यह सत्य ही है कि पर्वत राज भी उस समय अपने अपने रूप में सब पधारे होंगे,
1: पधारे
0: जी।
1: तो सबसे पहले उन्होंने देवालय का वर्णन किया, फिर मंदराचल का वर्णन किया। अब कहते हैं कि दिव्यात्मा तथा बुद्धि वाले, उदार बुद्धि वाले, अस्ताचल भी एक पर्वत है, देवालय, मंदराचल, अस्ताचल, अनेक प्रकार के उत्तम उपहारों को अपने साथ लेकर वहाँ गए। अत्यंत शोभा वाले उदयाचल, देखिए हमें नाम भी याद हो रहा है कि उदयाचल, अस्ताचल, देवालय, मंदराचल, तो प्रसन्नता पूर्वक उत्तम प्रकार के रत्नों तथा मणियों को लेकर वहाँ आए। महान सुखी उत्तम परिवार वाले मलय गिरिराज भी आदर पूर्वक आए, मलय पर्वत का तो नाम सभी जानते हैं, क्योंकि वहां से मलयालिन यानी कि मलय पर्वत से जो हवा सुगंधित हवा बहती है वो कहा जाता है कि मलय पर्वत से आई होगी। तो सुगंधित क्योंकि वहाँ चंदन के वृक्ष हैं और चंदन के वृक्षों से टकरा करके जब हवा चलती है तो वो क्या होता है, सुगंधित हो जाता है। तो कहते हैं मलय पर्वत भी आए, भली भांति सज धज कर बहुत सी सेना को लेकर स्त्री सहित प्रसन्न चित दर्दुड़ नामक पर्वत शीघ्र वहां आए। मंदरा चलाए, अस्ता चलाए, उदया चलाए, देवालय आए, मलय पर्वत आए, दर्दुड़ आए। फिर हे तात, अनेक प्रकार से सुसज्जित प्रसन्न चित विशद पर्वत भी सपरिवार हिमालय के घर आए। भाग्यवान गंधमादन पर्वत भी स्त्री पुत्रों सहित प्रेम से हिमालय के घर आए। कहते हैं महेंद्र पर्वत श्रेष्ठ आजगाम हिमालयम सगण ससुत स्त्री को बहुशोभा समन्वित परियात्रो ही हृष्टात्मा मणि रत्ना करैर युतः सगण सपरिवार आययो हिम भूधरम क्रौंच पर्वतराजो ही महाबल परिच्छद आजगाम गिरिश्रेष्ठ समुपायन आदृत। अब देखिए अनेक प्रकार की संपत्ति को लेकर करवीर पर्वत भी वहां पहुंचे और पर्वतराज महेंद्र भी हिमालय के घर निमंत्रण में पधारे। अपनी स्त्री पुत्र तथा सेवकों को तथा मणिरत्नों को साथ लेकर प्रसन्नचित पारयात्र भी आए। पर्वतराज क्रौंच भी अपने परिवार सेवक तथा सेना के साथ हिमालय के घर पहुंचे। पुरुषोत्तम नामक शैल भी अनेक प्रकार के उपहारों को लेकर अपने समाज सहित आदर पूर्वक हिमालय के द्वार पर आए। नील पर्वत आनंद के साथ पुत्र पुत्री स्त्री तथा बहुत सा धन लेकर हिमालय के घर आए। त्रिकूट चित्रकूट वेंकट श्रीगिरी गोकामुख, गोकामुख कहा गया भारतवर्ष में स्थित ये एक विशेष पर्वत है, तो गोकामुख तथा नारद ये पर्वत भी हिमालय के घर पहुंच गए। पर्वतराज विंध्याचल भी स्त्री पुत्रों को साथ लेकर तथा अनेक प्रकार की उपहार की वस्तुओं को लेकर प्रसन्न होकर वहां आए। कालंजर नामक महापर्वत अत्यंत प्रसन्न होकर अपने अनेक गणों के साथ हिमालय के घर आए। गिरिराज कैलाश भी, कैलाश जहां शिवजी वास करते हैं, क्योंकि शिवजी तो उस समय हिमालय पर वास कर रहे थे, तो गिरिराज कैलाश भी अत्यंत प्रसन्न होकर सबके ऊपर कृपा करते हुए वहां आए। ये सभी उन पर्वतों के अधिष्ठात्री देवता थे। हे नारद, दूसरे द्वीपों में भी जो जो पर्वत थे और इनके अतिरिक्त जो भारतवर्ष में पर्वत थे वे सभी हिमालय के घर आए। अभी तो पर्वतों का वर्णन चल रहा है और कितने पर्वतों का वर्णन उन्होंने कर दिया। ये सारे पर्वत आए और जिन पर्वतों का वर्णन नहीं किया है वो भी हिमालय के घर आए। कैसे? कहते हैं कि दूसरे द्वीपों में भी जो जो पर्वत थे और इनके अतिरिक्त जो भारतवर्ष में पर्वत थे वे सभी हिमालय के घर आए। हे मुनि, हिमालय द्वारा निमंत्रित सभी पर्वत प्रसन्नता पूर्वक शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए वहाँ आए। अब यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगी कि एक बार मैं गई थी यहाँ केदारनाथ, केदारनाथ से लौटते हुए एक जगह पड़ी जहाँ पर शिव पार्वती का विवाह हुआ था। अच्छा। सतयुग में विवाह हुआ था उनका, लेकिन आज तक वहाँ अग्नि जल रही है ऐसा उन लोगों का कहना है। अच्छा। और अग्नि जल रही थी, बहुत बड़ा यज्ञ कुंड था और उसमें जो भी जाते हैं एक लकड़ी डाल करके आते हैं। अच्छा। तो हम लोगों ने भी डाला एक एक लकड़ी और वो सच में अग्नि वहाँ जल ही रही है। क्या सच है नहीं है ये तो जो ज्योतिषी हैं वो सब वो बताएंगे, लेकिन चूंकि हम लोग भक्ति करते हैं,
2: देख रहे हैं वो
1: तो है। जो देख रहे हैं वही सत्य है। हम ऐसा सोचते हैं कि जो शंकराचार्य आदि ने वर्णन किया है वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि शंकराचार्य के विषय में कहा गया है कि जब सारे मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गए थे और पता भी नहीं था और ये बौद्ध धर्म जैन धर्म का प्रभाव अपने देश में था और वैदिक धर्म बिल्कुल ही समाप्त प्राय सा हो गया था, तो उस समय शंकराचार्य ने सब कुछ पुनर्जीवित किया, पुनरोद्धार किया। उसी पुनरोद्धार प्रकरण में उन्होंने देखा जहाँ महिष मर्दिनी ने महिषासुर का वध किया था वो जगह भी उन्होंने देखी अपने ज्ञान चक्षु से और फिर उसका भी पुनरोद्धार किया। तो केदारनाथ से आने पर, नीचे आने पर बहुत सारे ऐसे मंदिर आपको मिल जाएंगे जिनका शंकराचार्य जी ने उद्धार किया है, आदि गुरु शंकराचार्य ने, और उसी में ये मंदिर भी पड़ा था रास्ते में जहाँ पर हम लोगों ने भी यज्ञ किया।
0: ये भी हमारे श्रोताओं को ज्ञान मिल गया। तो लीना जी, क्योंकि एपिसोड्स को समाप्त होने का समय हो चला है, तो दोस्तों हम सब अपनी तरफ से और आपकी तरफ से मैं लीना जी का धन्यवाद करती हूँ। तो लीना जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद,
1: धन्यवाद
0: कि आपने इतना अमूल्य रत्नों से, अमूल्य ज्ञान से हम सबको कृतार्थ किया। अब मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, क्योंकि अगले एपिसोड में पुनः हम लीना जी के साथ यहीं पर मिलेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव।

Radio 107.8 FM पर ढेर सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर 1।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हाल चाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग।
1: ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
2: ओम शांति। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
0: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें। नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं। उनसे कुछ पूछो तो यही कि यार हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर हैं हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा हैं। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा है, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से, मतलब किस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है, आप अपने तरीके से समझाएं सभी लिसनर्स को।
2: जैसा कि दूसरा अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन क्योंकि विषाद में है तो सबसे पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को भूल जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है वो पूरा ही अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पर ही फोकस कर रहा है कि हम कौन हैं और हम क्या बन करके चल रहे हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा भी कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूये अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हरन्ते हन्यामाने शरीरे। अर्थात है कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है। मानव शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अमर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। तो वहां उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं आता। तो इसमें ये बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है, उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए। आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
0: बिल्कुल,
2: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे, या कोई आपकी गली के अंदर भी आप देखें कि कोई कहीं कथा हो रही है, तो लोग पूछेंगे कि क्या वहां से इनविटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे पहुंचे चले जाते
0: बिन बुलाए मेहमान,
2: बिन बुलाए मेहमान, जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने। तो माना कहीं ना कहीं हमारी कान की इंद्रियों को रस मिलने लगा है उस नेगेटिव बातों में। तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं और मन भी उसी में रमने लगा है। तो यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। आत्मा इस शरीर में राजा है और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वधर्म कौन कौन से गुण हैं, उसके मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा के सात गुण हैं। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में लें तो कहा जाता है KP² LHBP अर्थात के फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, पी फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर पी फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, पी फॉर पीस, एल फॉर लव, एच फॉर हैप्पीनेस, बी फॉर ब्लिस और लास्ट पी पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है। इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या, कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं। आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है। ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपने प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना, माना वही संपूर्ण ज्ञान है, खुद के बारे में जानना। आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
3: खुद के मन में क्या है
2: वो नहीं पता है ना, उससे हम दूर हैं। तो मन की अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना आए, उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है, शांति के लिए लोग सोचते हैं शायद चुप बैठ जाना, है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था, अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में, अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
3: मैं अगर बोलूं तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, ये होता है
2: जी, बिल्कुल। उन्होंने भी एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति, नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो फिर से कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं, क्या वो नेचर वाला या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
3: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला।
2: तो यही चीज जो है वहाँ पे उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही, तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियां आती है तब भी हम स्टेबल रहे, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है, जबकि प्रेम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम। फिर आती है बात सुख की, तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है। और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है, आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया। और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का शांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है। और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं। ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
3: बिल्कुल। और ये जितनी भी सात चीजें आपने बताई हैं, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है या किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने ये इन बिल्ड हमारे लिए रखी है। बिल्कुल सही कहा, हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते। और वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं, बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योति जी ने बहुत खूबसूरती से बताया, और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
4: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्थात पार्थ, अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मरकर के स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना, उसमें बहुत फर्क होता है। तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है, और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं। पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहाँ मेरा मेंटल फाइट है, जहाँ द्वंद है, जहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, जहाँ डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहां मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर, जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि ये सब चीजें मेरे पास, मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है
3: जी।
4: और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग अध्याय का नाम है, तो यहां पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा डेफिनेशन वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूं तो भी मैं इनकम्प्लीट हूं। और दैट्स वाई देखा ये गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है। और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना। ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योति जी ने कहा, तो मन जो है वो कई तरह के थॉट्स को क्रिएट करने की एक फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो कर रहा है, यानी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है। तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है, और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मीन्स ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है, जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार। संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने पर, नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल्स के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है, अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है, और जो हमारे संस्कार्स हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को, तो वो बनता है गुप्त चित्र, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकेंड बाय सेकेंड रिकॉर्ड हो रही है
3: जी।
4: और जब एंड ऑफ द डे, यानी जब मृत्यु आती है, तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहाँ अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है, और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मिलता है। और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ, डम्ब और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है। उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो, तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है। और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं, तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती।
3: बिल्कुल।
4: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है, तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में हैं या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वही कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है। तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्माते संगोऽस्त्व अकर्मणे, अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है एफर्ट्स वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करें, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों, तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो। तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है और वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
3: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातें हैं, वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
2: कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनके बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, मना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ यह है कि कर्मों के फल की आसक्ति स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है

सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से माने आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञा है। तो वहाँ पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहाँ कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं तो वहाँ ना तो, और मनुष्य जो स्थित प्रज होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत, अर्थात मन में लगाए आइस फैक्ट्री, मुख में लगाए शुगर फैक्ट्री अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है उसका किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी, लेकिन वो आपको कंफर्ट नहीं हो रही है तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देखो देख रही है चीजें उसमें आकर्षित है, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है, तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो बैठे थे अपने सभी, कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए, अगर शायद हम वहां हों प्रैक्टिकली सोच के देखें तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे, हम फटाफट किया अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया कहाँ खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी, व्यापारी से भी जब पूछा तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं, वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज कई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ कहा जाता है पागलपन है, जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया, एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे, उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में बैठी थी मंडन मिश्र की, और उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा
और उन्होंने उनके गले में, दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी। और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं, ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और

0: पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा कि आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं, तो आपने कैसे ये निर्णय ले लिया? तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं, उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया, उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है, मन की स्थिरता रखता है, तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे।
1: बिल्कुल।
0: इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं, अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में, अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे, जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है, तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए, अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए, इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
1: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
0: जी
1: आपको बदलना पड़ेगा
0: जी।
1: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे, आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली हैं। और अध्याय दूसरा है, ज्ञान योग है, इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
0: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसे ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवाम्भस्सी। माना, अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है, तो इसी प्रकार जब विचारशील मन व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर, मतलब जो इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्री एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना, कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हो, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज है वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी हैं, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो वो राज्य जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं। और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है, इसमें बहुत अच्छी एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं, 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्म संयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में, हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं, हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं। इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं। और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के, जो तन का भान है उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजंस लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
1: जी, बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है और अब हम बढ़ेंगे थर्ड अध्याय की तरफ, जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए रेडियो मानव वृक्ष 107.8 FM पर। नमस्कार।
2: ढेर सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर 1।
3: मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ आज है सैटरडे का दिन और सैटरडे वाले दिन आपके लिए खास जानकारी लेकर के आ जाती हूँ, रेसिपीज लेकर के आती हूँ बहुत सारी। और आज भी मेरे पास रेसिपी है आपके लिए। और अगर आपका देखिए मन है ना कुछ अच्छा सा और चटपटा सा लेकिन हेल्दी कुछ खाने का, और आप चाहते हैं कि उसकी रेसिपी मैं आपको बताऊं, या फिर आप कोई रेसिपी शेयर करना चाहते हैं, कोई यूनिक रेसिपी है जो आप सभी लिसनर्स तक, आप देखिए हमारा जो कार्यक्रम के थ्रू हमारे सबको बताना चाहते हैं वो रेसिपी, तो आप जरूर बता सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078। बस आपको क्या करना है, इस नंबर पे आपको अपनी रेसिपी लिख करके भेजनी है और उसके साथ साथ आपको लिख करके भेजना है कि वो बनती कैसे, इंग्रीडियंट्स के साथ वो रेसिपी भी, और बस आपके संदेश का, आपके मैसेजेस का मैं कर रही हूँ इंतजार। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और आज ना सैटरडे का दिन है और आपके लिए कमाल की टेस्टी खास रेसिपी लेकर आरजे साक्षी आपके पास आ गई है भाई। और मैं आपको बता दूं, एक हेल्दी रेसिपी आपको बताने वाली हूं, लेकिन उससे पहले बता दूं आपको कि अगर आप फरीदाबाद से बाहर जा रहे हो और ये सोच रहे हैं कि रेडियो मानव रचना के साथ कैसे जुड़ना है, तो बस आपको क्या करना है, हमारा इंटरनेट ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के लिए आप सबसे पहले आपको जो है बड़े आसान से स्टेप्स करने हैं। अपना एंड्रॉयड या आईओएस मोबाइल फोन लेना है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे जाना है, सर्च बॉक्स में लिखना है रेडियो मानव रचना, जिसके बाद झट से आप ऐप डाउनलोड कर सकेंगे। और जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करते हैं, पॉडकास्ट सेक्शन में जाके ढेर सारे पॉडकास्ट एक्सपर्ट की एडवाइस और बहुत ही कमाल के सुपर डुपर हिट गाने आप सुन सकेंगे वर्ल्ड में कभी भी कहीं से भी। तो बस देरी किस बात की, आप जल्दी से डाउनलोड कीजिए ऐप और कहीं मत जाइए, क्योंकि अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कमाल की टेस्टी रेसिपी। तो जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ. सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें. आज आपके लिए कमाल की टेस्टी रेसिपी लेकर के आ चुकी हूँ. और देखिए, मैं ना ये चाहती हूँ कि जो दिन की आपकी शुरुआत हो ना, बहुत हेल्दी हो और टेस्ट भी हो उसमें. अब देखिए क्या होता है ना, जब भी हम कुछ बनाते हैं हमें तो लगता है कि टेस्टी बनना चाहिए, लेकिन ना कहीं कहीं पर टेस्ट और हेल्थ कॉम्बिनेशन ना बैठ नहीं पाता. लेकिन आज जो साक्षी आ गई ना आपके पास, वो बताने वाली आपको कि ये हेल्दी और टेस्टी रेसिपी कौन सी होने वाली है, क्योंकि मैं आपको इतनी हेल्दी, इतनी टेस्टी और वो भी ब्रेकफास्ट के लिए आपकी रेसिपी बताने वाली हूँ, जिसके बाद आपको खा के लेगा क्या बात है साक्षी, मजा आ गया आज तो. तो आज हम बनाने वाले हैं अपनी इस प्यारी सी किचन में टेस्टी, हेल्दी, बहुत कमाल पोहा कटलेट. जी हाँ, आज पोहा कटलेट हम बनाने वाले हैं. और बड़ी आसान सी है ये रेसिपी और बहुत टेस्टी है, हेल्दी भी है. तो आप ये पोहा रेसिपी कैसे बनाएंगे वो मैं बताऊंगी आपको कुछ ही देर में, क्योंकि अभी ना मैं आपके साथ इंग्रेडिएंट शेयर करने वाली हूँ. तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊँ, ये लिस्ट बताऊँ, आप अपनी डायरी और अपना जो पेन है बिल्कुल तैयार रखिए, नोटपैड तैयार रखिए, क्योंकि मैं बस यूं गई और यूं आई. जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड.
1: ना इज्जत की चिंता, ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, यही पहचान है भक्तजन.
2: गुरुदेव, यही बात यदि संगीत धारा में बहकर कहें

भी असली सेठ भी असली नकली माल बनाए, ऊपर असली लेबल अंदर नकली घी और चाय, पॉपलीन का बदल के नंबर टेरीलीन बनाए, या बेईमानी तेरा आसरा बोल के लूटता जाए।

राजा बन के हम सन्यासी, काम है चलते रहना। मौका है तीर बना लो, हाथ न मलते रहना। हाथ की चूड़ी पांव की पायल या हो गले का गहना, मार के मंत्र धुना कर देव कर तू कहना।

महाराज पधारे, चिमटा चरस चिलम और चेले साथ साथ हैं सारे, कितने लेकर भी गाड़ी में खड़े शरीफ बेचारे।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती है बातें। आपके लिए आज टेस्टी कमाल की रेसिपी लेकर के आ गई हूँ। बात करें आज पोहा कटलेट बनाने की, तो पोहा कटलेट बनाने के लिए जो इन्ग्रीडियंट्स है उसकी एक लंबी लिस्ट जो कि आपको फटाफट से नोट डाउन कर लेनी है। तो इंग्रेडिएंट्स जो है वो है, सबसे पहले 1 कप लेना है पोहा, उबले हुए आलू 2, बारीक कटी हुई सब्जियां आपको लेनी है 1/2 कप, जैसे गाजर, आप मटर ले ली और शिमला मिर्च, ये सारी सब्जियां लेनी है। साथ ही प्याज लेनी है आपको, 1 छोटा बारीक कटा हुआ प्याज लेना है, इसको आप अच्छे से काट लीजिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है आपको 1 चम्मच। और ध्यान रखिएगा, आजकल मार्केट में देखिए ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट होता है वो मिलता है, लेकिन इसमें वो स्वाद नहीं आता है जो एक्चुअल अदरक लहसुन के पेस्ट में, जो आप अपने आप पील करके अपने आप बनाएंगे ना, वो एकदम से ना वो बिल्कुल बहुत ही टेस्ट में अलग होगा। और आप ये भी नोटिस करेंगे कि उसका जो फ्रेग्रेंस है ना बहुत ही फ्रेश होगी, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप वो यूज कीजिएगा, खुद से आप उसको पीस के बनाइएगा जो पेस्ट है। साथ ही हरी मिर्च लेनी है आपको 1 से 2 बारीक कटी हुई, और धनिया पाउडर लेना है आपको 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर लेना है आपको 1/2 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर लेना है आपको 1/2 चम्मच। ये वैसे स्वाद अनुसार है, आप डिपेंड करता है, अगर 1/2 चम्मच लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, नहीं तो डिपेंड करता है, अगर आप थोड़ा ज्यादा चाहिए तो ज्यादा ले लीजिए, कम चाहिए तो कम भी ले सकते हैं। चाट मसाला लेना है आपको 1/2 चम्मच, नींबू का रस लेना है 1 चम्मच, धनिया की पत्तियां लेनी है आपको 2 चम्मच या बारीक कटी हुई आप ले लीजिए। वैसे तो अगर आप धनिया आप लवर है ना तो आप ढेर सारा डाले हुए, मुझे तो बड़ा पसंद है। नमक लेना है आपको स्वाद अनुसार, और तेल लेना है इसे तलने के लिए। और अब हम बनाने वाले हैं ये टेस्टी रेसिपी, और बहुत ही कमाल हमारी रेसिपी होने वाली है पोहा कटलेट की। कैसे बनेगा पोहा कटलेट वो बनाऊंगी, आपको बताऊंगी लेकिन कुछ ही देर में। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

फिर कहता।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ. सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें. और आज आपके साथ मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि कैसे आप पोहा कटलेट घर पे बना सकते हैं. तो पोहा कटलेट को बनाने के लिए सबसे पहले पोहा को आपको एक छलनी में डालकर अच्छी तरह से धो लेना है. ध्यान रखना है कि इसके देखिए पानी में इसे आप भिगोकर ना रखें, क्योंकि जब आप इसे भिगोकर रखेंगे तो बिल्कुल ये घुल जाएगा. बस इसे धोकर 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए और बिल्कुल खिला खिला सा बने, तो बस ये अलग अलग हो जाएगा. अब क्या करना है आपको, एक बड़े कटोरे में आपको उबले और मैश किए हुए आलू लेने हैं. अब इनमें नरम पोहा जो है और बारीक कटी हुई सारी सब्जियां जैसे कि गाजर, मटर, शिमला मिर्च, प्याज और साथ ही हरी मिर्च आपको डाल देनी है. जिस तरह से हम आलू की पिट्ठी तैयार करते हैं ना, उसी तरह से हम इसका जो मिक्सर है, इसकी जो स्टफिंग है ना, वो बिल्कुल तैयार करेंगे और इसी स्टफिंग से बनेंगे हमारी कटलेट. अब इसमें क्या करना है आपको, बहुत ही आसान सी आपको एक चीज बताती हूँ. ये जो सारा आपने मिश्रण लिया है ना, इसको आपको क्या करना है, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, नमक और नींबू का रस आपको इसमें आप डाल देना है. इसके बाद इन सभी चीजों को अच्छी तरह से आपको मिलाना है और एक मुलायम आटे की तरह आपको इसे गूंद लेना है, जैसे एक मुलायम हो जाता है बिल्कुल वैसे ही. अब इस मिश्रण में आपको छोटे छोटे कटलेट या टिक्की के आकार के आपको निकाल लेने हैं. आप चाहे कोई भी शेप इसे दे सकते हैं, आजकल कई सारे जैसे शेपर्स आ जाते हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनके भी उनकी मदद ले सकते हैं. गोल आकार आता है, स्टार आता है, हार्ट शेप आती है और साथ ही एक फ्लावर शेप भी आती है. तो जैसा आपको पसंद है तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं, शेपर की मदद से कर सकते हैं, खुद बनाना चाहें तो खुद भी गोलाकार की टिक्कियां आप बना सकते हैं, नहीं तो आप सिलेंड्रिकल शेप भी दे सकते हैं. जैसा आपको पसंद है आप वैसा कर सकते हैं, फिर चपटा भी रख सकते हैं. अब सभी सब्जियों को आपने देखिए इसमें डाल दिया है अच्छे से, देखिए ये अच्छी बिल्कुल अंदर नरम हो गई है. अब सभी चीजों को अच्छी तरह से आपको मिलाने के बाद, मुलायम आटा जब आप गूंद लेंगे उसकी शेप्स बन जाएंगी. अब एक पैन में तेल गरम करना है और जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें सारे कटलेट आपको डाल देने हैं और धीमी आंच पर सुनहरा होने तक आपको इसे अपना जो है डीप फ्राई करते रहना है. दोनों तरफ से अच्छी तरह से आप इसे तल लीजिए, जब ये कुरकुरा हो जाए तो आप इसे निकाल लीजिए. बस ध्यान इस बात का रखना है कि अगर आंच आपकी तेज रहेगी ना, जो गैस की अगर आप आंच तेज रखेंगे उसे, तो जो कटलेट है ऊपर से तो ये बन जाएंगे, अंदर से जो है वो नहीं बन पाएंगे, जिससे उसका स्वाद नहीं आ पाएगा. और ऊपर से फिर अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं थोड़ा सा और हम इसे बनाते हैं, अंदर से ये पक जाए तो वो ऊपर से जल जाएंगे, सुनहरे होने की जगह वो ब्राउन या फिर ब्लैक कलर के हो जाएंगे, जो कि जला हुआ आपको टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और आप कहेंगे साक्षी ये क्या बनवा दिया. तो इसीलिए आंच को बिल्कुल धीरे रखे, धीरे धीरे आपको इसको आंच पर जो है फ्राई करना है ताकि ये सुनहरे हो जाए और ये कुरकुरे हो जाए बाहर से, क्योंकि हमने पोहा इसमें डाला है, राइस है, तो वो एकदम कुरकुरा हो जाता है. अब देखिए ये बिल्कुल तैयार है, आप इसे खाइए और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगी. हाँ बस ये ध्यान में रखिएगा कि इसे हरी चटनी या फिर इमली की चटनी के साथ या टमेटो केचप के साथ आप खा सकते हैं, जो कि आपको बहुत पसंद आएगा. चलिए इसी के साथ अब लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मन जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड फील लाइव.
1: हमसे रोशन है चांद और

0: मशहूर हो जाए।
1: वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेके आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के साथ हो दिन, बहुत सारी होती है बातें। मैं ना आपके लिए कमाल की टेस्टी रेसिपीज लेकर के आती हूँ सैटरडे वाले दिन। और आज आपको मैंने बताया है बड़ी टेस्टी हेल्दी, आपको मैंने पोहा कटलेट के बारे में बताया। पोहे की बात हो ही रही है तो देखिए, पोहे इतने टेस्टी होते हैं। अच्छा, बच्चों को ना ये कटलेट्स, मुझे एक मैसेज आया है कि बच्चों को ना कटलेट्स इतने पसंद नहीं आते जितना उन्हें नगेट्स पसंद आते हैं, तो क्यों ना ऐसा करें कि हम इसके नगेट्स बना दें। अब आप कहेंगे साक्षी कैसे हो सकता है कि ये पोहा नगेट्स हम कैसे बना सकते हैं, साक्षी है ना आपको सब बताएगी। लेकिन फिलहाल अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लव।

तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ मैं आपके लिए टेस्टी रेसिपी जो है वो लेकर के आई हूँ। और आज हम बात कर रहे हैं पोहा नगेट्स के बारे में। मैं बता रही हूँ आपको, पहले अभी रेसिपी जो है वो मैंने आपको बताई है पोहा कटलेट के बारे में। पोहा नगेट्स कैसे बनते हैं इसके बारे में बात करते हैं। बच्चों को ना बड़ी पसंद आती है पोहा नगेट्स की अगर बात करें। अच्छा, नॉर्मली नगेट्स भी ना बड़े टेस्टी लगते हैं, अच्छे लगते हैं। हम जब भी बाहर से कुछ भी मंगाना हो ना, मतलब जब भी आप देखिए कि आजकल तो फूड डिलीवरी एप्स इतने सारे आ गए हैं, या फिर घर पर झट से चीजें जो है मौजूद हो जाती है, इतने सारे एप्स आ गए हैं। उन एप्स के थ्रू ना, मतलब ये होता है कि अब कुछ भी हमें बाहर का खाना होता है ना, तो अब तो बहुत ही जल्दी आपके पास वो आ जाता है कि आपको बस सोचना पड़े इतने में तो वो आ भी जाते हैं। तो ऐसे में देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें आपके हेल्थ के लिए तो सही नहीं होंगी। तो हेल्थ के लिए क्या सही है, जब आप उसे बनाएंगे घर पर और सही इंग्रेडिएंट्स के साथ। बाहर आपको इंग्रेडिएंट्स जो है वो अच्छे नहीं मिलेंगे, उसमें मैदा है या उसमें प्रोसेस इतनी सारी चीजें हैं, केमिकल्स हैं। और घर पर जो आप बनाएंगे वो बिल्कुल फ्रेश है और उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और आप अपने हाथों से बना रहे हैं, प्यार भी तो बहुत सारा है भाई। तो मैं आपको नगेट्स बताती हूँ कैसे आप बनाएंगे। तो पोहा नगेट्स बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले आपको चाहिए पोहा, और ये जो पोहा है आप मोटे वाले पोहा जो है वो लीजिएगा। एक पतला वाला होता है जो कि अब बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है जब आप नॉर्मली पोहा बनाते हैं, उसके लिए एक मोटा वाला जो है वो भी आता है, वो लीजिएगा। 1 कप लेना है। इसके साथ साथ उबले हुए आलू लेने हैं 2 मीडियम साइज के, और 1 बारीक कटा हुआ बड़ा प्याज लेना है आपको। हरी मिर्च लेनी है आपको 1 बारीक कटी हुई। अगर बच्चे खाते हैं तो आप इसे लीजिएगा, नहीं तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। नॉर्मली आप जिस तरह से बच्चों को जितना पसंद है मिर्च उतनी लीजिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है, फ्रेश फ्रेश एकदम लेना है, 1 छोटा चम्मच। साथ ही धनिया की पत्तियां लेनी है आपको, और 2 चम्मच धनिया की बारीक कटी हुई पत्तियां लेनी है। बेसन लेना है आपको 2 चम्मच। चावल का आटा लेना है आपको 2 चम्मच। और ये जो है ऊपर से और ज्यादा इसे कुरकुरा बना देगा नगेट्स को, क्योंकि नगेट्स बहुत ही कुरकुरे होते हैं, अंदर से एकदम कुछ सॉफ्ट होते हैं। इसके साथ नमक लेना है स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर लेना है 1/2 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर लेना है आपको 1/4 छोटा चम्मच, गरम मसाला लेना है 1/4 छोटा चम्मच, और तेल लेना है तलने के लिए, और वो भी कम लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। इसके साथ साथ ये रेसिपी बनेगी कैसे, यानी कि इसके स्टेप बाय स्टेप इसकी जो रेसिपी है, इसके स्टेप्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बात, एक खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन। बहुत सारी होती है बातें, मैं आपके लिए कमाल की टेस्टी रेसिपी लेकर के आ गई हूं। और आज की हमारी रेसिपी है पोहा नगेट्स की। पहले आपको पोहा कटलेट्स बता चुकी हूं, पोहा नगेट्स कैसे बनेंगे वो भी आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको पोहा जो है वो लेना है, पोहे को आपको 2 मिनट के लिए आपको पानी में भिगोना है और उसके बाद इसे छलनी से निकाल कर सारा पानी इसका निचोड़ लेना है। इसके बाद पोहे को हल्के हाथ से आपको मैश करना है। अब एक बड़े कटोरे में मैश किए हुए आलू और पोहा आपको इसमें डालना है और इसमें आपको बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, धनिया की पत्ती, अदरक लहसुन का पेस्ट और सारे मसाले जैसे कि नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, ये सब आपको मिला देना है। अब इसके बाद इसमें आपको बेसन और चावल का आटा डालकर सभी सामग्री को, सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है और एक गाढ़ा मिक्सचर जो है वो बन जाएगा, जैसे एक पिट्ठी बनती है उस तरीके से ये बन जाएगा। अब अपने हाथों पर आपको थोड़ा सा तेल लगाना है और इस मिश्रण को छोटे छोटे आपको नगेट्स आपको बनाने हैं, छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं और टिक्की के आकार थोड़ा सा इसे देने, यानी कि हल्का सा चपटा कर देना है। अब एक पैन में आपको तेल गरम करना है और जब यह तेल अच्छे से गरम हो जाए, आंच को आपको मीडियम करनी है और नगेट्स को आपको सुनहरा होने तक अच्छे से दोनों तरफ से आपको इसे फ्राई कर लेना है, तल लेना है। जब नगेट्स कुरकुरे और सुनहरे हो जाए तो इसे आप जो किचन पेपर होता है उस पर निकाल दीजिए ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो बाहर आ जाए और आपके नगेट्स बिल्कुल तैयार हो जाए। बस ये नगेट्स बिल्कुल तैयार हैं, आप गर्मा गर्म पोहा नगेट्स आप खाइए टोमेटो केचप के साथ, हरी चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ, जैसा मन करे आप खाइए, नहीं तो आप मेयोनीज या फिर कोई भी ऐसी चीज जो भी बच्चों को पसंद आती है आप उसके साथ खा सकते हैं। और यकीन मानिए बच्चे ना, मतलब मन उनका जो है ना वो खुश हो जाएगा जब वो ये रेसिपी खाएंगे, वो बता ही नहीं पाएंगे कि ये पोहे से बने और इतने हेल्दी है, इतने कमाल है। तो आप बच्चों की फरमाइश पे, नगेट्स की फरमाइश पे पोहा नगेट्स उन्हें बना के दे सकते हैं और आपके मन में भी ये सेटिस्फेक्शन आ जाएगी। चलो बाहर से नहीं खा रहे हैं बच्चे, अच्छा घर का खाना खा रहे हैं और वो भी हेल्दी खा रहे हैं, तो आप ये बना के जरूर देखिएगा। चलिए इसी के साथ अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक की इजाजत लेने का, तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें। एक संदेश, एक मैसेज हमारे पास आया है और इसमें जो है वो लिखा है कि आपने चटनी की 2 बार बात कर ली साक्षी, ये चटनी बनेगी कैसे हरी वाली? तो देखिए, एक तो होती है वो जो दही वाली चटनी होती है ना, जो आपको नॉर्मली जब आप खाना खाते हैं तब मिलती है, मिंट वाली जो चटनी होती है उसमें दही पड़ता है, एक तो चटनी हो गई वो, और एक होती है धनिया की चटनी जो कि मुझे तो बहुत पसंद है। और ये जो कटलेट है इन सब के साथ ये बहुत टेस्टी लगती है, और नॉर्मली जब आप खाने के साथ भी खाएंगे ना तो चटनी का स्वाद जो है ना वो मजेदार रहता है। तो ये जो हरी चटनी है ना, ये बनेगी कैसे वो आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको धनिया लेना है, इसे अच्छे से साफ कर लीजिए। और इसकी जो नीचे की डंडियाँ होती हैं वो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ख़त्म कर देनी है, थोड़ी सी आपको रखनी है। अब इसे अच्छे से वॉश करके आपको मिक्सर ग्राइंडर में से रखना है। अभी सिर्फ मैं रखने की बात कर रही हूँ, सिर्फ आपको रखना है। इसके बाद एक टमाटर ले लीजिए और 1 से 2 ले लीजिए, और उसको भी अच्छे से आपको कट करके आपको उसमें डाल देने हैं। इसमें आपको इसके बाद क्या करना है, आपने धनिया डाल दिया, आपने इसमें टमाटर डाल दिया, अब इसमें 1 आधा चम्मच आपको इसमें जीरा जो है

में थोड़ी सी हींग जरूर डाल लीजिएगा, जो कि बहुत कमाल लगती है। तो बस आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये चटनी, आपको ये रेसिपीज और आज की इतनी टेस्टी हेल्दी रेसिपी, सैटरडे का दिन है और सुबह सुबह अगर ये रेसिपीज हमें पता चल जाए ना, तो बस आप फटाफट से ना आप इसे बना लीजिए, आप देरी मत कीजिए। सैटरडे का दिन है भाई और सैटरडे है, संडे है, आराम से इसे खाइए, बना के बॉल्स कटलेट्स को रख दीजिए, नगेट्स को रख दीजिए और अगले दिन फिर से इसे फ्राई करके आप खा सकते हैं। तो बस आप इसे बनाइए और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये दोनों रेसिपीज आज कैसी लगी। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना और 7.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें. और इसी के साथ वक्त जो है ये हो चला है अब आपसे इजाजत लेने का, यानी कि अब साक्षी ना आपको कहने वाली अलविदा. और लेकिन लेकिन लेकिन अभी कुछ देर फिर से लौट के आऊंगी आपके पास प्रोग्राम सफरनामा जो लेकर के आऊंगी. और आज कहीं घूमने के लिए जाएंगे ना, तो बस कहाँ जाने वाले हैं और भाई क्या मजेदार रहने वाला है इस प्रोग्राम में, ये सारी बातें आपसे करूंगी. लेकिन उससे पहले फिलहाल अब वक्त हो गया इजाजत का, तो आपसे मिलती हूँ सुबह 11 बजे आपके पास आती हूँ और 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ. 2 घंटे का हमारा प्रोग्राम सफरनामा ही रहता है जिसमें अलग अलग जगहों पर हम घूमने के लिए जाते हैं. चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है अब आपसे इजाजत लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत. कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड फील लाइफ. बाय बाय, टेक केयर.

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूँ दीक्षा आपके साथ, और एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रीन ग्रह में। एक ऐसा कार्यक्रम जो प्रयास करता है कि हमारे ये जो ग्रह है पृथ्वी, ये कुछ बेहतर हालातों में हो, क्योंकि आज के समय में बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी दिक्कतें और बहुत सारे पोल्यूशन के साथ हम इस धरती पर जी रहे हैं। लेकिन इससे जितना नुकसान हमें हुआ है, उससे कई गुना ज्यादा नुकसान हमने इस पृथ्वी को दिया है अपनी ही कुछ आदतों से। बड़ी गाड़ियां, बड़ी बिल्डिंग और ढेर सारी सुविधाएं, चाहे आप 24 घंटे एसी चला लें, चाहे आप अपने लिए ढेर सारा अनाज उगा लें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुलती हैं, बड़े बड़े प्लांट्स बनते हैं, लेकिन इनका कहीं ना कहीं नुकसान भी हम ही को हो रहा है, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो हमारे लिए जैसे बनी थी नेचुरली, अब वैसी नहीं रही है। आबादी अपने वजन से 7 गुना ज़्यादा है पृथ्वी पर, और उस पृथ्वी पर जब हम रह रहे हैं तो फिर उसके कहीं ना कहीं कुछ दुष्परिणाम भी हमें ही झेलने पड़ेंगे। कभी भी आपदाएं आ जाती हैं, हाल ही में आई नेपाल में बाढ़ हो, या फिर फ्लैश फ्लड्स जो अक्सर हम वीडियोस देखते रहते हैं, वो दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी आ जाते हैं, तभी शायद इन्हें फ्लैश फ्लड्स कहा जाता है, और ये सब कुछ उड़ा कर ले जाते हैं, सब कुछ बहा कर ले जाते हैं। इसके अलावा टॉर्नेडोज आपने देखे हैं, समय समय पर बारिश के मौसम में भूस्खलन होना या फिर बाढ़ आना, ये सारी चीज़ें हम देखते रहते हैं, समझते रहते हैं, बहुत सारे लोग इसको झेलते भी हैं, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन या फिर इसका कोई परिणाम जो है, हम इसको सॉल्व करने के बारे में शायद नहीं निकाल पा रहे हैं। बहुत सी बातें होती हैं, बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, लेकिन परिणाम या फिर सोल्यूशन क्या है, ये हम भी नहीं जान पा रहे हैं। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है कार्यक्रम ग्रीन ग्रह, जो आपके बीच लेकर आता है डॉक्टर ओपी भला फाउंडेशन, इको क्लब व पीटीसी फाइनेंस लिमिटेड, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने एक्सपर्ट्स से जानने की कोशिश करते हैं रोज़मर्रा के जीवन में हमारी जो पृथ्वी के साथ ये कहीं ना कहीं कुछ अनबन चलती है ना, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। लेकिन आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, वो हर एक प्राणी के लिए, हर एक जीवित, चाहे वो कोई छोटा सा कीड़ा हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पक्षी हो, हर किसी जीवित प्राणी के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो है पानी। पर नुकसान ये हो रहा है कि ये पानी जो हमारी ज़रूरत के लिए बना है, और कह सकते हैं कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पानी ही है, 70% आप देख लें तो पानी ही दिखाई देता है, लेकिन फिर भी इस पानी में, हमारी बॉडी जो पानी से बनी हुई है, इस पानी में जब पोल्यूशन मिलता है तो वो कितना ख़तरनाक हो जाता है। यही पानी जो हमें जीवित रखने के लिए ज़रूरी है, जब ये जहरीला होता है, और कई बार हमारे ही कारणों से जहरीला होता है, तो ये कितना नुकसान पहुंचाता है। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? पानी आखिर गंदा कैसे हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इसका क्या सोल्यूशन है? ऐसी कुछ बातें करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट के रूप में पंकज ग्रोवर जी, जो कि जन कल्याण समिति के जनरल सेक्रेटरी हैं व साथ ही फाउंडर हैं मेरी माटी के, और साथ ही ये एक एक्टिविस्ट हैं जो पर्यावरण के क्षेत्र में या फिर लोगों को उनके हक को दिलाने के क्षेत्र में भी कार्य करते रहते हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं। सो पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से रेडियो मानव रचना में।
1: थैंक यू दीक्षा जी, थैंक यू रेडियो मानव रचना। आपने जो ग्रीन ग्रह की एक पहल शुरू की है, यकीन मानिए आप प्रैक्टिकल अप्रोच पर बात करते हैं, आप सिर्फ किताबी ज्ञान की बात नहीं करते, और ये बात मेरे दिल को बहुत भाती है, और इसलिए आपकी हर बार अपील पे मैं आपके पास पहुंचता हूं, ताकि हम अपने श्रोताओं तक और उन अथॉरिटीज तक जो इसको सुन रहे हैं रेलिवेंट बात पहुंचा सकें और सॉल्यूशन को डिस्कशन कर सकें। प्रॉब्लम है ये हम सभी को पता है, पर सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचा जाए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
0: जी बिल्कुल। सो पंकज जी, आज हम पानी के बारे में बात करने वाले हैं। हमारी पृथ्वी हो, चाहे हमारी बॉडी हो, ज्यादातर उसमें कॉन्टेंट पानी का है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पृथ्वी पर जो पानी है उसमें से केवल 1-1.5% पानी ऐसा है जो इंसानी इस्तेमाल के लिए है, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पी सकते हैं, नहा सकते हैं, अपने रोज़मर्रा के काम में ला सकते हैं। पर ये 1% पानी जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमने इतना ख़राब कर दिया है। इसके सोल्यूशन में जानूँ, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी किन किन चीज़ों से हमने इस पानी को, इस जल को ख़राब किया है।
1: सबसे पहले तो दीक्षा जी, बात ये समझनी पड़ेगी कि पानी पॉल्यूटेड नहीं रहा, ये खुशखबरी है हम सभी के लिए।
0: जी,
1: पानी कंटेमिनेटेड हो चुका है।
0: ओके।
1: अर्थात प्रदूषण एक छोटा शब्द है, मैं कह रहा हूँ संक्रमित हो चुका है।
0: ओके।
1: इस कदर हो चुका है कि अगर आप उसे नहाने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। और ये बात कहने के लिए नहीं है, एक नवभारत टाइम्स में पूरे एक पेज का आर्टिकल आया था, जिसमें मैंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी एक यूनिवर्सिटी को, उन्होंने उस पर रिसर्च की और पूरे पेज का एक आर्टिकल बन के आया, और उसमें निकल के आया कि एक पर्टिकुलर एरिया के आसपास के 5 गांव हमारे NCR के ही, वहाँ का पानी नहाने लायक भी नहीं है, कि अगर आप उस पानी से रेगुलर नहाएंगे भी तो आपको कैंसर होने की संभावना 100% है। तो समझना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि पानी गंदा किन वजहों से होता है। तो पहला वजह है जी सीवेज। सीवेज अर्थात हम जो अपना डेली का पानी रूटीन में यूज़ करते हैं उसमें हम बाहर अगर हम जाते हैं यूरोप में तो वहाँ दो तरीके का पानी का सेग्रीगेशन होता है, ग्रे वाटर एंड ब्लैक वाटर। हमारे यहाँ बहुत कम जगह ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर को सेग्रीगेट किया जाता है। ब्लैक वाटर अर्थात जो फ्लश कर रहे हैं हम पानी, और ग्रे वाटर जो जिससे हम बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, वो उसको हम ग्रे वाटर की श्रेणी में रख लेते हैं। तो ग्रे वाटर को रिसाइकिल करके बहुत सारे लोग ब्लैक वाटर में फ्लश का इस्तेमाल करते हैं, और इंडिया में भी आजकल इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है और इस बात की हमें खुशी है। लेकिन दिक्कत यह आती है कि जब उस ब्लैक वाटर के अंदर या ग्रे वाटर के अंदर हम एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स करते हैं, हम फ्लोर क्लीनर डाल रहे हैं, हम एसिड्स डाल रहे हैं, या जिन भी चीजों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा।
0: ब्लीच बहुत यूज होता है वॉशरूम्स में।
1: एग्जैक्टली। तो आप वो सब चीजों को समझ पा रहे हैं कि जब वो सब चीजें इस्तेमाल होंगी तो पानी को प्रदूषित नहीं करेंगी, वो पानी को कंटेमिनेटेड कर देंगी। वो पानी शायद किसी भी स्तर पे इस्तेमाल लायक नहीं रहेगा। आप सोचेंगे अब अगर इस पानी का इस्तेमाल करके आप खेती कर लेंगे तो आपके पास या तो वो तकनीक हो जिससे आप उस जहर को पानी से पहले एक्सट्रैक्ट कर पाएं, फिर उस पानी को आप खेतों के लिए छोड़ पाएं। दूसरी वजह इसके लिए आती है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में देखिए केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, तेजाब का इस्तेमाल होता है, अनगिनत चीज़ों का इस्तेमाल होता है जो आप और हम सब जानते हैं। इंडस्ट्रीज के लिए एंश्योर करना बेहद जरूरी है। इंडस्ट्रीज ये मान के चलें कि प्रशासन का एसटीपी काम नहीं करता, वो अपने एंड पे ही उसको सुनिश्चित करें कि यहाँ से जो वेस्ट बाहर जाएगा वो किसी को हार्म नहीं करेगा। अभी रिसेंटली सेक्टर 55 की एक घटना है जहाँ एक इंडस्ट्री के वेस्ट की वजह से वहाँ का पानी कंटेमिनेट हो गया, और जब उस पानी को बकरियों ने पिया तो एक साथ 20 बकरियां मारी गई। तो ये घटना सिर्फ बकरियों तक सीमित नहीं है, ये इंसानों तक भी आ जाती है। और बकरियों की इम्यूनिटी हो सकता है थोड़ी सी कमजोर हो, हमारी थोड़ी सी स्ट्रांग हो, उनको मरने में 4 दिन लगे, हमें हो सकता है 10 लग जाए, पर काम तो होगा, सभी के साथ होगा। तीसरा आता है जी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड्स जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसकी कहीं ना कहीं हमें जरूरत है कि हम उसके नेचुरल ऑल्टरनेट तलाशें। मैं न्यूट्रलाइट को स्टडी कर रहा था 2006 के अंदर 5 के अंदर, तो न्यूट्रलाइट के बारे में एक चीज निकल के आई कि वो कीड़ों को मारने के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि गुड बग्स का इस्तेमाल करते हैं। उन कीड़ों को ले आते हैं जो खराब कीड़ों को खा जाते हैं। तो इससे क्या हुआ जी, अब आपने एक तो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया, और दूसरा आपको आपने जल की स्वच्छता को बनाए रखा। तो अभी हो क्या रहा है हिंदुस्तान के अंदर, पंजाब की बात करते हैं। पंजाब की एक मैं कहीं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 90% फसल कंटेमिनेटेड है। मैं फिर से बोलूंगा जी, पॉल्यूटेड शब्द छोटा रह चुका है, ऐसा लगता है मानिए
0: मतलब कंटेमिनेशन अपने आप में एक्चुअली में बड़ा खतरनाक सा एक प्रोसेस ही मान लीजिए, क्योंकि हम बचपन में पढ़ा करते थे अगर कंटेमिनेटेड पानी का आप सेवन करेंगे तो कॉलरा या फिर और बड़ी खतरनाक बीमारियां हो जाएंगी, और ये जानलेवा बीमारियां होती थी। आज भी वैसा ही सीन,
1: आज तो और ज्यादा है। अभी होता क्या है, मान लीजिए कंपनी ने लिखा कि इस केमिकल को आप 100 लीटर पानी में 2 बूंद मिलाइए, दुकानदार अपने मुनाफे के लिए बोलता है जी 8-10 बूंद मिला लोगे काम चल जाएगा। किसान को लगता है यार 8-10 बूंद से क्या होगा, मैं काम करता हूँ एक ढक्कन मिला लेता हूँ। अब काम करना होता है एक्चुअल में लेबर ने, और लेबर खुले हाथ से उसको मिला देती है। तो जो स्तर आपका एक शायद उस चीज को हार्म ना करता हो 2 बूंद होती, वो जाके कहीं 2 ढक्कन बन जाता है और वो पूरी चीज को कंटेमिनेट कर देता है। इसलिए शायद ये सूचना भी आई कि 90% जो फसल है वहाँ की वो कंटेमिनेटेड है। और जो भारत का अगर फीड करने वाला आपका कोल्ड स्टोरेज हाउस, अगर आपका 90% इस तरीके की फसल दे रहा है तो आप सोचिए क्या होगा। वहां से तो 5 आब 5 नदियां निकलती हैं, जो कहा जाता है एट प्रेजेंट 3 निकलती हैं। तो 3 नदियां अगर कंटेमिनेटेड हो चुकी हैं, वहां का अगर लैंड वाटर भी अगर कंटेमिनेट हो चुका है तो बचेगा क्या। अभी हो क्या रहा है, क्योंकि एक्सेसिव यूज ऑफ वही बात इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जमीन में जा रहा है तो ग्राउंड टेबल को डिस्टर्ब करेगा, एक्विफर्स खराब होंगे, आसपास के पीने का पानी भी खराब होता चला जाएगा। तो सरकारों को कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज लाने के ऊपर काम करना पड़ेगा। एनजीओस को हमें साथ में आना पड़ेगा, आरडब्ल्यूएस को इनिशिएट करना पड़ेगा, मानव रचना को ऐसी और टॉक्स रखवानी पड़ेंगी जहां पर नेचुरल अल्टरनेट्स की बात हो सके।
0: जी बिल्कुल पंकज जी, जी मैं आपको यहाँ पे इसलिए रोकना चाहूंगी क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि घरों की बात हमने कर ली कि ग्रे वाटर ब्लैक वाटर है, इंडस्ट्रीज की बात भी आपने थोड़ी बहुत कर ली, लेकिन एक्चुअली में जो सबसे ज्यादा, अगर मैं बात करूँ, सबसे ज्यादा खराब पानी कहाँ से आ रहा है? क्या इंडस्ट्री से आ रहा है या जो घर में हम इस्तेमाल कर रहे हैं चीजें, किचन का जो वेस्ट है या फिर जो फ्लश का पानी है, ये ज्यादा क्वांटिटी में है या इंडस्ट्रियल? क्योंकि इंडस्ट्रियल हम हमेशा से सुनते हैं बहुत खतरनाक, और हमने ऐसी इंडस्ट्रीज देखी भी है जिनका डायरेक्ट पानी नदियों में जा रहा है। डायरेक्ट जो पानी है वो नहर या नदी में जा रहा है, जब वो पकड़े जाते हैं तो एक मोटा चालान देके वो फिर साइड हो जाते, फिर भी वो अपनी गलती नहीं सुधारते।
1: दीक्षा जी, मैं आपसे पूछता हूँ, आपने लास्ट टाइम केमिकल घर को साफ करने के लिए कब इस्तेमाल किया था? केमिकल मीन्स एक्चुअल एसिड।
0: एक्चुअल एसिड वो मतलब मुझे याद ही नहीं है,
1: शायद याद ही नहीं है। इंडस्ट्री में कब इस्तेमाल होता है? ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे। तो ये तो बात कहने की नहीं है कि कौन ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। कार्बन एमिशन वही लोग ज्यादा कर रहे हैं जो प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं। आप और हम घर में कितनी ही प्रोडक्शन कर लेंगे,
0: बिल्कुल,
1: तो हमारे यहाँ से कार्बन ना तो उतना एमिशन हो रहा है, ना ही हमारे यहाँ से उतना पानी पॉल्यूटेड हो रहा है। जब हम पानी को यूज ही लिमिटेड क्वांटिटी में कर रहे हैं तो हम उसको उतना पॉल्यूट भी नहीं कर रहे हैं, और इंडस्ट्री की कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फिर वही बात पे आऊंगा जो मैंने आपसे लास्ट टॉक में डिस्कस की थी, PANT, एक ऐसा मॉडल जहां हम कॉर्पोरेट को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराएं कि वो अपने जनरेट किए गए वेस्ट का उसका 95% बेयर मिनिमम रिसाइकिल करें, और एल्स उनके ऊपर 100% एक्स्ट्रा ग्रीन टैक्सेशन लगाना कंपल्सरी कर दिया जाए। कहीं ना कहीं देखिए सरकारों को आगे आके ये इनिशिएट करना पड़ेगा। मैंने NGT में अपील भी लगाई थी, मेरी अपील वहां तक पहुंची भी, पर समाओ मैं शायद उस चीज को वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया, या जो वो बड़े लोग थे वो मेरी बात नहीं समझ पाया, मैं समझा नहीं पाया, पर कहीं ना कहीं वो ये बात मान रहे थे कि ये मुद्दा बेहद इंपॉर्टेंट है, जो बाकी देशों में चल रहा है हिंदुस्तान में भी होना चाहिए। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप इन लॉयर को लेकर आइए। कहीं ना कहीं मालूम नहीं क्या दबाव था, क्या कुछ था, पर समहा उन्होंने इस बात को सुना, पर कहीं ना कहीं इसको नेक्स्ट परिणाम पे लेके नहीं गए। अगर लेके जाते तो मुझे भी बड़ी खुशी होती।
0: पिछले कुछ सालों में NGT काफी सख्त हुई है।
1: एग्जैक्टली
0: जिस हिसाब से फॉरेस्ट को रोका जा रहा है, फॉरेस्ट लैंड्स को वापस रिवाइव करने की कोशिश चल रही है, जिस तरीके से थोड़ी बहुत उम्मीद NGT से ही लगती है लोगों को कि अगर कोई कुछ नहीं कर रहा तो शायद NGT कर देगी, काफी हद तक ये चीजें भी देखी गई।
1: दीक्षा जी, अगर NGT से उम्मीद ना होती तो उनके पास अपील क्यों लगाते? उनसे उम्मीद है, पर मैं आपको बोल रहा हूँ शायद मैं मेरी बात नहीं समझा पाया।
0: मतलब आपके प्लानिंग जो है वो बहुत ठोस रही, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें समझाने में भी कई बार दिक्कत आ जाती है।
1: हाँ देखिए, क्योंकि मैं वो टेक्निकल व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक वक्ता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, उसका तकनीकी ज्ञान देना वो शायद उसके लिए मुझे किसी टेक्निकल एक्सपर्ट की नीड है। और जो चौथा पॉइंट हम डिस्कशन करने से रह गया, वो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, और वो चौथा पॉइंट है जी अपना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वही पंदवाड़ी वाला एग्जांपल कि वहां से लिचिट निकलता है, एक्वीफर को खराब करता है, और फिर वही बात कि वो जो 5 गांवों का पानी नहाने लायक नहीं रहा। तो ये 4-5 कारक हैं जो मिलके पानी को अल्टीमेटली कंटेमिनेट, संक्रमित कर रहे हैं, अर्थात संक्रमण फैला रहे हैं
0: जी।
1: अब इनको सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं जिन पे हम डिस्कशन कर सकते हैं।
0: जी जी बिल्कुल। पंकज जी, STP की बात हमने करी, बहुत सारे लोगों को शायद STP का मतलब ही नहीं पता, तो हम बताना चाहेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, यानी सीवेज का जो पानी आता है बेसिकली उसको साफ करने का, उसको ट्रीट करने का, उसको प्यूरिफाई नहीं करते, ट्रीट करते हैं। वो तरीका होता है, फिर वो आगे जाता है बाकी अलग अलग कामों के लिए। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी STP का प्रोसेस क्या होता है, क्या होते हैं ये STP प्लांट, ये कैसे काम करते हैं, ऐसा क्या करते हैं कि ये पानी को जो है काले पानी को थोड़ा सा जो ऑफ वाइट सा या कह सकते हैं हल्का सा ट्रांसलूसेंट बना के या थोड़ा सा बेटर बना के जो है लोगों तक पहुंचाते हैं?
1: इसका तकनीकी ज्ञान तो समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, पर आपको एक जनरल भाषा में समझाता हूं कि मान लीजिए नदी में पानी बह रहा है और उसमें बहुत सारे पशुओं का मल भी है, मूत्र भी है, और इंसानी गंदगी भी उसमें प्रवाह हो रही है, लेकिन जब वो पत्थरों से टकराती है, रेत से निकलती है और संकरी गलियों से निकलती है और थोड़ा सा आगे बढ़ती है 1.5 किलोमीटर तक, जैसे ही उसके में प्रभाव बढ़ता है तो अपने आप को साफ कर लेती है। तो कहीं ना कहीं एक नेचुरल प्रोसेस है,
0: फिल्टर होती
1: साफ कर लेती है। और अगर आप इसकी बहुत गहन समझ रखते हैं, इसको समझना चाहते हैं कि काम कैसे करता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप महामाया फ्लाईओवर से लेके परी चौक तक के बीच में बने 5 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को जाके स्टडी कीजिए। वो ओपनली है, ओपन फॉर ऑल, कोई भी जाके उन्हें मतलब एटलीस्ट समझ सकता है कि काम चल क्या रहा है और कैसे चल रहा है। बड़ी खूबसूरती से वहाँ आपको नजर आएगा कि कैसे आसपास जब नगरी बसाने की शुरुआत होनी थी, वहाँ बसावट लानी थी, तो उससे पहले ही डिसाइड कर लिया गया कि यहाँ पर जो इतना सारा सीवेज का पानी आएगा उसको ट्रीट कैसे करेंगे। तो शहर में आबादी लाने के बाद लोग इस चीज़ को प्लान करते हैं, उस शहर को मुबारकबाद, जिसने पहले उस सहूलियत को लेके आए और बाद में वहां आबादी को लाना शुरू किया।
0: जी, यानी नोएडा में ही अच्छा काम हुआ है, तो उत्तर प्रदेश ने काफी बेहतर काम किया।
1: हाँ, मायावती जी के टाइम पे जब ये बना था तो उस समय बेहतरीन काम हुआ था अनडाउटेडली।
0: जी बिल्कुल। लेकिन सर एसटीपी की जब हम बात करते हैं तो आजकल काफी ज्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं, काफ़ी ज़्यादा RWAs वगैरह हैं उन्होंने, या फिर स्कूल कॉलेजेस की अगर हम बात कर लें, इन्होंने STPs लगाए हैं अपने।
1: Exactly.
0: अब ये STP का पानी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, क्योंकि हमने मॉल्स के वॉशरूम्स में देखा है वहाँ पर कुछ येलो कलर का पानी जो है वो आपको दिख जाएगा और लिखा होता है दिस इज ट्रीटेड वाटर।
1: Exactly.
0: ये गंदा पानी नहीं है, ट्रीटेड वाटर है, इसलिए इसका कलर थोड़ा लाइट येलोइश है। तो आप इसको गंदा पानी समझ के बार बार बार बार फ्लश ना चलाएं, पानी वेस्ट ना करें।
1: बिल्कुल। देखिए, जो पानी सिर्फ हमें इसलिए चाहिए कि हम वहां पर बस पानी उस चीज को गीला करना है या उस चीज को वाइप अवे करना है, तो वहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। गार्डनिंग में इस्तेमाल हो सकता है, लैंडस्केपिंग में इस्तेमाल हो सकता है, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में बहुत हद तक इस पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर हमें साफ पानी देने की जरूरत नहीं है। साफ पानी, हाँ, अगर हमें उसकी तराई करनी है तो RO वाला पानी देना पड़ता है। वो हमारे यहाँ फरीदाबाद में एक ही सोसाइटी है जिसने उस काम को इस्तेमाल किया, दिल्ली पुलिस सोसाइटी, और उसमें आज तक सीलन कभी नहीं आई। खैर, मैं इस चीज को प्रमोट नहीं कर रहा, पर आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसके अलावा सूटेबल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इसका इस्तेमाल हो सकता है, जिससे फ्रेश वाटर की डिमांड कम होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप ट्रीटेड वाटर को बार बार इस्तेमाल करेंगे तो फ्रेश वाटर की कंजम्पशन कम होगी और उसका रेलिवेंट इस्तेमाल हो सकेगा उस जगह जिस काम के लिए वो बना है, अर्थात पीने के लिए।
0: यानी हम इसको ही यूज़ करें, STP वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और उसको जब हम काम में लाते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा कदम होता है। बट STP हर कोई लगाता नहीं है, शायद जागरूकता नहीं है या फिर फंड्स की कमी हो जाती है, सो ये चीज़ों की वजह से हम रह जाते हैं। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी एक ऐसा ही मुद्दा आ जाता है कि लोगों को लगता है कि फंड्स बहुत लग जाएंगे तो शायद इस चीज़ को ना करें, बट बाद में जब पानी भरता है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत नज़र आती है।
1: सही कह रहे हैं आप। और अगर वेस्ट वाटर को हम बजाय कि ये माने कि सीवेज की तरह एक बेकार चीज़ है, हम इसे अगर ये मान लें कि एक रिसोर्स है और इसमें से अगर हम चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दें, वाटर को अलग, जो स्लज है उसमें से न्यूट्रिएंट्स को, और जो उसमें से गैस आ रही है उसमें से एनर्जी बनाई जा सकती है, तो कहीं ना कहीं जब हम वेस्ट को रिसोर्स की तरह देखेंगे, और देखिए इसमें कहीं ना कहीं साइंटिफिक लोगों की हेल्प हमें लेनी पड़ेगी। हम बातों को बता सकते हैं कि ऐसे होता है वैसे होता है, लेकिन करना काम अल्टीमेटली दूसरों ने ही है आके, जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। तो आप और मैं सिर्फ डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन काम कहीं ना कहीं हमें उन्हीं लोगों से करवाना। आप और हम बता सकते हैं कि घर ऐसे बनेगा वैसे बनेगा, लेकिन बनवाना कहीं ना कहीं हमने उसको, या तो इंटीरियर डिजाइनर की हेल्प लेके, या कहीं ना कहीं हम उसमें कंस्ट्रक्शन लेबर की हेल्प लेके ही उसको बनाएंगे। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये काम हो सकते हैं और कहीं ना कहीं आप अपनी वेस्ट को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपने मेरे से एक और सवाल पूछा था, माफ कीजिएगा, मैं वो भूल गया।
0: जी, STP से ही जुड़ा हुआ था कि बहुत सारे लोग जो है STP
1: बनाते नहीं।
0: हाँ, बनाते नहीं है
1: जी। तो STP नहीं बनाते क्योंकि उन्हें लगता है कि इसको वेस्ट को यूज करना जो है ना, मतलब वेस्ट है ये, लेकिन अगर हम उसको रिसोर्स की तरह देखें और कमाई की तरह देखें तो कहीं ना कहीं हमें वो बर्डन नहीं लगेगा। इसमें मैं आपको टाटा परिमंती सोसाइटी का एक एग्जांपल देता हूँ। वो वेस्ट को अपने ट्रीट करते हैं, चाहे किचन वेस्ट हो चाहे सीवेज का वेस्ट हो, किचन वेस्ट से वो खाद बनाते हैं। और जो उनके वहाँ का पूरा आप ग्रीनरी मेंटेन देख रहे हैं उसमें पूरे की जो खाद बनती है वो डेली के किचन वेस्ट से बनती है। अगर आप इतनी बड़ी सोसाइटी में जो कहीं एकड़ में फैली हुई है, अगर आप उसकी ग्रीनरी को मेंटेन करेंगे तो आपके हजारों किलो खाद लगेगी, जबकि वही हजारों किलो खाद अगर आपको किचन वेस्ट से मिल रही है तो वो आपके लिए रिसोर्स है।
0: बिल्कुल,
1: वो आपके लिए वेस्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें वेस्ट को रिसोर्स में बदलने वाली सोच पर जाना पड़ेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। यानी वेस्ट को रिसोर्स में बदलने के लिए अगर आपको चीज़ें कुछ करनी पड़ रही हैं तो उनको करिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास रिसोर्सेस कम है। और पानी की जब हम बात करते हैं तो ये भी कहा जाता है कि अगला विश्व युद्ध जो है वो पानी को लेकर होगा। क्यों होगा? क्योंकि पानी की कमी डे बाई डे नज़र आ रही है, और ये वर्ल्ड वाटर डे पे या अर्थ डे पे तो अक्सर डिस्कस होता है, लेकिन जनरली भी मुझे लगता है इसके बारे में काम करना ज़रूरी है, सिर्फ साल में 2-4 दिन नहीं। पर्यावरण की जब हम बात करते हैं तो पानी उसमें अहम रोल प्ले करता है, और पानी जब कम होता है तो भी दिक्कत देता है, पानी जब ज़्यादा होता है तो भी दिक्कत देता है। यहाँ पर मैं पंकज जी आपसे जानना चाहूँगी, नाले और नालियों का जो एक पर्पस हुआ करता था आज से कुछ साल पहले, हम हड़प्पा संस्कृति को उठा लें, वहाँ पर भी हमने देखा है जब खुदाई हुई है तो कि किस तरीके से उनके घरों के साइड में नालियां बनी होती थी, ये बचपन से बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, फिफ्थ सिक्स से, कि हड़प्पा कल्चर में क्या था कि घर जैसे बने होते थे, ईंटों की दीवारें होती थी, साइड में नालियां जा रही होती थी, तो दे वर अवेयर अबाउट दी सीवेज सिस्टम, उनको पूरी जानकारी थी और उन्होंने ऐसा बनाया था। तो हजारों साल पहले की जब हम बात करते हैं तब से इनका पर्पस होता था, लेकिन आजकल पंकज जी नालियां जो हैं वो नहीं दिखती हैं
1: जी।
0: और ये नालियां और बड़े नाले अक्सर अगर देखे भी गए हैं तो जाम देखे गए हैं
1: जी।
0: क्या इनका पर्पस है और क्यों इनके जाम होने से सारे आसपास की चीजों को प्रभावित होना पड़ता है?
1: नाले नाली का सवाल करने से पहले आपकी मैं बात को सहमत होते हुए एक बात कहना चाहूंगा दीक्षा जी, यकीन मानिएगा आपकी और मेरी शायद इस धरती पे मौजूद लास्ट जनरेशन है जो फ्री पानी और फ्री हवा का आनंद ले रही है। इसके बाद की जनरेशन को ना तो फ्री पानी मिलेगा ना ही फ्री हवा मिलेगी। और आजादी के 75-78 सालों में अगर हमें सरकारें पीने का साफ पानी मुहैया नहीं करा पाई, हमें घरों में वाटर सॉफ्टनर लगाना पड़ रहा है, आरओ लगाना पड़ रहा है, या बोतल बंद पानी पीना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं हमें बात भी समझनी पड़ेगी। अब आपके उस सवाल पे आता हूँ जो आपने नाले और नालियों से पूछा कि वो अक्सर जाम मिलते हैं। तो नाले और नालियाँ दो तरीके के होते थे, एक वो जो हमारा वेस्ट लेके जाएंगे, एक वो जो फ्रेश पानी को हमारे घरों तक लेके आएंगे। दो तरीके के होते थे। वैसे ही आजकल जो चेक डैम्स या जो नाले बनते हैं, अगर आप जंगलों में जाएं तो वहाँ चेक डैम्स बने होते हैं कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर पानी रुका रहे, जो भूमि के जल कटाव को रोकेगा, भूमि के कटाव को रोकेगा और आसपास फसल वहाँ पर पनपेगी, क्योंकि वहाँ पानी रुकेगा और जहाँ पानी के जोहड़ होंगे वहाँ पशु भी आएंगे, अपने आप पर वहाँ पे अपने आप इकोसिस्टम डेवलप होगा। हमारी नालियाँ क्यों जाम होती हैं? नालियों के जाम होने के पीछे मुंबई में बीच में एक बाढ़ आई थी जिसमें लोगों की गाड़ियों में खड़े खड़े ही मौत हो गई थी, वो गाड़ियों से बाहर ही नहीं निकल पाए थे। आपको याद होगा 2008 या 2007 का शायद इंसिडेंट से, एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं, मतलब याद पड़ता, बहुत पुरानी बात है, शायद 20 साल पुरानी बात होगी।
0: 26 जुलाई तारीख थी।
1: तो उस दिन मुंबई में बाढ़ आई, तो आप मुंबई के पास तो समुद्र है, सारा बारिश का पानी समुद्र में चला जाना चाहिए था, तो मुंबई कैसे डूब गया? मुंबई इसलिए डूबा क्योंकि वहां जो प्लास्टिक इकट्ठा हुआ उसने कहीं ना कहीं उन जो बहते हुए पानी नालों को जाम कर दिया, चोक कर दिया। और वो प्लास्टिक की छोटी छोटी बोतलें, प्लास्टिक के छोटे छोटे रैपर्स कितने खतरनाक हो सकते हैं हमारे जीवन के लिए। वो उस दिन पहली बार मानवीय इतिहास ने उस चीज को महसूस किया जब मुंबई डूबा। तो कहीं ना कहीं जो नाले आज चोक हो रहे हैं उसकी वजह मिट्टी नहीं हो सकती, उसकी वजह लकड़ नहीं हो सकती, उसकी वजह यही प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो नालों को जाम कर दे रहे हैं। जो आपको क्या लगता है पहाड़ों में जो बाढ़ आ रही है किस वजह से आ रही है? पहाड़ों में तो ऑलरेडी स्लोप है, वहां से पानी निकल जाना चाहिए। मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं पानी इकट्ठा हो रहा है, और भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन मेन रीजन यही है कि जो पानी के जो नेचुरल बहाव के जो रास्ते हैं
0: वो रुके हुए हैं
1: और रुके किस वजह से हुए हैं? इसी प्लास्टिक की वजह से। तो कहीं ना कहीं हमें इसके ऊपर काम करने की जरूरत है
0: जी। और हाल ही में पंकज जी एक न्यूज भी आई थी और बहुत देखकर बड़ी हंसी भी आई, लेकिन बड़ा दुख भी हुआ कि मुंबई के जब नालों की सफाई हुई अप्रैल के महीने में, तो उसमें से ऑटो निकला, पुराना बेड निकला किसी का, गद्दे निकले, मतलब इतना सामान लोगों ने नालों में फेंकना शुरू कर दिया कि कोई देख तो रहा नहीं है, इसी में डाल देते हैं। तो वो ऑफ कोर्स जैम करता है चीज़ों को, और लोगों की ये जो बेवकूफ़ाना हरकत थी उसकी वजह से फ्यूचर बहुत ख़राब हो सकता है। जैसे आपने कहा कि मुंबई की बाढ़ जो है वो एक असली एक रीज़न बना इस चीज़ का,
1: सामने हम उसको विटनेस कर पाए, देख पाए। अभी हमने देखा पिछले साल की बात है, जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई, जम्मू कश्मीर से नीचे आए तो पंजाब में बाढ़ आई, हिमाचल में बाढ़ आई, हरियाणा में बाढ़ आई, दिल्ली में बाढ़ आई, जम्मू कश्मीर से नीचे तक सब जगह बाढ़ ही बाढ़ क्यों थी? वही बात, जो नदी की नेचुरल मूवमेंट है आपने उसे ब्लॉक कर दिया, अब वो पानी कहीं तो फटके निकलेगा, तो जब फटके निकलता है पानी वही तो बाढ़ है। तो कहीं ना कहीं ये पानी की मिसमैनेजमेंट है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर आप बात कर रहे थे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या लगता है आपको, होनी नहीं चाहिए क्या? पानी की एक एक बूंद जब हम कहते हैं इतनी कीमती है, लेकिन आप यकीन मानिएगा रेन जो पहली बार आती है और इंडस्ट्रीज में से जब होके निकलती है, वहाँ जो खुले केमिकल गिरे पड़े हैं उन सब चीज़ों से होके जब जाती है, तो वो सबसे ज़्यादा नुकसान करती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस पानी को ले जाके एक्वीफर में मिक्स कर देती है, नदियों में मिक्स कर देती है, जिससे नदियां और कंटेमिनेटेड हो जाती हैं। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमें, फिर वही बात, इंडस्ट्रीज की, इंडिविजुअल की, सोसाइटी की, एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी पड़ेगी
0: जी।
1: जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं, मैं आप होमवर्क करके डेली आ रहे हैं, मैं आपसे पूछ ही नहीं रहा आपने किया या नहीं किया, मैं आपसे पूछ ही नहीं रहा आज आप ऑफिस आए या नहीं आए, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप आएंगे? शायद बहुत रेयर।
0: और आप क्या काम कर रहे हैं?
1: काम क्या कर रहे हैं? लेकिन अगर अकाउंटेबिलिटी तय कर दी जाए, एक मेथड बना दिया जाए, तो कहीं ना कहीं आप भी टाइम से काम करेंगे और आएंगे, और उस चीज को ये समझते हुए क्योंकि आपको करना है आप उसे जरूर करेंगे। तो ऑयल, डस्ट, केमिकल्स और गार्बेज लेकर जब ड्रेन्स में जाते हैं तो यही चीज जाके पानी को कंटेमिनेट करती है। इसलिए अर्बन प्लानिंग में भी वाटर पॉल्यूशन का एक हिस्सा है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम रेन गार्डन्स बना सकते हैं, इसके लिए हम रिचार्ज पिट्स बना सकते हैं, इसके लिए हम डिटेंशन पॉन्ड्स बना सकते हैं, वेटलैंड्स बना सकते हैं। नोएडा में एक बहुत बढ़िया वेटलैंड पार्क डेवलप हुआ है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा।
0: वेटलैंड के भी बारे में आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, मैं तो जानती हूँ कि वो जगह जहाँ पर दलदल होती है, पानी होता है, जीव जंतु रह रहे हैं, पेड़ पौधे भी हैं, उसको वेटलैंड कहा जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: आपको बहुत सारी चीजें एक साथ मिल जाती हैं, और असम में या बंगाल में जाएंगे तो आपको काफी वेटलैंड्स मिलेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपसे ये चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा समझाएं कि वेटलैंड की आवश्यकता क्या होती है।
1: वेटलैंड एक नेचुरल रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम करता है, ना सिर्फ हार्वेस्टिंग का बल्कि वो उसको क्लीनिंग का भी काम करता है, क्योंकि उसमें जो वनस्पति डेवलप होती है वो पानी को अपने आप साफ रखती है। वो इकोसिस्टम इस तरीके से डेवलप हो जाता है कि हर कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है और चीजों को साफ करता चलता है। तो वेटलैंड, फरीदाबाद का सबसे बड़ा वेटलैंड कौन सा था, आज से अगर हम कुछ साल पहले चले, शायद मेरी उम्र 40-41 साल है, अगर उससे भी हम थोड़ा 4-5 साल पहले चले तो हैरानी होती है जान के कि सैनिक कॉलोनी सबसे बड़ा वेटलैंड था, सबसे बड़ा दलदल था।
0: सैनिक कॉलोनी जो आज का रिहायशी एरिया,
1: जो आज का रिहायशी एरिया है, बहुत बड़ा
0: ये वेटलैंड हुआ,
1: ये वेटलैंड हुआ करता था। यहाँ पर ये अरावली के तलहटी में बसा था, तो अरावली से जितना भी पानी और मिट्टी बहकर आती थी वो यहीं पर इकट्ठी होती थी, तो अल्टीमेटली यहीं पर ही वो स्लज काइंड ऑफ सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते थे। आज जब हम उस वेटलैंड पे एनक्रोचमेंट कर रहे हैं या आबादी लेके आ रहे हैं, देखिए जरूरी है, शहरीकरण जरूरी है, आबादी बढ़ रही है, सब चीजें जरूरी हैं, पर कहीं ना कहीं माना रोशनी ना थी मगर आंखें तो थी, ये कैसी रोशनी आई कि सब अंधे हो गए, वो हिसाब नहीं होना चाहिए। कि आप पॉपुलेशन को करिए, हमें कोई एतराज नहीं, आप जो कुछ करना चाहते हैं तरक्की कीजिए, लेकिन किस कीमत पे? क्या पूरी मानवता के लिए आप वाटर कंटेमिनेट कर देंगे इस कीमत पे? फिर वही बात कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो वही मुझे लास्ट पॉडकास्ट याद आती है दीक्षा जी, कि हमारा पड़ोसी देश भूटान, उसने कंपलसरी कर दिया दो लोगों के लिए, एक तो जितने भी वहां के नेतागण हैं उनके लिए और जितने सरकारी मुलाजिम हैं सबके लिए, सबके घरों में सरकारी नल से पानी जाएगा, सबके बच्चे सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजेस में पढ़ेंगे और सरकारी ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल करेंगे। अपने आप तीनों चीजों की स्थिति सुधर गई। तो हमारे यहाँ जब तक हम अलाउ कर रहे हैं कि आप पी लो पानी बोतल का, आप घर पे लगवा लो आरओ ट्रीटमेंट वाटर, आप घर पे लगवा लो सॉफ्टनर, और सरकारी लोगों को और नेताओं को अलाउ कर रहे हैं, तो वो जनता की प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे। मैं किसी की खिलाफत नहीं कर रहा, पर मैं कह रहा हूं कि सबको एट पार लेके आइए ना। जिस तकलीफ से हम गुजर रहे हैं उन्हें भी उस तकलीफ का एक बार मतलब अंदाजा तो कराइए, एक बार सरकारी बस में सफर तो कराइए, एक बार सरकारी स्कूल में उनके बच्चों को 4-6 महीने पढ़ा के तो देखिए, तो शायद उन्हें वो दर्द का एहसास होगा जिससे आप और हम निकल रहे हैं। अगर ये काम हो गया हिंदुस्तान में भी, तो जो भूटान आज हैप्पीनेस इंडेक्स में ऊपर है, वाटर के क्वालिटी इंडेक्स में ऊपर है, और ऐसा नहीं हमारे से बहुत दूर है वो देश,
0: साथ ही है, बिल्कुल
1: साथ ही लगता हुआ है, पॉल्यूशन फ्री हो चुका है, करप्शन फ्री ऑलमोस्ट देश है वो, हम भी कहीं ना कहीं उस मुकाम पे पहुंच सकते हैं। नियत की जरूरत।
0: सबसे कमाल की बात है वो एक ऐसा देश है जिसके चारों तरफ पानी नहीं है,
1: पानी नहीं है,
0: लैंडलॉक्ड कंट्रीज कहते हैं इनको, जिनको कहा जाता है कि इनकी अर्थव्यवस्था कमजोर होती
1: है, कमजोर होती है, ये इन्हें दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी रखनी पड़ती है, और इनकी मैक्सिमम खर्चे इनकी आर्मी पे जाता है क्योंकि इनको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। पर फिर भी अगर वो ये सब कर पा रहे हैं तो हिंदुस्तान क्यों नहीं, हमारे पास तो रिसोर्सेज की कमी नहीं है, रिसोर्सफुलनेस की कमी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें आपने बताई हैं कि हमें ये करनी चाहिए, मैं चाहूँगी आप एक बार फिर से समझाएं कि एक आम इंसान की, सरकार की, इंडस्ट्री की, इंस्टीट्यूशंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ शब्दों में बताएं।
1: आम आदमी क्या करे, सबसे पहले तो अपने ग्रीस को या तेल को सिंक में ना डाले, मेडिसिन, पेंट्स या केमिकल्स को ड्रेन में ना बहाए, वेस्ट सेग्रीगेशन करें, अननेसेसरी प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें, जहां लीकेज हो रही है उसको ठीक कराए, इलीगल कहीं डिस्चार्ज दिखे तो अप्रोप्रिएट सिविक अथॉरिटी को कंप्लेन करें, और कहीं ना कहीं देखिए हम लोगों ने सरकारों से, मैं सरकार किसी एक की बात नहीं कर रहा, सरकारों से मंदिर मांगा, 370 मांगा, सरकारों ने हमें दिया। अगर हम सरकार से पानी मांगेंगे तो सरकार को देना पड़ेगा, तो सरकारों से कहीं ना कहीं साफ पानी मांगना शुरू कीजिए। क्योंकि मैं बात सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं महज अल्फाजबाजी कर रहा हूँ, मैं महज आपको एक बड़ी टेक्निकल और गहन बात बता रहा हूँ, ये लास्ट जनरेशन है जो साफ पानी, साफ हवा ले रही है, इसके बाद की जनरेशन को साफ हवा और साफ पानी नहीं मिलेगा, मार्क माई वर्ड्स। नहीं यकीन आता 20 साल इंतजार करके देख लीजिए। कम्युनिटी क्या कर सकती है, आरडब्ल्यूएस क्या कर सकती है, वेस्ट सेग्रीगेशन आरडब्ल्यूएस के लिए लेवल पर हो,
0: जितना ज्यादा इनकरेज करें वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए, गीला और
1: सूखा कूड़ा अलग अलग हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, लीकेज जहां पर हो वहां तुरंत उस पर काम करें, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं। आपने बात की कि गवर्नमेंट क्या करें, देखिए अल्टीमेटली चीजें तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो गवर्नमेंट को ही बिल्ड करना है, एसटीपी बनाने में आरडब्ल्यूएस की हेल्प करे, नहीं तो कॉर्पोरेट के साथ उनका टाई अप कराए, क्योंकि उनकी भी सोशल
0: मिले और चीजें बेहतर तरीके से।
1: एग्जैक्टली सोशल वेलफेयर रिस्पांसिबिलिटी होती है, मल्टीपल चीजें होती हैं जहां पर आप सोशल कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी में इन लोगों के साथ जाके काम कर सकते हो। सीवेज नेटवर्क बनाए, स्टॉर्म वाटर सिस्टम बनाए, एनफोर्समेंट करें जो चीजें गलत तरीके से हो रही हैं, वाटर क्वालिटी के ऊपर ध्यान दे, कॉम्प्लाइंस और कंपल्सरी कर दे, जो मैंने अभी आपसे डिस्कशन किया, जितने भी मुलाजिम हैं सरकारी या नेता लोग हैं सबके घरों में पानी जाएगा तो सरकारी नल का जाएगा, आरओस बाहर, वाटर बॉटल की सप्लाई नहीं, कोई वाटर सॉफ्टनर नहीं, सब घरों में पानी ठीक होना शुरू हो जाएगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बेहद जरूरी है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग रखना बेहद जरूरी है, सीवेज कहाँ ओवरफ्लो है। देखिए हम टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो चीजें नहीं होंगी, और चैट जीपीटी है ये सब चीजें सिर्फ आपके और मेरे हाथ में नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास हैं, सरकारें भी चाहें तो इसका इस्तेमाल कंस्ट्रक्टिव वे में कर सकती हैं और कर भी रही होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे, पर कहीं ना कहीं उसका एग्जीक्यूशन दिखाना जरूरी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, एग्जीक्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो एक इंडिविजुअल, एक इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट सबको मिलकर काम करना होगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि पानी अब सिर्फ पॉल्यूटेड नहीं कंटेमिनेटेड हो चुका है, और इस कंटेमिनेशन को रोकने के लिए मुझे लगता है कि युद्ध स्तर पर अगर हम काम शुरू करेंगे, जिस लेवल पर हम किसी भी लड़ाई के लिए तैयार होते हैं, वैसे ही हमें इस लड़ाई को भी जीतना है, क्योंकि ये हर पल हमारे शरीर में जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि मेरे शरीर में जा रहा है, हर किसी के शरीर में ये पानी जा रहा है। आप कितना भी अच्छा आरओ लगा लें, आप नहाते हुए भी आरओ का इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन जो नेचुरल पानी आप तक आ रहा है उसकी अपनी खासियत होती है, और जब वो नहीं आता है या वो कॉन्टेमिनेटेड फॉर्म में आता है तो उसके अपने दुष्परिणाम होते हैं, जिन पर हम चर्चा करें।
1: दीक्षा जी, आप आरओ के पानी से भी नहा लेंगे तो कंटेमिनेशन थोड़ी हटाएगा, वो तो सिर्फ टीडीएस का लेवल ही तो रिड्यूस करेगा, तो जहर तो फिर भी मिलेगा,
0: यानी वो केमिकल जो है वो है ही,
1: वो है ही,
0: उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, उसके लिए आपको शुरुआत से ही
1: काम
0: बात कर रहे हैं वो ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा। पंकज जी, आपने बहुत बढ़िया बातें बताई, और शायद इसीलिए जब आपके साथ हम प्रोग्राम करते हैं तो कई बार समय का भी पता नहीं चलता। थैंक यू सो मच कार्यक्रम ग्रीन रह का एक बार फिर से हिस्सा बनने के लिए।
1: थैंक यू दीक्षा जी, थैंक यू मानव रचना इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को रेस करने के लिए। जल है तो कल है, धन्यवाद।
0: तो बहुत सी बातें हम कर चुके हैं देवी और सज्जनों ग्रीन ग्रह में, और इस कार्यक्रम को आप तक लाने का श्रेय जाता है डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन को, इको क्लब को और पीटीसी फाइनेंस लिमिटेड को, और बहुत सारी जानकारी आपके साथ साझा करने के बाद वक्त है आपसे इजाजत लेने का। मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत, अपने सवाल, अपने जवाब, अपनी राय हमें भेज सकते हैं आप 8010780178 पर। फील गुड, फील लाइव, दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: यार हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूँ दीक्षा आपके साथ, और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा कार्यक्रम जो जुड़ा हुआ है हम सभी की जिंदगियों से। ईश्वर ने हमें जीवन दिया, लेकिन इस जीवन में कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं जब हमारे शरीर के कुछ अंग सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं, और तब हमें जरूरत पड़ती है उस ऐसे एक डोनर की जो हमारी मदद करता है स्वयं ईश्वरी रूप बन के। ऐसे ही खास कार्यक्रम को आपके बीच लेकर आता है ऑर्गन इंडिया और रेडियो मानव रचना 107.8, और इस कार्यक्रम का नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। आइए जानते हैं कुछ बहुमूल्य बातें अंग दान से जुड़ी हुई।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: आप सभी सुनने वालों को ऑर्गन इंडिया की तरफ से नमस्कार। मेरा नाम पायल है और हम सब यही आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। आज हम आपका स्वागत करते हैं ऑर्गन इंडिया के इस बेहद खास कार्यक्रम में, जीवन एक अनमोल उपहार, जिसमें हम अंग दान के बारे में बात करेंगे। ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क यानी ऑर्गन इंडिया की पहल साल 2013 में पराशर फाउंडेशन ने की थी, जो कि दिल्ली की एक गैर सरकारी सामाजिक संस्था है। अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम अंगदान, देहदान और उत्तक दान के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम ऑर्गन फेलियर या अंगों के खराब होने की गंभीर समस्या से पीड़ित मरीजों को, जिनके पास ऑर्गन ट्रांसप्लांट या अंग प्रत्यारोपण के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, उन्हें ये सारी जानकारी देते हैं और

0: वो अपने उत्तम इलाज के लिए क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, ये भी सारा कुछ हम बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गीतिका वशिष्ठ, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर ऑर्गन इंडिया। तो कहीं मत जाइएगा और सुनते रहिएगा ये कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर गीतिका वशिष्ठ। मैं ऑर्गन इंडिया के साथ सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह काम कर रही हूँ और मैं आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, डॉक्टर सागर गुप्ता, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट में कंसल्टेंट है मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में। डॉक्टर सागर गुप्ता ने अपना MBBS डिग्री मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से पूरा किया है। अपनी ग्रेजुएशन के बाद डॉक्टर सागर गुप्ता ने US में जाकर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। वहाँ पे MD मेडिसिन नेफ्रोलॉजी करने के बाद उनको ये ख्याल आया कि उनको वापस अपने देश आकर अपने ही देशवासियों की सेवा करनी है और उन्हीं के साथ काम करना है। डॉक्टर सागर, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद डॉक्टर गीतिका, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके शो पर हूँ और इस शो के माध्यम से बहुत सारे लोगों तक पहुँच पाएंगे और हम उनको कुछ विशेष जानकारी दे पाएंगे।
1: मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगी कि आज हम एक बहुत ही खास और अहम बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे देश में डायबिटीज़, मधुमेह या शुगर की बीमारी जिसे बोलते हैं, उसका बहुत ही ज़्यादा प्रकोप बढ़ता जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार भारत जो है वो वर्ल्ड की, पूरे विश्व की डायबिटीज़ कैपिटल बनती जा रही है। एक समय में यहाँ पे 10 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो मधुमेह या शुगर की बीमारी से ग्रस्त हैं और उसमें आधी से ज़्यादा जनता, लाइक 50% लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनको शुगर की बीमारी है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे डॉक्टर सागर से और जानेंगे कि मधुमेह या शुगर की बीमारी क्या होती है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो डॉक्टर सागर, हम सबसे पहले चाहेंगे कि आप श्रोताओं को बताएं कि डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी या मधुमेह जिसे हम बोलते हैं, वो होता क्या है।
2: जैसा कि आपने बहुत सही तरीके से बताया हमारे श्रोताओं को, डायबिटीज़ यानी मधुमेह रोग यानी शुगर की बीमारी 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आज की डेट में इंडिया में ग्रस्त किए हुए है। और आपने ये भी बहुत खूब कहा कि बहुत सारे लोगों को इस बीमारी के बारे में पता भी नहीं होता कि उनको ये समस्या है, या फिर उनको इतना देरी से पता चल पाता है कि तब तक उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है, उनके कई अंगों पर ऑलरेडी जोर पड़ गया होता है। तो आइए हम समझते हैं कि मधुमेह रोग यानी शुगर यानी डायबिटीज़ क्या होता है। डायबिटीज़ वो बीमारी है जहाँ पर आपके खून में जो शुगर लेवल है वो नियंत्रण यानी कंटिन्यूअसली हाई चल रहा है, यानी ब्लड शुगर लेवल एक लिमिट से ज़्यादा है, वो स्थिति को हम डायबिटीज़ मेलाइटस यानी शुगर यानी मधुमेह रोग कहते हैं।
1: तो इस बीमारी के लक्षण क्या है और कैसे पता चलता है किसी इंसान को, या उसे कैसे सोचना चाहिए कि हो सकता है कि मुझे मधुमेह है और कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
2: डायबिटीज़ यानी मधुमेह रोग यानी वो स्थिति जब आपके शुगर ब्लड में बहुत हाई चल रही है लगातार, उसके जो लक्षण आते हैं वो बिल्कुल शुरू में कई बार नहीं पता चल पाते हैं। मान लीजिए लेवल जस्ट थोड़ा ऊपर जाने लगा है, लेकिन जब शुगर नियंत्रण बढ़ी रहती है तब आपको पॉलीडिप्सिया यानी ज़्यादा प्यास लग सकती है, पॉलीयूरिया यानी आपको बार बार पेशाब करने की ज़रूरत पड़ रही है, पॉलीफेजिया यानी आपको नॉर्मल से ज़्यादा भूख लग रही है, उसके अलावा आपको वेट लॉस यानी आपका वजन घट सकता है। ये कुछ लक्षण होते हैं शुगर के हाई होने के ब्लड में। काफ़ी लोगों में इन्फेक्शंस बार बार हो रहे होते हैं, जैसे खाल में फोड़े बनना, यूरिन के पेशाब के रास्ते के इन्फेक्शन होना, निमोनिया बार बार पकड़े जाना, ऐसी स्थिति में भी हाई ब्लड शुगर पकड़ी जाती है, क्योंकि हाई ब्लड शुगर के कारण शरीर की इम्यूनिटी यानी शरीर का इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। और बाकी काफ़ी अन्य लोगों को उनकी शुगर के

0: पतले दुबले होते हैं जनरली बिल्ट में, यानी उनका शरीर का गठन पतला दुबला होता है। जो दूसरे ओर पे टाइप 2 डायबिटीज है, यानी दूसरे प्रकार की डायबिटीज, वो उम्र में थोड़े ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट करती है, यानी 35-40 उम्र के बाद इफ़ेक्ट आता है उसका। वो आम तौर पर मोटापे से सफ़र कर रहे होते हैं, यानी उनका वज़न उनकी एज और उनकी हाइट से ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोगों को टाइप 2 शुगर की ज़्यादा रिस्क रहता है। और कई अन्य प्रकार के शुगर हो सकते हैं जो कि 10-15 साल से लेके 25-30 साल तक भी जिनको पकड़ा जा सकता है। और कई अन्य प्रकार की शुगर की बीमारियां नियंत्रित रिसर्च से सामने आती जा रही हैं। बट मोटा मोटा आपके प्रश्न का सवाल ये कि 2 टाइप की शुगर हैं, टाइप 1 और टाइप 2।
1: सो अब हम डॉक्टर सागर आपसे ये जानना चाहेंगे कि मधुमेह या शुगर की बीमारी मान लीजिए किसी को हो गई है, सबसे पहले तो इसको पता कैसे चलता है, और जब आ जाता है तो फिर इसका इलाज क्या होता है?
0: शुगर यानी मधुमेह रोग को पकड़ने के लिए जो मेन जांच है वो है आपके खून में शुगर की जांच, जिसको हम खाली पेट कराते हैं या फिर खाना खाने के बाद। और कई अन्य तरह के खून की जांचें होती हैं, जैसे HbA1c, जिससे हमें पिछले 3 महीने की शुगर का एवरेज का पता चलता है। ऑल्सो आपकी यूरिन की यानी पेशाब की जांच में शुगर जा सकती है। इन सब चीज़ों को, इन सब फैक्ट्स को, जानकारी को हम देखकर ही शुगर यानी डायबिटीज़ की रोग का डायग्नोसिस बनाते हैं।
1: और इसका इलाज क्या रहता है?
0: डायबिटीज़ यानी शुगर वो स्थिति है, जैसे कि हमने बात किया, जब आपके ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा है। शरीर में भगवान ने जो हमारी बॉडी में एक ऑर्गन बनाया है पैंक्रियाज, वो एक पदार्थ रिलीज करता है जिसका नाम होता है इंसुलिन। इंसुलिन का काम है शरीर में ब्लड में शुगर को कम करना। तो हम इस कंसेप्ट को अगर समझे तो हम देखते हैं कि डायबिटीज़ का इलाज कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो जो आपकी डाइट है, यानी जो आपकी खुराक है, जो आपका खान पान है, उसमें कुछ बदलाव लाने होते हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम करने होते हैं, जैसे कि रोटी हो गया, चावल हो गया, आलू, इन चीज़ों की प्रोपोर्शन, यानी इन चीज़ों की आपको मात्रा कम करके उसमें प्रोटीन एवं फाइबर का कंटेंट बढ़ाना है। दूसरी चीज़ जिससे शरीर शुगर को कम कर पाता है वो है एक्सरसाइज, यानी वर्जिश, यानी आपका फिजिकल एक्टिविटी। तो अगर आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी यानी वर्जिश बढ़ाएंगे, अपना चलना फिरना, किसी भी प्रकार की वर्जिशें, हल्का बहुत वेट उठाना, इन सब चीज़ों से भी शरीर आपका उस शुगर को यूज़ करेगा जो आपके खून में बन रही है एक्स्ट्रा, और आपकी ब्लड शुगर नीचे आएगी। तीसरी बड़ी चीज़ है दवाइयाँ। शुगर के इलाज में दवाइयों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आप अपनी खुराक से और वर्जिश करके एक हद तक शुगर को घटा सकते हैं, बट अगर तब भी आपकी शुगर नियंत्रित हाई रहती है तो आपको दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। शुरुआती स्थिति में आप केवल गोलियों से, टैबलेट से, अलग अलग प्रकार की गोलियों से शुगर को घटा सकते हैं, उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ वाले पेशेंट या वो पेशेंट जिनकी शुगर गोलियों से कंट्रोल नहीं हो रही है, उनको इंसुलिन के इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं। तो इसलिए खुराक, वर्जिश और दवाइयाँ एवं इंसुलिन। इसके साथ साथ आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है अगर, तो आपको अपना वज़न कम करना होगा। आप 8-10% अगर अपना वज़न घटा सकते हैं शरीर का, यानी कि जैसे अगर कोई 70 किलो का आदमी है और वो 7-10 किलो कम कर ले, तो इससे आपकी शुगर काफ़ी कम हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर ही शुगर का इलाज बनता है, और उसी से आप शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं और उससे होने वाले नुकसान से बच सकते हैं।
1: तो ये आपने हमें जानकारी दी कि हम डायबिटीज़ या मधुमेह या जो शुगर की बीमारी हम जिसे बोलते हैं उससे कैसे बच सकते हैं या उसका क्या इलाज रहता है। तो मोटे मोटे तौर पर हमने ये जान लिया, पर

0: हमने ये भी सुना है या हम देखते हैं कि जिनको मधुमेह की बीमारी हो जाती है उनको कुछ सालों बाद कुछ नई नई बीमारियां भी लगने लगती हैं। तो आप उस बारे में हमारे श्रोताओं को यदि बताना चाहे कि इसका और अन्य बीमारियों का कोई आपस में लेना देना होता है?
1: बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने डॉक्टर गीतिका जी। शुगर जब लंबे समय तक यानी कुछ सालों तक शरीर में बड़ी रहती है तो उसका सिर से लेके पांव तक शरीर के लगभग हर अंग पे उसका नुकसान हो सकता है। जब शुगर सालों तक बड़ी रहती है तो अगर मैं ऊपर से शुरू करूं यानी ब्रेन यानी दिमाग यानी मस्तिष्क के अंदर पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है यानी लकवा। उससे नीचे थोड़ा आए तो आंखें, लगातार बढ़ी हुई शुगर से आपके आंख के पर्दे खराब हो जाते हैं और आपकी दृष्टि खत्म हो सकती है। हम अगर और नीचे आके देखें तो आपका हार्ट यानी दिल, आपको लगातार शुगर अगर बढ़ी हुई है कंट्रोल नहीं है तो उससे आपका हार्ट अटैक का रिस्क यानी आपकी खून की रसावियां जो खून को दिल तक लेके जाती हैं उसमें ब्लॉकेज और हार्ट अटैक का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। अगर हम और देखें नीचे तो गुर्दे यानी किडनीज को शुगर खराब करती हैं। शुगर पूरी दुनिया में नंबर वन कारण है किडनी खराब होने का और भारत में भी वही स्थिति है। सबसे कॉमन कारण गुर्दे खराब होने का शुगर ही है। सालों से बड़ी शुगर का आपके पैरों पर भी असर पड़ सकता है, पैरों की नसें ब्लॉक हो सकती हैं। इसका आपकी नर्व्स पर यानी आपकी नसों पर भी असर होएगा जिससे आपके पैरों में आपके तलवे में जो गरम ठंडा दर्द महसूस करने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है और उसी के साथ साथ आपके पैर में घाव बन जाते हैं और लगातार इन्फेक्शन पड़ते रहते हैं जो ठीक नहीं होते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे सिर से पांव तक शरीर के हर अंग पर लगातार बढ़ी हुई शुगर का प्रभाव पड़ता है।
0: हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सागर के साथ, जिन्होंने आज हमें बताया मधुमेह के बारे में, उसके लक्षण के बारे में, इलाज और उससे कैसे बचा जा सकता है। सो पिछले सेगमेंट में ब्रेक से पहले हमने ये बात किया कि कैसे डायबिटीज़ जो है सिर्फ एक शुगर की बीमारी नहीं बल्कि और अन्य बीमारियों के भी एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। सो डॉक्टर सागर, आप हमें ये बताएंगे अब कि किडनी और डायबिटीज़ का क्या रिलेशन है, इनमें आपस में क्या संबंध है, खास करके जो किडनी की बीमारियां या किडनी फेलियर तक जब पेशेंट पहुंच जाता है तो उन दोनों का आपस में क्या संबंध रहता है?
1: तो दुनिया में किडनीज खराब होने का यानी गुर्दे की बीमारियां यानी गुर्दों का फेल होना, अगर आप सारी दुनिया के देशों को उठाकर देखें तो उसका नंबर वन कारण यानी सबसे प्रमुख कारण गुर्दा खराब होने का शुगर ही है यानी डायबिटीज मेलाइटिस यानी मधुमेह रोग। सालों से बढ़ी हुई शुगर लगातार आपकी किडनीज के फिल्टर को खराब करना शुरू कर देती है। वक्त के साथ उस फिल्टर से पहले तो प्रोटीन निकलने लगता है आपकी यूरिन में यानी आपके पेशाब में प्रोटीन आना शुरू होता है, वो इसकी शुरुआती स्थिति होती है। धीरे धीरे लगातार शुगर के बढ़े रहने से ये आगे जाकर किडनी के फिल्ट्रेशन को पूरी तरह खराब कर देता है और गुर्दों की यानी किडनी की फंक्शन, उनके काम करने की क्षमता को वक्त के साथ साथ कम करता रहता है। तो इसीलिए शुगर, जैसा कि मैंने कहा दोबारा वही बात, नंबर वन कारण है गुर्दे खराब होने का। शुगर अपने साथ काफी बार हाई ब्लड प्रेशर यानी हाई बीपी यानी उच्च रक्तचाप भी लेकर आता है और अधिकतर केसेस में शुगर और उच्च रक्तचाप मिलकर गुर्दे को और तेजी से खराब कर देते हैं। इसीलिए जिन भी मरीजों को शुगर होती है उनको ना तो सिर्फ अपनी शुगर को कंट्रोल में नियंत्रण में रखना है, उनको साथ ही साथ अपने ब्लड प्रेशर यानी बीपी को भी कंट्रोल में रखना है, ताकि उनके गुर्दे, उनके गुर्दों के काम करने की क्षमता लंबे समय तक बनी रहे।
0: जाने से पहले डॉक्टर सागर, हम ये चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि कैसे शुगर की बीमारी या किडनी की बीमारी जो शुगर के कारण हो सकती है उससे बचा जा सकता है।
1: जैसा कि आज हमने अपने शो में बात की, शुगर यानी मधुमेह रोग के क्या लक्षण हैं, उसका क्या इलाज है और उसका पूरे शरीर के विभिन्न अंगों पर क्या खराब असर पड़ता है सालों में, तो अगर हम शुगर से बच पाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। शुगर से बचे रहने के लिए नंबर वन है अपना वेट यानी वजन यानी मोटापे से दूर रहें। आप मीठा और कार्बोहाइड्रेट्स और तला हुआ खाना कम रखें, लगातार वर्जिश करें, रोज एक नियम बना लीजिए कि मुझे 15 मिनट चलना है कम से कम, आधे घंटा दौड़ना है, हफ्ते में 7 नहीं तो कम से कम 5 दिन ऐसा करिए जिससे आपका वजन कम रहे। तो नंबर वन है मोटापे से बचिए। नंबर टू, अगर आपको परिवार में किसी और को पहले ही शुगर रह चुकी है तो आपको और ज्यादा कॉशियस यानी और ज्यादा सावधान रहना होगा कि आपको शुगर होने का रिस्क और ज्यादा है, तो उस स्थिति में आप अपना एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट यानी ब्लड शुगर खाली पेट अथवा खाना खाने के 2 घंटे बाद वो चेक करा लीजिए। आजकल ये सुविधा काफ़ी सारे हेल्थ सेंटर्स पर अवेलेबल हो गई है, ग्लूकोमीटर के नाम के बिल्कुल छोटे साइज के आसानी से कहीं भी ले जाए जाने वाले मीटर सब जगह उपलब्ध हो गए हैं, तो आप एक बार रेगुलर इंटरवल पे यानी लगातार कुछ गैप दे के हर 1-2 साल में अपनी ब्लड शुगर की जांच ज़रूर कराएं, क्योंकि अगर आपको शुगर का रोग है तो आप उसको जल्दी ही पकड़ के उसका इलाज कर सकें। और जो चीज़ें आप कर सकते हैं खान पान, वर्जिश और ब्लड टेस्ट के अलावा, वो हैं अपना बीपी भी चेक कराएं यानी रक्तचाप। उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी जब शुगर के साथ कंबाइन हो जाता है तो इसके शरीर के सारे अंगों पर मार दुगनी हो जाती है, तो अगर आपका बीपी भी हाई रहता है तो उसको भी कंट्रोल किया जाना बहुत ज़रूरी है। अन्य चीज़ें जो आपके हाथ में हैं वो है तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का सेवन, इससे बचें और दूर रहें, क्योंकि इससे भी शरीर के अलग अलग अंगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और अन्य चीज़ें जो हैं कि अगर आपको शुगर का बीमारी पकड़ी गई है तो कृपया किसी अपने नज़दीकी चिकित्सक, किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, किसी भी डॉक्टर के टच में रहें, ऐसा ना हो कि आप कुछ समय दवा लेके छोड़ दें या परहेज़ छोड़ दें। ये उस तरह की बीमारी है जो शरीर से जनरली कभी नहीं जाती और आप इसको सिर्फ कंट्रोल में रख सकते हैं, तो अपने चिकित्सक के साथ मिलकर आप इसको कंट्रोल में रख सकते हैं और इससे होने वाले बुरे प्रभावों से बच सकते हैं।
0: डॉक्टर सागर, ये सभी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम के बाद हमारे श्रोताओं को डायबिटीज या मधुमेह के बारे में काफी जानकारी मिली होगी। उनमें से कई लोग आगे बढ़कर यदि अपने आप में कुछ लक्षण देखते हैं तो जाँच कराने जाएंगे, और मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि अगर 1-2 लक्षण भी उनको नजर आ रहे हैं तो जरूर अपने नजदीकी चिकित्सालय जाकर इस पे जांच कराएं। धन्यवाद।
2: मैं आप सभी श्रोताओं को बता दूं कि अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org विजिट कर सकते हैं या हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स 1800-120-3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंगदान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर एक फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और सर्टिफिकेट भेजा जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार के लोगों को जरूर बताइएगा और अपने आसपास सभी को प्रेरणा भी दीजिएगा। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।
3: तो आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत सी बातें जानी अंगदान से जुड़ी हुई। ऑर्गन इंडिया के सौजन्य से कार्यक्रम हम आपके बीच लाए। रेडियो मानव रचना 107.8 की इस कोशिश में अगर आप भी हमारा साथ देना चाहते हैं और अपनी राय और अपने कुछ खास विचार हमारे समक्ष रखना चाहते हैं तो हमें मैसेज या कॉल करें 8010781078 या फिर हमारे इंटरनेट रेडियो रेडियो मानव रचना के माध्यम से आप ऐप डाउनलोड करके भी इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं और जिस भी व्यक्ति के साथ आप शेयर करना चाहें दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी शेयर कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जीवन एक अनमोल उपहार, इसकी अहमियत को समझिए और अपना ख्याल रखिए। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

0: Hi, this is Benny Dayal. You're listening to Radio Manav Rachna 107.8 FM.
1: हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जहाँ पर हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी सोच से और अपनी डेडिकेशन से ना सिर्फ अपनी लाइफ को बदला है बल्कि दूसरों के लाइफ के लिए भी मिसाल बन गए हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त और आज का प्रोग्राम लेकर आ गई हूँ और साथ ही एक ऐसी पर्सनैलिटी की कहानी लेकर आई हूँ जिनका नाम सुनते ही हमें सबसे पहले एक वर्ड याद आता है और वो वर्ड है टीचर। जी हाँ, लेकिन दोस्तों आज हम सिर्फ टीचर की ही बात नहीं करने वाले हैं बल्कि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जो टीचर भी रहे हैं, फिलोसोफर भी रहे हैं और स्कॉलर भी रहे हैं और हमारे देश के प्रेसिडेंट भी बने हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। अब आप सोच रहे होंगे कि एक टीचर की जर्नी प्रेसिडेंट तक कैसे पहुंच गई और उनकी लाइफ में ऐसा क्या था जो उन्हें इतना स्पेशल बनाता है, तो दोस्तों इसी जर्नी को हम आज के मंत्रा में थोड़ा और ज्यादा क्लोजली समझने वाले हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5th ऑफ सितंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ था। उनका बैकग्राउंड बहुत ही सिंपल था लेकिन उनके अंदर नॉलेज को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी थी। पढ़ाई के प्रति उनकी डेडिकेशन ने उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया। धीरे धीरे उन्होंने फिलोसफी को अपना स्पेशल एरिया बनाया और टीचिंग फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बना ली। उनकी सबसे खास बात ये थी कि वो एजुकेशन को सिर्फ बुक्स और एग्जाम तक ही लिमिटेड नहीं समझा करते थे बल्कि उनके लिए एजुकेशन का मतलब था कि इंसान की सोच को डेवलप करना, उनके कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाना और लाइफ को समझने के लिए रेडी करना, और शायद इसी वजह से उनकी जर्नी आज भी हमारे लिए इतनी ज्यादा रेलिवेंट है। दोस्तों सक्सेस का मतलब हर किसी के लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए अच्छी जॉब मिलना, किसी के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना या फिर किसी के लिए अपने पैशन को फॉलो करना, लेकिन डॉक्टर राधाकृष्णन जी हमें एक इम्पॉर्टेंट बात समझाते हैं कि सक्सेस के साथ नॉलेज और कैरेक्टर भी जरूरी होता है। तो आज के इस खास एपिसोड में हम उनकी लाइफ के डिफरेंट चैप्टर्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं और जानेंगे कि उनकी जर्नी हमें क्या क्या सिखाती है, स्पेशली जो आज की जनरेशन है, हमारी जो यंग जनरेशन है, उन्हें क्या क्या सीख मिल पाती है उनकी जर्नी के साथ। तो आपको क्या करना है, आपको जुड़ जाना है हमारे साथ। जी हाँ, सक्सेस मंत्रा प्रोग्राम है जहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत ही प्यारे प्यारे से गाने भी, तो सुनेंगे बहुत ही प्यार सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी पर्सनालिटी की हमारे प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा में, जिनकी पूरी लाइफ ही नॉलेज और लर्निंग को जाना कि एक सिंपल से बैकग्राउंड से आने वाले राधा कृष्णन जी कैसे अपनी पढ़ाई और नॉलेज के थ्रू एक अलग आइडेंटिटी बना पाए। लेकिन दोस्तों, उनकी जर्नी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि उनके लिए एजुकेशन सिर्फ डिग्री लेने या फिर एग्जाम पास करने का मीडियम नहीं था, बल्कि उनके लिए एजुकेशन का मतलब था कि अपनी थिंकिंग को डेवलप करना और एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनना। सोचिए, आज जब हम एजुकेशन को अक्सर मार्क्स, डिग्री, जॉब या फिर करियर के साथ कनेक्ट करते हैं, और ये भी जरूरी है, लेकिन अगर हम सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं उनका कोई मीनिंग समझने की कोशिश ही नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद हम एजुकेशन का रियल पर्पस मिस कर रहे हैं। राधा कृष्णन जी ने फिलॉसफी को अपनी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट बनाया। फिलॉसफी सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड लगता है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है कि लाइफ, नॉलेज और एग्जिस्टेंस को समझने की कोशिश करना। और इसी सब्जेक्ट के थ्रू उन्होंने लोगों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि थिंकिंग का एक नया पर्सपेक्टिव दिया है। उन्होंने टीचिंग को भी बहुत सीरियसली लिया। उनका मानना था कि एक टीचर का रोल सिर्फ क्लासरूम में लेसन एक्सप्लेन करने का ही नहीं होता है, बल्कि एक टीचर स्टूडेंट को इंस्पायर करता है, उन्हें क्वेश्चंस को पूछना सिखाता है और उनके अंदर सोचने की एबिलिटी को डेवलप करता है। और दोस्तों, यही लेसन हमें आज अपनी लाइफ में भी अप्लाई करना है और हम इसे कर सकते हैं। आज इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, इंटरनेट पर एक क्लिक में थाउजेंड्स ऑफ आंसर्स हमें मिल जाते हैं तुरंत में। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हम क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, इन्फॉर्मेशन को कैसे समझते हैं और उसे अपनी लाइफ में कैसे यूज करते हैं। राधा कृष्णन जी हमें लाइफ में ये सिखाते हैं कि लर्निंग एक फिक्स्ड एज तक लिमिटेड नहीं होती है, बल्कि स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज खत्म हुआ या फिर जॉब मिल गई, इसका मतलब लर्निंग खत्म हो गई है ये नहीं होता है। एक्चुअली रियल लर्निंग तो उसके बाद ही कंटिन्यू होती है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो एक सिंपल मंत्रा याद रखिएगा कि मार्क्स आपको एक रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन नॉलेज आपको डायरेक्शन दे सकती है। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो भी लर्निंग को कंटिन्यू रखिए, नए स्किल को सीखिए, क्वेश्चंस पूछिए और अपनी गलतियों से सीखिए और अपनी थिंकिंग को ओपन रखिए। क्योंकि सक्सेस सिर्फ ये नहीं है कि आप कितना जानते हैं, सक्सेस ये भी है कि आप जो जानते हैं उससे अपनी और दूसरों की लाइफ को कितना बेटर बना पाते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर राधा कृष्णन जी की एजुकेशन जर्नी से हमें आज का सक्सेस मंत्रा, पहला सक्सेस मंत्रा मिलता है कि लर्निंग को डेस्टिनेशन मत समझिए, उसे अपनी लाइफ लॉन्ग जर्नी बना लीजिए। और इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे उनकी सक्सेस फिलॉसफी की, पर उससे पहले लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। जी हाँ, सक्सेस मंत्रा प्रोग्राम जहाँ पर हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना होते हुए भी सब कुछ हासिल करा है, साथ ही वो अपनी जर्नी से हमें मोटिवेट करते हैं कि हम भी अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। अब तक हमने उनकी एजुकेशन और लर्निंग के बारे में जाना है, लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि आखिर उनकी सक्सेस का मंत्रा क्या था। दोस्तों, जब हम किसी सक्सेसफुल पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं ना, तो अक्सर हम उनकी अचीवमेंट्स को काउंट करना शुरू कर देते हैं, कितने अवार्ड्स मिले, कौन सी पोजीशन मिली, कितना नाम कमाया। लेकिन असली सक्सेस को समझने के लिए ये देखना भी जरूरी है कि उस इंसान की सोच क्या थी और उसने अपनी जर्नी को कैसे बिल्ड किया है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी में से एक थी कंटिन्यूस लर्निंग। वो नॉलेज को भी एक फिक्स्ड चीज नहीं मानते थे, उनकी थिंकिंग हमेशा लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग पर फोकस रही है। ये क्वालिटी आज के टाइम में हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आज की जनरेशन के पास अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है तो और कंपटीशन भी है उसी के साथ। हर फील्ड में नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, नए करियर के ऑप्शंस आ रहे हैं और स्किल्स भी कॉन्स्टेंटली अपडेट हो रहे हैं। और ऐसे में अगर हम ये सोच लें कि मुझे सब आता है तो शायद हम वहीं रुक जाएंगे, लेकिन अगर हम कहें मैं और सीख सकता हूँ तो हमारी ग्रोथ का चांस हमेशा बना रहेगा। लेकिन उनकी लाइफ हमें डिसिप्लिन का इम्पोर्टेंस भी समझाती है। टैलेंट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन टैलेंट को डायरेक्शन देने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। आपके पास कितना भी पोटेंशियल क्यों ना हो, लेकिन आप कंसिस्टेंटली एफर्ट्स नहीं करते तो पोटेंशियल का रिजल्ट नहीं मिलता। एक और इम्पॉर्टेंट क्वालिटी थी सिंप्लिसिटी। इतनी बड़ी पोजीशन तक पहुंचने के बाद भी उनकी पर्सनालिटी में सिंप्लिसिटी और डिग्निटी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। ये हमें रिमाइंड देता है कि सक्सेस के साथ ह्यूमिलिटी भी होनी चाहिए। और दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है कि नॉलेज के साथ कैरेक्टर। जी हाँ, सिर्फ इंटेलिजेंट होना इनफ नहीं होता है, आप कितने नॉलेजेबल हैं उसके साथ ये भी मैटर करता है कि आप अपनी नॉलेज और पोजीशन का यूज किस पर्पस के लिए करते हैं। आज हम सोशल मीडिया पर सक्सेस को मोस्टली ग्लैमरस वे में देखते हैं, जैसे कि बड़ी सैलरी होना, लग्जरी लाइफस्टाइल होना, अचीवमेंट्स होना, सब कुछ इंस्टेंटली विजिबल है। लेकिन किसी भी रियल सक्सेस के पीछे सालों की मेहनत, पेशेंस और कंसिस्टेंसी होती है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी की जर्नी भी हमें ये बताती है कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती, सक्सेस एक प्रोसेस है, लर्निंग का, डिसिप्लिन का, पेशेंस का और कंटिन्यूसली बेटर बनने का। तो आज का सक्सेस मंत्र बहुत ही सिंपल है कि टैलेंट आपको शुरुआत दे सकता है, लेकिन लर्निंग, डिसिप्लिन और कैरेक्टर आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस तक ले जा सकता है। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज इस प्रोग्राम में हम चल रहे हैं जिस जर्नी के साथ, उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। जी हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनकी जर्नी ये प्रूव करती है कि आपकी स्टार्टिंग पॉइंट आपका फाइनल डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं करती। जी हाँ दोस्तों, जरा इमेजिन करिए कि एक यंग स्टूडेंट जो नॉलेज और फिलॉसफी में इंटरेस्ट रखता है और पढ़ाई भी करता है, फिर टीचिंग को अपना करियर चूज करता है और धीरे धीरे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तक पहुंचता है कि एक दिन वो इंडिया का प्रेसिडेंट बन जाता है। ये जर्नी किसी मूवी की स्टोरी नहीं बल्कि डॉक्टर राधाकृष्णन जी की रियल लाइफ जर्नी है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीचिंग से और फिलॉसफी के फील्ड में अपनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाकर की थी। उन्होंने डिफरेंट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में फिलॉसफी की पढ़ाई की और अपनी नॉलेज के थ्रू स्टूडेंट के बीच एक अलग रिस्पेक्ट अर्न किया। उनकी टीचिंग स्टाइल का फोकस सिर्फ इंफॉर्मेशन देने पर ही नहीं था बल्कि स्टूडेंट्स को सोचने और समझने के लिए एनकरेज करना भी था। उनकी एकेडमिक रेपुटेशन इतनी स्ट्रांग हुई कि उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ईस्टर्न रिलीजियस और एथिक्स के प्रोफेसर के रूप में भी काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली। सोचिए दोस्तों, एक इंडियन स्कॉलर का ऑक्सफोर्ड में जाकर इंडियन फिलॉसफी और थॉट को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन उनकी जर्नी यही नहीं रुकी। इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने पब्लिक लाइफ में भी इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली है। जी हाँ, वो इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बने और 1952 से 1962 तक इस पोजीशन पर रहे। इसके बाद 1962 में उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद को भी संभाला। और अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग बात भी आती है कि एक टीचर और एक फिलोसोफर का देश के हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में से एक तक पहुँचना हमें क्या बताता है। ये बताता है कि आप जिस फील्ड में सिंसियरली काम करते हैं उसका इम्पैक्ट सिर्फ उस फील्ड तक ही लिमिटेड नहीं होना चाहिए। अगर आप टीचर हैं तो आप फ्यूचर जनरेशन को शेप कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आज आपकी लर्निंग कल की अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सकती है। अगर आप किसी भी प्रोफेशनल में हैं तो डेडिकेशन और नॉलेज के थ्रू आप अपनी आइडेंटिटी को बिल्ड कर सकते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन जी की जर्नी का एक और ब्यूटीफुल लेसन है कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को सिर्फ एक डेस्टिनेशन से डिफाइन नहीं होने दिया बल्कि वो पहले टीचर थे, फिर फिलोसोफर थे, फिर उसके बाद स्कॉलर रहे, फिर डिप्लोमेट रहे और फिर प्रेसिडेंट बने। लेकिन हर स्टेज पर उनकी कोर स्ट्रेंथ नॉलेज और लर्निंग ही रही है। दोस्तों, हम भी लाइफ में कई बार अपनी करंट सिचुएशन को देखकर अपना फ्यूचर डिसाइड कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास रिसोर्सेस कम है तो मैं नहीं कर सकता, मेरी स्टार्टिंग स्ट्रांग नहीं है तो मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है। लेकिन राधाकृष्णन जी की जर्नी हमें एक रिमाइंडर देती है कि स्टार्टिंग पॉइंट इम्पोर्टेंट नहीं है, डेस्टिनेशन और डेडिकेशन इम्पोर्टेंट है। तो आज का एक और सक्सेस मंत्रा कि अपनी करंट पोजीशन को अपनी फाइनल आइडेंटिटी मत समझिए, सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए और अपनी पॉसिबिलिटीज पर बिलीव रखिए। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो 107.8 FM और मैं हूँ आरजी स्नेह आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा की जर्नी पर हम चल रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के साथ, उनकी लाइफ और उनकी इंस्पायरिंग थिंकिंग के साथ। अब तक हमने उनकी एजुकेशन, सक्सेस फिलोसफी और टीचर से प्रेसिडेंट तक की जर्नी के बारे में जाना, लेकिन दोस्तों राधाकृष्णन जी को सिर्फ उनकी पोजीशन की वजह से ही याद करना उनकी पर्सनैलिटी को बहुत छोटा कर देना होगा। उनकी सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज में से एक थी फिलोसोफर की। अब फिलोसोफर वर्ड सुनते ही आपको शायद लगता होगा कि ये टॉपिक थोड़ा सीरियस या फिर डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन अगर आप सिंपल वर्ड्स में समझे ना तो फिलोसफी का मतलब है कि लाइफ, नॉलेज और सोसाइटी से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में सोचना, जैसे कि हम क्या सीख रहे हैं, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक अच्छी लाइफ का मतलब क्या है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी की थिंकिंग में एजुकेशन और ह्यूमन वैल्यूज को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। उनके लिए एजुकेशन का पर्पस सिर्फ सक्सेसफुल करियर बनाना नहीं था, बल्कि ये एजुकेशन का रोल एक इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबल, थॉटफुल और बेटर ह्यूमन बीइंग बनाना था। और दोस्तों अगर हम आज की जनरेशन की बात करें तो ये थॉट और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि सोशल मीडिया, इंटरनेट या फिर टेक्नोलॉजी ने नॉलेज तक पहुंचना बहुत इजी कर दिया है, लेकिन इंफॉर्मेशन और विजडम एक ही चीज़ नहीं होती। आपके फ़ोन में थाउजेंड्स ऑफ फैक्ट हो सकते हैं, लेकिन उन फैक्ट्स को समझना, उनका सही यूज़ करना और राइट डिसीजन लेना, ये विजडम का पार्ट होता है। इसीलिए क्रिटिकल थिंकिंग आज के यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। हर वायरल पोस्ट को सच मान लेना और हर ओपिनियन को फॉलो कर लेना या फिर सिर्फ किसी ट्रेंड का पार्ट बन जाना, क्योंकि सब कर रहे हैं, ये हेल्दी थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं है। राधा कृष्णन जी के फिलोसफिकल अप्रोच हमें एनकरेज करती है कि हम क्वेश्चंस को पूछें, समझें और अपनी थिंकिंग को डेवलप करें। एक और इंपॉर्टेंट लेसन है, वो है कैरेक्टर। आपके पास नॉलेज है, डिग्री है, स्किल्स है, लेकिन अगर वैल्यूज और कैरेक्टर स्ट्रांग नहीं है तो सक्सेस इनकम्प्लीट रह जाती है। और अगर आज हम करियर गोल को सेट करते हैं, अच्छी जॉब मिलना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रमोशन, बिजनेस पॉपुलैरिटी, ये सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ ही हमें ये भी पूछना चाहिए कि मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन शायद हमारी जर्नी को और ज्यादा मीनिंगफुल बना सकता है। तो दोस्तों राधा कृष्णन जी की थिंकिंग का एक और सक्सेस मंत्रा कि नॉलेज आपको इंटेलिजेंट बना सकती है, लेकिन राइट थिंकिंग और वैल्यूज आपको वाइज बना सकती है। और इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। मैं हूँ अर्जित सिंह आपके साथ और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की और उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के साथ आज हम चल रहे हैं। अब तक हमने उनकी एजुकेशन और फिलोसफी, सक्सेस जर्नी और उनके थॉट को बहुत अच्छे से समझा, जान चुके हैं बहुत सारी बातें, लेकिन अब आते हैं उनकी लाइफ से जुड़े एक ऐसे दिन पर जिसे हम हर साल बहुत ही स्पेशल वे में सेलिब्रेट करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 5th of September यानी कि टीचर्स डे की। दोस्तों, हम सबने स्कूल या फिर कॉलेजेस में टीचर्स डे जरूर सेलिब्रेट किया होगा। कहीं स्टूडेंट्स टीचर्स के लिए कार्ड बनाते हैं, कहीं पर परफॉर्मेंस भी होती है, तो कहीं टीचर्स के लिए स्पेशल एक्टिविटीज भी ऑर्गेनाइज की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया में 5th of September को ही ये टीचर्स डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? और इसका कनेक्शन है डायरेक्टली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से।

जी हाँ, उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को ही हुआ था। जब वो भारत के राष्ट्रपति बने तब उन्हें कुछ स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स ने उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के अपनी विश को एक्सप्रेस किया, लेकिन राधा कृष्णन जी ने अपने बर्थडे को पर्सनली सेलिब्रेट करने के बजाय सजेस्ट किया कि 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाए। और दोस्तों ये ही बात उनकी पर्सनैलिटी को और ज्यादा स्पेशल बनाती है। जिस दिन को कोई भी इंसान अपने नाम और बर्थडे के साथ सेलिब्रेट कर सकता था, लेकिन राधा कृष्णन जी ने उस दिन को टीचर्स डे के ऑनर से सेलिब्रेट करने के लिए कनेक्ट कर दिया। इसके पीछे एक ब्यूटीफुल थॉट भी है कि एजुकेशन और टीचर्स की इंपॉर्टेंस को सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। टीचर्स हमारी लाइफ में सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने वाले लोग नहीं होते हैं, बल्कि कभी कभी एक टीचर का एक सिंपल सा सेंटेंस, एक एडवाइस या फिर एक छोटा सा एनकरेजमेंट हमारी पूरी डेडिकेशन को चेंज कर सकता है। स्कूल में जब हम किसी सब्जेक्ट से स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो टीचर ही हमें पेशेंटली उसे समझाता है। जब मार्क्स कम आते हैं तो वो हमें मोटिवेट करता है, और जब हम खुद पर डाउट करते हैं तब एक अच्छा टीचर हमें ये याद दिलाता है कि रिजल्ट आपकी पूरी कैपेबिलिटी को डिफाइन नहीं करता है। आज के टाइम में भी टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी और AI ने लर्निंग को ईजी जरूर बना दिया है, लेकिन एक टीचर को स्टूडेंट की सिचुएशन को समझ कर उसे गाइड करता है। उस ह्यूमन कनेक्शन की वैल्यू ही अलग होती है। आज स्टूडेंट्स के लिए भी टीचर्स डे एक रिमाइंडर है कि अपने टीचर को सिर्फ एक दिन विश करना इनफ नहीं है, उनकी मेहनत को, उनकी गाइडेंस को और उनके टाइम को हमेशा रिस्पेक्ट करना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में भी कोई एक ऐसा टीचर रहा है जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिली हो, जिसने आपको इंस्पायर किया हो, जिसने आपको कॉन्फिडेंस दिया हो और आपको बेटर बनने में हेल्प की हो, तो उन्हें एक बार जरूर याद कीजिएगा और उन्हें एक बार जरूर विश कीजिएगा और उन्हें एक बार थैंक यू जरूर बोलिएगा। और आज का एक और सक्सेस मंत्र कि एक अच्छा टीचर सिर्फ नॉलेज नहीं देता, बल्कि वो किसी की लाइफ की डायरेक्शन को बदल सकता है। वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रिच 107.8 FM। फील गुड।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजी सिंह आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और अब हम पहुँच गए हैं हमारे आखिरी सेगमेंट में और अब वक्त है आज के एपिसोड को एक इंस्पायरिंग नोट के साथ रैप अप करने का। और आज हमने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जर्नी को बहुत अच्छे से जाना, एक टीचर को, एक फिलोसोफर को और एक स्कॉलर से लेकर भारत के राष्ट्रपति तक के सफर को जाना। लेकिन दोस्तों, उनकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट सिर्फ उनकी पोजीशन ही नहीं थी बल्कि उनकी सोच, उनके वैल्यूज और उनकी लर्निंग के प्रति डेडिकेशन थी। तो चलिए, उनके पांच कुछ ऐसे सिंपल से सक्सेस मंत्र है जिन्हें मैंने आपको शुरू से लेकर अभी तक बताया है, पर हम दोबारा से उसे जान लेते हैं। सबसे पहला था कीप लर्निंग। लर्निंग कभी आपकी स्टॉप नहीं होनी चाहिए। डिग्री कंप्लीट होने के बाद भी लाइफ हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाती है, तो इसलिए क्यूरियस रहिए और नए स्किल को सीखते रहिए। दूसरा है थिंक इंडिपेंडेंटली। हर चीज को सिर्फ इसलिए फॉलो मत कीजिए क्योंकि सब कर रहे हैं। क्वेश्चंस पूछिए, इन्फॉर्मेशन को समझिए और अपने ओपिनियन को खुद बनाइए। तीसरा है डिसिप्लिन। मोटिवेशन हर दिन नहीं होता लेकिन डिसिप्लिन हमें कंसिस्टेंटली एक्शन लेने में हेल्प करता है। छोटी छोटी हैबिट्स हमें फ्यूचर में बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। और चौथा है कैरेक्टर और अचीवमेंट्स। इंपॉर्टेंट है लेकिन स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भी उतना ही जरूरी है जितना कि नॉलेज के साथ ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में। पांचवा है नेवर लिमिट योरसेल्फ। राधा कृष्णन जी की जर्नी हमें सिखाती है कि आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं ये आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। आपकी मेहनत, आपकी डेडिकेशन और लर्निंग आपको बहुत आगे तक लेकर जा सकती है। दोस्तों, अब एक सवाल आपसे कि आपकी लाइफ का वो टीचर कौन है जिन्होंने आपको कोई इम्पोर्टेंट लेसन दिया हो? अगर वो आज आपके सामने होते तो आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं? तो उन्हें जरूर मैसेज करिएगा और उन्हें कॉल करके याद जरूर दिलाइएगा कि आपका ये इम्पोर्टेंट लेसन मेरी लाइफ में बहुत काम आया। तो इसी थॉट के साथ आज के सक्सेस मंत्रा को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मेरी तरफ से एक छोटा सा थॉट कि सक्सेस सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं है बल्कि जर्नी में सीखते हुए एक बेटर इंसान बनना है। तो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजी सिंह और मैं ले रही हूं आपसे इजाजत। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए इंस्पायरिंग पर्सनालिटी और नए सक्सेस मंत्रा के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे इंस्पायर्ड और मुझे दीजिए इजाजत। और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन्ज मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील।

गुड मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक रहती हूँ आपके साथ। और आज बहुत सारी बातें लेकर के आई हूँ। आज है सैटरडे का दिन और आपको कहीं घूमने लेकर के जाती हूँ। और आज ना हवाओं में जहाँ तानसेन की तान घुली हो और ऐसी कुछ बात मैं करने वाली हूँ, ऐसी जगह की मैं बात करने वाली हूँ जहाँ पहाड़ पर खड़ा किला, जहाँ इतिहास सुनाए वहीं तो है एक सुंदर शहर। और आज मैं एक ऐसी जगह के बारे में आपको बताने वाली हूँ जो कि खुद में ही बड़ी खूबसूरत सी जगह है, बड़ी प्यारी जगह है। और आज हम चल रहे हैं मध्य प्रदेश के एक बहुत ही ऐतिहासिक, रॉयल और बहुत ही खूबसूरत शहर में। द सिटी ऑफ म्यूजिक इसे कहा जाता है। कौन सी है ये जगह, जरा आप मुझे मैसेज करके बताइए। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078। फिलहाल मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा. सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें. आज आपके पास ना एक ऐसी जगह के बारे में देखिए आपको बताने वाली हूँ, लेकर के आई हूँ एक ऐसी जगह जो खुद में ही बहुत खूबसूरत है. द सिटी ऑफ म्यूजिक इसे कहा जाता है. बड़े सारे जवाब भी आपके आ रहे हैं. ये जो जगह है ये बहुत ही खूबसूरत है. आज हमारा रास्ता हमें ले चला है ग्वालियर की ओर. इमेजिन कीजिए एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा विशाल नीले और पीले रंगों से चमकता किला, जिसे मुगल बादशाह बाबर ने द पर्ल अमंग फोर्ट्स इन इंडिया इसे कहा था. इनफैक्ट

देखिए, ये जो शहर है ना, ये इतना खूबसूरत है, और ये शहर जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ महलों का शहर है, राजाओं का शहर है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये संगीत सम्राट तानसेन की जन्मभूमि है। यूनेस्को ने इसे ऑफिशियल सिटी ऑफ म्यूजिक का स्टेटस दिया था, और आज भी है। और आज के इस प्रोग्राम में ना, मैं आपको ग्वालियर फोर्ट की ऊंची दीवारों पर ले जाऊंगी। आपको मैं स्काई इंडिया परिवार के ग्रैंड जय विलास जो पैलेस है, इसका जादू आपको बताने वाली हूँ। और यहाँ के जो बड़ी बड़ी जो देखिए जलेबी होती है, उसका जायका चखाने वाली हूँ। तो बस आपको कहीं नहीं जाना, आपको सफ़र ये जो है मेरे साथ आपका होने वाला है बड़ा ही खूबसूरत। और आपका कुछ अगर कहना हो इस पर तो जरूर हमें मैसेज करके बता सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078। फिलहाल लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक रहती हूँ आपके साथ और बहुत सारी होती हैं बातें। और साथ ही आपको बताती हूँ, देखिए पहाड़ के सीने पर खड़ा ये किला बताता है कि कितने दौर आए और गए, पर इसकी शान हमेशा बरकरार रही। ग्वालियर आके सबसे पहले जिस चीज पर आपकी नजर रुकेगी, जो टिक जाएगी, वो है शहर के बीचों बीच लगभग 300 फुट ऊंची पहाड़ी पर खड़ा ग्वालियर फोर्ट। ये किला 8th सेंचुरी में राजा सूरज सेन ने बनवाया था और इस किले की दीवार पर जो है, जिसकी जो दीवारें हैं, इनकी दीवारों पर लगी जो टर्कुइश ब्लू यानी कि नीले और पीले रंग की सेरेमिक टाइल्स जो है, वो धूप में ऐसे चमकती है जैसे मानो किसी ने पत्थर पर हीरे जड़ दिए हों। और इस किले ने तोमर जो मुगल या मराठा और ब्रिटिशर्स का दौर देखा है। किले के हाथीपोल गेट से अंदर जाते वक्त आपको महसूस होता है कि हमारे पुरखों का जो आर्किटेक्चर कितना ग्रैंड था। किले के ऊपर से पूरा ग्वालियर शहर एक जो नन्हे से शीशे जैसा जो है वो दिखता है, और शाम के वक्त यहाँ का जो साउंड एंड लाइट शो है वो तो देखने लायक है, बिल्कुल देखना चाहिए यहाँ के। जहाँ अमिताभ बच्चन जी की भारी आवाज में इस किले का सदियों पुराना इतिहास जिंदा होता है। चलिए एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, इसके बाद होंगे और भी बहुत सारी बातें, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड,

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत से प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। आज सैटरडे का दिन है, आपके साथ शेयर कर रही हूँ कैसी खूबसूरत सी जगह जहाँ पर आपको जरूर जाना चाहिए। ग्वालियर की हम बात कर रहे हैं। रंग और पत्थर का ऐसा मेल जैसे कि देखिए, किसी आप शायर की अगर हम बात करें तो शायर ने अपनी कल्पना को दीवारों पर उतार दिया हो। ग्वालियर फोर्ट कैंपस जो है इसके अंदर की जो स्थित है और इसके अंदर का ही स्थित और सबसे खूबसूरत महल है मन मंदिर। और मन मंदिर पैलेस जो है जिसे राजा मान सिंह तोमर ने 15th century में बनवाया था। इस महल के बाहर की दीवारों पर डक, एलिफेंट, पीकॉक और क्रोकोडाइल के कलरफुल डिजाइन बने हुए हैं जो आज भी 500 साल बाद एकदम फ्रेश लगते हैं। इस महल के अंदर 2 अंडरग्राउंड फ्लोर्स हैं जहां पुराने जमाने में रानियां गर्मियों में ठंडक के लिए रहती थी, लेकिन मुगल दौर में औरंगजेब ने इसे अंडरग्राउंड फ्लोर को एक जेल में बदल दिया था, तब्दील कर दिया था, जहां उसने अपने भाई मुराद को कैद किया था। जब आप यहाँ जाएंगे, देखिए जब आप उन गोल और घुमावदार रास्तों पर चलकर उन पुराने झरोकों को आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हर कोना एक नई कहानी सुनाने के लिए आपको बेकरार है, आपको जो है वो सुनाने के लिए बेचैन है। और साथ ही चलिए इसके बारे में थोड़ी और बातचीत करेंगे ग्वालियर के बारे में हम, लेकिन फिलहाल अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील
1: अभी न जाओ छोड़ कर।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप, मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत से प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। साथ ही आज आपको एक बड़े खूबसूरत जो शहर है वहाँ लेकर के आई हूँ। और ये जो शहर है सिर्फ देखिए यहाँ पर महलों का ये शहर नहीं है जहाँ पर सिर्फ महल ही महल हो, ये शहर एक और बड़ी खास चीज से जाना जाता है, द सिटी ऑफ म्यूजिक इसे कहा जाता है। संगीत के सबसे बड़े उस्ताद के आंगन में हम चलते हैं, तानसेन टॉम। अकबर के नवरत्न में शामिल संगीत सम्राट मिलन तानसेन की जो मज़ार है वो ग्वालियर में है और ग्वालियर के हजीरा एरिया में ये स्थित है। ये एक बहुत ही शांत और सुंदर मुगल गार्डन के बीच बनी है। मज़ार के बिल्कुल पास एक पुराना इमली का पेड़ यानी कि टैमरिंड का एक ट्री है और एक बहुत ही मशहूर कहानी है कि जो गायक इस पेड़ की पत्तियों को चबाता है उसकी आवाज तानसेन की तरह मीठी और सुरीली हो जाती है। हर साल दिसंबर के महीने में यहाँ पर वर्ल्ड फेमस तानसेन समारोह लगता है जहाँ पूरी दुनिया के टॉप क्लासिकल म्यूजिशियंस आकर सारी रात सुरों की बरसात करते हैं। ग्वालियर की हवाओं में संगीत का जो ठहराव है वो इस जगह आकर दिल को छू लेता है। चलिए इसके बारे में, इस जगह के बारे में और भी बहुत सारी आपसे बातें करूंगी। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। Feel good, feel right.

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत से प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ। और बहुत सारी होती हैं बातें, चांदी की ट्रेन और सुनहरे झरोके, शाही लाइफस्टाइल का इससे ग्रैंड रूप कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको देखना है कि असली राजा महाराजा कैसे रहते थे तो आपको जाना होगा जय विलास पैलेस। इसे जो है वो 1874 में महाराजा जयाजीराव जो है स्काई इंडिया ने बनवाया था, और इसका एक हिस्सा आज भी स्काई इंडिया जो है फैमिली का निजी घर है, जबकि बाकी हिस्सा एक वर्ल्ड क्लास म्यूजियम है। इस पैलेस का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इसका जो दरबार हॉल है, और इस हॉल की छत पर सोने की 560 यानी कि 560 किलो की बारीक जो एक बनावट है, कार्विंग जो है वो की गई है, और सीलिंग पर लटक रहे हैं पूरे एशिया के सबसे बड़े शैंडेलियर्स यानी कि आकर झूमर, जिनका वजन कुछ 3.5 टन है, 350 टन है। कहते हैं कि इन झूमर को टांगने से पहले 8 हाथियों को छत पर चढ़ाकर टेस्ट किया गया था कि छत का जो वजन है वो ये झेल भी सकते हैं, कि ये जो झूमर है वो झेल भी सकते हैं नहीं तो हाथियों को चढ़ा के 8 हाथियों को चढ़ाकर जो है वो देखा गया था ये छत टिक भी सकती है या नहीं। और डाइनिंग हॉल में एक सॉलिड चांदी की ट्रेन है जो डिनर टेबल पर ट्रैक पर जो है उसके चलकर गेस्ट को आगे ड्राई फ्रूट्स, उनके आगे ड्राई फ्रूट्स और जो वहां पर उस टाइम पर सिगार्स होते थे वो सर्व करती थी। और ये ग्रैंड पैलेस देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और आप हैरान रह जाएंगे। ये होते हैं राजा रजवाड़ों के, जो देखिए उनके जो ठाट होते हैं ना वो आपको दिखेंगे वहां पर। चलिए एक छोटा सा मैं ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ, हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। सुबह का नाश्ता अगर कचौड़ी और जलेबी के साथ हो तो दिन अपने आप खुशनुमा हो जाता है। और थोड़ी पेट पूजा की बात कर ली जाए, बड़ी देर से घूम रहे हैं हम ग्वालियर का स्ट्रीट फूड जो है वो एकदम मजेदार है, क्रंची होता है। यहाँ सुबह की शुरुआत होती है, यहाँ की जो देखिए पूरी होती है और यहाँ की जो सब्जी होती है, आलू पूड़ी की जो सब्जी हो गई वो बहुत ही कमाल होती है। बिड़ई की एक तरह की उड़द दाल की जो है वो स्टफ्ड फूली हुई कचौड़ी होती है, और मैं आपको बता दूं इसे जो है वो तीखी होती है, इसका थोड़ा सा टेस्ट जो फ्लेवर तीखा होता है। मसालेदार हींग वाली आलू वाली जो सब्जी होती है रसेदार सब्जी के साथ, और साथ ही दही के साथ इसे परोसा जाता है, और उसके बाद गरम गरम रस से भरी हुई जलेबी या इमरती खाना ये मैंडेटरी होता है। और अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो ग्वालियर और नियर बाय मोरेना के जो वर्ल्ड फेमस गज्जक है, तिल और गुड़ की या चीनी की बनी जो फ्लेकी मिठाई है यानी कि जो गज्जक है, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब आप यहाँ आएंगे नया बाज़ार में खड़े होकर, जब गरम गरम आप खाएंगे यहाँ की बेड़मी यानी कि बिड़ाई और यहाँ की जो पूड़ी और आलू की सब्जी है कचौड़ी है, ये खाएंगे मज़ेदार, मतलब मज़ा ही आ जाएगा। हींग और देसी घी का स्वाद कमाल रहता है, और भाई मैंने भी एक बार ट्राई किया था, ज़ुबान पर ना ये बोलते बोलते भी स्वाद आ रहा है, इतनी टेस्टी। ग्वालियर का खाना सिंपल है पर इसमें जो देसी गर्माहट है वो आप हमेशा आपके जो है जुबान पे रहेगा, याद आपको रहेगा, इतनी कमाल ये लगती है। चलिए एक छोटा सा मैं ब्रेक लेती हूँ, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे, बता दो उस वक्त मैं कहां था, बता दो उस वक्त तू कहां थी।

तुम्हारी लौ को पकड़ के जलने की आरजू में जब अपने ही आप से लिपट के सुलग रहा था, पता तो उस वक्त मैं कहां था, पता तो उस वक्त तू कहां थी।

वेलकम बैक रेडियो हमारे रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ सफरनामा. सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें. और आज आपको लेके आई हूँ एक बहुत ही खास जगह. ये जगह है, बहुत ही खूबसूरत शहर है ग्वालियर. जी हाँ, ग्वालियर फोर्ट के सबसे, देखिए अगर हम बेस की बात करें तो बड़े खूबसूरत बेस की बात करें तो बेस पर बना है एक और खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत महल, गुजरी महल. और इसे राजा मान सिंह तोमर ने अपनी जो गुजर रानी है उनके लिए जो है वो बनवाया था. मृगनयनी उनका नाम था, मृगनयनी के प्रेम में ये बनवाया था. कहानी है कि रानी मृगनयनी ने राजा से शादी की और इस शादी के लिए एक शर्त रखी थी कि उन्हें अपने गांव राय का जो पानी है वो पीने के लिए चाहिए. और राजा ने उनके लिए एक अलग महल बनवाया और अंडरग्राउंड पाइपलाइन से उनके गांव से राय रिवर का जो पानी है वो सीधा इस महल तक मंगवाया. आज ये महल एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है जहां 2nd century BC की मशहूर शालभांजिका की जो मूर्ति है वो रखी गई है. और गुजरी महल हमें बताता है कि ग्वालियर की मिट्टी में सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि एक गहरी प्रेम कहानी भी बसी हुई है. चलिए इसी के साथ यहाँ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. Feel good? Feel good.

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहा मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। आज इस प्रोग्राम में आपको एक बड़ी खास जगह लेकर के आई हूँ और ये जगह है ग्वालियर। पत्थरों पर उकेरी गई कलाकारी बताती है कि नाम भले ही बदल जाए पर आस्था हमेशा वही रहती है। ग्वालियर फोर्ट के ऊपर दो बहुत ही प्राचीन और खूबसूरत मंदिर खड़े हैं जिन्हें लोग जो है वो बोलचाल की भाषा में सास बहु टेम्पल कहते हैं। असल में इसका असली नाम जो है वो है सहस्त्र बहु टेम्पल, भगवान विष्णु का हजार भुजाओं वाला रूप। 11th सेंचुरी में बने इन मंदिरों में एक जो है वो बड़ा मंदिर राजा की पत्नी यानी कि उनकी सास के लिए था और छोटा मंदिर बहू के लिए बना था और इसीलिए वक्त के साथ साथ इसका नाम सास बहु मंदिर पड़ गया। और इन मंदिरों की छत और पिलर्स पर पत्थरों को इतनी बारीकी से काट कर डिजाइन बनाया गया है कि बिना किसी सीमेंट के लिए, देखिए अगर सीमेंट के ये हजार साल के वैसे ही खड़े हैं तो ये तो बहुत ही गजब की बात है। यहाँ बैठकर जब ठंडी पहाड़ी हवा आपको जो है लगेगी या छूती है तो पुराने जमाने की कारीगरों के हुनर के आगे सर अपने आप झुक ही जाता है। इसी के साथ साथ एक और खास बात मैं आपको बता दूं ग्वालियर की, ग्वालियर फोर्ट की चढ़ाई पर चलते वक्त गोपाचल पर्वत पर पहाड़ के पत्थरों को काट कर बनाई गई है विशाल जैन तीर्थंकरा रॉक स्कल्पचर्स। ये लगभग 15 सेंचुरी में तोमर राजाओं के टाइम बनी थी। यहाँ भगवान पार्श्वनाथ की एक विशाल 57 फुट ऊंची एक जो है वो पद्मासना मुद्रा वाली एक मूर्ति है जो एक सिंगल चट्टान के से बनी हुई है, उसे तराशी गई है। मुगल्स के टाइम ने, अगर उस टाइम की बात की जाए तो इन मूर्तियों को डैमेज करने की कोशिश हुई थी पर इनका जो अस्तित्व है आज भी पहाड़ के सीने पर शान से खड़ा है। इन विशाल जो शांत चेहरों के आगे खड़े होकर आपको एक अजीब सा सन्नाटा और सुकून भी साथ में महसूस होता है जो आपके दिमाग के सारे शोर को शांत कर देता है। चलिए इसी के साथ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाते हो हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। आज लेकर के आई हूँ आपको बड़ी खूबसूरत सी जगह शहर में, वो है ग्वालियर। ग्वालियर के मुरार एरिया में स्थित है एक मॉडर्न पर बहुत ही शानदार मंदिर, सन टेम्पल यानी कि सूर्य मंदिर। इसे मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट जीडी बिरला ने 1988 में बनवाया था और ये उड़ीसा के फेमस कोणार्क सन टेम्पल का डिजाइन से इंस्पायर है। और जो लाल सैंडस्टोन है और साथ ही अंदर सफेद मार्बल से ये मंदिर जो है वो बनाया गया है। इस विशाल रथ के शेप में है जिसमें 7 घोड़े हैं और 24 पहिए हैं। मंदिर के चारों तरफ हरा भरा बगीचा है जो एकदम साफ सुथरा है और शांत है। सुबह सनराइज के वक्त जब सूरज की रोशनी इस लाल मंदिर पर पड़ती है तो इसका नजारा देखने लायक होता है। यह मंदिर ग्वालियर के मॉडर्न आर्किटेक्चर का जेम में गिना जाता है। इनफैक्ट ग्वालियर का इतिहास 1857 की क्रांति के बिना अधूरा है। फूलबाग एरिया में स्थित है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। ये वही ऐतिहासिक स्थल है जहां ब्रिटिश आर्मी से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी आखिरी सांसें जो है वो ली थी और उनका अंतिम संस्कार किया गया था ताकि उनका जिस्म अंग्रेजों के हाथ ना लग सके। वहाँ उनकी घोड़े पर बैठे हुए एक विशाल ब्रोंज स्टैचू भी यहाँ पर लगा हुआ है और अमर ज्योति एक जलती रहती है। और सुभद्रा कुमारी चौहान की वो पंक्तियां याद आती हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ आकर हर भारतीय का दिल राष्ट्रता और सम्मान से जो है वो भर जाता है। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा. और इस सफरनामा प्रोग्राम में बहुत सारी बातें अगर आपसे कर रही हूँ. और देखिए, अगर आपको फोर्ट और महलों के बाद थोड़ा नेचर और वाटर साइड पीस चाहिए तो शहर के लगभग 20 किलोमीटर दूर निकल जाए, यहाँ पर जो है वो है टिगरा डैम. ये जो है वो एक संक नदी पर बना एक विशाल डैम है जहाँ का पानी पूरे ग्वालियर शहर की प्यास बुझाता है. यहाँ का नज़ारा बहुत ही ज्यादा देखिए कमाल है. चारों तरफ छोटे

बाजार है, बहुत ही ज्यादा फेमस है। और मैं आपको बता दूं, महाराज जो बड़ा पर जो विक्टोरियन रोमन और साथ ही मराठा आर्किटेक्चर वाली 7 हिस्टोरिक बिल्डिंग्स एक साथ खड़ी हैं, जो देखने में बहुत सुंदर लगती है। यहाँ आपको मध्य प्रदेश की वर्ल्ड फेमस चंदेरी और यहाँ पर जो है वो महेश्वरी सिल्क सारीज, दुपट्टा और ट्रेडिशनल हैंडलूम कपड़े यहाँ आपको मिल जाएंगे। और साथ ही मोरेना की मशहूर गज्जक और चिक्की के डब्बा भी आप जरूर यहाँ से पैक कराना मत भूलिएगा, क्योंकि लोकल शॉपकीपर से बात करना और उनका फ्रेंडली अंदाज आपको बहुत पसंद आएगा, तो आप लिए बिना वैसे भी नहीं रह पाएंगे, जरूर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ वक्त जो है ये हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा. सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें. इसी के साथ वक्त जो है ये हो चला आपसे इजाजत लेने का. आज हमने ग्वालियर की बहुत सारी बातें करी, यहाँ की महलों की बातें करी हैं, यहाँ के खाने की बातें करी हैं, घूमने की, यहाँ की हिस्ट्री की, हर एक पहलू पे हमने बात करी है. तो आप भी ग्वालियर ज़रूर जाइए और यहाँ जाकर ना मतलब बस लुत्फ़ उठाइए, बड़ी खूबसूरत सी जगह है, ज़रूर देखिए, देखने लायक है. चलिए इसी के साथ वक्त जो है ये हो चला है आपसे इजाजत लेने का. तो मुझे दीजिए इजाजत और आपसे मिलती हूँ कल, होंगी ढेर सारी बातें. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम ये मेरी लाइफ में और मैं हूं प्रांका आपके साथ और ये प्रोग्राम जहां मैं आप लोगों के पास रहती हूं 1 बजे से 3 बजे तक। जी हां, और ये वक्त होता है जहां हम ढेर सारी बातें करते हैं और आज आपके लिए भाई बहुत कुछ लेकर के आई हूँ क्योंकि आज कुछ ऐसा होने वाला है जिसको सुनकर आपको हैरानी भी होगी लेकिन कई सारे काम आपके आसान भी हो जाएंगे। अब वो कैसे और क्या लाई हूँ ये आपको मैं बताऊँगी थोड़ी सी देर में। फिलहाल आप मुझे बताइए कैसे हैं आप, क्या हालचाल, और मैसेज आप कीजिए हमें 8010781078 हमारा नंबर है। इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कोई बात आपको शेयर करनी है या कोई मैसेज आप बाकी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं या कोई गाना आपको सुनना है, कोई सॉन्ग आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए पहले एक गाना इंजॉय करते हैं, उसके बाद आपको बताऊँगी कि आज के प्रोग्राम में क्या है खास। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूं प्रांका आपके साथ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ. और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ कुछ बेहद इंटरेस्टिंग हैक्स एंड फैक्ट्स. जी हाँ, जिसको सुनकर आपको मज़ा भी बहुत आएगा और साथ ही आपके कामों में हेल्प आपको मिल जाएगी. जी हाँ, क्योंकि आजकल हम हैक्स से काफ़ी हैक्स होते हैं जिनको हम अपने घर में ट्राई करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में ट्राई करते हैं, अपने काम की जगह पर ट्राई करते हैं, जिस वजह से काम हमारा काफ़ी आसान हो जाता है. और आप सभी जानते हैं कि मैं ये आप लोगों के लिए बड़े चुन चुन कर हैक्स को लेकर के आती हूँ, फैक्ट्स को आपको बताती हूँ. तो चलिए आज के प्रोग्राम में भी कुछ ऐसा ही हम करने वाले हैं. और उससे पहले आपका मैं दोबारा चाहूँगी कि साथ जो है वो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप जब हमें मैसेज करते हो, अपनी बातें जब हम तक पहुँचाते हो, तो एक तो हमें बड़ा अच्छा लगता है और दूसरा ये कहूँगी कि आपकी बातें कई बार बहुत ज़्यादा एक आइडिया या मोटिवेशन दे जाती हैं और ये बहुत अच्छा लगता है हमें देख करके. और कितने मैसेज ऐसे होते हैं जो हम बाकी लोगों को भी आपके मैसेज बताते हैं. तो बस यही साथ आप बनाए रखें रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ. नंबर है हमारा 8010781078. तो चलिए, हैक्स तो आपको बताऊँगी, लेकिन अभी क्योंकि वक्त हो गया है एक और बहुत ही छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, तो आपको सुनाती हूँ दो बहुत ही प्यारे प्यारे से गाने. रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रियंका आपके

रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूं प्रियंका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। और चलिए मैं आपको बताती हूँ कुछ बेहद इंटरेस्टिंग हैक्स। अच्छा, आजकल ना घबराहट हमें ज़्यादा होने लगती है ना, क्योंकि इतना काम का प्रेशर और उस प्रेशर के चलते जब हम चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हैं या समझ नहीं आता कि इस काम को फिक्स कैसे करना है या उसे हैंडल कैसे करना है, तो अक्सर घबराहट का सामना हमें करना पड़ता है ना। और घबराहट किसी भी काम में हो सकती है। कई बार हमें किसी की बात नहीं अच्छी लगी, हमें घबराहट शुरू हो गई, या कोई काम हम उसे कर सकते हैं, कैपेबल है, बट इतना काम के प्रेशर के चलते अगर वो चीज़ नहीं हो पा रही है तब घबराहट हो जाती है, या कोई हमें कुछ कह दे तब घबराहट हो जाती है। घबराहट का कोई एक रीज़न नहीं है, कई सारी चीज़ों पर हम रिएक्ट कर जाते हैं और उस वजह से एक घबराहट का हमें सामना करना पड़ता है। और ख़ास तौर से उन लोगों के साथ में होता है जो अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं कि हाँ हम ये चीज़ कर सकते हैं, हाँ हम इस चीज़ के लिए कैपेबल हैं, या और भी बहुत कुछ। ऐसे लोग जो बोल नहीं पाते हैं, अपनी बातें रख नहीं पाते हैं, उनके साथ घबराहट का जो ये मामला है वो और ज़्यादा देखने में आता है। तो मैं तो आपसे कहूँगी कि आप घबराइए नहीं, क्योंकि घबरा करके आप अपना काम खुद खराब कर रहे हैं और आप अपने आप को कहीं ना कहीं आप डाउन समझ रहे हैं, इस वजह से घबरा रहे हैं। नहीं, आप घबराहट का रीज़न खुद को समझिए ही नहीं, आप बल्कि ये सोचिए कि इस काम को मैं कर सकती हूँ, और बोलने के बजाय इस काम को आप करके दिखाइए। तो देखिए, किसी भी तरह से घबराहट हो सकती है, लेकिन अब अगर आप चाहकर भी, मतलब बहुत चाहते हो कि घबराहट ना हो या कम हो जाए, उसके बाद भी अगर घबराहट कम नहीं हो पाती है, तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ जिससे आपकी जो घबराहट है ना उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। अच्छा, किसी काम को करने से आपको घबराहट हो रही है तो उस काम को करते वक्त च्युइंगम चबाए, जी हाँ, घबराहट कम हो जाएगी। और पता है ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब हम घबरा रहे होते हैं या किसी चीज़ को लेके परेशान होते हैं और अचानक से हमारा ध्यान भटक जाए, यानी किसी दूसरे काम में लग जाए, तो हमारा पूरा ध्यान उस दूसरे काम पर चला जाता है ना। और यही चीज़ इस केस में आपको लागू करनी है कि आपको अपना ध्यान च्युइंगम चबाने में भटकाना है, और जब आप ऐसे करोगे तो घबराहट जो है वो चली जाएगी, कम हो जाएगी। और इसको आप करके देखिएगा। आप च्युइंगम अपने पास में रखें और ये जब भी आप करें उसके बाद आपको कैसा महसूस हुआ, आप क्या फील कर रहे हैं, या अगर आप नर्वस हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो कितना हो रहे हैं, कितना परसेंट आप फील कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप मुझसे ज़रूर बात करना इस पर। और नंबर हमारा है 8010781078। आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए, अब आपको कुछ और भी फैक्ट्स हैं जो मैं बताऊंगी और साथ के साथ सुना रही हूँ गाने, तो चलिए अगला गाना एंजॉय करते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ।

0: अपने आप को मजबूत नहीं समझते हैं या अपने आप को बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट करना वो नहीं समझ पाते हैं, उनको नहीं आता है, और घबराहट, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रही थी कि घबराहट लोगों को ज़्यादा होने लगती है, अपने ऊपर बिलीव नहीं कर पाते हैं, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं जो ये करते करते थक चुके हैं, बहुत सारे जिसने जैसा बोला कि आप ऐसे करो वैसे करो, आप वही चीज़ें कर रहे हैं लेकिन आपको कोई भी 1% भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मतलब आप जैसे पहले घबराते थे, जैसे पहले अपने आप को आप बिलीव नहीं कर पाते थे, ऐसे ही आज भी अगर आपके साथ में चल रहा है तो मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज बताती हूँ जिससे आप कुछ ही दिन में मेंटली स्ट्रांग हो पाएंगे और अपने आप पर बिलीव कर पाएंगे। और सच में इस चीज़ पर आप बिलीव करो, ये वाकई में काम करती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। आपको शीशे के सामने खड़े हो जाना है और खड़े होकर खुद से बात करनी है। जितना हो सकता है आप बात कीजिए कुछ अच्छी चीज़ों पर, और जो कमियां हैं उसको आप अपने से शेयर करें, मतलब आप बोलें, लेकिन उसको फिक्स मत कीजिए, उसको ठीक कैसे करना है उस पर बात करें। यानी कि अपने आप से अच्छी बातें करनी है, अपने अंदर किसी भी तरह की कोई कमी मत निकालिए, ना ही ढूंढने की कोशिश कीजिए। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि भाई ये चीज़ मुझे लगता है ठीक करने की ज़रूरत है, तो वो भी आईने के सामने रखिए। मतलब आप ही समझ लीजिए, आईने के उस तरफ भी आप हैं और इस तरफ भी आप हैं, और इस तरफ जो है जिसमें काफ़ी सारी कमियाँ भी हैं, लेकिन उस तरफ जो खड़ा है जो आप ही हैं और आप बहुत स्ट्रांग हैं। पता है, आप ये रोज़ करोगे ना, आप यकीन मानिए कि आप कुछ ही दिन में मेंटली स्ट्रांग हो पाएंगे, वो मजबूत आप हो पाएंगे। और फिर एक प्रेजेंटेशन जो होती है ना, वो बहुत ऑसम होती है, आपको लोग ना केवल पसंद करेंगे बल्कि बात करना चाहेंगे। और इस बारे में तो मैं अक्सर बात करती भी हूँ आपसे कि शीशे के सामने खड़े होकर बात कीजिए, आईने को अपना बनाइए, आप शीशे से प्यार कीजिए क्योंकि वही आपको मजबूत बनाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जी हाँ, तो ये आप करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो ये जब भी आप करें और कोई अगर चेंज आया है आपकी लाइफ में तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। नंबर हमारा है 8010781078। आप सुनाती हूँ आपको एक गाना जो कि आईना से ही जुड़ा है, तो आइए इंजॉय करते हैं उस गाने को। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ प्रांका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।
1: में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

मैं हूं प्रांका आपके साथ रेडियो मानव वैष्णव 107.8 एफएम पर. प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ. और आज के प्रोग्राम में ना केवल आपको हैक्स बता रही हूं बल्कि फैक्ट्स पर भी आज बात कर रही हूं. और अगला जो फैक्ट मैं आपको बता रही हूं ना, ये आप वाकिफ होंगे. अच्छा, कभी ऐसे होता है कि आपको सिर्फ जागने का मन करता है और आप मन ही मन खुश हैं, आप जाग रहे हैं, आपको नींद नहीं आएगी. पता है ये सच्ची में होता है. जब हम खुश होते हैं ना तो नींद कम हो जाती है, यानी कि कम नींद में भी काम चल जाता है. और अगर आप मन से खुश हो, मान लीजिए कोई चीज़ हुई या फिर आपको कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिली या कुछ ऐसा जिसका आप बहुत टाइम से, बहुत सालों से वेट कर रहे थे और वो आपकी लाइफ में हो गया. अब देखो, खुशियों के तो कई सारे ज़रिए हो सकते हैं ना, तो हर किसी के लाइफ में एक ना एक कुछ ना कुछ ऐसा ज़रिया होता है जिससे हमें खुशी मिलती है, राइट. तो ऐसा जब होता है ना तो कम नींद आती है, और जब उसके बाद उठते हैं सो करके तब भी हम बहुत रिफ्रेश होते हैं. इसीलिए कहते हैं कि छोटी छोटी सी चीज़ों में खुशियां देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये खुशियां आपको एक तो लंबा जीवन देगी और दूसरा आप ताज़ा रहेंगे, फ्रेश रहेंगे, आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, आप फिजिकली बहुत स्ट्रांग रहेंगे, आपका शरीर अच्छा रहेगा, आप अच्छे गुड लुकिंग दिखाई देंगे. क्योंकि जिसका चेहरा खिलखिलाता हुआ होता है या बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति खुश होता है ना, तो उसका चेहरा ही बता देता है कि ये अंदर से कितना खुश है. इसलिए खुशियाँ आप बाहर मत ढूंढिए बल्कि अंदर खुशियाँ ढूंढिए. और अगर खुश होना है तो बाहर लोगों को देख करके या उनकी बातों से खुश मत होइए बल्कि अंदर की जो खुशी है उसको महसूस कीजिए. तो इसलिए आप ये भूल जाइए कि अगर कोई मेरी तारीफ़ करेगा तो मैं खुश होंगी, अगर कोई मेरे को अच्छा बोलेगा तो मैं खुश होंगी. नहीं, अंदर जो हमारे खुशियां हैं जिसको हम बहुत ज़्यादा प्रेज़ भी करते हैं और उसको हम मानते हैं, तो उस चीज़ से ही आप आगे बढ़ें और उसको लेकर के खुश रहें, ना कि दूसरों की बातों से, राइट. तो ये वाली चीज़ जो कि वाकई में बड़ी काम की, और ये तो हम सभी जानते भी हैं और मानते भी हैं कि हाँ ऐसा होता है. तो अगर आप भी इसे फील करना चाहते हो ना, तो फील करने के लिए आप पहले खुद को फील करना सीखें, आप अपनी खुशियों को फील करना सीखें, फिर देखें क्या कमाल लगेगा आपको. और मैं तो कहूँगी कि ये दिन आपकी लाइफ में जल्द से जल्द आए. तो बस आप फील कीजिए, खुश रहिए, रेडियो मानव रचना को सुनिए, गानों को एंजॉय कीजिए. और हाँ, मैसेज करना ना भूलिएगा. रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूँ प्रांका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ.

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गे मेरी लाइफ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और मैं हूं प्रांका आपके साथ. और आज मैं आपको कुछ हैक्स बता रही हूं, कुछ फैक्ट्स पे बातें कर रहे हैं और अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताती हूं जिससे आपको फ़ायदा हो जाएगा. जी हां, बिल्कुल कह रही हूं कि आपको फ़ायदा होगा क्योंकि चलो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वो बात क्या है. देखो हम जब क्रेविंग को शांत करने की कोशिश करते हैं तो क्रेविंग उतनी ज़्यादा होती है. जैसे मान लो आपको पिज्ज़ा खाने का मन है और आप अपने आप को शांत करो कि नहीं, मुझे पिज्ज़ा नहीं खाना है, इसमें इतनी कैलोरीज है और ये मेरे लिए हेल्दी नहीं है. बट जितना आप खुद को रोकोगे उतनी ही क्रेविंग बढ़ती जाएगी. और एक टाइम ऐसा आता है जब एकदम से बस मिल जाए तो बस हम इंजॉय कर लें उसे, वो वाली चीज़ हो जाती है. तो यहाँ आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको फ़ोन नहीं लेना है क्योंकि फ़ोन आप लेंगे तो ऑनलाइन ऑर्डर के लिए आप ज़रूर अपने फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए फ़ोन को आप अपने पास नहीं रखेंगे. अब आप जाइए किचन में और कुछ बनाना नहीं है बल्कि आपको पीना है 2 गिलास पानी. जी हाँ, पानी पिए और अपने आप को थोड़ा सा होल्ड करें और अपने आप से ये कहें कि पानी पीने के 10 मिनट बाद मैं डिसाइड करूँगा या करूँगी कि मुझे पिज्ज़ा खाना है या नहीं. पता है क्या होगा इससे? इससे आपकी क्रेविंग शांत हो जाएगी. जी हाँ, और ये बिल्कुल सही कह रही हूँ, आप करके देखिए, बहुत मज़ा आएगा आपको. आप कितने सारे ऐसे अनहेल्दी खाने से बच जाएंगे. पता है क्या होता है, कई बार ना ये जो भूख होती है ये खाने की नहीं पानी की भी होती है. इस वजह से और ज़्यादातर लोग जो हैं, कितने सारे लोग हैं जो इस वक्त मुझे सुन रहे होंगे जो यही सोच रहे होंगे कि हाँ पानी तो हम भी ज़्यादा नहीं पी पाते हैं, लेकिन खाना जो है वो हम टाइम टू टाइम लेते हैं. बट बॉडी को पानी भी तो चाहिए होता है ना, तो उसकी नीड जब उसे जो होती है तो हम पानी की भूख को खाने की भूख समझ लेते हैं और बहुत सारा खाना हम खा लेते हैं तो पेट तो भर जाता है, लेकिन पानी की कमी तो हम पूरी कर ही नहीं पाए क्योंकि हमने पानी ही नहीं पिया उतना, है ना. और फिर हम खाने के ऊपर से पानी पी करके अपने पेट को कर लेते हैं ख़राब. तो ये वाली चीज़ आपको नहीं करनी है. बल्कि जब भी आपको कुछ बाहर का उल्टा सीधा या कुछ ऐसा खाने का मन करे तो आप पहले अपने आप से पूछो कि ठीक है, अगर मैं पहले पानी पीता हूँ या पीती हूँ, उसके 10 मिनट बाद भी अगर मुझे क्रेविंग होती है देन आई विल डिसाइड कि मुझे क्या करना है. ठीक है, ये आप करोगे ना, पता है इसका एक फ़ायदा क्या होगा, 10 मिनट बाद आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि मुझे पिज्ज़ा खाना है या नहीं, क्योंकि आपको क्रेविंग होगी ही नहीं, आपका पेट पूरी तरह से फुल हो चुका होगा. और सिर्फ 2 गिलास पानी आपको पीना है, जो मीडियम साइज़ के गिलास होते हैं वो आपको पीना है. तो ये बहुत इफेक्टिव, आप इसे एक्सरसाइज कह लो या आप अपने माइंड को मैसेज देना कह लो, जो भी आप कहें, जो भी इसको आप नाम दें. लेकिन हाँ, ये एक सच बात है कि इसका फ़ायदा हर एक एक को मिलेगा. तो ये करके देखिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है ये. रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ प्रांका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ.

0: ज्वाला, समंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
1: और मैं ये कह रही हूं, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
0: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
1: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
0: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
1: तो फिर एक वादा करो।
0: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
1: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
0: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूं प्रियंका आपके साथ. और ये गाना आपने सुना ऐसे ही और बहुत ही प्यारे प्यारे से गाने जो मैं आपको इस प्रोग्राम में सुना रही हूं. तो आपका कोई पसंदीदा गाना है जिसे आप सुनना चाहते हैं रेडियो पर तो आप मैसेज कर सकते हैं. नंबर हमारा है 8010781078. आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं. आज के प्रोग्राम में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता रही हूँ, कुछ हैक्स पर हम बात कर रहे हैं और अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जिससे आपकी स्किन फ्लॉलेस हो जाएगी. जी हाँ, आपकी स्किन जो है बहुत ही चमकदार और खूबसूरत दिखने वाली है. अच्छा, एलोवेरा जेल जो है वो मुझे लगता है कि सभी के घर में मौजूद होगा ना. अब जिनके पेड़ हैं, जिन्होंने पेड़ लगा रखे एलोवेरा के, भाई वो तो बहुत ही कमाल है. क्योंकि जितना ताज़ा एलोवेरा आप इस्तेमाल करोगे उतना ही फ़ायदा हमें मिलता है. लेकिन अगर आपके पास एलोवेरा का पेड़ नहीं है, उसका पौधा नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप मार्केट से ले लीजिए. बस ध्यान रखिएगा कि एलोवेरा जेल अच्छी कंपनी का होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई कलर नहीं होना चाहिए, राइट. तो आप, मैं यहाँ एलोवेरा की क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाली हूँ हैक, वो इसी से ही जुड़ा है. अच्छा, हफ्ते में दो बार हम, जैसे क्या होता है एलोवेरा जेल को यूं ही हम अपने चेहरे पर लगा लेते हैं, है ना. और लगा करके कुछ लोग पूरी रात लगे रहने देते हैं, तो कुछ लोग एक घंटा लगाया और उसके बाद में वॉश कर लेते हैं. लेकिन अब जो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ ये शायद आपको ना पता हो. हफ्ते में दो बार अगर गर्म पानी आप करते हैं और उसमें एलोवेरा जेल डालकर चेहरे पर भाप लेते हैं तो स्किन हेल्दी और ग्लोइंग होती है और चेहरे के दाग धब्बे भी धीरे धीरे जाने लगते हैं. जी हाँ, है ना कितना इंटरेस्टिंग. क्या आपको पता था इससे पहले कि इस तरह से अगर भाप लेते हैं तो स्किन में निखार आता है? अगर नहीं पता था तो ये कई सारे लोगों को वाकई में नहीं पता था, क्योंकि ये तरीका जो है हम लोग नहीं जानते हैं. हम एलोवेरा जेल को सीधा अपने चेहरे पर अप्लाई करते हैं, है ना. लेकिन आप इस तरह से करके देखिए और गर्म पानी में आपको एलोवेरा डालना है और उसके बाद में आप भाप लीजिए और फिर जो असर है वो मुझे लगता है कि कुछ ही दिन में दिखाई दे जाएगा. तो ये जब भी आप इसको अप्लाई करें या जब भी आप इसको यूज़ करें तो उसका फीडबैक, मतलब मुझे अच्छा लगता है जब कोई फीडबैक देता ना, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है ये देख करके सुन करके. तो आप ज़रूर बताना कि कैसा लगाइए. नंबर हमारा है 8010781078. मैं हूँ प्रियंका, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ.

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और मैं हूं प्रांका आपके साथ। कुछ फैक्ट्स कुछ हैक्स आपको बता रही हूं आज के प्रोग्राम में। अच्छा, कई बार ना बिजी होना काफ़ी अच्छा भी लगता है। कभी ऐसा महसूस किया आपने, कभी ये चीज़ फील की है? वैसे तो हम सब परेशान रहते कि इतना काम है कि टाइम ही नहीं मिल पाता है, और इस काम के चलते हम तो समय ही नहीं निकाल पाते हैं बात करने का या फिर समय स्पेंड करने का, है ना। देखिए, अगर ऐसी वाली चीज़ है तो कभी कभी तो आपको वक्त निकालना ही चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिज़ी होना भी एक अच्छी चीज़ है हमारे लिए? जी हाँ, दरअसल जो ज़्यादा बिज़ी लोग होते हैं वो उन लोगों के मुकाबले जो कम बिज़ी होते हैं उससे ज़्यादा खुश होते हैं। पता है इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है क्योंकि ये लोग जब काम में बिज़ी होते हैं तो जो भी नेगेटिव चीज़ें दिमाग में आती है कि इसने हमें ऐसे बोला, मेरे साथ एक साल पहले ऐसे किसी ने मुझे गलत बोला था और मुझे अच्छा नहीं लगा था, उसने मेरे से माफ़ी क्यों नहीं मांगी, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, जो भी ऐसी चीज़ें जो हमें पसंद नहीं आई या हमारे कहीं ना कहीं वो खिलाफ थी चीज़ें, वो चाहे जितनी पुरानी हो बट हमें याद आता रहता है। और जो लोग ज़्यादा बिज़ी होते हैं उनको ये सब सोचने की ज़रूरत, क्योंकि उनके पास वक्त ही नहीं होता है कि वो ये सारी चीज़ें सोच भी पाए। एक के बाद एक काम जो है वो उसमें बिज़ी होते हैं, इसीलिए वो लोग अपने प्रेजेंट में जीते हैं और ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं क्योंकि वक्त ही नहीं मिल पाता है। इसीलिए जो मैंने आपको बताया ना कि जो ज़्यादा बिज़ी लोग होते हैं वो ज़्यादा खुश होते हैं उन लोगों के, जो लोग ज़्यादा बिज़ी नहीं होते हैं क्योंकि वो नेगेटिव चीज़ों को सोच ही नहीं पाते हैं और उनके पास टाइम ही नहीं होता है सब सोचने का। इसलिए कहते हैं कि काम करते रहो, कुछ कुछ चीज़ें लाइफ में आप करते रहो जिससे आप बिज़ी रहो। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लाइफ में एनी टाइम बिज़ी रहो कि आप अपनों को या अपने ख़ास रिश्तों को समय ही नहीं दे पा रहे हैं। ये भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे चीज़ें कमज़ोर होती हैं, रिश्ते कमज़ोर होते हैं। हाँ, समय ज़रूर दीजिए, लेकिन जब बात अपनी आती है तो अपने आप को नेगेटिव विचारों को सोचने से बचाने के लिए हमेशा बिज़ी आप रहें, तो इससे आप प्रेजेंट को जिएंगे, प्रेजेंट को एंजॉय करेंगे, और जो काम करता है वो अपने लक्ष्य को पा पाता है, है ना। तो बस ये आप करके आगे बढ़िए और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए अब इंजॉय करते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ प्रांका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर ये गाना आपने सुना और अब मैं सुनाने वाली हूँ आपको अगला गाना. मैं हूँ प्रांका और मेरे चलने का वक्त हो गया है. तो आज का प्रोग्राम यहीं तक. प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं. बताने के लिए आप मैसेज कीजिए. नंबर है हमारा 8010781078. तो चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त. आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए बाकी आगे आने वाले प्रोग्राम्स को इन्जॉय कीजिए और बने रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. मैं हूँ प्रांका और फिर मिलेंगे. तब तक के लिए बाय.

0: ए सुन रुबिया, प्यार हो गया।
1: सच?
0: प्यार हो गया क्या करें?
1: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से

हेलो एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, प्रोग्राम है कैफे क्लासिक्स और मैं हूँ इस शो की होस्ट और आप सबकी दोस्त चांदना। जी हाँ दोस्तों, लेके आ गई हूँ आपके लिए फिर से ये खास प्रोग्राम, ये खास एपिसोड जिसमें मैं आपको सुनाऊंगी बेहतरीन गाने। लेकिन उस गानों के पीछे, मतलब जब हमने उन गानों को देखा तो प्लेबैक सिंगिंग तो ऑफकोर्स सुनी, लेकिन वो किस पर फिल्माया गया, आज मैं एक अभिनेत्री के बारे में बात करने वाली हूँ। आई एम श्योर जो हमारे जेंजीज हैं इन लोगों ने ये नाम शायद कम सुना होगा, लेकिन जो थोड़े से पहले के हमारे लोग हैं वो इस नाम से भली भांति वाकिफ होंगे। तो दोस्तों आज मैं जिस अभिनेत्री के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ, जिस कलाकारा के जीवन पर आज हम प्रकाश डालेंगे, जिनके बारे में मैं आपको आज दूंगी ढेर सारी जानकारी, दोस्तों वो है नंदा जी। बहुत एक फेमस ये एक्ट्रेस रहीं और बहुत सुपरहिट फिल्म्स इन्होंने बॉलीवुड को दी। हम सभी इनके बहुत बड़े फैन थे और आज भी हैं। तो दोस्तों आज का सफर नंदा जी के नाम। नंदा जी अब हमारे बीच में नहीं है, 2014 में ये इनका शरीर शांत हुआ, लेकिन अपने काम के माध्यम से, अपने एक्टिंग के माध्यम से, अपने करियर के माध्यम से ये हमारे दिलों में हमेशा हमेशा बसी रहेंगी। तो दोस्तों आज का सफर नंदा जी के नाम। यहाँ ले रही हूँ मैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। ब्रेक के बाद आई विल बी राइट बैक। जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम पर दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम है कैफे क्लासिक्स और आज का ये सफर एक खूबसूरत सी अभिनेत्री के नाम। जी हाँ, वो अभिनेत्री जो कि बहुत समय तक बॉलीवुड में छाई रही। दोस्तों आज मैं बात कर रही हूँ नंदा जी की। नंदा जी जिनका पूरा नाम था नंदिनी कर्नाटकी और ये भारतीय फिल्म की अभिनेत्री है, ये तो हम सब जानते ही हैं। भारतीय से मेरा कहने का मतलब है कि हिंदी फिल्मों में तो हमने देखा ही है लेकिन ये मराठी फिल्मों में भी दिखाई दी और हमारे भारतीय सिनेमा के बेहतरीन अभिनेत्रियों में से दोस्तों नंदा जी का नाम लिस्ट में काफ़ी ऊपर आता है। ऑलमोस्ट 30 साल तक ये बॉलीवुड में छाई रही। छोटी बहन, धूल का फूल, भाभी, काला बाजार, कानून, हम दोनों, ये एक बहुत बहुत अच्छी पिक्चर थी ये। जब जब फूल खिले, गुमनाम, इत्तेफाक, द ट्रेन, प्रेम रोग, इन सभी में इन्होंने बहुत अच्छा अभिनय किया। फिल्म्स इनकी बहुत आई लेकिन जो मैंने अभी ये नाम गिनाए ये मतलब बहुत एक ही सिलेक्टेड मूवीज़ थी। तो दोस्तों नंदा जी के बारे में मैं आपसे करूंगी बहुत सारी बातें क्योंकि नंदा जी की ज़िंदगी बहुत हमें मोटिवेट भी करती है और एक इनका नेचर ये भी था कि बहुत हेल्पिंग थी। इन्होंने कई एक्टर और एक्ट्रेसेस के करियर शुरुआत करने में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा करी। तो करेंगे आपसे ढेर सारी बातें, फिलहाल ये छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। ब्रेक के बाद आई विल बी राइट बैक। जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील Live.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM में। दोस्तों आप सुन रहे प्रोग्राम कैफे क्लासिक्स और एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स और इस प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेत्री नंदा जी की, जिनको हम नंदा जी प्यार से कहते थे या फिर हम ये मान लें कि नंदा नाम इनका फिल्मी करियर का था। इनका असली नाम था नंदिनी कर्नाटकी। 8 जनवरी 1939 को इनका जन्म हुआ और महाराष्ट्रियन शो बिजनेस परिवार में से ताल्लुक़ रखती हैं। इनके पिताजी विनायक दामोदर कर्नाटकी के घर में इनका जन्म हुआ और सफल मराठी अभिनेता और निर्माता निर्देश थे इनके पिताजी। तो ये जो काम है इनको, ये एकदम से इनको सडन नहीं मिला, ये इनके ब्लड में ही था। और मास्टर विनायक भारतीय फिल्म उद्योग में कई हस्तियों से उनके कनेक्शंस थे। और जो उनके भाई थे यानी कि इनके चाचा वासुदेव कर्नाटकी, वो एक छायाकार थे। जबकि प्रसिद्ध फिल्म हस्तियां बाबूराव पिंडारकर, भालजी पिंडारकर, ये सब जो है ये भी इनके फैमिली का ही हिस्सा हैं। महान फिल्म निर्देशक वी शांताराम से भी ये रिलेटेड थी क्योंकि वो इनके मामा हैं। और मास्टर विनायक मंगेशकर परिवार के अच्छे दोस्त थे और उन्होंने लता मंगेशकर को पहली मंगला गौर फिल्म उद्योग में भी पेश किया था। तो इन सब बातों से हमें पता चलता है कि नंदा जी का जो फैमिली बैकग्राउंड था, बहुत स्ट्रांगली वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी। और आप समझ लीजिए कि ये जो सारे उनके अंदर ये टैलेंट जो था, वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया था। और 1947 में इनकी पिताजी की मृत्यु हो गई, तब नंदा जी मात्र 7 साल की थी। और परिवार को बहुत मुश्किल समय का सामना करना पड़ा क्योंकि जो एक ब्रेडविनर थे वो ही नहीं रहे, तो लिहाजन ये बाल कलाकार बन गई। एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट इन्होंने काम किया और 1950 के दशक की शुरुआत की फिल्मों में इन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर अपने परिवार की मदद करी। और फिल्मों में क्योंकि जब इन्होंने काम शुरू किया तो हालांकि जाहिर सी बात है कि पढ़ाई पे तो असर हुआ ही, तो थोड़ा पढ़ाई से भी ये दूरी इनकी बन गई। बट ये है कि क्योंकि ये स्कूल नहीं जा पाती थी तो कुछ टीचर्स ने इनको घर पर आकर ही इनको पढ़ाया और इनकी पढ़ाई जो है उस हिसाब से फिर चलती रही। और फिल्मों में करियर बनाकर इन्होंने अपने 6 भाई बहनों का उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करी और उनको एजुकेशन भी इन्होंने दिलवाई। सो हैट्स ऑफ टू यू नंदा जी, आपने अपना करियर भी बनाया और अपने भाई बहनों का भी। बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब हम ऐसे ही किसी की ज़िंदगी को हम जब खंगालते हैं। हम लोग को शोबिज़ में जब हम देखते हैं हमको लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा है, लेकिन देखिए जब हम उसकी गहराई में जाते हैं तो किस इंसान ने, किस कलाकार ने कितनी मेहनत करी है, ये हमें पता चलता है। तो यहाँ बातें हो गई ढेर सारी, आइए लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं तुरंत वापस आऊँगी, करेंगे और ढेर सारी बातें नंदा जी के बारे में। फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम पर। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा कैफे क्लासिक्स, मैं उस शो की होस्ट और आप सबकी प्यारी प्यारी दोस्त। और आज के प्रोग्राम में मैं बात कर रही हूँ मशहूर फिल्म अभिनेत्री नंदा जी की, जिनका जन्म जो है वो 1939 का है और बहुत ही छोटी उम्र में जिन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों नंदा जी ने 1948 में मंदिर से अपनी शुरुआत करी। सिल्वर स्क्रीन पर जब उन्होंने पहली बार बेबी नंदा के रूप में काम किया तो लोगों ने उनको बहुत सराहा भी, बहुत पहचान उनको मिली। मंदिर, जग्गू और अंगारे जैसी फिल्मों में उन्होंने 1948 से लेकर 56 तक, मतलब अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो गुड 8 ईयर्स इन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। और नंदा जी के जो चाचा थे, जिनके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, वो एक बहुत अच्छे निर्माता निर्देशक थे। शांताराम जी भी इनके रिलेटिव हैं। तो इन सब के वजह से इनको, मतलब थोड़ा सा ये तो कह सकते हैं कि थोड़ा इनको काम मिलने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। और इनको एक बड़ा ब्रेक मिला तूफ़ान और दिया मूवी में, जो कि आई 1956 में। ये जो तूफ़ान और दिया है, ये एक स्टोरी थी अनाथ भाई बहन की, जो दुखद असफलताओं की वजह से त्रस्त हो जाते हैं, जिसमें वो लड़की अपनी आईसाइट तक खो देती है। तो इसमें इनकी जो भूमिका है वो बहुत ही अच्छी रही। और उसके बाद 1957 में आई मूवी भाभी, जिसमें इन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड भी इनको मिला। और वो इनका, मतलब इनका पहला नामांकन था और बहुत ही अच्छा इन्होंने काम किया। 1960 में आई काला बाजार, और उसके बाद में शांताराम द्वारा निर्देशित एक और मूवी आई थी, कुछ मतलब मराठी मूवीज़ में, जिसमें राजा परांजपे और कुलदेवत ऐसे करके जो मूवीज़ आई, इसमें इन्होंने काम किया। और इन्होंने एक मराठी पिक्चर में एक बहन की भूमिका के लिए नंदा जी को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा भी सम्मानित किया गया। इन शॉर्ट मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि काम बहुत किया, मेहनत बहुत की। थोड़ा सा पॉजिटिव इनका पास ये चीज़ थी कि फिल्म किसे जुड़े हुए थे इनके परिवार के बहुत सारे लोग, लेकिन जैसे कि हमने इनकी कहानी जब खंगाली तो पता चला कि पिताजी जो है वो बहुत जल्दी चले गए, तो काफ़ी जल्दी इन पर फाइनेंशियल बर्डन पड़ गया। लेकिन जो इनको उससे एक्सपीरियंस मिला ना, मतलब एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट 8 साल काम करना, फिर आगे आई तो फिर और अच्छे अच्छे काम करे, तो वो सब इनका जो इनका एक शेपिंग ऑफ इनका फिल्म एक्ट्रेस एज ए, मतलब करियर उनका बहुत अच्छा शेप हुआ और ये काफ़ी एक सफल अभिनेत्री रहीं। नंदा जी के बारे में हम करेंगे और ढेर सारी बातें। फिलहाल ले रही हूँ आप एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। ब्रेक के बाद दोस्तों मैं जल्दी से आ जाऊँगी, आप भी जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम पर दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स और दोस्तों आज का ये हमारा शो हमने समर्पित किया है मशहूर फिल्म अभिनेत्री नंदा जी को। दोस्तों नंदा जी का जो फिल्मी करियर है वो काफी बड़ा रहा, ऑलमोस्ट 30 साल तक उन्होंने काम किया, जिसमें 8 साल तो उन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट बेबी नंदा के नाम से उन्होंने काम किया। हिंदी ही नहीं मराठी फिल्म जगत में भी इन्होंने काफ़ी अपना नाम बनाया, खुद भी काम किया, अपने परिवार वालों को फाइनेंशियल सपोर्ट भी दी। और एक जो इनकी बहुत अच्छी बात थी दोस्तों, ये नए लोगों को बहुत एनकरेजमेंट देती थी। यहाँ तक कहा जाता है कि शशि कपूर जी, हालांकि शशि कपूर जी तो खुद ही राज कपूर से वो संबंध रखते थे, उनके ब्रदर थे, तो उनको ऐसे कोई बहुत ज़्यादा पहचान की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कहा जाता है कि शशि कपूर जी की शुरुआती पिक्चरें नहीं चल रही थी तो उस ज़माने में उस टाइम पर नंदा जी ने उनके साथ फिल्में साइन करी। हालाँकि शुरू की दो पिक्चरें चार दीवारी और मेहंदी लगी मेरे हाथ, ये दोनों पिक्चरें नहीं चली, लेकिन उसके बाद की सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा सफल रहीं। और अपने शुरुआती करियर में जब उन्होंने एकल मुख्य नायक के रूप में उन्होंने जब काम किया तो सभी फिल्में उनकी फ्लॉप रही, लेकिन उसके बाद वो चल निकले। और उसके बाद में उन्होंने शशि कपूर जी ने हॉलीवुड में भी काम किया, कई मूवीज़ में काम किया, जिसमें कुछ मूवीज़ जो हैं उनकी बहुत अच्छी चली। और जब जब फूल खिले जो 1965 में आई, उसमें नंदा जी ने पहली बार पश्चिमी भूमिका निभाई और इससे उनकी छवि को बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं बूस्टअप मिला। और 65 से लेकर 70 की अवधि में शशि नंदा जी की जोड़ी बहुत ज़्यादा सफल रही। और फिल्मों में मोहब्बत इन्हें कहते हैं, जब जब फूल खिले, नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे, राजा साहब, रूठा ना करो। 1970 के दशक के शुरुआत में नंदा जी ने द ट्रेन और ऐसी कई मूवीज़ करी और ये सभी मूवीज़ बहुत ज़्यादा सफल रही। तो दोस्तों करियर इनका बहुत लंबा है। थोड़ा सा मैं आपको और बताती हूँ कि इनके एक और जो इनकी हिट फिल्म आई वो थी गुमनाम, आपको याद होगा वो गाना।

जी हाँ जी, एक ये बहुत ही मल्टी स्टारर मूवी थी गुमनाम, जिसमें नंदा जी भी थी, और ये पिक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा चली। इन्होंने धर्मेंद्र के साथ भी बहुत काम किया, जिस मूवीज़ में जो इनका मेजरली काम मेरा कसूर क्या है और आकाश थी, और कानून मूवी आई, फिर छोटी बहन इनकी मूवी आई, राजेश खन्ना जी के साथ इन्होंने थ्रिलर इत्तेफाक में इन्होंने साइन करी, और इसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। और इसके बाद जो है, इस मूवी के बाद राजेश खन्ना जी सुपरस्टार बन गए, और उनके साथ इन्होंने कुछ और फिल्म हिट फिल्में भी करी, जैसे परिवार, धरती कहे पुकार। संजय खान के साथ भी इन्होंने काम किया, उन्होंने बेटी अभिलाषा जैसी हिट फिल्में दी, और तीन फिल्में इत्तेफाक, द ट्रेन और जोरू का गुलाम। ये मूवीज़ जो हैं, इसमें शशि कपूर, राजेंद्र कुमार, देवानंद और संजीव कुमार के साथ उनकी पिछली हिट फिल्मों से अधिक कमाई इन पिक्चरों ने करी। अगर मैं इन सबको रैप अप करूं तो एक बात ये समझ में आती ही है कि बहुत ही सुपरहिट करियर नंदा जी का रहा, और बॉलीवुड में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और लाइफ से तो इतना कुछ हमें सीखने को मिल ही रहा है कि अपने को भी सेटल करना, दूसरों को इनकरेज भी करना, कभी किसी के खिलाफ कोई जेलेसी की भावना ना रखना, ये सबसे बड़ा इंसान का गुण होता है, और ये गुण हमें देखने को मिला नंदा जी की लाइफ में। तो दोस्तों, बहुत हो गई ढेर सारी बातें, चलिए यहाँ पे लेते हैं छोटा सा म्यूजिक का ब्रेक। ब्रेक के बाद आई विल बी राइट बैक। स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM।

वेलकम बैक रेडियो मनोरचना 107.8 एफएम पर। दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स और आज का सफर हमारा समर्पित है मशहूर फिल्म अभिनेत्री नंदा जी को, जिनका असली नाम नंदिनी कर्नाटकी था। बहुत ही सफल फिल्मी करियर इनका रहा 30 साल तक। और आइए थोड़ा सा आप झांकते हैं इनके व्यक्तिगत जीवन पर। कहा जाता है कि 1965 में कश्मीर में जब जब फूल खिले की शूटिंग हो रही थी, उस शूटिंग के दौरान निर्देशक सूरज प्रकाश ने बताया कि एक महाराष्ट्रियन लेफ्टिनेंट कर्नल नंदा पर मोहित हो गए और उन्होंने उनके आगे शादी का प्रस्ताव रखा और उनकी माँ तक पहुँचाने के लिए कहा, लेकिन अंत में हुआ कुछ नहीं। नंदा के भाई उनके लिए कई लड़के लेकर घर आए, लेकिन सभी को नंदा जी ने ठुकरा दिया। और 1992 में अधेड़ उम्र में नंदा जी ने वहीदा रहमान के आग्रह पर निर्देशक मनमोहन देसाई के साथ सगाई कर ली, लेकिन जल्द ही गिरगांव में अपने किराए के फ्लैट की छत से गिरने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई और ठीक एक साल बाद उनकी मां की भी कैंसर से मृत्यु हो गई। और ऐसा कहा जाता है कि जिस रेलिंग पर वह झुके हुए थे वह गिर गई और नंदा जी अविवाहित ही रह गई। और नंदा मुंबई में रहती थी जब इनकी डेथ हुई और परिवार में अपने लास्ट इयर्स में, क्योंकि 2014 में इनकी डेथ हुई है, तो बहुत कम लोगों से ही मिला करती थी और करीबी लोगों से ही मिलती थी। और फिल्म उद्योगों में उनके जो करीब फ्रेंड्स थे जो उनके साथ रहे, वहीदा जी, नरगिस जी, आशा पारेख जी, हेलेन, सायरा, बानो जी, माला सिन्हा, साधना, शकीला, ये सब इनके जो है फ्रेंड सर्कल में थे, क्योंकि प्रोबेबली ये सब एक ही टाइम के सब एक्ट्रेसेस थे, तो इनकी फ्रेंडशिप सबकी बहुत अच्छी थी, तो इनके साथ ये काफ़ी टाइम तक ये कनेक्टेड रहीं। और लंबे अंतराल के बाद 2010 में इन्होंने एक मराठी फिल्म नटरंग की स्क्रीनिंग के लिए रहमान के साथ सार्वजनिक रूप में इन्होंने अपना प्रस्तुति लोगों को

मतलब ये दिखाई दी, लेकिन काम फिर उन्होंने बहुत कम ही कर दिया। और नंदा जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन काम जो है इनका वो आज भी जब हम गुमनाम जैसे फिल्म देखते हैं या फिर जब जब फूल खिले देखते हैं तो कितनी नज़ाकत है उनमें, कितनी नज़ाकत उनके काम में है वो तो देख के ही पता चलेगा। तो यहाँ ले रही हूँ मैं छोटा सा एक म्यूज़िकल ब्रेक। सफ़र हमारा जो है अपने अंतिम चरण पर है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड फील लाइव एंड आई विल बी राइट बैक।

वेलकम बैक रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम पे दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम है कैफे क्लासिक्स और आज का हमारा ये सफर समर्पित रहा मशहूर फिल्म अभिनेत्री नंदा जी को। 230 साल का करियर और बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में इन्होंने दी हमको। चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में इन्होंने काम किया बहुत सारी, फिर ऑलमोस्ट उस टाइम के हर हीरो के साथ इन्होंने काम किया। जिस हीरो का काम अच्छा नहीं चल रहा था, इनके साथ काम करके उनका भी करियर निखर गया। तो नंदा जी ने खुद भी काम किया और सबको एनकरेज करा। सबसे अच्छी बात यह है बहुत ही ये हेल्पिंग नेचर की थी। और कहा जाता है कि 25 मार्च 2014 को जब दिल का दौरा पड़ा इनको, तो इनकी उम्र थी 75 वर्ष की। मुंबई में वर्सोवा में इनका फ्लैट था जहाँ पर इनका निधन हो गया। और इनके परिवार में इनके भतीजे स्वास्थ्य कर्नाटकी और इनके ग्रेट ग्रैंडसन जो इनके थे, मतलब इनके नहीं इनके ब्रदर के थे, तो उन सब ने मिलकर जो है इनको अंतिम टाइम पे वो उनके साथ रहे। और ये लोग मुंबई में आज भी निर्देशक के तौर पर काम कर रहे हैं। तो नंदा जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अपने काम की वजह से, जो गाने उन पर फिल्माए गए उनकी वजह से आज भी वो हम सब के दिल में बसती हैं। रेडियो मानव रचना के प्लेटफॉर्म से मैं नंदा जी को बार बार सलाम करती हूँ, उनको भावभीनी अपनी श्रद्धांजलि देती हूँ। और जो वो काम हम सब के लिए कर गई हैं, तो उन कामों को हम बार बार देखें भी और हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी उस चीज़ को दिखाएं कि पुराने लोग भी बहुत अच्छा काम कर गए हैं। तो दोस्तों, जाने का टाइम हो गया है, मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में कुछ नई बातें और कुछ नए आर्टिस्ट की कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, सायोनारा एंड आई एम साइनिंग आउट, बट यू रिमेन ट्यून टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: अरे अरे, अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में। कूड़ेदान में
2: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।
3: हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आ चुका हूं लेकर के शो सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत। नाउ दिस शो इज रियली स्पेशल, रीजन बीइंग कि हर बार यहां पर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं जिनसे हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर एक डोमेन की। मतलब दिस इज ऑब्वियसली ऑल अबाउट द लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया, उस डोमेन में अलग अलग चीजें आती हैं लेकिन उनको यहां पर हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है NDPSA, बेसिकली नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। भारत में एक एक्ट है जो पास हुआ था, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्या होता है ड्रग अब्यूज, कानून क्या बोलता है, इसके प्रिवेंशन के लिए क्या चीजें हैं, ये तमाम चीजें लीगल फ्रेमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ हैं मिस निधि। निधि मैम इज असिस्टेंट प्रोफेसर एट स्कूल ऑफ लॉ, मानव रत्न यूनिवर्सिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू आवर शो मैम।
4: थैंक यू सो मच सागर।
3: मेरा पहला क्वेश्चन आपसे रहेगा कि व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट, आई मीन Why is there a need to understand कि हम ड्रग्स की बात करें, नार्कोटिक्स की बात करें, what's the need?
4: तो शुरुआत में यहाँ से करूँगी कि जो ड्रग प्रॉब्लम है ये सिर्फ इंडिया का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का एक तरह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। पूरे वर्ल्ड में इसकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है और ड्रग प्रॉब्लम अपने आप में तो एक बड़ी प्रॉब्लम है ही, साथ में ये और भी कई सारी प्रॉब्लम्स को जन्म देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको ड्रग्स नहीं मिल रहे तो ड्रग पाने के लिए, ड्रग को प्रोक्योर करने के लिए आप दूसरे क्राइम कमिट करते हैं, तो आप दूसरे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते जाते हैं। अगर आपको ड्रग्स नहीं मिल रहे तो उससे आपको बहुत सारे मेडिकल इशूज़ हो जाते हैं, तो जिसके वजह से आपका जो मेडिकल सिस्टम है किसी भी देश का, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, किसी भी कंट्री की इकनॉमी इम्पैक्ट होती है। तो ड्रग प्रॉब्लम, और हमें ये भी पता है कि स्मगलिंग जो है, ड्रग स्मगलिंग, अगेन इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम टू द वर्ल्ड। तो इस वजह से ड्रग प्रॉब्लम जो है और भी कई सारी समस्याओं को जन्म दे रहा है, तो ज़रूरी है कि हम इस प्रॉब्लम को देखें, समझें कि ये है क्या और क्या वाकई में ये पॉसिबल है 100% कि हम इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं या नहीं पा सकते। तो ये सारी कुछ कई सवाल हैं जिनको हमको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम अलग अलग कानून अलग अलग देशों में पास हुए हैं जो इससे डील करता है।
3: Just bringing us to the domain, bringing us to the topic. तो ये अभी तक हमने पता लग गया है कि exactly drug abuse कितनी बड़ी एक problem है, और ये मुझे बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है honestly, क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा, social media पर आपने videos देखे होंगे अलग अलग states के, पंजाब बीट, हरियाणा बीट, राजस्थान बीट, यूपी, कहीं से भी आप देख लें, आपको अलग अलग नाम जो है वो दिखाई देते हैं कि ये zombie drug है, ये वो वाला drug है। इनफैक्ट आई वॉज जस्ट वॉचिंग दिस डॉक्यूमेंट्री जहाँ पर पंजाब में एक गाँव को, एक घर को कवर किया गया। उस घर में 7 बच्चों की मौत हुई, उन पेरेंट्स के पास अब बच्चे नहीं है कोई भी, क्योंकि उनके 7 बेटे थे, 7 के 7 बेटे मर गए जस्ट बिकॉज दे वर यूजिंग ड्रग्स। और जब उनको विड्रॉल सिम्टम्स हुए, जब माँ बाप ने जबरदस्ती करके ड्रग्स छोड़वा दी, घर में बिठा दिया, तो विड्रॉल सिम्टम्स के बाद वो बच्चे सर्वाइव कर ही नहीं पाए। माँ बाप को लगा ठीक है अभी ठीक हो जाएगा 2 दिन में 4 दिन में 5 दिन में, बट जैसा निधि मैम ने कहा कि आपकी बॉडी में भी कुछ चेंजेस होते हैं, मेडिकल लेवल पर भी आपको इश्यूज होते हैं, आपका DNA ऑल्टर हो सकता है, आपकी बॉडी की ओवरऑल फंक्शनैलिटी अफेक्ट हो सकती है उससे। सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस, एस्पेशली अमंग यंगस्टर्स, दिस इज द कूल थिंग एंड आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट इट। ऑलराइट, मेरा अगला प्रश्न आपसे रहेगा, प्लीज टेल अस अबाउट NDPS की एग्जैक्टली कानून क्या बोलता है, इस एक्ट के बारे में क्या है ये एक्ट?
4: सो NDPS इज नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, ये एक्ट 1985 में पास किया गया था। इसको समझते हैं ऐसे कि पहले हम जरा इंडिया की ज्योग्राफी समझते हैं। इंडिया जो है एक बहुत, इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, और इंडिया जहाँ सिचुएटेड है तो हमारे लेफ्ट साइड में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान जो है, इन तीनों कंट्रीज से हमारे यहाँ काफ़ी ड्रग सप्लाई होता है। हमारे राइट हैंड साइड में म्यांमार, लाओस और कुछ कंट्रीज है जहाँ से हमारे पास ड्रग सप्लाई होता है, तो इंडिया इन दोनों के बीच में सिचुएटेड है। तो इंडिया एक तरह से एक ट्रांजिट रूट भी है, तो कहीं से भी इन कंट्री से, एंड दीज टू रीजन्स आर बिगेस्ट सप्लायर्स ऑफ ड्रग्स इन अक्रॉस द वर्ल्ड. तो जब यहाँ से कहीं ड्रग पास होता है तो वो इंडिया के थ्रू होके जाता है, तो इंडिया एक ट्रांजिट कंट्री है. दूसरी चीज़, इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट भी है, क्योंकि हमारी जो यंग पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन है. तो इंडिया में आपको कंज्यूमर भी मिल जाते हैं, इंडिया ट्रांजिट रूट भी बन जाता है. तो यहाँ पे जो ड्रग प्रॉब्लम है ये अपने आप में बहुत बड़ा रूप ले चुकी है, जिसको टैकल करना बहुत ज़रूरी था. 1985 के पहले ऐसा नहीं कि पहला लॉ था, इसके पहले भी कई सारे लॉज थे हमारे पास. वी हैड ओपियम एक्ट एंड दोज वर ऑल कॉलोनियल लॉज, तो अंग्रेज़ों के टाइम के लॉ बने हुए थे. हमें और नए लॉज की ज़रूरत थी क्योंकि नए नए ड्रग्स आते जा रहे हैं. जैसे हमने कहा नाम इसका नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है, सो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस की एक नई कैटेगरी जन्म ले चुकी थी. तो हम पुराने लॉज पर रिलाई नहीं कर सकते थे, हमें एक नया प्रोग्रेसिव लॉ चाहिए था जो नार्कोटिक ड्रग्स को स्ट्रिक्टली डील करे. स्ट्रिक्टली डील करेगा मतलब वी ऑप्टेड अ पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस. हमने कहा कि हम ड्रग्स को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें इसको पूरी तरह से बैन करना है. तो इस अप्रोच के साथ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस को इस एक्ट को इनैक्ट किया गया 1985 में. Now the basic principle of this act is that it works on the principle of strict liability, or I would say principle of deterrence. Deterrence का मतलब ये होता है कि इसमें जो पनिशमेंट है वो इतनी स्ट्रिक्ट नेचर की है जिससे हम लोगों के मन में एक डर पैदा करना चाहते हैं कि ये जो ड्रग अब्यूज़ है इसको लाइटली ना लिया जाए. अगर आप किसी भी ड्रग अब्यूज़ के केस में फंसते हैं तो उसमें आपको बहुत प्रोलॉन्ग पनिशमेंट हो सकती है, आपको इसमें बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको सालों साल कोर्ट के चक्कर काटते रहने पड़ेंगे, और इसमें कोई लीनियंसी नहीं बरती जाएगी. तो हमने इस अप्रोच के साथ इस एक्ट को हम ले करके आए थे. और अगेन जो प्रोसीजर्स इस एक्ट के अंदर बताए गए हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोसीजर है, काफ़ी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती हैं जिनके पास पावर है प्रोसीड करने की, इन्वेस्टिगेट करने की, अरेस्ट करने की. स्पेशलाइज्ड हमने टेक्निक्स इसके लिए बनाए कि किस तरह से हम लोकेट कर सकते हैं कि कहाँ क्राइम हो रहा है, किस किस तरह से लोग इन्वॉल्व हैं. तो ये सारी चीज़ें थी जो हम NDPS एक्ट के अंदर हमने डाली थी.
3: ऑलराइट, सो दिस इज NDPS एक्ट जो 1985 में पास हुआ. जैसा मैम ने बताया कि उसके पहले भी हमारे पास ओपियम एक्ट था. द सोल मोटिव इज कि आपके नेबरहुड से जो ड्रग सप्लाई किए जा रहे हैं हमारे देश में उसको कैसे करके प्रिवेंट किया जा सकता है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब इट बिकम्स अ प्रॉब्लम जहाँ पर लोग ड्रग्स करने के लिए ड्रग्स बेचना शुरू कर देते हैं बिकॉज दे बिकम द वेंडर्स, दे बिकम द वट एवर यू कॉल इट, जो ड्रग्स सप्लाई करते हैं वो बन जाते हैं ताकि उनके पैसे बन सके और उन्हीं पैसों से वो ड्रग्स ही खरीदते हैं. सो इट इज बिकमिंग अ लूप फॉर अस इफ यू अंडरस्टैंड दिस. फिलहाल आई थिंक म्यूजिकल ब्रेक.

0: वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो पर चल रहा है सत्य में, एंड ये शो हमारे बहुत स्पेशल है। आज का शो अपने आप में बहुत खास है क्योंकि आपने टर्म जरूर सुनी होगी ड्रग्स क्या होते हैं, आपने वीडियोस देखे होंगे, लोग परेशान हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो गई, कितने लोग रुक जाते हैं चलते चलते, हंसने लग जाते हैं। आई मीन सो मेनी थिंग्स आर देयर, और इसके ऊपर कितनी सारी मूवीज बनी है, डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, वेब सीरीज बनी है, बट दिस इज नॉट समथिंग कूल। आपके ब्रेन को ट्रिगर करता है, आपके दिमाग में कुछ चीजें हैं जिनको जाकर वो टेक ओवर कर लेता है, रिसेप्टर्स आपके दिमाग में बनाता है, आप बेसिकली न्यूट्रल कभी सोच ही नहीं पाते हो, आपके दिमाग को हाईजेक कर लिया गया है एक आउटर पावर के द्वारा। दैट इज द कोर फंडामेंटल। यहां पर बात करना चाहूंगा मैं नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, अगर मैं इन डिटेल इनके बारे में जानना चाहूं, क्या डेफिनेशन है कानून की?
1: देखिए, कानून की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कानून सिर्फ इतना कहता है कि नार्कोटिक ड्रग्स वो हैं जो नार्कोटिक ड्रग्स नाम से लिस्ट में दिए हुए हैं, और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस वो हैं जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस की लिस्ट में दिए हुए हैं। सो लीगल डेफिनेशन तो इतनी है, और क्योंकि ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे तो इसकी डेफिनेशन थोड़ी मेडिकल साइंटिफिक डेफिनेशन ज़्यादा है जो शायद कोई डॉक्टर ज़्यादा डिटेल में आपको बता सकता है। बट जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि नार्कोटिक ड्रग्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो मोस्टली प्लांट डिराइव सब्सटेंसेस होते हैं, जो मोस्टली किसी नेचुरल चीज़ से डिराइव होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कैनबिस है, कैनबिस प्लांट होता है, जिस प्लांट के अलग अलग पार्ट से अलग अलग तरह के ड्रग मिलते हैं। सो फॉर एग्जांपल कैनबिस प्लांट के फ्लावर की अगर हम बात करें तो वहाँ से आपको मिलता है गांजा, और अगर जो उस प्लांट से रेजिन निकलता है उस रेजिन को हम कहते हैं चरस, और उस प्लांट के जो पत्ते होते हैं उसको हम कहते हैं भांग। तो प्लांट एक ही है, उस प्लांट के अलग अलग पार्ट से हमें अलग अलग तरह के ड्रग्स मिल रहे हैं। भांग जो है अगेन नार्कोटिक ड्रग्स की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है, क्योंकि भांग इंडिया में बहुत ही एक सोशली एक्सेप्टेड नार्कोटिक ड्रग्स है कह सकते हैं हम, और शायद कई लोग उसको ड्रग मानते भी नहीं होंगे क्योंकि हम भांग जो है बहुत कॉमनली यूज्ड सब्सटेंस है, होली में, शिवरात्रि में, कई जगहों पर आप देखेंगे इट इज़ वेरी कॉमन। एंड कैनबिस प्लांट जो है वो भी बहुत एक ऐसा प्लांट है जो बहुत आराम से ग्रो हो जाता है हमारे हिमालयन रीजन्स में, हिमाचल में, उत्तराखंड की पहाड़ियों में। कैनबिस प्लांट जो है बहुत कॉमनली ग्रोन प्लांट है, लेकिन अगेन इस प्लांट का एक पार्ट है जो ड्रग की डेफिनेशन से बाहर है, बाकी पार्ट्स जो हैं वो ड्रग की डेफिनेशन के अंडर आते हैं। वैसे ही अगर हम तो नार्कोटिक ड्रग्स क्या करते हैं, नार्कोटिक ड्रग्स आपके ब्रेन पे आपके नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करते हैं, और इसके अलग अलग इफेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई नार्कोटिक ड्रग्स है जो आपकी बॉडी को बहुत रिलैक्स कर देगा, जो एक तरह से एक पेन रिलीफ का काम करता है। सो फॉर एग्जांपल देयर इज़ वन नार्कोटिक सब्सटेंस विच इज़ मॉर्फीन, जो कि एज अ पेन रिलीफ भी काम आता है, मेडिकल यूज है जिसका। तो अगर वो आपको दिया जाता है इन कंट्रोल अमाउंट, ऑब्वियसली अंडर कंट्रोल सर्कमस्टांसेस, तो वो आपके पेन में रिलीफ करने के काम आता है। कुछ नार्कोटिक्स ऐसे होंगे जो आपको दे विल प्रोड्यूस यूफोरिया, तो यू विल फील वेरी एक्साइटेड, वेरी एनर्जेटिक। तो इस तरह से अलग अलग इम्पैक्ट होते हैं। एंड वेन वी टॉक अबाउट साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज, दे आर मोस्टली केमिकल बेस्ड सिंथेटिक सब्सटेंसेज होते हैं जिनको फैक्ट्री में, लैब्स में मैन्युफैक्चर किया जाता है। एंड अगेन दे इम्पैक्ट योर मूड, योर परसेप्शन, योर कॉग्निटिव स्किल्स। तो इसका इम्पैक्ट कुछ इस तरह से होता है, स्लाइटली डिफरेंस हो सकता है, लेकिन वो डिफरेंस जो है वो शायद कोई डॉक्टर, शायद कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर वो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा पाएगा। बट लॉ में डेफिनेशन की बात करें तो डिफरेंस बस इतना ही है कि जो नार्कोटिक ड्रग्स की लिस्ट में है वो नार्कोटिक ड्रग्स, और जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस की लिस्ट में है वो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस।
0: All right. And I think उससे ज़्यादा परिभाषा की ज़रूरत है भी नहीं, इट्स जस्ट कि कानून के पास अपने कुछ डेफिनेशन हैं चीज़ों की, वो आपको पता होना चाहिए। ओके, अगर मैं बात करूँ किसी भी तरीके से कंजम्पशन, पोजेशन या बेचना, किसी भी तरीके से कैरी करना, इन्वॉल्व होना, क्या इस एक्ट में सब कुछ कवर होता है या कुछ एग्जेम्प्टेड है यहाँ पर?
1: सो ये एक्ट जो है एक तरह से इट कवर्स एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। तो कुछ भी आप ले लीजिए जो रिलेटेड टू ड्रग्स है, बीट फ्रॉम कल्टिवेशन टू मैन्युफैक्चरिंग टू सेलिंग, परचेजिंग, पोजेसिंग, कंज्यूमिंग, फाइनेंसिंग, एवरीथिंग इज मेड अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। तो सब कुछ जो है वो एक ऑफेंस है। हाँ, एक्सेप्शन बस इतना है कि आप, क्योंकि ये जो ड्रग्स होते हैं इनके और भी यूसेज हैं, इनके मेडिकल यूसेज है, सो वी नीड दिस ड्रग। तो इनका जो ड्रग है अगर गवर्नमेंट अलाउ कर रहे हैं तो जो भी लोग इसको कल्टीवेट करते हैं उनको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। जो भी कंपनीज, जो फार्मा कंपनीज है जो इनको मैन्युफैक्चर कर रही है उनको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। तो अगर वो लाइसेंस्ड कंपनी है, वो लाइसेंस फार्मर है, सो दे कैन कल्टीवेट, प्रोवाइडेड कि वो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं कि कितना अमाउंट में होना चाहिए और किस तरह से उसको कंट्रोल करना है, अगर वो सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं और वो लाइसेंस है तब वो ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी एक्टिविटी इनसे रिलेटेड, वो सारी एक्टिविटीज एक पनिशेबल ऑफेंस है अंडर एनडीपीएस एक्ट।
0: ऑलराइट, सो बेसिकली जिनको अगर कल्टीवेट भी करना है उसके लिए दे नीड अ प्रॉपर लाइसेंस फॉर दैट पार्ट।
1: यस,
0: अगर किसी के खेत में अपने आप, क्योंकि ये वीड जो होती है जितना मैं जानता हूँ एक घास की तरह उगती है, एक जंगली घास उसको बोला जाता है बहुत जगहों पर, अगर किसी के खेत में वो उग गई है, सो इज देयर एनी स्पेसिफिक नॉर्म फॉर दैट पार्ट?
1: देखिए, अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो कोई एक घास जो कहीं पे भी उग गई है इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ऐसी है दैट यू कैन नॉट रीच एवरीवेयर एंड कंट्रोल दिस नेचुरल ग्रोथ। बट ऐसे कई बार ड्राइव होती है जहाँ पे भेजा जाता है और लोगों के फार्म्स जला दिए जाते हैं क्योंकि उनके फार्म्स में इस तरह की नेचुरल ग्रोथ हो रही है। तो अगर ये लाइट में आया किसी अथॉरिटी के या उस टाइम पे इस तरह की अगर ड्राइव चल रही है तो ऐसा भी होता है कि पूरे के पूरे फार्म ख़त्म कर दिए जाएँ अगर वहाँ पर कुछ इस तरह का नेचुरल ग्रोथ हो रहा है। तो कई बार ये सड़क के किनारे ग्रो हो रहा है जिसके ऊपर एज सच किसी का कंट्रोल है नहीं, या हो सकता है कि वो गवर्नमेंट का ही लैंड हो और वो उस पर किसी का नोटिस नहीं गया, तो वो हो सकता है। मतलब इट अकर्स नेचुरली और सब कुछ कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो ऑब्वियसली इन सब चीजों को रिमूव किया जा सकता है।
0: सो अमेजिंग, नाइसली सेड। ऑन दिस नोट लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, देन वी विल कंटिन्यू द शो। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

0: मैं हूँ आरजी सागर, शो चल रहा है यहाँ पर सत्य में विजय। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मानव वैष्णव 107.8 एफएम के साथ। आज का हमारा टॉपिक है, यहाँ पर हम लोग ड्रग्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो नार्कोटिक्स है या साइकोट्रॉफिक है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज की लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश कर रहे हैं एग्जैक्टली क्या है, कानून क्या बोलता है। मेरा अगला प्रश्न रहेगा कि अगर किसी को ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है तो पनिशमेंट कैसे डिफर करती है? किसी के पास छोटी क्वांटिटी है और कोई कमर्शियल लेवल पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लेकर क्या रहा है, क्या दोनों की पनिशमेंट अलग होगी?
1: सो NDPS एक्ट जो है ड्रग्स को क्वांटिटी के बेसिस पे डिवाइड करता है एंड देर आर थ्री क्वांटिटीज हेयर। सो वी हैव स्मॉल क्वांटिटी, वी हैव कमर्शियल क्वांटिटी एंड द थर्ड वन इज इंटरमीडिएट क्वांटिटी, जो कि स्मॉल क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी के बीच में फॉल करती है। सो फॉर एग्जांपल गांजा अगर हम बात करें तो 1 kg तक उसको हम स्मॉल क्वांटिटी कहते हैं। 1 kg के ऊपर एंड अप टू 20 kg इट इज़ इंटरमीडिएट क्वांटिटी एंड मोर देन 20 kg इट इज़ कमर्शियल क्वांटिटी। वैसे ही अगर हम हीरोइन की बात करें तो हीरोइन क्योंकि ज़्यादा सीरियस, ज़्यादा हार्मफुल ड्रग है तो उसकी स्मॉल क्वांटिटी होती है 5 ग्राम। तो 5 ग्राम तक अगर आपके पास हीरोइन है तो वो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर आएगा। 5 ग्राम से लेके 250 ग्राम तक जो है वो इंटरमीडिएट क्वांटिटी होती है और 250 ग्राम से ऊपर अगर आपके पास है तो वो कमर्शियल क्वांटिटी है।
0: 250 ग्राम
1: यस
0: ओके
1: 250 ग्राम जो है अगर इसके ऊपर आप जाते हैं तो वो कमर्शियल
0: मान लिया जाएगा।
1: yes, वो कमर्शियल क्वांटिटी है। तो डिपेंडिंग ऑन दी पोटेंसी ऑफ द ड्रग कि कोई ड्रग कितना हार्मफुल है, क्योंकि हीरोइन ज़्यादा हार्मफुल है इसीलिए उसकी कमर्शियल क्वांटिटी भी 250 ग्राम से स्टार्ट होती है और गांजा रिलेटिवली लेस हार्मफुल है तो उसकी कमर्शियल क्वांटिटी 20 kg से स्टार्ट होती है। अब पनिशमेंट भी हमारी इस क्वांटिटी के बेसिस पे है। तो अगर आपके पास स्मॉल क्वांटिटी है तो उसमें पनिशमेंट आपको 1 साल तक की हो सकती है, आपको 10,000 रुपये तक का फाइन मिल सकता है क्योंकि ये छोटा स्मॉल पेटी ऑफेंस माना जाता है अंडर NDPS एक्ट। अगर आप इंटरमीडिएट क्वांटिटी के साथ पकड़े जाते हैं तो उसमें आपकी पनिशमेंट अप टू 10 years हो सकती है। सो मैक्सिमम पनिशमेंट इज गिवन अंडर द लॉ दैट इज 10 years एंड फाइन अप टू 1 lakh rupees। तो आपका हो सकता है पनिशमेंट 2 साल भी हो, 4 साल भी हो या 10 साल भी हो और आपको फाइन भी 1 lakh rupees तक का दिया जा सकता है। अगर हम कमर्शियल क्वांटिटी

0: क्वांटिटी अगेन जो है ये सबसे सीवियर कैटेगरी है ऑफेंस की, जहां पे आपको मिनिमम आप 10 साल के लिए तो जेल में जाएंगे ही जाएंगे।
1: और ये कमर्शियल हम सारे ड्रग्स की बात कर रहे हैं, जस्ट हम गांजा की बात कर रहे हैं, हेरोइन की बात कर रहे हैं?
0: नहीं, सारे ड्रग्स, कोई भी ड्रग आपके पास है जिसकी क्वांटिटी जो लिस्ट, तो हमारे पास एक लिस्ट है NDPS एक्ट के अंदर जिसमें सारे ड्रग्स लिस्टेड हैं, सारे जो भी नोन हमारे पास नार्कोटिक ड्रग्स हैं और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस हैं वो सारे ड्रग्स लिस्टेड हैं। दूसरा, गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो टाइम टू टाइम एक नोटिफिकेशन जारी करके उसमें ड्रग्स को ऐड या उसमें से ड्रग्स को माइनस कर सकती है। तो कोई ड्रग हो सकता है कि कोई नया ड्रग आज निकल के आ गया जिसके बारे में हमें और आपको पता नहीं है, बट गवर्नमेंट की नज़र में कोई नया ड्रग आया तो वो उस लिस्ट के अंदर उस ड्रग को ऐड कर सकती है। हो सकता है कि कोई ड्रग जो है अब यूसेज में नहीं रहा है, एलिमिनेट हो चुका है, तो उस ड्रग को उस लिस्ट से बाहर किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डिसाइड कर सकती है कि कौन सा ड्रग उस लिस्ट में रहेगा। दूसरी बात, गवर्नमेंट क्वांटिटी डिसाइड करती है। तो अगर गांजा की क्वांटिटी 20 kg है तो गांजा अगर आपके पास 20 kg से ज़्यादा है आप कमर्शियल क्वांटिटी के लिए लायबल होंगे। हेरोइन अगर 250 ग्राम से ज़्यादा है तो आप कमर्शियल क्वांटिटी के लिए लायबल होंगे और दोनों की पनिशमेंट सेम होगी। तो कोई भी ड्रग जो कमर्शियल के ऊपर आता है और आपके लिस्ट में लिखा हुआ है कि वो कमर्शियल के ऊपर है, आपको उसके लिए 10 साल तक की सजा, 10 साल से शुरुआत होगी आपकी सजा की।
1: ठीक है, ये तो बात हो गई कानून की। अगर किसी इंसान को लेट्स से कि ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है, ठीक है, क्या उसके पास कोई राइट अपना बचता है उस टाइम पर कि वारंट होना चाहिए या इमीडिएटली सीज किया जाएगा? उसका कोई राइट वहां पर नहीं है जिसको अरेस्ट किया जा रहा है?
0: तो अगर देखिए, अगर आप ड्रग्स के साथ पकड़े गए तो अगर मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूं तो आपकी बहुत बड़ी समस्या वहां से शुरू हो जाती है। ठीक है, तो वहां पे पुलिस के पास, क्योंकि ये जो एक्ट है ये बहुत ही स्ट्रिक्ट नेचर का एक्ट है, यहाँ पे पुलिस को या जो भी एजेंसीज है, जो एम्पावर्ड एजेंसीज हैं, उनको बहुत सारी पावर्स दी गई हैं। तो वहाँ पर वो आपको इमीडिएटली अरेस्ट कर सकते हैं, दे डोंट नीड एनी वारंट। और क्योंकि क्योंकि वारंट का अगर हम वेट करने लगे तो फिर तो ऐसे जो भी हमारे स्मगलर्स हैं जो एक्चुअली में डील कर रहे हैं वो हाथ से निकल जाएंगे। तो पुलिस वारंट का वेट नहीं करेगी वहाँ पे। तो पुलिस को जैसे ही कोई खबर मिली कि अभी एक घंटे के अंदर यहाँ पे कोई ड्रग्स लेकर के पहुँचने वाला है, पुलिस इमीडिएटली उस स्पॉट पर प्रोसीड करेगी और उस ड्रग को जब्त करेगी। हाँ, अक्यूज के पास ये राइट है कि पुलिस जो है उसको बताएगी कि उसका जो सर्च है, तो पुलिस अगर उसको पर्सनली सर्च कर रही है, उसकी बॉडी को सर्च कर रही है, तो वो सर्च, ये अक्यूज का राइट है और ये पुलिस की जिम्मेदारी है अक्यूज को बताना या सस्पेक्ट को बताना कि आपका सर्च किसी मजिस्ट्रेट या गजेटेड ऑफिसर के सामने भी होगा। तो ये आपका राइट है, आप ये चूज कर सकते हैं। अगर अक्यूज कहता है कि नहीं मैं कंफर्टेबल हूँ, आप ही मेरा सर्च कर दीजिए, तो पुलिस उसका सर्च करेगी। पुलिस पहले उससे एक मेमो साइन करवाती है कि चलो हमने आपको आपके राइट्स के बारे में बता दिया था और आप अपना ये राइट एक्सरसाइज नहीं किया, आप कंफर्टेबल हैं, आप पुलिस से अपने सर्च करवा सकते हैं। अगर अक्यूज वो मेमो साइन कर देता है तो पुलिस उसको पर्सनली सर्च कर सकती है। लेकिन अगर अक्यूज ये कहता है कि नहीं मेरा सर्च जो है मैजिस्ट्रेट के सामने ही होना चाहिए, then it is the responsibility of the police to take the accused to the nearest magistrate or to the gazetted officer. तो फिर उसका सर्च उनके सामने होगा। तो फाइनली जब मैटर कोर्ट के अंदर जाता है तो कोर्ट में पुलिस से सवाल पूछा जाता है, एंड बाय द वे दिस इज सेक्शन 50 ऑफ द NDPS एक्ट जिसमें इस राइट के बारे में कहा गया है। तो कोर्ट पुलिस से ये सवाल पूछती है कि क्या अक्यूज को उसके राइट के बारे में इन्फॉर्म किया गया था, अक्यूज से पूछती है कि क्या तुम्हें तुम्हारे राइट के बारे में पता था कि तुम्हारा सर जो है वो मजिस्ट्रेट या फिर किसी गजेटेड ऑफिसर के सामने होना था, और अक्यूज कहता है कि नहीं उसे तो कुछ बात समझ में नहीं आई थी, पुलिस ने क्या कहा किसी और लैंग्वेज में कहा, या मुझे ये सब समझ में नहीं आता, या मुझसे कुछ साइन नहीं करवाया गया, या मुझसे कुछ बोला नहीं गया, तो उस टाइम पे ये जो है ये पुलिस के अगेंस्ट में जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी बिग राइट, बिग सेफ गार्ड गिवन टू द अक्यूज। और ये सेफ गार्ड देना अक्यूज को ज़रूरी था क्योंकि अगेन इसमें पुलिस के पास बहुत सारी पावर है। तो पुलिस हो सकता है कि कई बार अपनी पावर को मिस यूज़ भी करे, कई बार फॉल्स इम्प्लांटेशन भी हो सकता है कि आप फॉल्सली किसी के दिखा दो कि उसके पॉकेट से मिला है। तो इसीलिए इंश्योर करने के लिए ये कहा गया कि अक्यूज का ये राइट है कि वो चाहे अगर तो उसका सर्च मैजिस्ट्रेट या गजेटेड ऑफिसर के सामने किया जाएगा।
1: And by the way, that was my next question, कि पुलिस अगर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करती है। Thank you, you addressed the question in the previous question. All right, ma'am, I'm done with my questions. कोई भी ऐसी चीज़ है जो मैंने आप पूछ पाए हूँ और आप कहना चाहते हो तो please feel free.
0: So,

0: इसके अंदर मैं थोड़ा कंज्यूमर्स के बारे में बात करना चाहूँगी कि जो लोग ड्रग कंज्यूम करते हैं उनके पास भी एक राइट, हालांकि कंजम्पशन के लिए हमारे लॉ में पनिशमेंट अगेन अप टू 1 ईयर है, तो जो अडिक्ट्स हैं लॉ उनको लेकर के थोड़ा सा पोलाइट है और वो ये कहता है कि अगर कोई अडिक्ट है जिसको पकड़ा जाता है वो अगर वॉलंटियर करता है डी अडिक्शन के लिए तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो अगर कोर्ट में जाकर के अर्जी देता है कि वो डी एडिक्शन के लिए वॉलंटियर कर रहा है, वो चाहता है कि वो एडिक्शन छोड़ दे अपना, तो जो भी गवर्नमेंट अफिलिएटेड रिहैब सेंटर्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं उस वो वहाँ जाकर के अपना जो डी एडिक्शन का जो पूरा मेडिकल प्रोसेस होता है वो करा सकता है, और अगर वो ये फॉर्मेलिटी पूरी करता है तो उसके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो आइडियली लॉ के अंदर ये कहा गया था कि आप जो है प्रमोट करें रिहैबिलिटेशन को भी, हालांकि रिहैबिलिटेशन का जो पार्ट है वो काफ़ी हद तक जो है ओवरलुक्ड पार्ट है। लॉ का जो मेन फोकस है वो पनिशमेंट पे ही फोकस है, लेकिन अब पूरी दुनिया जो है वो पनिशमेंट से शिफ्ट होकर के रिहैबिलिटेशन की तरफ रुख कर चुकी है, और हमारे देश में अब ये ज़रूरत है कि हम ये बात समझें कि ड्रग एडिक्शन कई बार चॉइस का मैटर नहीं रह जाता है, कई बार ये मजबूरी बन जाती है, एक ऐसा स्टेज आ जाता है जब आप चाह के भी उस एडिक्शन से पीछे नहीं हट सकते। सो ड्रग एडिक्शन इज अ रियलिटी, सो नाउ वी नीड टू थिंक वेदर पनिशमेंट इज द राइट सॉल्यूशन और वी नीड टू डू समथिंग एल्स और वी नीड टू गो फॉर हार्म रिडक्शन और रिहैबिलिटेशन। तो जो रिहैबिलिटेशन का पॉइंट है आई थिंक हमें वो थोड़ा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, हमें थोड़े और इंस्टीट्यूशंस चाहिए जो रिहैब के ऊपर काम करें, जो लोगों को और अवेयर करें, मोटिवेट करें। तो येस अगेन वी नीड टू शिफ्ट फ्रॉम पनिशमेंट टू रिहैबिलिटेशन।
1: राइट, यस डेफिनेटली, मतलब पनिशमेंट इज़ ऑल अबाउट कि एक इंसान ने कुछ किया है, बट रिहैब इज़ ऑल अबाउट कि आप उसको ठीक भी कर सकते हो, उस इंसान को उस दुनिया से बाहर निकाल सकते हो, उसको एक नॉर्मल लाइफ मिल सकती है, एंड वी शुड फोकस ऑन दैट पार्ट। दैट्स सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच मैम फॉर डूइंग दिस, इट मीन्स अ लॉट टू अस।
0: थैंक यू सो मच सागर, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो, थैंक यू।
1: अरे दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आज हमने यहाँ पर मिस निधि से बात की, हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी, एंड पर्टिकुलरली ड्रग्स की हमने बात करी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, इसमें काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, हम लोग मॉरेलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू पर जा सकते हैं, सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू पर भी हम लोग जा सकते हैं, एंड अपने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को भी हम यहाँ पर कवर कर सकते हैं। बट क्योंकि ये शो एक लीगल फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करता हुआ शो है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लीगल जो एस्पेक्ट है वो हम आपको दिखाते हैं, उस नज़रिए से आज हमने बात करी। उम्मीद कर रहा हूँ शो आपके जीवन में कुछ मूल्य जोड़ पाया होगा, आप थोड़ा सा करीब से जान पाए होंगे कि ड्रग्स या जो भी आप टर्म सुनते हैं, चाहे वो गांजा है, चाहे वो चरस है, चाहे वो हेरोइन है, चाहे भांग है, उसको लेकर के कानून के पास भी अपने कुछ प्रावधान है। उम्मीद कर रहा हूँ एटलीस्ट एक इंट्रोडक्शन आपको मिला होगा। अगर ऐसा हो पाए तो 8010781078 इस कॉन्टैक्ट नंबर तक अपनी बात जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल मैं चलता हूँ, अपने शो को यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ, आशा करता हूँ आपको शो पसंद आया। नाउ दिस इज योर दोस्त एंड होस्ट आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

0: मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है। ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है।
1: तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के संग लेक वादा,
0: अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।
2: इस

0: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। और आप सभी को पता है कि मैं आपके लिए कार्यक्रम लंबे समय से लेकर आ रही हूँ, यानी महिला सशक्तिकरण पर हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन आज हम जिन महिला से बात कर रहे हैं वो न सिर्फ सशक्त हैं, निडर हैं, लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। हम आज मिलने वाले हैं ऐश्वर्य बाइकर से। जी हाँ, ऐश्वर्य जी जो कि एक बाइकर हैं और ऐसी पहली महिला है जिन्होंने 50 महिलाओं के एक बहुत ही बड़े कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज जीता। लेकिन इसके साथ साथ ये वो महिला है जिन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया बाइकिंग के लिए। तो आप सोच ही सकते हैं कि इन्होंने बाइकिंग को अपना प्रोफेशन, पैशन और साथ के साथ अपना जीवन बना लिया है। वैसे तो ये फाउंडर है आयरन हॉर्सेस की और साथ के साथ एक बहुत ही जानी मानी बाइकर है। सो ऐश्वर्या जी, करेंगे आपका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में।
1: थैंक यू सो मच भावना फॉर व्हाट अ लवली इंट्रोडक्शन। शायद मैं भी भूल गई थी मैंने इतना सब कुछ किया हुआ है लाइफ में, बट यस, मैं ऐश्वर्या एंड फॉन्डली नोन एज ऐश्वर्या बाइकर एंड पीपल नो मी एज आयरन लेडी राइडर एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर।
0: ऐश्वर्या जी, इस कार्यक्रम का नाम है वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट। और मेरा ये सवाल हर महिला से होता है जिनका मैं इंटरव्यू इस कार्यक्रम में लेती हूँ, और वो पहला सवाल है कि आपके नज़रिए में महिला सशक्तिकरण क्या है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि महिला सशक्तिकरण या नारी सशक्तिकरण, इसकी परिभाषा या इसकी डेफिनेशन हर महिला की डिफरेंट होती है। भाई, किसी महिला को सिर्फ इतना ही सशक्तिकरण चाहिए कि वो अपने जीवन के छोटे मोटे जो डिसीजन है वो ले पाए। किसी को करियर चाहिए, किसी के एस्पिरेशन है कि वो दुनिया को बदल दें, कुछ लोग चाहते हैं सोसाइटी को बदल दें। सो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप इसे किस नज़रिए में देखती हैं?
1: देखिए, जैसे कि नाम ही बोलता है सशक्तिकरण, जिसको हम एक वुमेन एम्पावरमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये आई थिंक एक हम उस एरा में हैं, हम उस फेज़ में हैं जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि हर नारी को, हर महिला को आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। आत्मनिर्भर से मेरा मतलब है कि फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ समथिंग विच इज़ आई वुड हाईलाइट ऑन। और जैसे कि आपने कहा कि सबकी अपनी डेफिनेशन है, तो इससे पीछे यही रीज़न है कि आपका सबका एक पैशन है। हर कोई एक गॉड गिफ्ट के साथ ज़रूर आया है। आपको पहचानना है कि आपके पास क्या टैलेंट है, आपको भगवान ने वो क्या चीज़ दी है और कौन सी सी चीज़ है जिसको करके आपको खुशी मिलती है। एक ज़िंदगी है, अपनी आइडेंटिटी बनाओ, अपने लिए पैसे कमाओ, अपना फ्यूचर प्लान करो। आई थिंक ये बहुत मस्ट हो गया है आज के एरा में। सो मेरे हिसाब से सशक्तिकरण इज़ आत्मनिर्भर होना और अपने डिसीजंस खुद लेना और अपने पैशन और अपने खुशी को दिल से फॉलो करना बहुत ज़रूरी है।
0: भाई देखिए, मैं तो हमेशा से ये कहती हूँ कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं तो सही मायने में आप सशक्त हैं। और यही नहीं, देखो एक ही जीवन है और अगर हम इस जीवन

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूँ दीक्षा आपके साथ और टाइम हुआ है प्रोग्राम ऑल इज वेल का, एक ऐसा प्रोग्राम जो बातें करता है आपकी हेल्थ के बारे में, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमेशा फिट एंड फाइन रहे। इसीलिए हर हफ्ते एक्सपर्ट आते हैं, आपसे बातचीत करते हैं आपकी सेहत के अलग अलग टॉपिक्स को लेकर। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो आज के समय का सबसे ज्यादा जानकारी जुटाने वाला टॉपिक है, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और पिछले 15 दिनों से जिस तरीके की गर्मी भारत में पड़ रही है, या फिर हम कहें पूरे ही भारत में पड़ रही है, पहले होता था उत्तर भारत में होती थी, आज पूरे भारत को एक भट्टी की तरह गिना जा रहा है, जहां कभी कभी बारिश बीच में आ जाती है 2-4 दिन के लिए, लेकिन उसके बाद फिर से टेम्परेचर 42 और 45 के बीच पहुंच जाता है। वहां सबसे ज्यादा खतरा होता है हीट स्ट्रोक होने का। हीट स्ट्रोक सुना तो आपने भी होगा, लेकिन इसको पहचानना कैसे है और कितना खतरनाक ये साबित हो सकता है, ये सब कुछ आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन व साथ ही डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीणा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से रेडियो मानव रचना में।
1: थैंक यू दीक्षा जी, थैंक यू।
0: सर सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, हम हीट स्ट्रोक की बात करें और ये टर्म बहुत लोगों ने सुनी है, लेकिन हीट स्ट्रोक क्या होता है? क्योंकि हमने जनरली लोगों से सुना है कि आप डिहाइड्रेट मत रहिए, पानी पीजिए, जितना ज्यादा पानी पिएंगे या लिक्विड इंटेक होगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा गर्मियों में, पर हीट स्ट्रोक जो होता है वो इतना खतरनाक क्यों होता है और है क्या एक्चुअली?
1: जी, जैसा कि आपने कहा हीट स्ट्रोक जो है हमने सबने सुना है कि हीट स्ट्रोक, तो इसको मैं अगर दूसरा नाम दूं तो इसको सन स्ट्रोक भी बोल सकते हैं, तब थोड़ा समझ ज़्यादा आता है। सन स्ट्रोक मतलब जब आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और नॉर्मल एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर नॉर्मली 40 तक रहता है वो 50 तक भी जा चुका है। जो खासतौर पर अभी आपने बताया कि हमारे इंडिया में जो अभी एक स्टडी हुई थी जिसमें सबसे हॉटेस्ट सिटी में 10 से ज़्यादा सिटीज हमारे देश की एक्चुअली आई थी, तो आपने कहा भी ठीक कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अब मैं बात करूँ व्हाट इज़ हीट स्ट्रोक, तो बेसिकली आप देखेंगे इसमें एक हिंड्रेंस फैक्टर है, या कहेंगे कि ये छुप जाता है कि किस, ये हीट स्ट्रोक एक तरह से हाई टेम्परेचर है जब आपकी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल ना कर पाए। नॉर्मली हमारी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाती है, जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, वो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो अगर मैं एक लाइन में बोलूं, जब आपका ब्रेन का सेंटर टेम्परेचर को कंट्रोल करना बंद कर दे या टेम्परेचर फेल हो जाए, तो वही हीट स्ट्रोक है। और इसमें टेम्परेचर 104 डिग्री से ज़्यादा और 107 या 108 तक भी चला जाता है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब किसी को फीवर होता है तो हमारी बॉडी अपने आप को जो मैकेनिज्म होती है थर्मोरेगुलेशन की, जो टेम्परेचर को मैनेज करती है बॉडी नॉर्मली, लेकिन अगर आप बात करें हीट स्ट्रोक में तो हमारी बॉडी फेलियर ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन हो जाए, आपकी बॉडी को ये पता ना चले कि इस टेम्परेचर को रोकना कैसे है,
0: यानी वो 107 तक पहुंच जाता है, जो कि अपने आप में बहुत जानलेवा है।
1: जी जी, 107 अगर आपने देखा होगा कि डेंगू में मरीज बोलता है उसको 102 103 आता है तभी कितनी मुश्किल हो जाती है, तो ऐसा टेम्परेचर जो 107 भी चला जाए और आपके ब्रेन को ये पता ही ना हो कि इसको नीचे कैसे लाना है, जिसमें आपकी स्वेटिंग भी बंद हो जाए, इसीलिए ये बहुत खतरनाक होता है और इसको पहचानना काफी इंपॉर्टेंट होता है जिससे कि इसका ट्रीटमेंट ठीक तरीके से हो सके।
0: जी, यानी बुखार होना तो कॉमन है, पर गर्मी वाला ये बुखार जो आपकी बॉडी में पसीना ही नहीं आने दे रहा है, तो बुखार बाहर निकलेगा कैसे? दिमाग ये जज नहीं कर पाता है और आपकी बॉडी जो है वो गलत रिएक्ट करना शुरू कर देती है, क्योंकि आपने बचपन में भी सुना होगा ना, हमारे दिमाग से हमारे सारे ऑर्गन्स कहीं ना कहीं अटैच्ड होते हैं और जब भी हम टच करते हैं किसी चीज को तो हमारा दिमाग हमको सिग्नल देता है कि आपको यहाँ से हाथ हटाना है, जैसे गर्म चीज को छुआ। ऐसे ही बॉडी के टेम्परेचर में भी दिमाग के ही सिग्नल होते हैं, अगर आम भाषा में कहूँ, जिससे हमें पता चलता है कि हमें बुखार भी चढ़ रहा है और अब ये बुखार जो है वो उतर भी सकता है। दवाइयों के जो इलाज हैं वो किस तरीके से हीट स्ट्रोक में किए जा सकते हैं और कैसे पेशेंट को समय रहते बचाया जा सकता है, और क्या है सिम्टम्स जो एक आम इंसान को पता होने चाहिए, ऐसी कुछ बातें और भी हैं जो हीट स्ट्रोक से जुड़ी हुई हैं। लेकिन अभी वक्त है छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, नंबर हमारा बहुत आसान है 8010781078, और साथ ही ये बातचीत आप शेयर कर सकते हैं किसी के भी साथ दुनिया के किसी भी कोने में हमारे इंटरनेट रेडियो ऐप रेडियो मानव रचना द्वारा, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं iOS या प्ले स्टोर से, और आरजे दीक्षा के फोल्डर में जाकर आप ऑल इज वेल प्रोग्राम की ये सारी बातचीत डॉक्टर सुरेंद्र मीणा के साथ कभी भी किसी के साथ शेयर कीजिए, क्या पता आपका एक शेयर किसी की हेल्थ को बेहतर बना देगा।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM, मैं हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, सपोर्ट किया है SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद ने। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीणा, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन के और साथ ही डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं। और आज हम इनसे चर्चा कर रहे हैं हीट स्ट्रोक के बारे में। हीट स्ट्रोक शब्द बहुत से लोगों ने सुना है, लेकिन शायद इसको विस्तार में नहीं जानते। आपने ये भी सुना होगा कि गर्मी की चपेट में आने से बहुत सारे लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं, और शायद यही हीट स्ट्रोक होता है, जिसमें लोगों की जान को बचाना बेहद जरूरी है। पर जान बचाएं इससे पहले समझते हैं कि हीट स्ट्रोक आखिर होता किन लोगों को है और किन परिस्थितियों में हो जाता है। डॉक्टर सुरेंद्र, आपसे यही जानना चाहूंगी मैं, हीट स्ट्रोक किन लोगों को ज्यादा हो सकता है और कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो हीट स्ट्रोक को बढ़ावा देती है?
1: जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं मैम कि हीट स्ट्रोक किन लोगों को हो सकता है, तो हम बात ही कर रहे थे कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक बड़ा कारण है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि हीट रिलेटेड इलनेसेस बढ़ रही हैं, जिसको हम HRI बोलते हैं। तो जितने भी हीट से रिलेटेड बीमारियां हैं वो क्लाइमेट चेंज के बाद, खासतौर पर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इसी का इम्पैक्ट इस पर भी आ रहा है। अगर हम बात करें खासतौर पर मई जून जुलाई, जो ये वाला सीजन होता है जिस समय टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होने लगेगी थोड़े दिन के बाद, तो हीट स्ट्रोक का रिस्क इसी समय सबसे ज़्यादा होता है। और खासतौर पर अगर मैं करूं किन लोगों को रिस्क फैक्टर है, तो ऐसे लोग जो कि जिन्होंने रिसेंटली जिनका जो किसी ऐसी जगह से आए हैं जहां का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है या जहां पे ठंड होती है, और वो अचानक से ऐसी जगह आ गए जहां की ह्यूमिडिटी ज्यादा है, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि लैक ऑफ एक्लिमेटाइजेशन, लोग अपनी बॉडी को एडेप्ट नहीं कर पा रहे। दूसरा, खासतौर पर छोटे बच्चे और जो एडल्ट होते हैं, एल्डरली पॉपुलेशन होती है, और जो हार्ट की या किडनी की या तनाव की दवाइयां खाते हैं, ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अगर ये दवाई लेते हो तो हीट स्ट्रोक की संभावना और बढ़ जाती है। या फिर किसी को स्किन के इन्फेक्शन होते हैं, या किसी को डिहाइड्रेशन पहले से है, लैक ऑफ वाटर है, और या किसी की सीवियर ओबेसिटी, जो हम लोगों को लगता है कि यार मैं मोटा हूं तो इसका क्या मतलब हीट स्ट्रोक से। तो आप ये समझिए कि अगर आपकी बॉडी सरफेस एरिया ज्यादा है, आपका वेट ज्यादा है, तो आपको हाइड्रेशन की भी ज्यादा जरूरत है, आपकी कॉप अप मैकेनिज्म्स भी कम होंगी, तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस, और हमने कहा ओबेसिटी, ये सारे कारण हैं। और कुछ बीमारी जैसे किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, ये सारे रिस्क फैक्टर्स मैं कहूँगा ये इंट्रिंसिक रिस्क फैक्टर्स हैं, मतलब वो बॉडी के अंदर हैं। एक्सट्रिंसिक की बात करें तो क्लाइमेट चेंज, और या आप ऐसी जगह पर जा रहे हो जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, या फिर आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे कि क्लोज्ड स्पेस है, जहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, तो प्रॉपर वेंटिलेशन अगर आपके घर में नहीं है तो भी रिस्क फैक्टर है हीट स्ट्रोक का। हीट स्ट्रोक घर में बैठे बैठे भी हो सकता है।
0: अच्छा, घर में बैठे बैठे भी हीट स्ट्रोक हो सकता है, ये मुझे नहीं पता।
1: इंडोर, अगर कोई इंडोर है तो उसको भी हीट स्ट्रोक हो सकता है, बिकॉज आप जब अंदर रहते हो जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता, तो आपकी वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो वहाँ पे आपकी बॉडी जो है अच्छे से टेम्परेचर रेगुलेशन कर नहीं पाती, और दीज पीपल कैन ऑल्सो गो इन हीट स्ट्रोक। और अगर खासतौर पर वो बच्चे हैं या एल्डरली हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो अगर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं तो उनको हीट स्ट्रोक की संभावना और बढ़ जाती है। तो ये कॉमन कारण होते हैं जिससे हीट स्ट्रोक हो सकता है। और खासतौर पर इसमें इंपॉर्टेंट होता है, या फिर कोई बंदा जो एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी, हम जिसको बोलते हैं रिग्रेस फिजिकल एक्टिविटी, खासतौर पे जो एथलीट्स होते हैं, आपने देखा होगा कि वो काफी रिग्रेसिव या एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, और कई बार वो अपने पानी पे ध्यान नहीं देते, लैक ऑफ हाइड्रेशन में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ योर बॉडी इज नॉट हाइड्रेटेड, यू आर वेरी मच रिस्क फॉर हीट स्ट्रोक, तो हाइड्रेशन इज द क्रूशियल थिंग, उसका उनको ध्यान रखना चाहिए।
0: तो डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सुबह सुबह सैर के लिए निकल जाते हैं, और मौसम जब गर्म होता है तब भी ये कहा जाता है कि आप अर्ली मॉर्निंग तो सैर कर लें, लेकिन 8-9 बजे के आसपास आप बाहर ना निकलें, गर्मियों में अवॉइड करें, या दिन में आप जैसे पार्क में जा रहे हैं तो वो ना जाएं। क्या उससे भी हीट स्ट्रोक का खतरा होता है अगर लू चल रही है?
1: जी मैम, जैसा आपने कहा, तो इसमें कहते हैं कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट, तो अगर मैं प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज की बात करूं, तो आपने बोला कि खासतौर पे 11 बजे से और 4 बजे का जो पीक टाइम होता है, जिसमें आपका हीट काफी ज्यादा होती है बाहर, तो आप उस समय आउटडोर एक्टिविटीज को अवॉइड करें, उस समय आप बाहर कम निकलें, और अगर आप बाहर निकलते भी हैं तो प्रॉपर लाइट कॉटन क्लोथ पहन के जाएं, हैवी क्लोथिंग ना हो, आप प्रॉपर हाइड्रेशन का ध्यान रखें, पानी लेके जाएं, तो डेफिनेटली आपने जो बोला, एक्चुअली हीट स्ट्रोक का सबसे ज्यादा रिस्की आफ्टरनून में होता है, जो आपने बोला, मैं कहूँ 12 से और 3 बजे तक का जो जब सन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट सन का होता है, तो उस समय डेफिनेटली आपको आउटडोर एक्टिविटीज को अवॉइड करना चाहिए। और मैंने कहा कि प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज ट्रीटमेंट से भी इम्पोर्टेंट है, खासतौर पे हीट स्ट्रोक में, तो इट इज बेटर टू प्रिवेंट देन टू क्योर।
0: बिल्कुल, और यही वजह होती है कि शायद स्कूल की जो छुट्टी है वो लोग कहते हैं कि 12 बजे से पहले कर दी जाए या 12:30 तक कर दी जाए, क्योंकि जब 2 से 3 के बीच में बच्चे घर पहुंचते हैं तो उस समय पीक गर्मी होती है, और उस गर्मी में बच्चों की जान को बहुत खतरा हो सकता है। सो इस वजह से भी ये चीज़ें जो हैं वो कही जाती हैं। हीट स्ट्रोक यानी बहुत ज्यादा गर्मी में अगर आप रहते हैं, खासतौर पर से मैं कहना चाहूंगी लेबर वर्क जो होता है हमारे देश का, वो जब मजदूरी करता है गर्मी में बहुत ज्यादा, और कंस्ट्रक्शन चल रही है कहीं पर, किसी जगह पर कुछ और काम चल रहा है, या फिर कोई रिक्शा ढोकर लेकर जा रहा है, सो ऐसी परिस्थिति में हीट स्ट्रोक होना बहुत कॉमन है। तो इनको किस तरीके से अपना ख्याल रखना है, इस पर भी बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। मैं हूं दीक्षा आपके साथ, सुन रहे हैं आप प्रोग्राम ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम ऑल इज वेल सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद. और आज हीट स्ट्रोक पर चर्चा कर रहे हैं हम, क्योंकि गर्मी का मौसम है. बीच बीच में आ रही बारिश थोड़ी राहत देती है, लेकिन फिर मौसम वैसा ही हो जाता है. और ये जो गर्मी है, ये अप्रैल, मई, जून और कुछ हद तक जुलाई, इन महीनों में इतनी ज्यादा

0: बढ़ती हुई धूप में आपको अपना कैसे ख्याल रखना है ये हम जान रहे हैं। तो कैसे सिम्टम्स को पहचाने हीट स्ट्रोक के, ताकि किसी भी व्यक्ति जो इससे पीड़ित है उसको तुरंत सहायता दी जाए, और क्या होगा उसका इलाज ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीणा, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन और डायबिटोलॉजिस्ट SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। डॉक्टर मीणा, बात करते हैं अब सिम्टम्स की। अब एक व्यक्ति है हमारे घर में, अगर कोई रह रहा है और उसको हीट स्ट्रोक हो गया है, तो कितने देर का हमारे पास समय होता है और क्या वो सिम्टम्स है जिनको पहचान कर हमें तुरंत डॉक्टरी सहायता चाहिए?
1: जी, जैसे मैम आपने कहा कि इसमें कितना हमें विंडो पीरियड मिलता है, खासतौर पे कि जब आप कोई हीट स्ट्रोक में जाए, तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली हीट स्ट्रोक से पहले बहुत कुछ होता है, तो इसमें आपके पास समय भी होता है और डॉक्टर के पास भी समय होता है अगर कोई पेशेंट रिमोट एरियाज में है या कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कि जब भी किसी पेशेंट को हीट स्ट्रोक होगा तो वो आपको पता नहीं चलेगा कि ये हीट स्ट्रोक है। कोई भी हीट स्ट्रोक एक नॉर्मल फूड पॉइजनिंग है, एक नॉर्मल जो GI डायरिया वगैरह लूज मोशन AGE की तरह, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस में अगर बोलूं, तो नॉर्मली कोई भी हीट स्ट्रोक एक फीवर, हाई ग्रेड फीवर, एब्डोमेन पेन, लूज मोशन उसको होगा, उसको हेडेक होगा, वीकनेस लगेगा, मसल क्रैम्प्स आएंगे, इरिटेबिलिटी होगा, ये कॉमन सिम्टम्स हैं। लेकिन इसके साथ जो एक अलार्मिंग चीज होगी या बहुत वार्निंग साइन होगा, जो कि एक डॉक्टर को, खासतौर पे हेल्थ केयर वर्कर को पता होना चाहिए, कि वो होगा उसका टेम्परेचर बहुत हाई होगा। उसका टेम्परेचर 104 से लेके 107 तक जा सकता है। खासतौर पर अगर टेम्परेचर अगर 104 से नीचे होगा तब तो आप ऐसा सोचेंगे नहीं, लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और पेशेंट जो है बहुत ज्यादा, आप अगर टच भी करते हैं तो उनकी स्किन बहुत ही वार्म होगी, क्योंकि ब्लड
0: गर्म
1: जी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन स्किन का बढ़ जाता है हीट स्ट्रोक में। आपकी नॉर्मल हमारी स्किन का सर्कुलेशन जो है उससे 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, तो नॉर्मली हमारी जो स्किन सर्कुलेशन होता है वो उससे 10 गुना बढ़ेगा, तो आपका जो और जगह ब्लड की जरूरत है, जैसे ब्रेन को, किडनी को, हार्ट को, वो कम हो जाती है। तो जो सिम्टम्स भी होते हैं वो इसी से रिलेटेड आते हैं, जैसे कि अगर किसी को उसको एब्डोमेन पेन, वॉमिटिंग, लूज मोशन मैंने बताया, साथ में इसके हीट स्ट्रोक में ब्रेन के सिम्टम जुड़ जाते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जुड़ जाते हैं, उसका सेंसोरियम अल्टर्ड हो जाएगा, उसका होश गड़बड़ हो जाएगा, पेशेंट जो है अलर्ट नहीं रहेगा, पेशेंट को इरिटेबिलिटी लगेगी, पेशेंट सीवियर हेडेक की कंप्लेंट करेगा, पेशेंट इवन यहां तक कि फिट्स, जिसको हम सीजर बोलते हैं या मिर्गी बोलते हैं, वो भी आ सकता है, और पेशेंट बेहोश भी हो सकते हैं। तो ये सिम्टम्स हैं जो कि हीट स्ट्रोक आप स्ट्रांगली सस्पेक्ट भी करें, और मैं तो कहूंगा इससे पहले जिसको हम बोलते हैं हीट एग्जेशन, जिसमें आपका टेम्परेचर 104 तक रहता है, तो यहां तक जैसे ही जाए तो आपको सोचना चाहिए कि ये पेशेंट हीट स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। और इंपॉर्टेंट ये है कि इसका डायग्नोसिस आप क्लिनिकली बना सकते हैं, आपको किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये ध्यान दिया कि पेशेंट की स्वेटिंग नहीं आ रहा है, पेशेंट को पसीना नहीं आ रहा है, जो कि नॉर्मली किसी भी फीवर में आता है, स्वेट आउट, हीट निकलने की जो मैकेनिज्म है वो खत्म हो जाती है। और हम बात करें कि किसको रिस्क फैक्टर है, तो रिस्क फैक्टर्स में मैं वही कह रहा हूँ कि जो लोग पानी की, जिनको कमी होती है, खासतौर पर जो हमारे ऐसे लोग जो कि मोस्टली लेबर क्लास होता है, जो हमारे लोग
0: ओपन में काम कर रहे
1: हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स वर्कर होते हैं, उनको सबसे ज्यादा खतरा भी होता है, और एक्चुअली सबसे ज्यादा मैं बात करूँ जो नुकसान होता है वो उनका ही होता है, क्योंकि उनको लैक ऑफ अवेयरनेस भी होती है कि हमको ऐसा कुछ हो सकता है, वो डायरेक्ट सन के एक्सपोज में होते हैं और वो अपनी बॉडी को हाइड्रेट भी नहीं करते, क्योंकि उनका काम ऐसा होता है कि वो ये भूल जाते हैं कि मुझे समय समय पे पानी पीने की जरूरत भी है, या बीच बीच में आपको छाया में जाने की जरूरत भी है। तो आपको इन बिटवीन अपनी बॉडी को हाइड्रेट भी करके रखें, और समय समय पर आप जो बोलते हैं हम ज्यादा, अगर सन बहुत ज्यादा तेज धूप है तो आप छाया में बीच बीच में जाए, मैं बात कर रहा हूँ लेबर वर्क की, कंस्ट्रक्शन वर्क, तो इनको सबसे ज्यादा रिस्क होता है,
0: और
1: ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो और आप डॉक्टर देखते हैं कि टेम्परेचर मोर देन 104 है, मैं इसको बता रहा हूँ टेम्परेचर को, और पेशेंट जो है, अगर पेशेंट का सेंसोरियम अल्टर्ड है, मतलब पेशेंट का होश गड़बड़ हो गया, पेशेंट अलर्ट नहीं है, तो आपको 100% सोचना है कि ये हीट स्ट्रोक हो सकता है।
0: जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि बुखार जो है वो दिमाग पर चढ़ गया है, यही कहलाया जाता है जनरली, क्योंकि आपको होश नहीं रहता, आपको समझ नहीं रहती, सूझबूझ से जैसे हम नॉर्मली काम करते हैं वैसे आप कर नहीं पाते, तो देसी भाषा में मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी कहते हुए सुना है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है।
1: जी आपने सही कहा मैम, जिसको हम, अगर मैं बोलूं पेशेंट के रिलेटेड एक कॉमन लैंग्वेज में, तो कहते हैं लू लग गई है। तो किसी को अगर लू लग गई है, मतलब कि उसका बॉडी जो है डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस भी हो जाता है, तो डेफिनेटली उनको होश नहीं रहता है, सोडियम पोटेशियम भी गड़बड़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से मसल क्रैम्प होते हैं, और अगर सोडियम ज्यादा कम हो जाता है तो बेहोशी में सोडियम का भी रोल है, वो और ज्यादा आपके अलर्टनेस को डाउन करता है, और डेफिनेटली हीट स्ट्रोक में इवन कई बार ब्रेन को इन्फार्क्ट भी हो सकता है, मतलब जिसको हम खालिश बोलते हैं, पैरालिसिस बोलते हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से भी ब्रेन को नुकसान हो सकता है।
0: जी।
1: और हीट स्ट्रोक तो अपने आप में ही एक न्यूरोलॉजिकल कंप्लेंट, जो मैंने बताया अल्टर्ड मेंटल सेंसोरियम, ये सारा कर देता है, बिकॉज ब्रेन की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो डेफिनेटली ये है।
0: जी

So, बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं हीट स्ट्रोक के बारे में. आगे जानेंगे कि अगर कोई पेशेंट ऐसा है तो घर पर सबसे पहले क्या करना चाहिए और हॉस्पिटल में क्या इलाज मिलेगा, इस पर चर्चा करेंगे. लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का.

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। और हम कर रहे हैं बात हीट स्ट्रोक के बारे में। बढ़ती गर्मी प्रॉब्लम बहुत सारी लाती है, और उन प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम है वो है हीट स्ट्रोक, यानी लू लग जाना, जिसको हम हिंदी भाषा में, आम भाषा में बोलते हैं। लेकिन ये लू लगना सिर्फ ऐसा नहीं है कि थोड़े दिन के लिए बीमार कर देगा, ये जानलेवा भी साबित हो सकता है अगर सही समय पर इसको पहचान कर इलाज ना किया जाए। अगर आपके घर कोई पेशेंट है, कोई व्यक्ति है जिसको एक्चुअली में हीट स्ट्रोक या सनस्ट्रोक हुआ है, सो आपको क्या करना चाहिए, एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह आपको किस तरीके का ट्रीटमेंट उसको घर पे देना है या फिर फर्स्ट एड घर पे देना है, और फिर उसके बाद हॉस्पिटल लेकर जाना है, और हॉस्पिटल कैसे इलाज करेगा, ये जान रहे हैं हम हमारे हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीणा जी से, जो कि इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट हैं, वह साथ ही डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। डॉक्टर मीणा, अब मैं यही जानना चाहूँगी आपसे कि अगर कोई हमारे घर का सदस्य है और वो घर में आ रहा है और हमें दिख गया है कि उसको हीट स्ट्रोक है, भरी दोपहर में आए कोई और उसे बुखार हो जाए और बुखार कंट्रोल नहीं हो रहा है, सो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए?
1: जी, जैसा आपने कहा कि पहले तो बेसिकली जो हम बोलते हैं प्रोडोमल सिम्टम्स या अर्ली वार्निंग साइंस, तो बंदे को घर पे या जहाँ वो होते हैं वहीं पे आते हैं। तो आपने कहा कि कैसे पता चले, तो आपने कहा कि अगर किसी का कोई बाहर से आ रहा है जो आउटडोर एक्टिविटी करके या सन के एक्सपोजर से आया, और उसका आपने देखा कि उसको हाई ग्रेड फीवर है, और आपने देखा कि उनको डिहाइड्रेशन हो रखा है, उनको लूज मोशन या वॉमिटिंग हो रखा है, और वो कह रहे हैं कि मेरे को आप देखेंगे कि इरिटेबिलिटी भी लग रही है, सीवियर हेडेक भी हो रहा है, या मसल क्रैम बहुत कॉमन सिम्टम है कि वो कहेंगे मैं चल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मसल वीकनेस आ जाती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाता है। तो ये चीज़ें अगर घर पर हो रही हैं तो डेफिनेटली अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं जिससे आप हीट स्ट्रोक में जाने से बच पाएं। तो ये घर पे ध्यान रखें कि आप उनको प्रॉपर उनको आप हाइड्रेशन करें, उनको आप ORS दें, उनको आप नींबू पानी दें, या एक कोकोनट वाटर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इस समय, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीविंग फैक्टर भी होता है, तो उनको आप नारियल पानी पिलाएं फ्रेश, और घर पे उनको बोलें कि डी क्लोथिंग करें, लाइट क्लोथ उनको पहनाएं, और उनको बोलें कि आप वो जो एयर कंडीशन आपके होते हैं वो सबसे ज़्यादा काम आता है, तो उस समय उनको आप AC की रूम में रखें, जिससे कि उनका टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर हाई है, वो AC भी टेम्परेचर को मैनेज करने में हेल्प करें। अब ये सब काम आप कर लेते हैं और आप देखते हैं कि फिर भी उसके बावजूद भी अगर उनका टेम्परेचर लगातार ज़्यादा है, और आपने देखा कि टेम्परेचर 104 या 104 के ऊपर है जो मैं बार बार कह रहा हूँ, तो 100% आपको लगे कि थोड़ा उनका सेंसोरियम गड़बड़ हो रहा है या उनकी अलर्टनेस गिर रही है, ऐसे लक्षण जैसे ही लगे, या लूज मोशन का जो नॉर्मल बोलते हैं कि भाई लू लग गई और लू में आराम नहीं मिल रहा है, तो इमीडिएटली आप उसको एक अच्छे सेंटर पे ले जाएं। अगर मैं बात करूं, अगर किसी को हीट स्ट्रोक सस्पेक्टेड है और किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे या रिमोट एरिया में डॉक्टर ने देखा है, तो उनको समझ में आ जाता है कि ये हीट स्ट्रोक सस्पेक्टेड है, तो उसको इमीडिएटली आप वहां ले जाएं जहां पे कि हीट स्ट्रोक को मैनेज करने के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, खासतौर पर ऑब्वियसली टर्शरी केयर में या बड़े किसी गवर्नमेंट सेटअप्स में जहां पे ये फैसिलिटीज होती है, वहां पे उनको इमीडिएटली ले जाएं। और अगर आप छोटी जगह पे भी तो ये ध्यान रखें कि जहाँ पे उनको IV फ्लूड्स दिए जाते हैं, जो बहुत ही वाइटल होता है, लाइफ सेविंग होता है, जिसको आप नॉर्मली हम NS और RL कहते हैं, बोलते हैं कि पानी लगा दिया, नॉर्मली समझते हैं लोग, वो ये ध्यान रखें कि वो पानी भी गर्म ना दे दें। आपने देखा होगा कई बार वो भी हीट में उतना ही गर्म होता है तो डबल अटैक हो जाता है एक तरह से। तो ये ध्यान रखें कि उसका टेम्परेचर ठीक हो, जो बाहर से आप फ्लूड को रिप्लेसमेंट कर रहे हो ट्रीटमेंट के, वो एटलीस्ट ठंडा होना चाहिए। ये चीज डॉक्टरों को या हेल्थ सेंटर पे जो टीम है हमारी, उसको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप वो भी ऐसा कर देते हैं कि वो भी उतना ही टेम्परेचर का है, तो बेसिकली पेशेंट को और भी तकलीफ हो सकती है। और इसके साथ साथ और जो सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, जैसा हमने कहा कि टर्शरी केयर पे ये भी पता चलता है कि बंदे का ब्रेन को भी इशू है क्या उनका, तो वहाँ पे उनका CT भी हो सकता है, वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स का भी पता चलता है, और हमारी बॉडी की जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होता है, वो सारे टेस्ट आप बड़े सेंटर पे ही करा सकते हो। तो डेफिनेटली अगर हमने जैसा कहा वैसे सिम्टम्स मिले और किसी का टेम्परेचर और उनकी अलर्टनेस कम हो जाए, मैं दो चीज़ों पर ज़्यादा जोर देना चाहूँगा, तो डेफिनेटली उनको हेयर सेंटर पर जाना चाहिए।
0: तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि घर पे बहुत समय वेट नहीं करना चाहिए अगर चीज़ें ऐसी दिख रही हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे लोग घर पे जैसे ठंडे पानी की पट्टियां सिर पे रखते हैं, बर्फ़ की पट्टियां, क्या वो भी रखी जा सकती हैं या वो ठीक नहीं रहेंगी?
1: नहीं, बिल्कुल मैम, जैसा आपने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 100% घर पे आप लोग उसको ठंडी पट्टियाँ भी रख सकते हैं, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट भी अगर मैं बात करूँ तो कई मेडिकल कॉलेज, जो अगर हम दिल्ली NCR में रहते हैं, तो सारी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होती हैं उसमें अलग से वार्ड बना दिया जाता है इस समय पे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गवर्नमेंट भी इसको काफ़ी सीरियसली लेती है। तो डेफिनेटली आप उनको ठंडी पट्टी भी रखें, उनके कपड़ों उनको आइस से उनको आप अपने उनको क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट भी कोल्ड आइस इमर्जन थेरेपी है, मैं ये कहना चाहता था कि आइस डाल के और पेशेंट के टेम्परेचर को कम किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट भी सही बताऊँ तो कोल्ड आइस थेरेपी है। तो आपने कहा कि आइस से वो कर सकते हैं कि पट्टी 100% कर सकते हैं, बहुत ही रिलीविंग होगा। दूसरा जो हीट स्ट्रोक की सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं अस्पताल में उनको मैनेज किया जाता है, और साथ में उसके टेम्परेचर को कम करने के लिए कोल्ड आइस इमर्सन थेरेपी दी जाती है जो कि काफी इफेक्टिव होती है
0: जी।
1: लेकिन आपके जो अंगों को नुकसान हो जाता है उससे बचना काफी मुश्किल होता है, तो ये बेटर यह है कि आप इसको पहले से ही ध्यान दे दें जिससे आप उस कॉम्प्लिकेशंस में ना जाएं।
0: यानी आप 2-3 दिन तक वेट ना करें, अगर पहले दिन ही ये सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना ज्यादा बेहतर है।
1: क्योंकि आपने देखा कि जैसे आप रेडियो मानव रचना या ऐसे हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम करके और लोगों को अवेयर कर रहे हैं, खासतौर पर हमारे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया उनको वो कई बार टेम्परेचर को भी नहीं देखते हैं सोशल मीडिया या फोन पे कि आज बाहर का टेम्परेचर कितना है, तो उनकी उनको ये अवेयरनेस मिलेगी तो वो शायद समझ पाएंगे कि टेम्परेचर का और अपनी बॉडी का पानी का ध्यान रखना भी जरूरी है।
0: बिल्कुल, यानी पानी जो है वो वैसे ही अमृत नहीं कहलाया जाता, वो वाकई अमृत होता है, और इस गर्मी में अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। पानी अच्छे तरीके से पीजिए, 3 लीटर पानी, 2 से 3 लीटर ज़रूरी है पीना, अगर इससे ज़्यादा भी आपको प्यास लग रही है तो ज़रूर पीजिए। अल्कोहल का सेवन कम करिए, चाय कॉफ़ी थोड़ी सी कम करिए, और उसकी जगह जूस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, नहीं तो सिंपल नींबू पानी बना के पी लीजिए, बॉडी को बहुत राहत मिलेगी। और ठंडी चीज़ें जो आप खा रहे हैं इतना ठंडा भी मत खाइएगा कि आपका गला बैठ जाए, कोशिश करिए कि अच्छे टेम्परेचर की चीज़ें खाइए, और बहुत ज़्यादा बाहर की तली हुई चीज़ें अवॉइड करिए क्योंकि फूड पॉइजनिंग का खतरा भी इसके साथ साथ बढ़ जाता है। सो डॉक्टर सुरेंद्र जी, आप हमारे स्टूडियो में हैं, आपने ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू।
0: तो इस गर्मी में अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर एक खास कार्यक्रम जो मैं आपके लिए संडे की शाम को लेकर आती हूँ। और अच्छी बात यह है कि हर संडे की शाम को और भी सुहानी बनाते हैं मानवता की बात करते हुए। हम सबको पता है कि हम इंसान हैं, हम मानव हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इस मानवता को भूलते जा रहे हैं। और ये बहुत अच्छा सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि मैं उन सभी लोगों से आपको मिलवाती हूँ जो इस तरीके के काम करते हैं, जो ह्यूमैनिटी के काम करते हैं, मानवता के काम करते हैं। आज इस कड़ी में हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो है माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट। इस ट्रस्ट के बारे में शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे, और अगर पूरे शहर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी तक माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के बारे में नहीं पता है, तो इनका भवन कहां पर है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, किस प्रकार के काम ये करते हैं, आज हम बहुत सारी बातें इनसे जानने वाले हैं। स्टूडियो में मेरे साथ राम कुमार राठी जी हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के, राकेश सोनी जी हैं जो कि ट्रेजरर हैं, और महेश गटानी जी हैं जो कि सेक्रेटरी तो हैं ही इस साल के, लेकिन वैसे हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर के ऑल ओवर के प्रेसिडेंट रहे हैं और एक बहुत ही सीनियर मेंबर है माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के। आप सभी का स्वागत है रेडियो वन रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहला सवाल राम कुमार जी आपसे करना चाहूंगी, अगर मैं पूछूं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट तो इसका गठन कब हुआ, कैसे हुआ और इसके पीछे की कहानी क्या है?
2: माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट की शुरुआत सन 1985 में समाज सेवा और जन सेवाओं के कार्य करने हेतु शुरू किया गया था। इस ट्रस्ट के तहत हम समाज सेवा के कार्यक्रमों में माहेश्वरी समाज के सभी जरूरतमंद परिवारों को मेडिकल सहायता, शिक्षा हेतु स्कॉलरशिप, विधवा पेंशन और शादी में सहयोग करते हैं। जन सेवा के कार्यक्रमों में नेत्र चिकित्सा शिविर, पोलियो करेक्टिव सर्जरी कैंप, दिव्यांग कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, आयुर्वेदिक चेकअप कैंप, निःशुल्क एलोपैथिक एवं होम्योपैथिक डिस्पेंसरी का भी माहेश्वरी भवन में संचालन, समय समय पर हार्ट चेकअप, कैंसर, डायबिटिक एवं अन्य बीमारियों के संबंधित अवेयरनेस कैंपों का भी आयोजन हम करते हैं। प्राकृतिक आपदा के समय प्रशासन का सहयोग, कोरोना के समय प्रशासन को फुल सपोर्ट, साथ ही साथ रेडक्रॉस के सहयोग से फूड पैकेट्स, सूखा राशन तथा जरूरतमंद परिवारों को वितरण किया गया।
0: सो भाई बड़े सारे काम है जो माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट करती है, लेकिन अगर हम देखें एक लंबे समय से माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट का जब गठन हुआ, तो इसका गठन इसलिए नहीं हुआ कि चलिए अपने समुदाय के लोगों की मदद की जाए, इसलिए हुआ कि इस पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं और खास तौर पर अगर हम अपने शहर की बात करें तो हमारे शहर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इंग्लिश में हम अंडर प्रिविलेज्ड कहते हैं और हिंदी में हम कहते हैं वो लोग जिनके पास पर्याप्त नहीं है, जिनके जीवन के लिए उनके पास पर्याप्त नहीं है। अब क्या पर्याप्त नहीं है? कई बार उनके पास सेवाएं पर्याप्त नहीं है, अगर वो डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं उनके पास इतने पैसे ही नहीं है। सो ये जो सलाह है ये उन्हें कहाँ से मिलेगी? और ऐसे नेकी के काम माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट एक लंबे समय से करती आ रही है। अब ये किस प्रकार के काम कर रहे हैं, कैसे कैसी चीजें होती हैं, किस प्रकार के कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, समय समय पर किस प्रकार के चैलेंजेस फेस करते हैं, टीम कैसी है, बहुत सारी बातें हैं जो इनसे पूछनी है, लेकिन उतने ही गाने भी तो हैं जो आपको सुनाने हैं। सो फिलहाल कहीं मचाइए, एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक ले रही हूँ, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड फील लाइव।

0: बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर हर चल रहे हैं मानवता की राह पर, और हम मानवता की राह पर चल रहे हैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के साथ। माहेश्वरी सदन जो है या भवन जो है वो आपको मिलेगा 7 सेक्टर में। कहाँ पूछूंगी, लेकिन ये सवाल पूछने से पहले राकेश जी, हम बात कर रहे हैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के बारे में, सो मुझे बताइए कि किस प्रकार के अलग अलग काम हैं जो किए जाते हैं।
1: जय महेश, ये माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट जो विभिन्न समय पे अंतराल में अपना कैंप लगाता है फरीदाबाद में, और इसका जो लाभार्थी है वो आसपास के 150 से 200 गांव इसके लाभार्थी होते हैं। जैसे हम पोलियो कैंप लगाते हैं या नेत्र चिकित्सा कैंप लगाते हैं। नेत्र चिकित्सा कैंप तो अब क्या है कि गवर्नमेंट की उसकी वजह से थोड़ा सा कम हो गया जी। बाकी वो लगाते हैं, तो हम एक महीने पहले से हम इन गांवों में, जो मेवात के गांव हो गए, नूह हो गए, उसके आसपास हमारी टीम जाती है और वहाँ पे प्रचार करती है। वहाँ के सरपंच हो गया या प्रधान हो गया, उनसे वो बात करती है, उनको पेम्पलेट देती है, फिर ये बताती है कि माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट जो कि सेक्टर 7A में स्थित है, वहाँ पे पोलियो कैंप चलता है, उसमें आप आए। और जो भी लोग वहाँ आते हैं, अपने आते तो वैसे वो लेके आते हैं डंडा जैसा की, लेकिन जाते अपने पैरों से हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। और हमारे समाज के जो व्यक्ति है, जो हमारे समाज के जो भी सदस्य है, उनका पूरा ध्यान भी रखते हैं और ये सेवा कार्य हम करते रहे हैं।
0: राकेश जी, एक चीज जरूर मैं आपसे जानना चाहूंगी, और वो ये है कि जो आप लोगों का एक सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है दिव्यांग के लिए कैंप, उसमें बहुत सारे दिव्यांग आते हैं। ऐसे लोग भी आते हैं जो कि दूर दूर से कहीं से आते हैं, जिनके पास शायद कोई सहारा नहीं होता है, उनके लिए किस प्रकार की सुविधा और किसके एसोसिएशन के साथ मिलकर किस तरीके से आप ये दिव्यांग कैंप लगाते हैं?
1: मैं आपको यही बता रहा था कि इसके लिए हम एक महीने पहले से गांव-गांव जाके भ्रमण करके उनको अपने जैसे एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, उनके सरपंच हो, प्रधान हो, उनको हम अपने पैम्पलेट देते हैं। अगर उनको बोलते हैं कि आपके पास अगर आने की सुविधा नहीं हो तो हमारे को इन्फॉर्म कर दो, हम वहाँ से गाड़ी भेज देते हैं, उनको बुलाते हैं। उसके बाद वहाँ पे हमारी पूरी टीम है समाज की, वो निस्वार्थ 24 घंटे वहाँ पे तैनात रहती है, और उनके जो भी डॉक्टर्स, जो महावीर, भगवान महावीर कैंप है जयपुर का, उसके साथ में मिलके हम उनका ये इलाज करवाते हैं और उनको पैरों से वापस भेजते हैं। उसके बाद उनको ट्राई साइकिल जो भी उनको देनी होती है वो भी हम समय समय पर देते हैं।
0: दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे दिव्यांग ऐसे होते हैं जो शायद कम पैसे होने के कारण या फिर कोई और परेशानी के कारण विकलांग तो हो गए, लेकिन उनके पास इतनी सुविधा नहीं होती है कि वो अपने अंग लगवा सकें। आजकल तो आपको पता ही है कि आर्टिफिशियल लिम्ब फिटमेंट होता है, कृत्रिम अंग जो है वो लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये लगाना भी तो अपने आप में एक कॉस्ट है। मिनिमम 5 से लेकर 15-20-25 हजार तक का एक खर्चा आता है, और कई बार परिवारों में इतना पैसा ही नहीं होता है कि उस विकलांग इंसान के लिए वो एक कृत्रिम कोई भी अंग है वो लगाया जा सके। लेकिन अच्छी बात यह है कि माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट निशुल्क आपके लिए ये काम करती है, और खूबसूरत बात यह है कि आप किसी भी गांव के हो सकते हैं, आप इस शहर में कहीं भी रह सकते हैं, आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर आप एक विकलांग हैं, दिव्यांग हैं और आपको आना है और आपको चाहिए कि आपका अंग लग जाए और उसके बाद आप अपना जीवन आसानी से बिता सकें, सो ये सब काम करती है माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट। जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं मैं जो इनसे जानना चाहती हूँ। आज माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट से रामकुमार राठी जी, राकेश सोनी जी और महेश जी मेरे साथ बैठे हैं। बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन एक और प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, यानी मैं सुनाने वाली हूँ आपको एक बेहतरीन सा गाना, लेकिन आप कहीं मत जाना। फील गुड फील लाइव।
2: क्या कहा?

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के साथ। माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट से मेरे साथ राम कुमार राठी जी हैं जो प्रेसिडेंट हैं, राकेश सोनी जी हैं जो ट्रेजरर हैं, और महेश जी हैं जो कि मुझे कहना चाहिए सर्वे सर्वा एक लंबे समय से माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट में काम कर रहे हैं। और इतने लंबे समय से मैं इन्हें काम करते हुए देख रही हूँ, मैं हमेशा चाहती हूँ कि भाई इनका जो नेकी का काम है ना वो जन जन तक पहुंचे। महेश जी, अब अगला सवाल आपके साथ। किसी भी काम को करने के लिए अकेला इंसान नहीं कर सकता, तो एक टीम की जरूरत होती है। मुझे बताइए आपकी टीम किस प्रकार काम करती है।
1: महेश गट्टानी, महामंत्री माहेश्वरी मंडल, अध्यक्ष हरियाणा पंजाब प्रादेशिक माहेश्वरी ट्रस्ट। माहेश्वरी समाज बिजनेस और सेवा कार्यों में हमेशा अग्रणी रहा है। जहाँ तक सेवा कार्यों को संपन्न करने का सवाल है, हम साल में कुछ न कुछ सेवा कार्य करते रहते हैं। हमेशा सेवा के कार्य चलते रहते हैं। सेवा के कार्य में जब भी हमारा कोई प्रकल्प सामने आता है, सबसे पहले हम कार्यकारिणी से अप्रूव करते हैं। उसके बाद में उस कार्य को एग्जीक्यूशन के लिए हम अलग अलग टीमें बनाते हैं। अपने प्रचार प्रसार की टीम बनती है, प्रिंटिंग का काम देखने की होती है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन का काम होता है, उसके बाद एग्जीक्यूशन के लिए ग्राउंड लेवल पे देखने के लिए कि भाई हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और 4-5 दिनों का अगर प्रोजेक्ट होता है तो शाम को उसका रिव्यू भी होता है। तो सब मिला के समाज में हमारे युवा साथियों की, सीनियर लोगों की फंड रेजिंग, तो सब मिलके उस काम को सफल बनाने के लिए हम दिन रात उसमें लगे रहते हैं जब तक पूरा, और उसी की बदौलत हमारे हर कैंप सफल होते हैं।
0: वाओ, तो आपने खुद ही देखा भाई माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के कितने सारे काम हैं, लेकिन इसके लिए एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग टीम की जरूरत है। अब आइडियली अगर आप किसी भी ट्रस्ट या फाउंडेशन की बात करें तो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर तो आपने सुना ही है और वो फोर फ्रंट पर हमेशा होते हैं, लेकिन उनके पीछे होती है वॉलंटियर्स की और मेंबर्स की एक बहुत बड़ी टीम। और माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी वॉलंटियर्स हैं, उन सभी को मैं सलाम करना चाहूंगी। जिस ढंग से वो लोग हर काम को एग्जीक्यूट करते हैं और जितने सेवा भाव से लगे रहते हैं, मुझे कहना चाहिए एक बहुत ही नेक संस्था है जो ढेर सारे काम कर रही है। भाई आने वाले समय में अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में आपके आसपास कहीं कोई ऐसा शख्स है जिसको किसी भी प्रकार की जरूरत है और उसकी जरूरत आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि उसकी जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है, सो एक ऐसी जगह है जहां आप दरवाजा खटखटा सकते हैं और वो है माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट। अब आप इनसे कैसे जुड़ सकते हैं, आप इनके कामों में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे एसोसिएट हो सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में करेंगे बात। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के साथ, और आज माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट से मेरे साथ राम कुमार राठी जी हैं, राकेश सोनी जी हैं और महेश जी हैं। राम कुमार जी, आपके पास वापस आऊंगी। जब कभी भी हम ट्रस्ट की बात करते हैं, फाउंडेशंस की बात करते हैं या एनजीओस की बात करते हैं, सो हमें ऐसा लगता है कि भाई ये सारे काम करना ना बड़ा आसान होता है। आप अपनी नौकरी पर जाइए, आप अपने बिजनेस में जाइए, फिर थोड़ा सा पैसा कंट्रीब्यूट करके आप एक टीम बना लीजिए और इन सारे कामों को कर दीजिए। लेकिन इन कामों को एग्जीक्यूट करने में ढेर सारे चैलेंजेस हैं जो आते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के किस प्रकार के चैलेंजेस हैं, तो क्या कहेंगे आप?
1: इन चुनौतियां तो इसमें काफी आती है
0: जी,
1: लेकिन फिर भी हमारी जो हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे ट्रस्टी हैं
0: जी,
1: उनके अंदर काफी सेवा भाव है।
0: वाओ।
1: और हम लगभग आपस में मिल करके इन चुनौतियों को पूरा कर लेते हैं। कोई भी काम करने के लिए बहुत ज्यादा ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता है
0: जी,
1: लेकिन हमारे जो मेंबर्स हैं वो बहुत ही सेवा भावी है।
0: वाओ।
1: उसके लिए मुझे उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। 1985 से ये संस्था, आज लगभग 42-43 साल हो रहे हैं, 42-43 साल से चल रही है, जुड़े हैं।
0: और अगर मैं मेंबर्स की या वॉलंटियर्स की या इसके लोगों की बात करूं, तो कितने लोग होंगे जो इस पूरे ट्रस्ट के साथ जुड़े हैं?
1: ये मेंबर हमारा लगभग मेंबर्स 1100 मेंबर के आसपास हमारे इस ट्रस्ट के हैं लोग।
0: इतना बड़ा वॉलंटियर ग्रुप, सोच सकते हैं आप, 1100 लोग अगर एक साथ इकट्ठे हो जाए So, क्या नहीं किया जा सकता है। और सोचिए, हर इंसान अपनी फील्ड में महारत हासिल किया हुआ, यानी ये सब एक बहुत सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन हैं, जो अपने अपने काम तो करते ही हैं, लेकिन सेवा भाव इतना है कि कोई भी इनके पास आए तो वो खाली हाथ ना जाए, उसकी झोली भर कर जाए। अब परेशानी कैसी भी हो सकती है, मान लीजिए कि कोई आए और कहे जी मेरे घर में खाने के लिए राशन ही नहीं है, तो ये इस चीज को भी इंश्योर करते हैं कि आपको वो भी मुहैया कराया जाए। और कई बार, जैसे मैंने कहा, कुछ बड़े बड़े काम है जो करते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप्स अक्सर ये लगाते हैं। गर्मी के समय में आपने देखा होगा, एक सबसे बड़ा चैलेंज है थैलेसेमिक बच्चे हो या नॉर्मल लोग हो, हॉस्पिटल्स में इसकी काफी ज्यादा किल्लत हो जाती है। सो किस प्रकार से होने वाला है ये सब करेंगे बात, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइट।

0: 1.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, A Step Towards Humanity. मानवता की राह पर हम चल रहे हैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के साथ. माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के बारे में आपने जाना 1985. Can you believe I was just born at that time? तब से आज तक ये पूरा का पूरा ट्रस्ट चलता आ रहा है. इतने सारे लोग इसके मेंबर्स हैं और उस टाइम से लेकर आज तक इतना सारा काम किया जा रहा है, मतलब हैट्स ऑफ. लेकिन ये एक ऐसी ट्रस्ट है जो निरंतर आने वाली पीढ़ी को भी सेवा सिखाती आ रही है. ऐसा नहीं है कि एक ही जनरेशन काम करती है, जनरेशन से जनरेशन ये काम सीखते जाते हैं, टीम बनती जाती है और ये सारे के सारे काम आप तक पहुंचते हैं. बेनिफिशियरीज की हमने बात की कि भाई किस तरीके के लोग हैं, गांव से लेकर शहर तक जिसकी भी जरूरत है ये वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. अब एक बड़ी जरूरी चीज है जो अक्सर मुझे लगता है कि हर फाउंडेशन, हर ट्रस्ट अपनी तरफ से कोशिश तो करता है लेकिन उन सभी के लिए बड़ा चैलेंज भी होता है ऐसी चीजों को ऑर्गेनाइज करना, और वो है ब्लड डोनेशन कैंप. भाई मैं खुद जब ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करती हूँ तो मुझे स्ट्रेस रहता है क्या पता लोग डोनेट करने आएंगे या नहीं. एक बड़ा ही खास डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. महेश जी, मैं चाहूंगी आप इसके बारे में जरूर बताएं.
1: जैसे कि आपने बताया है कि गर्मियों के अंदर ब्लड की बहुत ज्यादा कमी रहती है, उसी को ध्यान में रखते हुए हर साल हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते रहते हैं. और अभी आने वाले रविवार 24 मई 2026 को ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है जो रोटरी ब्लड सेंटर एवं रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर कर रहे हैं. और हमारा टारगेट मिनिमम से मिनिमम 101 यूनिट का है और हमारी कोशिश रहेगी 150 क्रॉस करें. और इसके लिए, इसको सफल बनाने के लिए हमने पिछले संडे मीटिंग करी थी. मीटिंग करके हमने अपने कार्यकर्ता की टीम बना के पूरे समाज में जो रेगुलर ब्लड डोनर्स है उनको 1-to-1 कॉन्टेक्ट करके फाइनली कि कौन लोग कंसेंट दे रहे हैं जो ठीक है उनकी हम लिस्ट तैयार करेंगे. और ब्लड डोनेशन कैंप से 2 दिन पहले फिर रिमाइंड करके और फिर फाइनली जो ब्लड डोनर डे के दिन उनकी एक एक लिस्ट को हम लोग टिक करके रहेंगे भी कौन बंदा नहीं आया कौन नहीं आया. तो ये ऐसा कैंप है जिसमें हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं जो ब्लड डोनेट कर सके और हमारे कैंप के साथ जुड़े. धन्यवाद.
0: ब्लड डोनेशन के लिए तो मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई बहुत जरूरी है ब्लड को डोनेट करना. क्यों? क्योंकि आपको भी पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटलों में बीमार हैं, एक एक यूनिट ब्लड का इंतजार कर रहे होते हैं. और आपने व्हाट्सएप पर तो देखा ही होगा फॉरवर्ड मैसेजेस आते हैं, हाथ जोड़े हुए इमोजी होती है, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई या फिर मेरे ससुर बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, आप लोग प्लीज आकर ब्लड डोनेट करिए. बट हम सब हमेशा यही सोचते हैं ना कि ये कौन लोग हैं जो ब्लड डोनेट करते हैं और उन लोगों तक पहुंच पाते हैं जो उनके लिए वाकई एंजल का काम करते हैं. सो हम और आप ही वो लोग हैं जो किसी के एंजल बन सकते हैं. अगर आप ये बनना चाहते हैं सो आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन सा मौका है. इस बार 24 मई 2026 को रोटरी ब्लड सेंटर के साथ ऑर्गेनाइज किया जाने वाला माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट का ये बहुत ही खूबसूरत सा इनिशिएटिव है. अगर इनकी ये मानना है कि 150 यूनिट होना चाहिए तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी इसे 200 यूनिट बनाएं. बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शायद पिछले 3 महीनों में ब्लड डोनेट ही नहीं किया. आप बिल्कुल हेल्दी हैं और ब्लड डोनेट कर सकते हैं. सो चलिए भाई इस बार का टारगेट बना लीजिए, आज ही से अपने कैलेंडर को ब्लॉक कर लीजिए. 24 मई को पहुंचिए माहेश्वरी सेवा सदन 7A, सेक्टर 7A फरीदाबाद, और मेरे साथ मिलकर चलिए भाई इस ब्लड डोनेशन कैंप को सक्सेसफुल बनाते हैं. सो आप सभी से यही अपील है कि आप सभी इस कैंप में आइए और किसी के लिए एंजल बन जाइए. और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ. फील गुड, फील लाइफ.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के साथ, और ये सारी बातें सुनकर आई एम श्योर आपके अंदर की मानवता जाग उठी है। अब आपको लग रहा है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। अब चलिए भाई, आप मेंबर नहीं है, वॉलंटियर नहीं है, तो बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, कौन आपसे एसोसिएट हो सकता है, कौन आपके साथ जुड़ सकता है, कौन कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, किस तरीके से आप एसोसिएट करते हैं, जानूंगी अब हमारे ट्रेजरर राकेश सोनी जी से।
1: हमारे यहाँ माहेश्वरी, जैसे माहेश्वरी मंडल का गठन हुआ था 1982 में
0: जी।
1: उसके 3 साल बाद हमने ये सोचा कि समाज की सेवा कैसे हो सकती है, इसलिए इसका गठन किया गया माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट का 1985 में
0: जी।
1: उसके नीचे भी हमारे माहेश्वरी मंडल में 2 संस्था और काम करती है, एक युवा संगठन और एक महिला संगठन। तो हम सब मिलके ये समाज सेवार्थ कार्य जैसे समय समय पर अंतराल में हम करते रहते हैं। हर 3 महीने में हम अपनी मीटिंग बुलाते हैं, फिर ये सोचते हैं कि इंटरमीडिएट क्या हमारे को समाज की सेवा का काम करना चाहिए। कभी हम आई कैंप लगाते हैं, कभी पोलियो कैंप लगाते हैं, कभी आयुर्वेदिक कैंप भी लगवाते हैं, कभी ब्लड हार्ट चेकअप कैंप लगवाते हैं। ऐसे हम अंतराल में कुछ न कुछ करते रहते हैं, और इसमें सभी हमारे माहेश्वरी समाज के वॉलंटियर है जो अपनी स्वेच्छा से वहाँ आते हैं और अपना जैसे समय का जो भी है जो देते हैं। और हमारे समाज में भामा साहब की कोई कमी नहीं है, उसका हमारे पास कोई भी कभी कमी का महसूस नहीं होता है, और इसीलिए हम अपना समाज की सेवा के काम करते रहते हैं।
0: नहीं देखिए, मैं ना हमेशा कहती हूँ 3 तरीके के दान होते हैं। आप श्रमदान दीजिए अगर आपके पास श्रम है तो, भाई आपकी क्षमता है और आप जाकर श्रम कर सकते हैं, यानी आप जाकर वॉलंटियर कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है भाई आपके पास टाइम ही नहीं है, आप मेरे जैसे इंसान हैं जो अक्सर अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। सो आपके पास एक चीज़ है, धन। सो आप धन का दान दे सकते हैं, उस धन से बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है। सो कई बार आपने देखा होगा कि श्रम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनके पास श्रम से होने वाला जो दान है उसके लिए धन चाहिए होता है, वो नहीं होता है। और तीसरा सबसे जरूरी दान, समय का दान। आज के जमाने में मोबाइल फोन में हम घंटों खत्म कर देते हैं, अगर आप अपने 2 घंटे भी निकालते हैं और अपना समय आप जाकर किसी को मोटिवेट या इनकरेज करने के लिए देते हैं ना, तो इससे अच्छा और इससे बड़ा दान हो नहीं सकता है। माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट न सिर्फ ऑर्गेनाइज तरीके से, बहुत ही खूबसूरती से अपने जितने भी कहना चाहिए माहेश्वरी ट्रस्ट के जितने भी लोग हैं और जितना भी इनका समाज है, वो तो आगे बढ़ता ही है, लेकिन क्या हम इसमें अपना हाथ नहीं निभा सकते हैं या हम इनका साथ नहीं दे सकते हैं? जरूर दे सकते हैं। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि इनके चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हैं, दिव्यांग कैंप्स हैं, या फिर इनके अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं, इसमें आप भी जुड़ सकते हैं। बेनिफिशरीज लाने के तरीके से, कॉन्ट्रीब्यूशन के तरीके से, वॉलंटियर के तरीके से आप जरूर ये कर सकते हैं, और चलिए मिलकर इस दुनिया को और भी खूबसूरत जगह बनाते हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के साथ। हमारे साथ माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट से रामकुमार राठी जी हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं, राकेश सोनी जी हैं, जो ट्रेजरर हैं, और महेश घटानी जी हैं, जिनको मैं एक लंबे समय से जानती हूं, और मैंने इनके ढेर सारे इनिशिएटिव्स और बहुत सारे कामों को खुद विटनेस भी किया है। तहे दिल से धन्यवाद कि आज आप तीनों आए। लेकिन जाने से पहले हमारे सभी लिसनर्स को क्या खास मैसेज आप देकर जाना चाहेंगे? रामकुमार राठी जी, आपसे शुरुआत करेंगे।
1: सभी के लिए संदेश, मानव मात्र की सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और हमारे समाज का मोटो भी सेवा ही संकल्प है।
2: मैं तो यही कहूंगा कि समाज के लिए हर किसी व्यक्ति को अपना समय जरूर देना चाहिए। समय दोगे, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी आप काम हाथ में लेंगे तो आपके पास धन की कभी कमी नहीं आएगी। बस आपका मोटिव अच्छा होना चाहिए, सेवार्थ भाव होना चाहिए, तो समाज की सेवा करते रहना चाहिए। यही हमारा समाज का सेवा ही संकल्प, यही हमारा समाज का ध्येय है।
3: माहेश्वरी समाज का मेन मोटो ही सेवा ही संकल्प है, क्योंकि पूरा समाज, चाहे कहीं से पूरे भारतवर्ष में देखें, संख्या में बहुत कम है, लेकिन समाज बिजनेस में सबसे अग्रणी है और सेवा में भी अग्रणी है। राजस्थान में आप एक एक गांव में देखेंगे तो धर्मशाला से लेके हॉस्पिटल से लेके पशु पक्षियों तक का ध्यान रखा जाता है। उसका मेन मोटो हम लोगों का यही है, सेवा ही संकल्प। जब भगवान ने अगर हमारे को जीवन दिया है तो उस जीवन की सार्थकता उसी में है कि हम मानव मात्र की कुछ सेवा कर सके। जय महेश।
0: न सिर्फ समाज का जो संकल्प या कहना चाहिए मोटो है वो बहुत ही खूबसूरत है कि सेवा ही संकल्प है, लेकिन साथ के साथ आप खुद ही देखिए कि अगर आपको भगवान ने समर्थ बनाया है, हमेशा हम कहते हैं ना कि भगवान ने हमें समर्थ बनाया है, सो जब आप समर्थ हैं सो कोशिश करिए कि आप समाज को और भी समर्थ बनाएं। ना कि हम खुद तो खूब अमीर हो जाएं, लेकिन आसपास का हमारा समाज जो है ना वो हमेशा आपको लगे कि उस तरीके से नहीं बढ़ पाया है जिस तरीके से बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम इस समाज का ही एक हिस्सा हैं। सो आज हम चले माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के साथ, जहाँ पर हमारे साथ रामकुमार राठी जी, राकेश सोनी जी और महेश घटानी जी थे, और आज की इस मानवता की राह पर हमने माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के बारे में ढेर सारी जानकारी ली। वक्त है आपसे इजाजत लेने का। आपसे इजाजत लेते हुए बस एक ही वादा, अगले हफ्ते मैं आऊंगी आप ही के साथ, लेकिन तब तक के लिए आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। आरजे भावना को दीजिए इजाजत। फील गुड, फील लाइव।

0: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम की आज इस कड़ी में मैं जिनके साथ बैठी हूँ वो उतनी ही खूबसूरत है, दिल से ही नहीं चेहरे से भी। और इनका नाम है शशिकला कनकानी। शशिकला कनकानी जी दिल्ली सिटी चैप्टर की लीडर हैं फ्रेंड्स ऑफ मैक्स की, इसके साथ साथ प्रेसिडेंट है राजस्थान एसोसिएशन लेडीज विंग। और अगर देखा जाए तो एक बहुत ही खूबसूरत सा एनजीओ है जिसके साथ एक लंबे टाइम से एसोसिएटेड है, और वो है मदर टेरेसा क्लब। सो बहुत सारे सोशल वर्क के काम ये करती हैं और मैं इन्हें सही मायने में दिल से सोशल एक्टिविस्ट कह सकती हूँ। लेकिन आज हम इनका स्वागत करेंगे क्योंकि आज महिला सशक्तिकरण की इस खूबसूरत सी कड़ी में हम इनके विचार, इनके जीवन के बारे में बहुत सारी बातें जानने वाले हैं। शशिकला जी आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना के स्टूडियो में।
1: नमस्कार भावना जी और धन्यवाद आपका, मुझे भी उतनी ही खुशी है आपसे मिलके।
0: शशिकला जी पहला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस कार्यक्रम का स्टैंडर्ड सवाल है और हर महिला से मैंने ये सवाल पूछा है। मेरा ये मानना है कि महिला सशक्तिकरण दरअसल एक बहुत ही पर्सनल चीज है। सशक्तिकरण के मायने हर महिला के लिए अलग है। किसी के लिए मात्र पैसा कमाना सशक्तिकरण हो सकता है, सो किसी के लिए एक डिसीजन लेना सशक्तिकरण हो सकता है, किसी के लिए फ्रीडम सशक्तिकरण हो सकता है, तो किसी के लिए एक डेजिग्नेशन सशक्तिकरण हो सकता है। सो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके नजरिए में आपके लिए महिला सशक्तिकरण क्या है?
1: मेरे नजरिए में भावना जी महिला सशक्तिकरण होगा महिला को ना केवल उसका अधिकार देना बट उसके प्रति उसको जागरूक करना, और उसको ये विश्वास होना चाहिए कि मैं ये चीज कर सकती हूँ, चाहे वो छोटे से छोटी घर का काम हो या बड़े से बड़ा एमएनसी में कोई पोस्ट संभालना हो, और समाज में सम्मान पूर्वक अपनी पहचान बना सके, मेरे हिसाब से वो महिला सशक्तिकरण है।
0: वाकई देखिए भाई, मैं हमेशा महिलाओं के लिए एक ही बात कहती हूँ कि महिला जब तक खुश है और वो अपने डिसीजंस खुद ले पा रही है तब तक वो सशक्त है। अब जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपको करोड़पति होने की जरूरत हो या किसी बहुत बड़ी डेजिग्नेशन पर बैठे होने की जरूरत है। सशक्तिकरण तब भी आ सकता है जब आप अपना जीवन अपने तरीके से बहुत कम पैसों में जी रहे हैं, और सशक्तिकरण तब भी आ सकता है जब आप पैसे बिल्कुल भी नहीं कमा रही हैं लेकिन अपने जीवन में जो आप चाहती हैं वो आप कर पाती हैं, क्योंकि सशक्तिकरण आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। एक वक्त है प्यारे से खूबसूरत से गाने का, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। इस गाने के बाद वापस लौट कर आएंगे। शशि कनकानी जी से बहुत सारी बातें हैं जो करनी है, सो आप कहीं नहीं जाएंगे। फील गुड फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट। अब जब मैं वी कहती हूँ ना, तो मेरा मतलब दरअसल होता है महिलाएं एक साथ आ जाए तो दुनिया में सब कुछ बदल सकता है। पर परेशानी सदियों से यही आती है कि पुरुष महिलाओं को ना कहीं अलग रखने की कोशिश करते हैं, और कुछ महिलाओं के अंदर इनबिल्ट एक चिप होती है जिसमें कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने आप में सर्वे सर्वा हैं और उन्हें किसी और की जरूरत नहीं है। सो ये जो एक व्यवहार है महिलाओं का, इसके कारण भी सशक्तिकरण इतना डिलेड हम महसूस कर रहे हैं। शशि कंकानी जी हमारे साथ हैं, और शशि कंकानी जी दिल्ली सिटी चैप्टर की लीडर हैं फ्रेंड्स ऑफ मैक्स एनजीओ की, एक खास एनजीओ जो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है खास तौर पर कैंसर पेशेंट्स के लिए। इसके साथ साथ ये प्रेसिडेंट है राजस्थान एसोसिएशन की लेडीज विंग की और मदर टेरेसा क्लब के साथ तो ये लंबे समय से एसोसिएटेड भी हैं। अब अगला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ वो वर्तमान समय की महिलाओं के बारे में है। शशि जी, हम ना एक लंबा सफर तय करके आ गए हैं। एक जमाना था बच्चियों को पैदा होने का मौका नहीं मिलता था, कन्या भ्रूण हत्या बहुत कॉमन रहा है। उसके बाद हम आगे बढ़े, कन्या भ्रूण हत्या बंद हुई, फिर बच्चियों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। अब बच्चियां पढ़ पा रही हैं, यहाँ तक कि फ्री एजुकेशन भी उन्हें मिल पा रही है। फिर बच्चियों को एक और परेशानी आती थी कि वो थोड़ी सी जवान होती थी तो उनकी शादियां हो जाती थी, चाइल्डहुड मैरिज जिसकी मैं बात करती हूँ, बाल विवाह। सो वो भी खत्म हुआ, अब वो एक ऐसी पड़ाव पर हैं जहां वो अपनी शादी को शायद 18 साल की उम्र के बाद देख पाती हैं। और फिर एक पड़ाव आया जहां वो शादी के लिए कंपेल्ड नहीं होती हैं, वो अपना जीवन साथी खुद चुन पाती हैं, अपने लिए वो रोजगार ढूंढ सकती हैं। हम इस यहां तक आ गए हैं, लेकिन यहां आने के बाद भी हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं सशक्तिकरण की कमी है। सो अगर मैं आज के चैलेंज की बात करूं, सो क्या लगता है किस प्रकार का चैलेंज है आजकल की महिलाओं के साथ?
1: महिलाओं के लिए मेरे हिसाब से ना, उन्हें आज भी अपनी क्षमता साबित करनी पड़ती है, और कई बार उन्हें ना परिवार, समाज और अपने आसपास के लोगों के हिसाब के साथ में समान अवसर नहीं मिलते।
0: वाकई
1: काम करने का समान अवसर नहीं दिया जाता है। एंड इसके साथ भी ना एक और है कि लोग क्या कहेंगे, वो आज भी एक कहीं ना औरतों के मन में, लेडीज के मन में, खासकर उनके मन में ये जरूर आता है। जैसे बहुत सारी लेडीज होती हैं, वो कुछ करना चाहती हैं, उनके आइडियाज हैं, बट क्योंकि लोग क्या कहेंगे वो उन्हें कहीं ना कहीं रोक देता है। और फिर हम ना वो उस ढर्रे पे चलने लग जाते हैं कि ठीक है, पीछे से जो चीज होते आ रही है वो आगे भी हम करते जा रहे हैं।
0: वाकई
1: वो है एक चीज।
0: देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और इसके शिकार महिलाएं तो बहुत ज्यादा हुई हैं। अरे, महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, रात की जॉब तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और अक्सर महिलाओं को बहुत सारी चीजों पर रोक टोक लगाई जाती है। मैंने ऐसी बहुत सारी महिलाएं देखी हैं जिन्होंने बहुत ही ज्यादा पढ़ाई की है, लेकिन वो घर पर बैठकर सिर्फ होममेकर के टैग के साथ जीती हैं, अपनी आकांक्षाओं का गला घोटकर जीती हैं। सो ये आज भी हमारी महिलाओं के लिए वर्तमान समय में मुझे लगता है एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब तक महिलाओं का रोल डिफाइन किया गया है ना घर की चार दीवारी, तब तक शायद बहुत सारी परेशानियां महिलाओं के साथ रहेंगी। क्या किया जा सकता है? अगर आपके पास है सजेशन तो भेज दीजिए मेरे पास 8010781078 पर। आप जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ, सुना रही हूँ आपको प्यारा सा गाना, लेकिन आप कहीं मत जाना, फील गुड फील लाइव।
2: हमसे रोशन है चांद और

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम और उतना ही बेहतरीन सा एपिसोड। शशिकला जी एक ऐसी महिला है जो बहुत सशक्त है, बचपन से ही बहुत सारी कुरीतियों को देखने के बाद भी ये हमेशा से एम्पावर्ड रही, और शायद इन्होंने एम्पावरमेंट आने वाले समय में अपनी जनरेशन्स के साथ साथ आने वाली जनरेशन्स को भी दी, और इसीलिए इनके न सिर्फ स्वभाव में लेकिन आप देखेंगे कि इनके हाव भाव में भी सशक्तिकरण नजर आता है। जिस तरीके से इन्होंने सोशल वर्क को अपनाया है और जिस तरीके से अपने समय का और अपनी कला का सदुपयोग करने की कोशिश कर रही हैं, ये एक सबसे बड़ी कला है शशिकला जी में। शशिकला जी, अगला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, सशक्तिकरण की आपकी यात्रा, सो अगर देखा जाए तो आपकी एक लंबी जर्नी रही है इन खूबसूरत 55 सालों की।
1: हाँ।
0: इसमें कई ना कई जिंदगी में आपने कोई एक ऐसा निर्णय लिया होगा जिसको लेने के बाद आपको ये महसूस हुआ होगा कि मैंने बड़ा एम्पावरिंग डिसीजन लिया है, ये बड़ा सशक्तिकरण भरा डिसीजन है, और उसके बाद ये मैं कह सकती हूँ कि आपको कोई रिग्रेट नहीं था या आपको लगा कि यस ये मेरा डिसीजन बिल्कुल सही है।
1: भावना, मैं राजस्थान से हूँ
0: जी,
1: और मैं राजस्थान में क्लास 4 से लेके क्लास 9 तक पढ़ी हूँ
0: जी,
1: जहाँ मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ती थी, और मैं बात कर रही हूँ वे बैक 1984
0: जी।
1: सो उस टाइम में राजस्थान में 9th स्टैंडर्ड में हम कोर्स ले लिया करते थे अपना, जो अभी 11th में लेते हैं हम 9th में ले लिया करते थे
0: जी।
1: और मैं क्योंकि ऑल गर्ल्स स्कूल में थी, गर्ल्स स्कूल में सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स अलाउड था
0: जी।
1: सो मैंने अपने दादी जी से कहा, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी आर्ट्स, मैं कॉमर्स करूंगी
0: जी,
1: मुझे कॉमर्स करना है और मुझे सीए कंप्लीट करनी है।
0: वाओ।
1: सो वो आप समझ सकते हो कि वो कितना अपोजिंग डिसीजन रहा है मेरा।
0: वाकई।
1: और मैंने फिर अपने प्रिंसिपल सर से बात करी, जो बॉय स्कूल के प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने कहा कि शशि अगर तुमको करना है तो तुम 5 फ्रेंड्स को ले आओ
0: जी।
1: मैंने कहा ठीक है, तो मैंने अपनी 5 फ्रेंड से बात करी, उसमें एक मेरे प्रिंसिपल सर की बेटी भी थी
0: जी।
1: तो मैंने उससे कहा, कृष्णा से, कि कृष्णा हम कॉमर्स करते हैं, एंड वी वेंट 5 लड़कियां, हम मैंने बनाया ग्रुप और मैं गई और हमने लिया
0: जी।
1: और बिलीव मी मैंने स्कूल टॉप किया।
0: वाओ।
1: क्लास 9th में, एंड वी वर हम सिर्फ 5 लड़कियां थी पूरे बॉय स्कूल में, 6th स्टैंडर्ड से लेके 11th स्टैंडर्ड तक का क्लास था
0: जी,
1: उसमें सिर्फ और सिर्फ हम 5 लड़कियां थी। डेफिनेटली मुझे बहुत कुछ सुनने को भी मिला लोगों से, मेरे दादी जी ने मेरा साथ दिया, मेरे फादर ने मेरा साथ दिया, मेरे फादर ने मुझे कहा तुम जो ले रही हो आई एम विथ यू,
0: वेरी नाइस,
1: सी टू इट कि भाई कोई इस तरह का कोई भी चीज नहीं हो, बस और कोई बात नहीं है, आई एम विथ यू। एंड आई वेंट ऑन, आई डिड माई 9th स्टैंडर्ड फ्रॉम देयर, देन आई शिफ्टेड टू कोयम्बटूर। सो आई थिंक वो हमारे मेरा पहला सशक्तिकरण आप बोल सकते हो,
0: मतलब इमेजिन एट द एज ऑफ 13 आप इतना एम्पावरिंग डिसीजन लें कि भाई मुझे कॉमर्स करनी है, ऑल बॉयज स्कूल में जाकर मात्र 5 लड़कियां वर्सेस प्रोबेबली 250 स्टूडेंट्स, बहुत बड़ा डिसीजन है। लेकिन यही हम कहते हैं महिलाओं का सशक्तिकरण, यानी क्या आप अपनी चॉइसेस को रख पा रही हैं। आज भी आई एम श्योर बहुत सारी महिलाएं कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशंस में हैं, क्यों? क्योंकि टीचिंग लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए सेफ होता है, आप सुबह सुबह जाएंगी, दोपहर तक घर आ जाएंगी, बच्चों का भी ख्याल रहेगा और आप भी नॉर्मल काम कर सकती हैं, ये कहकर बहुत सारी महिलाओं को सिर्फ टीचिंग प्रोफेशन में पुश किया जाता है, चाहे फिर वो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करना चाहती हों, कहीं और कॉर्पोरेट्स में जॉब करना चाहती हों, लेकिन कंपेल किया जाता है क्योंकि वो उनके लिए सेफ है। और यही कुछ ऐसे प्रलोभन है या कहना चाहिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे पुश कर करके महिलाओं को हमेशा एक कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जीने के लिए कहा जाता है। लेकिन क्या आप उन महिलाओं में से हैं जो सशक्त है, जो अपने लिए डिसीजंस ले सकती हैं और अपने डिसीजंस लेने के बाद विदाउट अ रिग्रेट उन पर आप अडिग रह सकती हैं, तो आप एक सशक्त महिला हैं। एक बार अंदर झांक कर देखिए अपने दिल से, और अगर आपने अभी तक ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया है तो इट इज टाइम कि आप एक डिसीजन जरूर लें। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ, फील गुड फील लाइव।

0: मशहूर हो जाए।
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण की इस खूबसूरत सी कड़ी में आज मैं बैठी हूँ शशिकला कंकानी जी के साथ। शशिकला जी वैसे तो दिल्ली सिटी चैप्टर की लीडर हैं फ्रेंड्स ऑफ मैक्स एनजीओ के साथ, प्रेसिडेंट हैं राजस्थान एसोसिएशन की लेडीज विंग, और उसी के साथ साथ मदर टेरेसा क्लब के साथ जुड़ी हुई हैं, माहेश्वरी मंडल के साथ जुड़ी हुई हैं, मतलब बहुत सारे सोशल वर्क करती हैं। लेकिन इन सब सोशल वर्क के कामों में ये महिलाओं को सशक्तिकरण देने का भी एक बहुत खूबसूरत सा काम कर रही हैं। सो कहीं जीवन दान देने की कोशिश करती हैं, कहीं अपनी केयर देने की कोशिश करती हैं, लेकिन साथ के साथ महिलाओं को एक नई सोच भी देने की कोशिश कर रही हैं। शशि जी, अब अगला बड़ा अहम सवाल, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हमने बड़ी प्रगति की है, सो हमने बहुत सारा अगर देखें तो हमने जहाँ तक अपनी डेवलपमेंट हो सकती है महिलाओं ने की है। कुछ महिलाओं ने रिबेल करके, कुछ महिलाओं ने परिवार को मना के, जैसे कि अगर हम आपके केस में देखें तो आपने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया। ऐसे ही बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने शायद पेरेंट्स नहीं माने तो भी उन्होंने रिबेल किया, लेकिन वो आगे बढ़ी, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए, मतलब बहुत सारी ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल हैं। लेकिन आज भी अगर आप देखें तो हमारे समाज में वो इक्वालिटी नहीं है। आज भी शायद एक महिला अगर काम करके घर वापस आती है और वो ये एक्सपेक्ट करती है कि मुझे एक कप चाय मिल जाए, और कि अगर वो उसका पति ही है तो वो उसको ये एक्सपेक्टेशन रखना गलत है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने बहुत सारे रोल्स को डिफाइन कर दिया है, महिलाओं पर कुछ जिम्मेदारी ऐसी डाल दी है कि हमें ऐसा लगता है कि आप इन जिम्मेदारियों के लिए ही बने हैं। और बहुत सारी चीज़ों की इक्वालिटी, एक घर में एक पुरुष है जो उतने पैसे नहीं ला सकता क्योंकि उसके पास उतनी क्षमता नहीं है या उतना पोटेंशियल या प्रतिभा नहीं है, लेकिन उसी घर में एक महिला है जो उतना प्रतिभा भी रखती है लेकिन उसे कमाने के लिए बाहर नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि समाज क्या कहेगा कि पुरुष घर पर बैठा और महिला कमाने के लिए जा रही है। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ आज भी हम देखते हैं समानता नहीं है। क्या कुछ किया जा सकता है इस समानता को लाने के लिए?
2: इस समानता को लाने के लिए सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा हमें
1: जी,
2: हमारा जो थॉट प्रोसेस है। एंड आई थिंक लेडीज का एक बहुत अहम रोल रहेगा इस थॉट प्रोसेस को बदलने में
1: जी।
2: अगर घर की लेडी, सपोज मैं घर की लेडी हूँ और अगर मैं ये चीज कह दूँ या इस चीज पे अपने बच्चों को ये दूँ, मेरा बेटा है बेटी है दोनों को इक्वल राइट्स है और कोई हार्म नहीं है, और अगर मेरी बहू भी आती है घर में तो मुझे ये, मतलब जो आपने बोला कि एक कप चाय नहीं एक्सपेक्ट कर सकती, मेरे हिसाब से मुझे ये चीज फॉरवर्ड आके करना चाहिए। सो मुझे अगर घर की लेडी की सोच बदली हुई है तो आई थिंक वी कैन, हम वो चीज बहुत अच्छे से अचीव कर पाएंगे।
1: देखिए शशि जी ने एक बात बिल्कुल सही कही है कि इसमें भी महिलाओं का हाथ है, और मैं तो ये कहती हूँ परवरिश में हाथ है।
2: यस,
1: क्योंकि परवरिश महिला का
2: रोल है, महिला का।
1: अगर हम जब एक लड़के की परवरिश कर रहे हैं और उसे उतनी ही जिम्मेदारियों के साथ उसे कहें कि वो उसका बचपन,
2: छोटा सा वाक्य याद आ रहा है अपनी लाइफ का
1: जी।
2: तो मैं अपने दादाजी दादी जी के पास पढ़ी थी फ्रॉम क्लास 4 to 9
1: जी।
2: तो जब मैं क्लास 8 में थी, 13-14 ईयर्स की रही हूँ, तो उन दिनों में मेरे जैसे जितने भी राजस्थान में मेरी जितनी भी क्लासमेट्स थी उनकी बाई 87, 86, 87, 88 शादी हो गई
1: जी।
2: तो मेरे लिए भी किसी ने प्रपोजल भेज दिया
1: जी।
2: तो मेरे दादाजी बोले अच्छा हम कंसिडर कर सकते हैं, और इमीडिएटली मेरी दादी जी बोली अभी ये पढ़ रही है और ये पढ़ेगी आगे। सो मेरा दैट्स व्हाट आई वांट टू से इज कि ये चीज ना घर लेडीज के हाथ में ही है एंड
1: yes.
2: और हमें ये चीज रियलाइज करनी चाहिए क्योंकि हमारे पास ना गॉड ऑलमाइटी का भी एक पावर दिया हुआ है जिसे हमें रियलाइज करना है और उसे अप्लाई करना है। सृजन हमारे हाथ में है। मदर्स डे पे मैंने एक कोट पढ़ा कि 50% ऑफ द वर्ल्ड आर वुमेन, द अदर 50% आर हर चिल्ड्रन।
1: यस,
2: सो बेसिकली हमें ही वो चीज करना है। और जैसे आप कहते हो वी, तो वी का मतलब है हम।
1: यस,
2: तो वुमेन एम्पावरमेंट हम अगर करेंगे तो वुमेन एम्पावरमेंट अपने आप ही आ जाएगा। वुमेन एम्पावरमेंट का ना कहीं भी ये मतलब नहीं है कि वी हैव टू अर्न, मैं अर्न कर

इसीलिए मैं कहती हूँ कि सशक्तिकरण का जो डेफिनेशन है ना, वो हर महिला के लिए जुदा हो सकती है। सिर्फ पैसा कमाना या सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी मेरे हिसाब से सशक्तिकरण नहीं है, ये उसका एक स्टेप हो सकता है। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी के डिसीजन खुशी से अपने लिए ले सकते हैं, विदाउट अ प्रेशर आप जी सकते हैं। भाई मान लीजिए कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन आपको एक सबैटिकल लेना है, आपको लगता है जी बहुत काम कर लिया, मुझे 10 साल का ब्रेक लेना है, मुझे आराम करना है, तो आप अपने डिसीजन ले रहे हैं। अब ऐसे में कोई आकर कहे ये तो तुम्हारे करियर का पीक है, तुम कैसे इस डिसीजन को ले सकते हो, अभी तो तुम्हें कमाना चाहिए। सो यहां पर आपका सशक्तिकरण खत्म होता है, जहां आप किसी और के डिसीजन से जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन वहीं पर आप बहुत टैलेंटेड हैं और आप काम करना चाहती हैं, और आपको ये कहकर घर पर रख दिया जाए कि आप इस घर की बहू हैं, इस घर में बहुत पैसा है, हमें तुम्हारे पैसे की या तुम्हारी सैलरी की जरूरत नहीं है इस घर को चलाने के लिए, सो वी डोंट वॉन्ट यू टू गो आउट एंड अर्न, ये कहते हैं सशक्तिकरण ना होना, ये आप पर थोपा जा रहा है। लेकिन वहीं पर अगर आप अपनी मर्जी से, चाहे आप होम मेकर बनना चाहती हैं, आप एक क्रिएटिव डिजाइनर बनना चाहती हैं, घर बैठकर काम करना चाहती हैं, ये इसमें कोई अर्ज नहीं है, आप उतनी ही सशक्त महिला है। बट परेशानी ये है कि हम सशक्तिकरण की सही डेफिनेशन को समझ पा रहे हैं या नहीं, और क्या समाज हमें ये सही डेफिनेशन दे पा रहा है, यानी क्या हमें वो ये अधिकार दे पा रहा है। सो कहीं ना कहीं अधिकार नहीं है, इसीलिए इस प्रकार के कार्यक्रम है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट। देखिए शशि कला जी की बड़ी खूबसूरत सी कहानी जो आपने सुनी है, आई एम श्योर हम बहुत सारे लोग इससे इंस्पायर्ड होंगे। मैं तो इस बात से इंस्पायर्ड हूँ कि अगर आप एक ऐसी महिला है जिनके पास पूरे घर की अथॉरिटी है, सो प्लीज अपनी डाउन दी जनरेशंस को वो लिबरेशन दे दीजिए, वो एम्पावरमेंट दे दीजिए जिसकी उन्हें जरूरत है, और फिर धीरे धीरे ये एक प्रैक्टिस बन जाएगी। डाउन द लाइन हर सास, हर माँ, हर बड़ी बहन, हर भाभी, हर जेठानी शायद लोगों को, आने वाली पीढ़ी को लिबरेशन देगी, सपोर्ट देगी, सपोर्ट देगी देन कि हम ये सोचें कि वो उन पर अंकुश लगाने की कोशिश करेगी। शशि जी, आप ना बहुत ज्यादा डीपली रूटेड है सोशल सर्विस में, ढेर सारे काम, मतलब मैं अगर देखूं तो आप फ्रेंड्स ऑफ मैक से तो करीबन 2000 से जुड़ी हुई हैं। अगर मैं बात करूं मदर टेरेसा क्लब की, मैं राजस्थान एसोसिएशन की, माहेश्वरी मंडल की बात करूं, तो हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप एक लंबे समय से और बहुत ही समय से आप सोशल वर्क के काम कर रहे हैं। सो इस सफर की शुरुआत कब और कैसे हुई और ये आपके अंदर कैसे आया?
1: इसके लिए मैं श्रेय दूंगी मेरे फादर को
0: जी,
1: बिकॉज मैंने ना उनको बचपन से देखा है एज अ गिवर
0: जी,
1: तो मुझे कहीं ना कहीं वो चीज इनहेरिट हो गई। और मेरी दादी जी, मेरी मदर, एंड देन इट वाज सपोर्टेड, मतलब वो चीज मेरे हस्बैंड में भी है, सो इट जस्ट कंटिन्यूड लाइक दैट। और मेरा जो मैंने किया गिविंग, जैसे छोटी छोटी चीजें तो हम करते ही थे
0: जी,
1: कुछ भी, जैसे शेयरिंग इज केयरिंग,
0: यस।
1: तो मैंने ना शुरू से ही क्लासरूम में भी, तो आई हैड सो मेनी, जिसको भी कोई जरूरत होती कभी भी, वो पूरे क्लास में सबसे पहले मेरे पास आता,
0: वेरी गुड
1: शशि, डू यू हैव दिस,
0: यस
1: आई नीड दिस। सो और आज भी वही होता है
0: जी,
1: जैसे हमारा मदर टेरेसा ग्रुप है, 50 लेडीज का ग्रुप है
0: जी,
1: बट अगर उसमें मैं नाम नहीं लूंगी, बट उसमें अगर किसी को भी कोई तरह की हेल्प चाहिए, उनके दिमाग में सबसे पहले नाम जो आता है वो शशि कंकानी का होता
0: है। यस,
1: सो दैट इज द थिंग। और जैसे मैं क्लास 11th में थी
0: जी,
1: तो मेरी एक क्लासमेट थी, शी वाज फाइनेंशियली वीक,
0: यस,
1: तो हम एक्सकर्शन ट्रिप पे जा रहे थे एंड शी कुडंट गो
0: जी,
1: तो मैं जब मुझे आई ओवरहर्ड, शी वाज जस्ट माय क्लासमेट, मुझे मतलब मैं उससे उसके बाद में कभी मेरी उससे बात भी नहीं हुई है, जैसे मैं बाकियों से कनेक्टेड हो गई, बट उससे मैं अभी भी नहीं कनेक्टेड हूँ। तो उस वो अपने फ्रेंड सर्कल में बोल रही थी कि यार तुझे पता है मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं आना चाहती हूँ बट मैं नहीं आ पाऊंगी
0: जी,
1: तो आई जस्ट ओवरहर्ड इट एंड देन आई वेंट टू माय क्लास टीचर
0: जी,
1: आई सेड मैम मैं ना इसका पैसा मैं भर देती हूँ, दिस इज वे बैक इन 84,
0: जस्ट इमेजिन
1: 500 रुपीज वाज अ बिग अमाउंट एट दैट टाइम,
0: हां या एक्चुअली।
1: तो मैंने वो दिया अपने पॉकेट मनी से निकाल के, एंड आई डिडंट टेल माय पेरेंट्स आल्सो, दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग दिस,
0: वाओ,
1: nobody knows about it, so and the happiness on her face, she was so happy and she kept asking my class teacher
0: ki kisne diya,
1: ki ma'am kisne diya mera paisa, please aap mujhe bata do, so I want to thank her,
0: yes,
1: and I said nahi aap batana mat ma'am, so till date she also doesn't know, you are the first person to
0: wow, do it, wow। to bhai dekhiye agar wo radio manav rashta 107.8 FM sun rahi hai to ab aapko pata hai ki aapki classmate shashi gankani ji ne wo 500 rupaye diye the aapko excursion par le jane ke liye, but yes यहीं से शायद बीज शुरू होता है। सो क्या आपने डाउन योर जनरेशन अपने बच्चों में भी इसे डाला है?
1: यस, माय चिल्ड्रन आल्सो हैव, जैसे मेरा बेटा है, उसने अपनी फर्स्ट सैलरी पूरी की पूरी बॉम्बे में था, एक्सेंचर में, सो ही यूज्ड टू गो नियर बाय, देयर वाज एन एनजीओ फॉर डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन
0: जी,
1: सो ही वुड गो देयर, वहां जाके उनको बुक्स देना, फूड देना और किताब, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, तो मेरे दोनों बच्चे करते हैं, इवन व्हेन दे वर हियर स्कूल में थे तब भी वो जैसे झुग्गियों पे जाके और कुछ बांट के आना करते थे।
0: तो देखिए भाई, ये ना कुछ चीजें हैं जो आप सिखा सकते हो। समाज से हम बहुत कुछ लेते हैं, एक जीवन मिलता है, मान लीजिए कि आपका जीवन 80 साल का है, सो आप इस 80 सालों में बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ लेंगे, किसी से प्यार लेंगे, किसी से रिश्ता लेंगे, कहीं से आप पैसा लेंगे, और उसी के साथ साथ इस समाज से आप बहुत सारी पॉपुलैरिटी भी लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको रिकग्नाइज करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे, आपको जानेंगे, लेकिन इन सबको वापस देने का भी तो समय होता है, और वो समय होता है उन लोगों को रिकग्नाइज करने का, उन लोगों को भी रियलाइज करवाने का जिनके पास उतना नहीं है जितना होना चाहिए। और शायद इस डगर पर शशिकला कंकानी जी बहुत ही खूबसूरती से चल रही हैं, और इसीलिए सही मायने में मैं इन्हें सशक्त महिला कहती हूँ। तहे दिल से धन्यवाद शशि जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए। ना सिर्फ आपने अपने जीवन के कुछ पन्ने पलटे, कुछ कहानी हमें सुनाई, बहुत सारी महिलाओं को आपने मोटिवेट किया, लेकिन जाने से पहले क्या खास मैसेज आप देकर जाना चाहेंगी उन सभी को?
1: मैं कहना चाहूंगी एक महिला को सशक्तिकरण के लिए किसी भी स्टैम्प की जरूरत नहीं है। वो गॉड गिफ्टेड ऑलमाइटी ने उसे ऑलरेडी सशक्त करके भेजा है
0: जी,
1: क्योंकि सृजन की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ लेडीज में है।
0: Exactly.
1: तो हमें, हम दुनिया रचा सकते हैं, बना सकते हैं, तो हमें उसे बनाए रखने के लिए भी हमें किसी के स्टैम्प की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर की जो शक्ति है उसे हमें पहचानना है और उसी को ग्रो करना है। आप भी ग्रो करिए, आने जैसे मदर्स हैं तो अपनी बेटियों को, अपने बेटों को बराबर वो समझाइए कि ये दोनों काम बराबर, सब काम सब कर सकते हैं
0: जी।
1: और बहू है तो उसे भी अपनी स्पेस दीजिए, चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटा हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे देरानी जिठानी हो, सबको अपनी अपनी स्पेस दीजिए। और अगर आपको किसी ने कुछ दिया है, नॉट वो हमेशा ना बाई मॉनिटरी टर्म्स में आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है।
0: Yes.
1: अगर किसी ने आपको मान सम्मान दिया, आप उसे ये याद रखिए और उसे भी वापस लौटाइए
0: जी।
1: और जो भी डिसीजन आप अपने लिए लेते हो उस पे खुश होके लीजिए और उस पे खुशी खुशी स्टैंड करिए। आई थिंक दैट इज वॉट इज एम्पावरमेंट अबाउट
0: एक्चुअली। सो भाई मैं तो यही कहूंगी कि इस सशक्तिकरण की राह पर ना हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं। कुछ लोग हमें जीवन की सीख दे जाते हैं, कुछ लोग नसीहत दे जाते हैं, कुछ लोग हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट बन जाते हैं। बट सशक्तिकरण तब तक ही बहुत खूबसूरती से बनी रह सकती है जब तक आप हर इंसान को उसका फ्रीडम जरूर देते हैं, फिर चाहे वो रिश्ते में हो, फिर चाहे वो आपके आसपास के लोगों में हो, उन्हें उनका फ्रीडम भी दीजिए, उन्हें उनका स्पेस दीजिए। और ध्यान रखिए कि भाई हर इंसान वैल्यूएबल है और हर इंसान बिल्कुल अलग है। सो कभी भी कंपेयर मत करिए किसी को भी, ना इन टर्म्स ऑफ रिश्ते, ना इन टर्म्स ऑफ आपकी अपनी नॉलेज या किसी भी तरीके से। सो जब तक आप ये सब नहीं करेंगे ना, ये लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी, बिल्कुल इस प्रोग्राम की तरह। आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तहे दिल से धन्यवाद शशि जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए।
1: धन्यवाद भावना।
0: दोस्तों वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। अगले हफ्ते मेरी आपसे होगी मुलाकात। टिल देन फील गुड, फील लाइव।

संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

0: हाय दोस्तों, मैं हूं रूप कुमार राठौड़ और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना पर 107.8 FM। फील गुड फील लाइफ।
1: हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर दोस्तों हाजिर हूं मैं सरिता आपके साथ और लेकर आ गई हूं कार्यक्रम गीत जो बन गए मोती, जिनकी चमक कभी कम नहीं होती। और दोस्तों, सदाबहार नगमे, रेट्रो गाने हम आपको इस कार्यक्रम में सुनाते हैं। हर हफ्ते एक नया थीम, एक नया टॉपिक होता है और वो टॉपिक क्या है, थीम क्या है, ये मैं आपको कुछ देर में बताऊंगी। उससे पहले स्वागत करूंगी हमेशा की तरह मेरे साथ स्टूडियो में अपने कम्युनिटी मेंबर्स का। मेरे साथ हैं शैलेंद्र नांगिया जी। सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी, सभी सुनने वालों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार
1: जी। और मेरे साथ हैं प्रदीप गर्ग पराग जी भी। सर, आपका भी स्वागत है।
3: थैंक यू वेरी मच सरिता जी, सभी सुनने वाले दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार
1: जी। तो दोस्तों, आज का जो थीम है, आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक की मुझे रिक्वेस्ट की है, मैसेज किया था मुझे प्रेरणा जी ने। और प्रेरणा जी ने कहा कि आप बहुत ही खूबसूरत गाने लेकर आते हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के साथ, तो अब जो है आप एक टॉपिक लीजिए, सफ़र या हम सफ़र, तो उस पर हमें गाने सुनाइए। और बहुत ही बेहतरीन गाने जो हैं उन्होंने भी भेजे कुछ गाने, और बाकी गाने हमने भी रिसर्च की, हमने भी ढूँढे और लेकर आए हैं।

0: बहुत ही प्यारे गाने, आज का टॉपिक है सफर हम सफर। तो चलिए इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं एक बहुत ही प्यारे गाने के साथ। और ये गाना कौन सा है, फिल्म कौन सी है, जानकारी दे रहे हैं हमें नांगिया जी।
1: जी सरता जी, बहुत ही रोचक जानकारी देने वाला हूँ। ये फिल्म आई मेरे बर्थ से 2 साल पहले
0: जी,
1: 1955 में। फिल्म का नाम है मुनीम जी और इसके जो हीरो हैं देवानंद, एवरग्रीन हीरो, मेरे बहुत ही फेवरेट हीरो, और जो इसके सिंगर हैं किशोर कुमार, किशोर दा, मेरे बहुत ही फेवरेट सिंगर, और इन्हीं के गाने सुन सुन के मैंने खुद गाना सीखा। तो ये कॉम्बिनेशन आप देखिए, किशोर, देव साहब और 1955 की फिल्म, मुनीम जी और अन्य कलाकार हैं नलिनी जयवंत, निरुपा रॉय, प्राण, अमिता, एसएल पुरी व अन्य कलाकार। गीत को आवाज़ दी है किशोर दा ने, साहिर लुधियानवी के बोल हैं, एस डी बर्मन का मधुर संगीत है
0: जी।
1: तर तर रा रा रा रा रा रा रा रा ओहो।

0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत मस्ती भरा गीत, और आपने उतनी ही मस्ती से इसको गाया भी।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: जी दोस्तों बहुत ही प्यारा गाना मुनीम जी, 1955 रियल रेट्रो गाने, वाकई में ही कितना मस्ती भरा गाना था, और सुन के हमने तो बहुत इन्जॉय किया स्टूडियो में, और आपने भी अगर इन्जॉय किया है तो ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया भेजें। और 8010781078 ये हमारा नंबर है, आज का टॉपिक है सफ़र। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड
0: फील लाइव।

0: इस बहुत ही प्यारे गाने के बाद दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और कार्यक्रम गीत जो बन गए मोती में बहुत ही खूबसूरत सफर तय कर रहे हैं आज के टॉपिक सफर के साथ। और दोस्तों इस सफर में आप भी हमारे हम सफर जरूर बनिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन नगमा रिक्वेस्ट भी आ गई है मेरे पास, मैसेज किया है मुझे अलका जी ने और अलका जी गाना सुनना चाहती हैं सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। बहुत ही प्यारा गाना है, तो चलिए जानकारी के लिए चलते हैं प्रदीप जी के पास।
1: जी ये फिल्म है मधुमती, 1958 की फिल्म है, दिलीप कुमार वैजंती माला की जोड़ी है, मुकेश का गाया हुआ गीत है, शैलेंद्र के बोल हैं, सलील चौधरी का मधुर संगीत है। और दिलीप वैजंती की जोड़ी की नया दौर फिल्म में भी अच्छे गाने थे और इस फिल्म में भी बहुत अच्छे गीत थे। मुकेश जी का गाया हुआ गीत है, अपने टाइम का हिट सॉन्ग है।
0: जी जी।
1: सुहाना सफर

0: पर कहीं गुम सुम कहीं रुम झुम के जैसे नाचे जमी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाएं कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी।
1: बहुत खूब,
2: बहुत खूब प्रदीप जी, बहुत खूब।
3: थैंक यू जी, थैंक यू
1: जी। दोस्तों बहुत ही प्यारा गाना मधुमति फिल्म से। अलका जी ने इस गाने की रिक्वेस्ट की थी, तो आप भी इस तरह अपने रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 8010781078। ये हमारा नंबर है, आज का टॉपिक है सफर, हम सफर। आप बहुत ही बेहतरीन गाने जो है आगे भी सुनने वाले हैं इस कार्यक्रम में, तो हमारे साथ जुड़े रहिए इस कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 पर। और दोस्तों आप ये हमारा कार्यक्रम जो है हमारी एप्लीकेशन पर भी इंजॉय कर सकते हैं, रेडियो मानव रचना 107.8 एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से या iOS स्टोर से, और हमारे सभी कार्यक्रम जो है रेडियो मानव रचना के आप उस पर इंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल आप इंजॉय कीजिए मधुमति फिल्म से सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। फील गुड।

0: जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम गीत जो बन गए मोती में। और आज जिस सफर पे आपको हम लेकर चल रहे हैं, उस सफर का टॉपिक भी सफर ही है। तो एक तो सफर होता है अंग्रेजी में SUFFER, ना ना ना ना ना, उसकी बात तो मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, ना ही मैं कभी करता हूँ। और ये सफर है, बहुत ही एंजॉयबल जर्नी जिसको बोलते हैं, दिस लाइफ इज ए जर्नी, और हम एक सफर कर रहे हैं। तो अगला गीत जो हमने लिया है, उस फिल्म का नाम भी सफर है। 1970 की ये फिल्म है, राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, फिरोज खान, अरुणा ईरानी, अशोक कुमार, IS जौहर, नादिरा व अन्य कलाकार।
1: जी,
0: कल्याण जी आनंद जी के संगीत में ये गीत तैयार हुआ, इंदीवर ने बोल लिखे और किशोरदा की आवाज में ये गीत है।

0: जी बहुत बढ़िया
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गाया आपने। फिलोसफिकल टाइप सॉन्ग है ये और जीवन की सच्चाई को बयां करता है और बहुत ही खूबसूरती से आपने इसे स्वर दिया।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर।

0: इस बहुत ही बेहतरीन नगमे के बाद दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। और दोस्तों सफर आज का टॉपिक है और हम ये सफर तय कर रहे हैं अपने प्यारे लिसनर्स के साथ, अपने कम्युनिटी मेंबर्स के साथ। और आज का टॉपिक सफर, हम सफर, बहुत ही बेहतरीन गाने नगमे आपके लिए लेकर आए हैं। आपकी रिक्वेस्ट भी शामिल कर ली है अब हमने, क्योंकि अगला गाना जो है उसकी रिक्वेस्ट मुझे भेजी है महेश जी ने। और महेश जी गाना सुनना चाहते हैं ये दिल ना होता बेचारा कदम। तो चलिए इस गाने की जानकारी हम ले लेते हैं प्रदीप जी से।
1: जी, ये फिल्म है ज्वेल थीफ, 1967 की फिल्म है। देवानंद वैजंती माला की जोड़ी है, किशोर कुमार का गाया हुआ गीत है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, एसडी बर्मन का मधुर संगीत है। फिल्म के कलाकार हैं देवानंद वैजंती माला, तनुजा, अशोक कुमार
2: जी।
1: तो बहुत ही चुलबुला सा सॉन्ग है, किशोर कुमार का गाया हुआ है
2: जी,
1: अपने टाइम का हिट सॉन्ग है। ये दिल ना होता बेचारा कदम,

0: अपना हम सफर होता हो ये दिल।
1: जी प्रदीप जी बहुत खूब,
2: थैंक यू जी, थैंक यू
3: जी। दोस्तों बहुत ही प्यारा गाना ज्वेल थी फिल्म से, आप इसे एंजॉय कीजिए। रेडियो मानवरत 107.8 पर महेश जी ने इस गाने की रिक्वेस्ट की थी, तो आप भी एंजॉय कीजिए और इस तरह अपनी रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं आप भी 8010781078 पर। आज का टॉपिक है सफर, फील गुड,
1: फील लाइव।

0: स्वागत है इस बहुत ही बेहतरीन नगमे के बाद। और दोस्तों, किशोर कुमार की आवाज़ वाकई में ही बहुत ही अंदाज उनका निराला था और बहुत ही अलग अंदाज में वो गाने गाया करते थे। और अब जो अगला गाना आ रहा है वो भी उडले यू सॉन्ग उनका बहुत ही प्यारा, आप समझ ही गए होंगे, लेकिन अगर नहीं समझे हैं तो जानकारी दे रहे हैं हमें नांगिया जी और गाकर भी सुनाएंगे।
1: जी, हम बात कर रहे हैं फिल्म अंदाज 1971, पर्दे पर राजेश खन्ना के साथ हेमा मालिनी, शमी कपूर, रुपेश कुमार, अजीत, सिमी, अरुणा ईरानी व अन्य कलाकार, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन की धुन और किशोर दा की आवाज। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़ले उड़ले उड़ू, उड़ले उड़ले उड़ले उड़ले उड़ू, उड़ले उड़ले अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: बहुत ही मस्ती भरा गीत और उसी मस्त अंदाज में आपने इसको पेश किया।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: जी, तो दोस्तों बहुत ही प्यारा गाना, आप इंजॉय कीजिए इसे अंदाज फिल्म से किशोरदा की बहुत ही बेहतरीन आवाज़ में। और दोस्तों अपने रिक्वेस्ट भी जल्दी से भेज दीजिए अगर आप कोई गाना सुनना चाहते हैं आज के टॉपिक सफ़र के साथ, और रेट्रो गाना होना चाहिए क्योंकि कुछ रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही हैं जो 90s के बाद के गाने हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में हम सिर्फ और सिर्फ 90s से पहले के गाने लेते हैं, तो आज वही गाने आपको सुना रहे हैं। सफ़र आज का टॉपिक है, फिलहाल ये गाना आप सभी इंजॉय कीजिए और लौट कर आइए कार्यक्रम की जो बन गए मोती में। फील गुड,
3: फील लाइव।

0: स्वागत है दोस्तों इस बहुत ही बेहतरीन नगमे के बाद आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गीत जो बन गए मोती। और दोस्तों आज का बहुत ही खूबसूरत सफर तय कर रहे हैं सफर टॉपिक के साथ। बहुत ही आनंद आ रहा है इन बेहतरीन गानों को सुनकर, हम इंजॉय कर रहे हैं और आपको कैसा लग रहा है कार्यक्रम जरूर बताएं 8010781078 पर। तो चलिए बिना देर के आगे बढ़ते हैं और अगला गाना ले लेते हैं प्रदीप जी से।
1: जी ये फिल्म है पूर्णिमा, 1965 की फिल्म है, धर्म और मीना कुमारी की जोड़ी है, लता मुकेश जी का गाया हुआ गीत है, डुएट सॉन्ग है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है और गुलजार के लिखे हुए इसमें बोल हैं। धर्म मीना की जोड़ी बहुत हिट रही है, ये काजल फिल्म आई है इससे पहले 1965 में ही, और फूल और पत्थर 1966 की फिल्म है, उस वो तो ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी इस जोड़ी की, और इसके बाद बहारों की मंजिल 1968 में भी एक फिल्म इनकी आई थी। तो ये फिल्म पूर्णिमा का सॉन्ग है, डुएट सॉन्ग है और सरिता जी भी मेरा साथ देंगी इस गीत में।
0: जी

0: प्रदीप जी, सरिता जी, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत ही उम्दा गीत की याद दिलाई।
1: थैंक यू जी, थैंक यू।
2: बहुत ही बेहतरीन नगमा दोस्तों, पूर्णिमा फिल्म से, बहुत ही प्यारा ये गाना, मधुर गाना, आप इसे एंजॉय कीजिए। रेडियो मानव रचना 107.8 पर, और लौट कर आइए कार्यक्रम गीत जो बन गए मोती में। आज का टॉपिक है सफर, फील गुड।

0: स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और आज कार्यक्रम गीत जो बन गए मोती में सफर तय कर रहे हैं बहुत ही प्यारे बहुत ही खूबसूरत गानों का। और आज का टॉपिक है सफर। तो दोस्तों हम सफर अगर हो मंजिल में पहुंचने में बहुत ही आसानी होती है तो सफ़र भी बहुत खूबसूरत हो जाता है। तो सफ़र हम सफ़र के साथ आज हम भी ये सफ़र तय कर रहे हैं। तो चलिए बिना देर के आगे बढ़ते हैं और अगला गाना जो है वो एक रिक्वेस्ट सॉन्ग है। मैसेज किया है मुझे माधुरी जी ने और माधुरी जी गाना सुनना चाहती हैं, ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम वो फिर नहीं आते। तो चलिए इस गाने की बाकी जानकारी ले लेते हैं नागिया जी से और गाना भी सुन लेते हैं।
1: जी सरिता जी, ये गीत मेरे भी दिल के बहुत करीब है और किशोर दा के

0: जिंदा नगमों में से एक बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छा नगमा। फिल्म है आपकी कसम 1974, पर्दे पर एक बार फिर से राजेश खन्ना के साथ मुमताज, संजीव कुमार, रंजीत रहमान, केशव मुखर्जी, ए के हंगल व अन्य कलाकार, किशोर दा की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, आर डी बर्मन का मधुर संगीत
1: जी।

0: स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं सरता आपके साथ और दोस्तों बहुत ही बेहतरीन नगमे आपको सुना रहे हैं आज के टॉपिक सफर के साथ। सफर हम सफर, ये आज का बहुत ही बेहतरीन जो सफर आपके साथ तय कर रहे हैं। गाने काफी हैं लेकिन समय थोड़ा कम है तो इसलिए कुछ गानों के खाली मुखड़े सुनाएंगे, याद दिलाएंगे। लेकिन फिलहाल जो गाना हम आपको सुनाने वाले हैं उसकी जानकारी दे रहे हैं प्रदीप जी।
1: सरता जी, दो गीत हैं मेरे पास अभी और एक हम अपने श्रोताओं को पूरा सुनाएंगे और एक का मुखड़ा है और मुखड़े में आप भी साथ हैं, ड्यूएट सॉन्ग है। तो मैं चाहूंगा फिल्म आजाद का 1955 की ये फिल्म दिलीप मीना कुमारी की जोड़ी का बहुत ही खूबसूरत गीत है तो आप इसको शुरू करें
0: जी। कितना हसी है मौसम, कितना हसी सफर है,
1: साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है।
0: कितना हसी है मौसम।
1: और अब फिल्म मेरे हम सफर है, 1970 की ये फिल्म है, जितेंद्र शर्मिला टैगोर की जोड़ी है और इस जोड़ी की ये इकलौती फिल्म है। लता मुकेश का गाया हुआ डुएट सॉन्ग है, आनंद बख्शी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का मधुर संगीत है
0: जी।
1: और ये भी डुएट सॉन्ग है, श्रीता जी इसको स्टार्ट करेंगे
0: जी। किसी

0: मेरे हम सफर।
1: जी, तो दोस्तों दोनों ही गाने बहुत ही खूबसूरत, लेकिन हम आपको ओरिजिनल ट्रैक पर सुनाएंगे किसी राह में किसी मोड़ पर फिल्म मेरे हम सफर से, और आप इंजॉय कीजिए और लौट कर आइए। एक अंतिम गाना आपको और सुनाएंगे कड़ी में और फिर लेंगे आपसे विदा, लेकिन फिलहाल ये गाना आप सभी के लिए फील गुड
2: फील लाइफ।

0: स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और कार्यक्रम की जो बन गए मोती में आज बहुत ही खूबसूरत गानों का सफर तय कर रहे हैं हम सफर टॉपिक के साथ। और अब जाने का वक्त होने ही वाला है, लेकिन जाते जाते एक बहुत ही बेहतरीन नगमा हमें दे रहे हैं नांगिया जी।
1: जी, मैं जो नगमा लेकर आया हूँ, इस फिल्म का नाम है धर्म करम 1975।
0: जी,
1: पर्दे पर हैं रणधीर कपूर, रेखा, राज कपूर, प्रेम नाथ व अन्य कलाकार। आर डी बर्मन की मधुर धुन है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और आवाजें हैं किशोर, आशा, मुकेश
0: जी।

सादी हुस्न की देवी, अमूरत खामोशी की सुंदरता की, ओ शहजादी हुस्न की देवी, अमूरत खामोशी की इतनी प्यारी सूरत लेके, काश के तू भी मेरे सुर में गा सकती, हर दिल को दीवाना तू बना देती, जाने मन हर

0: है तेरे।
1: गीत संगीत में इतनी शक्ति होती है कि जो एक राजा की राजकुमारी थी और वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन मोटिवेशन पर जो रणधीर कपूर ने इस गीत को गाया और उसको मोटिवेट किया, तो उसने भी सुर में पूरे सुर मिलाए। आप दोनों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गीत को गाया है, बहुत बहुत बधाई।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: जी तो दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन नगमा, और जाते जाते एक बहुत ही प्यारा गाना मुझे याद आ रहा है जो हम इस कार्यक्रम में शामिल तो नहीं कर पाए, लेकिन बहुत ही प्यारा गाना था, रात के हम सफर थक के घर को चले। तो दो लाइनें नांगे जी।
3: रात के हम सफर थक के घर

0: जी तो दोस्तों इन बहुत ही प्यारे गानों के साथ हम आपको छोड़कर जा रहे हैं और अगले हफ्ते फिर से आएंगे लेकर एक नया थीम, एक नया टॉपिक शनिवार ठीक 8 बजे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नांगी जी, प्रदीप जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए।
1: जी सरिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, रेडियो मानव रचना का, मेरी पूरी टीम का। और जाने से पहले हमारे श्रोताओं के लिए एक सुविचार। दोस्तों, वक्त की एक आदत बहुत ही अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, पर खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है।
0: क्या बात है, बहुत खूब।
2: मैं भी रेडियो मानव रचना की पूरी टीम को और श्रोताओं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं और एक शेर के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि माहिर है परिंदे तो भरी बरसात में दिखा उड़के, माहिर है परिंदे तो भरी बरसात में दिखा उड़के, सूखे मौसम में तो तिनके भी सफर कर लेते हैं।
1: बहुत अच्छे
2: सूखे मौसम में तो तिनके भी सफर कर लेते हैं।
1: बहुत अच्छे।
2: और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना का प्रत्येक कार्यक्रम।
0: फील गुड।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM फील गुड फील लाइफ।
1: हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जहाँ पर हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी सोच से और अपनी डेडिकेशन से ना सिर्फ अपनी लाइफ को बदला है बल्कि दूसरों के लाइफ के लिए भी मिसाल बन गए हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त और आज का प्रोग्राम लेकर आ गई हूँ और साथ ही एक ऐसी पर्सनैलिटी की कहानी लेकर आई हूँ जिनका नाम सुनते ही हमें सबसे पहले एक वर्ड याद आता है और वो वर्ड है टीचर। जी हाँ, लेकिन दोस्तों आज हम सिर्फ टीचर की ही बात नहीं करने वाले हैं बल्कि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जो टीचर भी रहे हैं, फिलोसोफर भी रहे हैं और स्कॉलर भी रहे हैं और हमारे देश के प्रेसिडेंट भी बने हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। अब आप सोच रहे होंगे कि एक टीचर की जर्नी प्रेसिडेंट तक कैसे पहुंच गई और उनकी लाइफ में ऐसा क्या था जो उन्हें इतना स्पेशल बनाता है। तो दोस्तों इसी जर्नी को हम आज के सक्सेस मंत्रा में थोड़ा और ज्यादा क्लोजली समझने वाले हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5th ऑफ सितंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ था। उनका बैकग्राउंड बहुत ही सिंपल था लेकिन उनके अंदर नॉलेज को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी थी। पढ़ाई के प्रति उनकी डेडिकेशन ने उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया। धीरे धीरे उन्होंने फिलोसफी को अपना स्पेशल एरिया बनाया और टीचिंग फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बना ली। उनकी सबसे खास बात ये थी कि वो एजुकेशन को सिर्फ बुक्स और एग्जाम तक ही लिमिटेड नहीं समझा करते थे बल्कि उनके लिए एजुकेशन का मतलब था कि इंसान की सोच को डेवलप करना, उनके कैरेक्टर को स्ट्रांग बनाना और लाइफ को समझने के लिए रेडी करना। और शायद इसी वजह से उनकी जर्नी आज भी हमारे लिए इतनी ज्यादा रेलिवेंट है। दोस्तों सक्सेस का मतलब हर किसी के लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए अच्छी जॉब मिलना, किसी के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना या फिर किसी के लिए अपने पैशन को फॉलो करना। लेकिन डॉक्टर राधाकृष्णन जी हमें एक इम्पॉर्टेंट बात समझाते हैं कि सक्सेस के साथ नॉलेज और कैरेक्टर भी जरूरी होता है। तो आज के इस खास एपिसोड में हम उनकी लाइफ के डिफरेंट चैप्टर्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं और जानेंगे कि उनकी जर्नी हमें क्या क्या सिखाती है, स्पेशली जो आज की जनरेशन है, हमारी जो यंग जनरेशन है, उन्हें क्या क्या सीख मिल पाती है उनकी जर्नी के साथ। तो आपको क्या करना है, आपको जुड़ जाना है हमारे साथ। जी हाँ, सक्सेस मंत्रा प्रोग्राम है जहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत ही प्यारे प्यारे से गाने भी। तो सुनेंगे बहुत ही प्यार सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी पर्सनालिटी की हमारे प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा में, जिनकी पूरी लाइफ ही नॉलेज और लर्निंग को जाना कि एक सिंपल से बैकग्राउंड से आने वाले राधा कृष्ण जी कैसे अपनी पढ़ाई और नॉलेज के थ्रू एक अलग आइडेंटिटी बना पाए। लेकिन दोस्तों, उनकी जर्नी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि उनके लिए एजुकेशन सिर्फ डिग्री लेने या फिर एग्जाम पास करने का मीडियम नहीं था, बल्कि उनके लिए एजुकेशन का मतलब था कि अपनी थिंकिंग को डेवलप करना और एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनना। सोचिए, आज जब हम एजुकेशन को अक्सर मार्क्स, डिग्री, जॉब या फिर करियर के साथ कनेक्ट करते हैं, और ये भी जरूरी है, लेकिन अगर हम सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं उनका कोई मीनिंग समझने की कोशिश ही नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद हम एजुकेशन का रियल पर्पस मिस कर रहे हैं। राधा कृष्णन जी ने फिलॉसफी को अपनी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट बनाया। फिलॉसफी सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड लगता है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है कि लाइफ, नॉलेज और एग्जिस्टेंस को समझने की कोशिश करना। और इसी सब्जेक्ट के थ्रू उन्होंने लोगों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि थिंकिंग का एक नया पर्सपेक्टिव दिया है। उन्होंने टीचिंग को भी बहुत सीरियसली लिया। उनका मानना था कि एक टीचर का रोल सिर्फ क्लासरूम में लेसन एक्सप्लेन करने का ही नहीं होता है, बल्कि एक टीचर स्टूडेंट को इंस्पायर करता है, उन्हें क्वेश्चंस को पूछना सिखाता है और उनके अंदर सोचने की एबिलिटी को डेवलप करता है। और दोस्तों, यही लेसन हमें आज अपनी लाइफ में भी अप्लाई करना है और हम इसे कर सकते हैं। आज इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, इंटरनेट पर एक क्लिक में थाउजेंड्स ऑफ आंसर्स हमें मिल जाते हैं तुरंत में। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हम क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, इन्फॉर्मेशन को कैसे समझते हैं और उसे अपनी लाइफ में कैसे यूज करते हैं। राधा कृष्णन जी हमें लाइफ में ये सिखाते हैं कि लर्निंग एक फिक्स्ड एज तक लिमिटेड नहीं होती है, बल्कि स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज खत्म हुआ या फिर जॉब मिल गई, इसका मतलब लर्निंग खत्म हो गई है ये नहीं होता है। एक्चुअली रियल लर्निंग तो उसके बाद ही कंटिन्यू होती है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो एक सिंपल मंत्रा याद रखिएगा कि मार्क्स आपको एक रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन नॉलेज आपको डायरेक्शन दे सकती है। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो भी लर्निंग को कंटिन्यू रखिए, नए स्किल को सीखिए, क्वेश्चंस पूछिए और अपनी गलतियों से सीखिए और अपनी थिंकिंग को ओपन रखिए। क्योंकि सक्सेस सिर्फ ये नहीं है कि आप कितना जानते हैं, सक्सेस ये भी है कि आप जो जानते हैं उससे अपनी और दूसरों की लाइफ को कितना बेटर बना पाते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर राधा कृष्णन जी की एजुकेशन जर्नी से हमें आज का सक्सेस मंत्रा, पहला सक्सेस मंत्रा मिलता है कि लर्निंग को डेस्टिनेशन मत समझिए, उसे अपनी लाइफ लॉन्ग जर्नी बना लीजिए। और इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे उनकी सक्सेस फिलॉसफी की, पर उससे पहले लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। जी हाँ, सक्सेस मंत्रा प्रोग्राम जहाँ पर हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना होते हुए भी सब कुछ हासिल करा है, साथ ही वो अपनी जर्नी से हमें मोटिवेट करते हैं कि हम भी अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। अब तक हमने उनकी एजुकेशन और लर्निंग के बारे में जाना है, लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि आखिर उनकी सक्सेस का मंत्र क्या था। दोस्तों, जब हम किसी सक्सेसफुल पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं ना, तो अक्सर हम उनकी अचीवमेंट्स को काउंट करना शुरू कर देते हैं, कितने अवार्ड्स मिले, कौन सी पोजीशन मिली, कितना नाम कमाया। लेकिन असली सक्सेस को समझने के लिए ये देखना भी ज़रूरी है कि उस इंसान की सोच क्या थी और उसने अपनी जर्नी को कैसे बिल्ड किया है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी में से एक थी कंटिन्यूस लर्निंग। वो नॉलेज को भी एक फिक्स्ड चीज़ नहीं मानते थे, उनकी थिंकिंग हमेशा लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग पर फोकस रही है। ये क्वालिटी आज के टाइम में हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आज की जनरेशन के पास अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है तो और कंपटीशन भी है उसी के साथ, हर फील्ड में नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, नए करियर के ऑप्शंस आ रहे हैं और स्किल्स भी कॉन्स्टेंटली अपडेट हो रहे हैं। और ऐसे में अगर हम ये सोच लें कि मुझे सब आता है तो शायद हम वहीं रुक जाएंगे, लेकिन अगर हम कहें मैं और सीख सकता हूँ तो हमारी ग्रोथ का चांस हमेशा बना रहेगा। लेकिन उनकी लाइफ हमें डिसिप्लिन का इम्पोर्टेंस भी समझाती है। टैलेंट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन टैलेंट को डायरेक्शन देने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। आपके पास कितना भी पोटेंशियल क्यों ना हो, लेकिन आप कंसिस्टेंटली एफर्ट्स नहीं करते तो पोटेंशियल का रिजल्ट नहीं मिलता। एक और इम्पॉर्टेंट क्वालिटी थी सिंप्लिसिटी। इतनी बड़ी पोजीशन तक पहुंचने के बाद भी उनकी पर्सनालिटी में सिंप्लिसिटी और डिग्निटी को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। ये हमें रिमाइंड देता है कि सक्सेस के साथ ह्यूमिलिटी भी होनी चाहिए। और दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है कि नॉलेज के साथ कैरेक्टर। जी हाँ, सिर्फ इंटेलिजेंट होना इनफ नहीं होता है, आप कितने नॉलेजेबल हैं उसके साथ ये भी मैटर करता है कि आप अपनी नॉलेज और पोजीशन का यूज किस पर्पस के लिए करते हैं। आज हम सोशल मीडिया पर सक्सेस को मोस्टली ग्लैमरस वे में देखते हैं, जैसे कि बड़ी सैलरी होना, लग्जरी लाइफस्टाइल होना, अचीवमेंट्स होना, सब कुछ इंस्टेंटली विजिबल है। लेकिन किसी भी रियल सक्सेस के पीछे सालों की मेहनत, पेशेंस और कंसिस्टेंसी होती है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी की जर्नी भी हमें ये बताती है कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती, सक्सेस एक प्रोसेस है, लर्निंग का, डिसिप्लिन का, पेशेंस का और कंटिन्यूसली बेटर बनने का। तो आज का सक्सेस मंत्र बहुत ही सिंपल है कि टैलेंट आपको शुरुआत दे सकता है, लेकिन लर्निंग, डिसिप्लिन और कैरेक्टर आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस तक ले जा सकता है। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज इस प्रोग्राम में हम चल रहे हैं जिस जर्नी के साथ, उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। जी हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनकी जर्नी ये प्रूव करती है कि आपकी स्टार्टिंग पॉइंट आपका फाइनल डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं करती। जी हाँ दोस्तों, जरा इमेजिन करिए कि एक यंग स्टूडेंट जो नॉलेज और फिलॉसफी में इंटरेस्ट रखता है और पढ़ाई भी करता है, फिर टीचिंग को अपना करियर चूज करता है और धीरे धीरे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तक पहुंचता है कि एक दिन वो इंडिया का प्रेसिडेंट बन जाता है। ये जर्नी किसी मूवी की स्टोरी नहीं बल्कि डॉक्टर राधाकृष्णन जी की रियल लाइफ जर्नी है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीचिंग से और फिलॉसफी के फील्ड में अपनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाकर की थी। उन्होंने डिफरेंट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में फिलॉसफी की पढ़ाई की और अपनी नॉलेज के थ्रू स्टूडेंट के बीच एक अलग रिस्पेक्ट अर्न किया। उनकी टीचिंग स्टाइल का फोकस सिर्फ इंफॉर्मेशन देने पर ही नहीं था बल्कि स्टूडेंट्स को सोचने और समझने के लिए एनकरेज करना भी था। उनकी एकेडमिक रेपुटेशन इतनी स्ट्रांग हुई कि उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ईस्टर्न रिलीजियस और एथिक्स के प्रोफेसर के रूप में भी काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली। सोचिए दोस्तों, एक इंडियन स्कॉलर का ऑक्सफोर्ड में जाकर इंडियन फिलॉसफी और थॉट को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन उनकी जर्नी यही नहीं रुकी। इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने पब्लिक लाइफ में भी इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली है। जी हाँ, वो इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बने और 1952 से 1962 तक इस पोजीशन पर रहे। इसके बाद 1962 में उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद को भी संभाला। और अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग बात भी आती है कि एक टीचर और एक फिलोसोफर का देश के हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में से एक तक पहुँचना हमें क्या बताता है। ये बताता है कि आप जिस फील्ड में सिंसियरली काम करते हैं उसका इम्पैक्ट सिर्फ उस फील्ड तक ही लिमिटेड नहीं होना चाहिए। अगर आप टीचर हैं तो आप फ्यूचर जनरेशन को शेप कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आज आपकी लर्निंग कल की अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सकती है। अगर आप किसी भी प्रोफेशनल में हैं तो डेडिकेशन और नॉलेज के थ्रू आप अपनी आइडेंटिटी को बिल्ड कर सकते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन जी की जर्नी का एक और ब्यूटीफुल लेसन है कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को सिर्फ एक डेस्टिनेशन से डिफाइन नहीं होने दिया बल्कि वो पहले टीचर थे, फिर फिलोसोफर थे, फिर उसके बाद स्कॉलर रहे, फिर डिप्लोमेट रहे और फिर प्रेसिडेंट बने। लेकिन हर स्टेज पर उनकी कोर स्ट्रेंथ नॉलेज और लर्निंग ही रही है। दोस्तों, हम भी लाइफ में कई बार अपनी करंट सिचुएशन को देखकर अपना फ्यूचर डिसाइड कर लेते हैं, जैसे कि मेरे पास रिसोर्सेस कम है तो मैं नहीं कर सकता, मेरी स्टार्टिंग स्ट्रांग नहीं है तो मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है। लेकिन राधाकृष्णन जी की जर्नी हमें एक रिमाइंडर देती है कि स्टार्टिंग पॉइंट इम्पोर्टेंट नहीं है, डेस्टिनेशन और डेडिकेशन इम्पोर्टेंट है। तो आज का एक और सक्सेस मंत्रा कि अपनी करंट पोजीशन को अपनी फाइनल आइडेंटिटी मत समझिए, सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए और अपनी पॉसिबिलिटीज पर बिलीव रखिए। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो 107.8 FM और मैं हूं आरजी स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा की जर्नी पर हम चल रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के साथ, उनकी लाइफ और उनकी इंस्पायरिंग थिंकिंग के साथ। अब तक हमने उनकी एजुकेशन, सक्सेस फिलोसफी और टीचर से प्रेसिडेंट तक की जर्नी के बारे में जाना, लेकिन दोस्तों राधाकृष्णन जी को सिर्फ उनकी पोजीशन की वजह से ही याद करना उनकी पर्सनैलिटी को बहुत छोटा कर देना होगा। उनकी सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज में से एक थी फिलोसोफर की। अब फिलोसोफर वर्ड सुनते ही आपको शायद लगता होगा कि ये टॉपिक थोड़ा सीरियस या फिर डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन अगर आप सिंपल वर्ड्स में समझे ना तो फिलोसफी का मतलब है कि लाइफ, नॉलेज और सोसाइटी से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में सोचना, जैसे कि हम क्या सीख रहे हैं, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक अच्छी लाइफ का मतलब क्या है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी की थिंकिंग में एजुकेशन और ह्यूमन वैल्यूज को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। उनके लिए एजुकेशन का पर्पस सिर्फ सक्सेसफुल करियर बनाना नहीं था, बल्कि एजुकेशन का रोल एक इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबल, थॉटफुल और बेटर ह्यूमन बीइंग बनाना था। और दोस्तों अगर हम आज की जनरेशन की बात करें तो ये थॉट और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि सोशल मीडिया, इंटरनेट या फिर टेक्नोलॉजी ने नॉलेज तक पहुंचना बहुत इजी कर दिया है, लेकिन इंफॉर्मेशन और विजडम एक ही चीज़ नहीं होती। आपके फ़ोन में थाउजेंड्स ऑफ फैक्ट हो सकते हैं, लेकिन उन फैक्ट्स को समझना, उनका सही यूज़ करना और राइट डिसीजन लेना, ये विजडम का पार्ट होता है। इसीलिए क्रिटिकल थिंकिंग आज के यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। हर वायरल पोस्ट को सच मान लेना और हर ओपिनियन को फॉलो कर लेना या फिर सिर्फ किसी ट्रेंड का पार्ट बन जाना क्योंकि सब कर रहे हैं, ये हेल्दी थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं है। राधा कृष्णन जी की फिलोसफिकल अप्रोच हमें एनकरेज करती है कि हम क्वेश्चंस को पूछें, समझें और अपनी थिंकिंग को डेवलप करें। एक और इंपॉर्टेंट लेसन है, वो है कैरेक्टर। आपके पास नॉलेज है, डिग्री है, स्किल्स है, लेकिन अगर वैल्यूज और कैरेक्टर स्ट्रांग नहीं है तो सक्सेस इनकम्प्लीट रह जाती है। और अगर आज हम करियर गोल को सेट करते हैं, अच्छी जॉब मिलना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रमोशन, बिजनेस, पॉपुलैरिटी, ये सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ ही हमें ये भी पूछना चाहिए कि मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन शायद हमारी जर्नी को और ज्यादा मीनिंगफुल बना सकता है। तो दोस्तों राधा कृष्णन जी की थिंकिंग का एक और सक्सेस मंत्रा कि नॉलेज आपको इंटेलिजेंट बना सकती है, लेकिन राइट थिंकिंग और वैल्यूज आपको वाइज बना सकती है। और इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूँ आरजे सिंह आपके साथ और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की और उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के साथ आज हम चल रहे हैं। अब तक हमने उनकी एजुकेशन और फिलोसफी, सक्सेस जर्नी और उनके थॉट को बहुत अच्छे से समझा, जान चुके हैं बहुत सारी बातें, लेकिन अब आते हैं उनकी लाइफ से जुड़े एक ऐसे दिन पर जिसे हम हर साल बहुत ही स्पेशल वे में सेलिब्रेट करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 5th of September यानी कि टीचर्स डे की। दोस्तों, हम सब ने स्कूल या फिर कॉलेजेस में टीचर्स डे जरूर सेलिब्रेट किया होगा। कहीं स्टूडेंट्स टीचर्स के लिए कार्ड बनाते हैं, कहीं पर परफॉर्मेंस भी होती है, तो कहीं टीचर्स के लिए स्पेशल एक्टिविटीज भी ऑर्गेनाइज की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया में 5th of September को ही ये टीचर्स डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? और इसका कनेक्शन है डायरेक्टली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से ही। जी हाँ, उनका जन्म 5th of September 1888 को ही हुआ था। जब वो भारत के राष्ट्रपति बने तब उन्हें कुछ स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स ने उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के अपनी विश को एक्सप्रेस किया, लेकिन राधाकृष्णन जी ने अपने बर्थडे को पर्सनली सेलिब्रेट करने के बजाय सजेस्ट किया कि 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाए। और दोस्तों, ये ही बात उनकी पर्सनैलिटी को और ज्यादा स्पेशल बनाती है। जिस दिन को कोई भी इंसान अपने नाम और बर्थडे के साथ सेलिब्रेट कर सकता था, लेकिन राधाकृष्णन जी ने उस दिन को टीचर्स डे के ऑनर से सेलिब्रेट करने के लिए कनेक्ट कर दिया। इसके पीछे एक ब्यूटीफुल थॉट भी है कि एजुकेशन और टीचर्स की इम्पोर्टेंस को सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। टीचर्स हमारी लाइफ में सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने वाले लोग नहीं होते हैं, बल्कि कभी कभी एक टीचर का एक सिंपल सा सेंटेंस, एक एडवाइस या फिर एक छोटा सा एनकरेजमेंट हमारी पूरी डेडिकेशन को चेंज कर सकता है। स्कूल में जब हम किसी सब्जेक्ट से स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो टीचर ही हमें पेशेंटली उसे समझाता है। जब मार्क्स कम आते हैं तो वो हमें मोटिवेट करता है, और जब हम खुद पर डाउट करते हैं तब एक अच्छा टीचर हमें ये याद दिलाता है कि रिजल्ट आपकी पूरी कैपेबिलिटी को डिफाइन नहीं करता है। आज के टाइम में भी टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी और AI ने लर्निंग को ईजी जरूर बना दिया है, लेकिन एक टीचर को स्टूडेंट की सिचुएशन को समझ कर उसे गाइड करता है। उस ह्यूमन कनेक्शन की वैल्यू ही अलग होती है। आज स्टूडेंट्स के लिए भी टीचर्स डे एक रिमाइंडर है कि अपने टीचर को सिर्फ एक दिन विश करना इनफ नहीं है, उनकी मेहनत को, उनकी गाइडेंस को और उनके टाइम को हमेशा रिस्पेक्ट करना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में भी कोई एक ऐसा टीचर रहा है जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिली हो, जिसने आपको इंस्पायर किया हो, जिसने आपको कॉन्फिडेंस दिया हो और आपको बेटर बनने में हेल्प की हो, तो उन्हें एक बार जरूर याद कीजिएगा और उन्हें एक बार जरूर विश कीजिएगा और उन्हें एक बार थैंक यू जरूर बोलिएगा। और आज का एक और सक्सेस मंत्र कि एक अच्छा टीचर सिर्फ नॉलेज नहीं देता, बल्कि वो किसी की लाइफ की डायरेक्शन को बदल सकता है। वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजे सिंह आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और अब हम पहुँच गए हैं हमारे आखिरी सेगमेंट पे और अब वक्त है आज के एपिसोड को एक इंस्पायरिंग नोट के साथ रैप अप करने का। और आज हमने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जर्नी को बहुत अच्छे से जाना, एक टीचर को, एक फिलोसोफर को और एक स्कॉलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति तक के सफर को जाना। लेकिन दोस्तों, उनकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट सिर्फ उनकी पोजिशन ही नहीं थी बल्कि उनकी सोच, उनके वैल्यूज और उनकी लर्निंग के प्रति डेडिकेशन थी। तो चलिए, उनके पांच कुछ ऐसे सिंपल से सक्सेस मंत्र है जिन्हें मैंने आपको शुरू से लेकर अभी तक बताया है, पर हम दोबारा से उसे जान लेते हैं। सबसे पहला था कीप लर्निंग। लर्निंग कभी आपकी स्टॉप नहीं होनी चाहिए। डिग्री कंप्लीट होने के बाद भी लाइफ हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाती है, तो इसलिए क्यूरियस रहिए और नए स्किल को सीखते रहिए। दूसरा है थिंक इंडिपेंडेंटली। हर चीज को सिर्फ इसलिए फॉलो मत कीजिए क्योंकि सब कर रहे हैं। क्वेश्चंस पूछिए, इन्फॉर्मेशन को समझिए और अपने ओपिनियन को खुद बनाइए। तीसरा है डिसिप्लिन। मोटिवेशन हर दिन नहीं होता लेकिन डिसिप्लिन हमें कंसिस्टेंटली एक्शन लेने में हेल्प करता है। छोटी छोटी हैबिट्स हमें फ्यूचर में बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। और चौथा है कैरेक्टर और अचीवमेंट्स। इंपॉर्टेंट है लेकिन स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भी उतना ही जरूरी है जितना कि नॉलेज के साथ ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में। पांचवा है नेवर लिमिट योरसेल्फ। राधा कृष्णन जी की जर्नी हमें सिखाती है कि आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं ये आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। आपकी मेहनत, आपकी डेडिकेशन और लर्निंग आपको बहुत आगे तक लेकर जा सकती है। दोस्तों, अब एक सवाल आपसे कि आपकी लाइफ का वो टीचर कौन है जिन्होंने आपको कोई इम्पोर्टेंट लेसन दिया हो? अगर वो आज आपके सामने होते तो आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं? तो उन्हें जरूर मैसेज करिएगा और उन्हें कॉल करके याद जरूर दिलाइएगा कि आपका ये इम्पोर्टेंट लेसन मेरी लाइफ में बहुत काम आया। तो इसी थॉट के साथ आज के सक्सेस मंत्रा को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मेरी तरफ से एक छोटा सा थॉट कि सक्सेस सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं है बल्कि जर्नी में सीखते हुए एक बेटर इंसान बनना है। तो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा और मैं ले रही हूं आपसे इजाजत। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए इंस्पायरिंग पर्सनालिटी और नए सक्सेस मंत्रा के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे इंस्पायर्ड और मुझे दीजिए इजाजत। और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना। टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील लाइफ।
1: नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं 1970 के आसपास के बहुत चर्चित गीत के साथ, रूठा है तो मना लेंगे। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है।
2: रब लूटा है मना लेंगे, वो तो बिगला है बना लेंगे, वो तो लोटा है हंसा लेंगे।

वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। ये फिल्म थी ज्वार भाटा, रूठा है तो मना लेंगे, बड़ा ही ट्रेंड सेटिंग गीत था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, राजेंद्र कृष्ण, धर्मेंद्र, सायरा बानो, बड़ा ही जो है वो रोमांचित कर देने वाला ये गीत है। और ये जो है वो याद आता है तो ऐसा लगता है लता मंगेशकर जी की आवाज़ जो है वो हम सुनते रहें और गीत जो है वो बजते रहें। और मैं आपको पिछली बार छोड़े गया था, जो मैंने आपको बता दिया था कि भाई शोले की जो पूरी रील बनी थी वो कितनी थी, और उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। आपके बड़े सारे उलाहने आए कि भाई आप जो है बशीर बद्र साहब का जो आपने फिल्मी गीतों से क्यों दूर रहे थे बशीर बद्र, इसे आप ज़रूर जो है पूरा करें। बिल्कुल ज़रूर पूरा करेंगे। हमारा नंबर है 8010781078, और आप हमको इसी तरह से लिखते रहिए, इसी तरीके से उलाहना देते रहिए, इसी तरीके से आप हमको जो है वो अच्छी अच्छी फरमाइशें भेजते रहिए, और हम आपके साथ जो है वो जुड़े रहेंगे, यानी कि दर बदर। और दर बदर इस हिसाब से मुझे याद आता है बशीर बद्र साहब का ये जो लेख था रूमी जाफरी साहब, थैंक यू वेरी मच, इसे भी हम आगे बढ़ाएंगे। तो हमने जो है पिछली बार आपको एक शेर के साथ छोड़ा था, अब ये शेर जो है उन्हें जो कहते हैं रूमी जाफरी साहब की याद हो गया, यानी फूल से आशिकी का हुनर सीख लें, तितलियाँ खुद रुकेंगी सदाएं ना दें। अब ये जो है कहते हैं कि मुझे याद हो गया और अपनी नोटबुक में पहले पन्ने पर लिख लिया, वहीं से मेरे जहन में ये बात बैठ गई कि खुद अपनी काबिलियत पैदा करो कि सफलता स्वयं चलकर तुम्हारे पास आए। इसके बाद जब मैं मुंबई आया तो मुझे लोग मुझे समझाते थे कि तुम नहीं जानते हो ये कैसा शहर है। मुझे याद है तब बशीर साहब का ही एक शेर सुनाया गया था, ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। जब कोई पूछता कि मुंबई आप जो है वह आपको आए कितने साल हो गए, तब तक कोशिश करोगे, तो मैं कहता कब तक कोशिश करोगे, तो मैं कहता जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। लोग पूछते थे कि अगर कामयाब नहीं हुए तो क्या वापस भोपाल चले जाओगे, और मैं कहता ये नहीं हो सकता। फिर बशीर साहब का शेर दोहराता, हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। और इसी बात पर जो मुझे याद आ रहा है भाई, क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, तो एक फिल्म थी महान, प्यार पे दिल पे मार दे गोली, बड़ा ही बेहतरीन गीत था, आशा भोसले, किशोर कुमार, अमिताभ बच्चन, जीना तमान, ये कुछ नेपाल की शूटिंग थी। इसे सुनते हैं और लौटते हैं।

वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। लोगों ने कहा कि भाई आप जो है वो बशीर बद्र साहब का फिल्मी गीतों से क्यों दूर रहे, बशीर बद्र साहब ये लेख जो है इसे ज़रूर पूरा करें, उसके बाद फिर आप जो है वो शोले पे जाएं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें शोले की ज़रूर बताएं ताकि हमें समझ में तो आए कि जो आपने जो पिछली बार पढ़ा तो क्या वो अंत था। जी नहीं, वो अंत नहीं था, अभी तो बड़ी सारी बातें करनी है शोले के बारे में। और ये जो फिल्म की जो ये जो किताब है जो अनुपमा चोपड़ा जी की है, शोले द मेकिंग ऑफ अ क्लासिक, बड़ी ही कमाल की किताब है। और इसके किताब के अभी बड़े सारे अंश जो हैं वो आपसे जो है साझा करने तो रह ही गए हैं। तो अधिकांश निर्माता पोस्ट प्रोडक्शन में जाने के कारण जो है वो वॉश हो जाते थे। इसका मतलब है कि बजट खर्च किया जाता है, रिलीज़ की तारीख बड़ी होती है और ये रवैया ये होता है कि चलो जल्दी से फिल्म खत्म करें, अपने निवेश को जो है वो रिकवर करें यानी कि पुनर्प्राप्त करें। लेकिन सिप्पी धैर्यवान थे और अभी भी एक गुणवत्ता वाली फिल्म बनाने के लिए प्रतिबद्ध थे, क्योंकि वे शुरुआत में जो है वो थे और वो शोले का बजट अभूतपूर्व रूप से 3 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया था। ये उस समय की बात है, ये पागलपन था। उद्योग पंडितों ने कहा यहाँ तक कि 22.5 लाख रुपए प्रति क्षेत्र पर भी विशाल बजट की वसूली असंभव है। यानी इसका मतलब है कि उस समय टेरिटरीज हुआ करती थी, जो टेरिटरीज बेचा जाता था, तो उन्होंने कहा भाई 22.5 लाख पर भी अगर ये जो है वो फिल्म पर जो है वो टेरिटरी बिकेगी तो भी बड़ा मुश्किल है कि भाई ये आप जो है इसको रिकवर कर पाओगे इसकी कॉस्ट को। बजट की वसूली असंभव लग रही थी, फिर भी सिप्पी ने खर्च करना जारी रखा। अब रमेश आश्वस्त थे कि हर तकनीकी स्तर ने फिल्म में एक आयाम जोड़ा है और उन्होंने हर कट और साउंड पर काम किया। अकेले बैकग्राउंड म्यूजिक में 1 महीना लगा। 1970 के दशक में पृष्ठभूमि संगीत की रचना की गई थी, पहले से मौजूद पटरियों से नमूना नहीं लिया गया था, यानी कि जो पहले से जो चलता हुआ जो म्यूज़िक था उस तरीके से नहीं लिया गया था, इसमें जो है वो संगीत की रचना की गई थी बैकग्राउंड म्यूज़िक की भी। रमेश ने पंचम को खुली छूट दी। उसका एकमात्र संक्षिप्त विवरण ये था कि स्कोर में सिम्फोनिक फील होना चाहिए। रमेश ने उड़ते संगीत की कल्पना की जिसने फिल्म के महाकाव्य माहौल को रेखांकित किया। अब क्या किया क्या नहीं किया मुझे याद आ रहा है, बड़ी ही जो है वो दिलकश फिल्म थी, सत्यम शिवम सुंदरम इसका यही टाइटल ट्रैक भी था, बड़ा ही अच्छा था, लता मंगेशकर जी की बाकमाल आवाज़ में था। उसे सुनते हैं, लौटते हैं और बड़ी बड़ी सारी बातें तो करनी है आपसे, लेकिन एक बात ज़रूर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अगर इस गीत के बाद जो है हम थोड़े से अंश फिर से सुन लें बिना का संगीत माला के, जिसमें कुछ बेहतरीन से इंटरव्यू के कट अगर आप जो है हम लोगों को सुना सकते हैं तो बड़ा ही जो है वो आनंद आ जाएगा। मैं अपनी टीम को ये बोलता हूँ, वो कहीं से ढूंढते हैं गाने को जो है वो हम सत्यम शिवम सुंदरम को सुनते सुनते जो है वो हम उस इंटरव्यू में जाएंगे, देखें कितना लुफ्त आता है। सुनते हैं और लौटते हैं।

0: और अब होशियार बहनों भाइयों, 1980 के गीत नंबर 2 की झलक बड़ी धूमधाम से आने वाली है आपके सामने। मगर उससे पहले ये सुनिए कि सन 2012 के अक्टूबर महीने में जब अनिल और टीना अंबानी के बुलावे पर अमिताभ बच्चन की 70वीं सालगिरह के फंक्शन में मैं अपने दोस्तों से मिलता जा रहा था ना, तो मुझे दूर से कुछ ऐसी आवाज सुनाई दी।
1: जरा ठहरिए अमीन साहब, मुझे भी तो साथ ले चलिए, हिट संगीत का मामला है।
0: ये थे चिंटू यानी ऋषि कपूर, जो मेरे करीब आकर कहने लगे उस फंक्शन में, अमीन साहब आपने मुझे इंटरव्यू किया है और मेरे परिवार के करीब करीब सभी को इंटरव्यू किया है, अब मेरे बेटे को भी इंटरव्यू कीजिए ना, रणबीर को। हाँ तो भाई, मैंने उनसे कहा कि बेटे चिंटू, आजकल मेरे पास नौजवानों को इंटरव्यू करने के लिए कोई रेडियो प्रोग्राम नहीं है। वैसे रणबीर तो सचमुच बर्फी वगैरह कई फिल्मों में बेहद हिट हो ही गया है और मेरी रिकॉर्डिंग्स के खजानों में तो बड़े शानदार और बेमिसाल पुराने इंटरव्यूज भरे हुए हैं, जो मैं गीतमाला की छाव में भी सुनवाता रहता हूँ। जैसे तुम्हें याद होगा चिंटू, मैंने एक बार तुम्हें एक पुराने इंटरव्यू में पूछा था कि ये बताओ कि तुम्हारी जबरदस्त कामयाबियों में संगीत का यानी तुम्हारे गीतों का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, तो तुमने जवाब दिया था,
1: वैसे तो संगीत और हमारे परिवार का बहुत गहरा संबंध रहा है, खासतौर से मेरा। मैं आज जो कुछ भी हूँ, मेरे करियर में कॉन्ट्रीब्यूशन म्यूजिक का बहुत बड़ा रहा है। तमाम संगीतकारों ने मेरे हर पिक्चर में, तकरीबन हर पिक्चर में बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जो कुछ भी मैं पर्दे पे करता हूँ, उनके पीछे उनका बड़ा हाथ रहता है। मैं तो सिर्फ होंठ हिलाता हूँ और कुछ नहीं।
0: हाँ भाई, चिंटू यानी ऋषि कपूर को भी बॉबी के जमाने से मिलते ही रहे हैं मजेदार शानदार हिट गाने। ये देखिए 1980 की पायदान नंबर 2 पर भी उनकी फिल्म कर्ज के गीत ने कैसा

वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब भाई लोगों ने कहा कि बशीर बद्र साहब का जो लेख है उसे आप बिल्कुल पूरा करेंगे। हाँ जी बिल्कुल पूरा करेंगे। हमारा नंबर है 8010781078, मानव रचना रेडियो 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ, बातें पुरानी हैं तुमको सुनानी है। और नमस्कार हम हमेशा करते हैं क्योंकि आप हमारे दिल के अजीज हैं। आप लोग जितनी बातें हमें लिखते हैं हम सबको कागज़ पर उतार लेते हैं, उसके बाद हम आपके साथ रेडियो स्टेशन के जरिए रेडियो माध्यम के जरिए जो है वो साझा भी करते हैं। अपने विचार हमें ज़रूर लिखें, आपको कैसा लग रहा है, किस टाइप का प्रोग्राम और आप जो है सुनना चाहेंगे, कुछ और लेख सुनना चाहेंगे, ये मिक्स एंड मैच आपको पसंद भी आ रहा है या आपको लग रहा है कि भाई ये क्या किया जा रहा है। हम एक बात शुरू करते हैं और दूसरे पे पहुंच जाते हैं। बहरहाल हम पहुंचते हैं फिल्मी गीतों से, क्यों दूर रहे बशीर बद्र साहब। तो भाई जो रूमी जाफरी साहब बता रहे थे कि जब तक वो सक्सेसफुल नहीं थे और भाई उनको भी समय लगा अपनी जगह बनाने में, तो भाई लोग काफ़ी कुछ पूछा करते थे तो बशीर साहब के शेर से ही जो है वो जवाब दिया करते थे। बशीर साहब के बेटे नुसरत बद्र ने फिल्मों में गाने लिखे थे। ये फिल्मी कनेक्शन तो सभी को पता है, लेकिन उनका एक और फिल्मी कनेक्शन मशहूर डायरेक्टर विशाल भारद्वाज के साथ भी है। विशाल मेरठ में बशीर साहब के मोहल्ले में ही रहते थे। विशाल जी को भी शेर व शायरी का बड़ा शौक था और वे बचपन से ही शायरी समझते थे, इसलिए बशीर साहब भी उन्हें बहुत चाहते थे और अक्सर शाम को अपने घर बुला लिया करते थे। बकौल विशाल, मैं और एक बुजुर्ग भंडारी साहब उनके यहाँ बैठते थे और बशीर साहब हमें अपना नया कलाम सुनाते थे। मेरी याददाश्त तो बहुत तेज थी, ये विशाल भारद्वाज जी कहते हैं, इसलिए मुझे बशीर साहब के शेर याद हो जाते थे। 1987 के मेरठ दंगों में जब बशीर साहब के घर को जला दिया तब उन्होंने लिखा था, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। इस आग में बशीर साहब की 20 से 25 नई गज़लें जो उन्होंने एक डायरी में लिखकर रखी थी जलकर खाक हो गई। वे अप्रकाशित थीं और वे उनका दीवान छपवाना चाहते थे। बशीर साहब के लिए ये एक अनमोल धरोहर थी, इसका उन्हें बहुत गहरा सदमा पहुंचा। एक शायर का एक कलाम जल जाए तो अभी तक जो छपा ना हो, ना सुना गया हो और ना ही लोगों तक पहुंचा हो तो इस दर्द को समझा जा सकता है, मगर विशाल एक तरह से उनके लिए फरिश्ता बनकर आए थे। अब ये बात भी होगी कि क्या बनकर आए थे क्या नहीं आए थे। फिल्म थी यादों की बारात। मेरी सोनी मेरी तमन्ना, झूठ नहीं है मेरा प्यार। इसे सुनते हैं, लौटते हैं। आशा भोसले, किशोर कुमार, बेहतरीन आवाज़ आर डी बर्मन का संगीत था। बेहतरीन फिल्म यादों की बारात, सुनते हैं और लौटते हैं।

वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। देखिए ना, हमें बड़े सारे मैसेजेस मिल रहे हैं 8010781078 पर कि भाई ये जो आप बशीर बद्र साहब की बात कर रहे हैं, और ये जरा पूरी बात बताइएगा, इसे छोड़िएगा नहीं, नहीं छोड़ेंगे नहीं इसको, और इसे हम आपको बात को जो है वो पूरी बताएंगे, और उसके बाद हम थोड़ी शोले की भी बात करेंगे। पहले कर लें, चलिए पहले कर लेते हैं, थोड़ी सी और बात बता देते हैं आपको कि शोले में क्या हो रहा था, यानी कि जो मेकिंग ऑफ ए क्लासिक शोले है अनुपमा चोपड़ा जी की किताब, उससे जो अंश लिए गए थे उसमें भी हम बताते हैं कि क्या हो रहा था। तो ये बैकग्राउंड म्यूज़िक में एक महीना लगा था और जो खर्च हो रहा था वो काफ़ी हो रहा था। अब पहले से मौजूद जो जिस तरीके की धुनें होती थी, संगीत होता था, उसको जो है बैकग्राउंड म्यूज़िक में यूज़ कर लिया जाता था, ऐसा तो हुआ नहीं था। और पंचम ने रमेश को खुली छूट दे दी थी कि आप जो है वो बैकग्राउंड म्यूज़िक को जो है वो बनाएं। रमेश ने उड़ते संगीत यानी कि फ्लाइंग म्यूज़िक की कल्पना की, जिस

यदि कभी स्टूडियो में जो है वो संगीत बनाते थे, सबसे पहले वे और रमेश तय करते थे कि किस दृश्य में संगीत की आवश्यकता है और वो क्या होना चाहिए। पंचम के सहायक दीपक और संतोष ने चर्चा के दौरान जो हाई नोट्स लिए और फिर निशान बनाए। एक बार आवश्यक निर्णय लेने के बाद ये निर्धारित करने के लिए कि व्यापक शोध किया गया था कि मौजूदा या तत्कालिक संगीत का जो है संयोजन किया गया है, ये जो है वो यंत्रों पर जो ध्वनियाँ हैं उसे चेक की जाती थी। गब्बर की हाई पिच स्क्रीचिंग थीम के लिए एक देसी वाद्य यंत्र का उपयोग किया गया था। ये एक पीतल का बर्तन था जिसके बीच में 1.5 इंच की ट्यूब थी जो छोटे आधे और चौथाई इंच की ट्यूब से भरा हुआ था। जब केंद्रीय ट्यूब में पानी डाला जाता था तो सबसे छोटी ट्यूब में एक उच्च पिच ध्वनि निकलती थी और बड़ी ट्यूब से कम पिच वाली ध्वनि निकलती थी। एकमात्र समस्या ये थी कि उपकरण हर बार एक अलग ध्वनि बनाता था। पंचम को अपनी पसंद की आवाज़ सुनाई देने से पहले लगभग 15 टेक जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए थे। अब ये जो टेक इसलिए रिकॉर्ड किए गए थे क्योंकि वो जो यूनिक जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, उसमें भी टाइम लगता था और हमें बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है और हम ढूंढ रहे हैं अगला गीत। और अगला गीत जो है वो जो मुझे याद आ रहा है, बड़ा ही दिलकश गीत था, फिल्म थी डॉन, अरे दीवानो मुझे पहचानो, किशोर कुमार की आवाज़ में गाया हुआ ये गीत था डॉन, अमिताभ बच्चन, जीना धवन, बेहतरीन फिल्म, बेहतरीन गीत। गीत को सुनते हैं और पहचानते हैं कि ये कौन सी ध्वनि कहाँ से किस यंत्र से आ रही थी। लेकिन इससे पहले अरे दीवानो मुझे पहचानो सुनते हैं, लौटते हैं क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है।

वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम अपना जो किया हुआ वादा है उससे मुकरेंगे नहीं, और बशीर बद्र साहब का जो लेख है वो आपके साथ साझा कर रहे हैं, उसे पूरा ज़रूर करेंगे। तो भाई, उन्होंने कहा था जो 1987 में मेरठ के दंगों में जब बशीर साहब का घर जला दिया गया था, तब उन्होंने लिखा था, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में। अब इस आग में बशीर साहब की जो है बहुत सारी जो नई गज़लें थीं वो जल गई थीं, और उनको सदमा भी लगा था, लेकिन उनके लिए फरिश्ता बन के आए थे जो हमने आपको बताया ही था कि भाई अब ये कौन थे। आपको बता चुका हूँ मैं कि भाई जो विशाल भारद्वाज जी थे, जो उनकी जो गज़लें सुनते थे, वो भाई उनके लिए फरिश्ता बन के आए। तो विशाल एक तरह से जो है वो क्या काम किया उन्होंने, आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, बशीर साहब आपने जितनी गज़लें सुनाई हैं वे सब मुझे याद हैं। बशीर साहब यह सुनकर हैरान रह गए। इसके बाद विशाल ने कई दिन तक बैठकर उन्हें उनकी गज़लें दोबारा लिखवाईं, जिसका एक मिसरा उन्हें याद था, किसी का दूसरा मिसरा याद था, लेकिन चूंकि वे बशीर साहब की अपनी रचनाएं थीं, इसलिए जैसे ही विशाल उन्हें याद दिलाते पूरा शेर उनके जहन में लौट आता। अब इस तरह विशाल की बदौलत बशीर साहब उस जले हुए दीवान को दोबारा जो है वो लिख पाए थे। अब बड़ा ही जो है वो आनंद आता है जब इस तरीके की बातें होती हैं, इस तरीके जो है वो चीज़ें जो हैं वो दिखाई देती हैं। लेकिन मुझे याद आ रहा है, फिल्म थी पुकार, आर डी बर्मन का संगीत था, अमिताभ बच्चन, जीना तमान, समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो, इस तरीके का गीत था। बड़ा ही जो है वो हैप्पी नंबर था। 80s की बात है, 1983-84 की बात है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो समंदर को देखते हैं और लौटते हैं। समंदर

वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। देखिए ना, ये जो बातें हो रही थी बशीर बद्र साहब की, जो बातें हो रही थी, कैसे विशाल भारद्वाज जी ने जो है वो उनको जो पूरी गजलें जो है उनको दोबारा लिखवा दी थी। कुछ मिसरा याद था एक का, किसी का जो दूसरा मिसरा याद था, किसी का एक पहला मिसरा याद था। क्या बात, क्या बात। और इस तरह विशाल की बदौलत बशीर साहब उस जले हुए दीवान को दोबारा लिख पाए। फिर विशाल भी बशीर साहब के शेरों को जहन में रखकर मुंबई चले आए। यहाँ उन्होंने बड़ा नाम कमाया। फिल्मों में वैसे बशीर साहब की ज़्यादा जो है वो दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन विशाल ने लगाव से चलते उन्होंने उनकी फिल्म बेताबी के लिए गाना लिखा, गुनगुनाती हुई एक नदी मिल गई, अजनबी शहर में दोस्ती मिल गई, ऐसे कुछ उसके गीत थे। तो आप जो है वो इस जो है वो फिल्म के इस गीत को ज़रूर सुनिएगा। इसी के साथ जो है वो हमने कर दिया, देखिए आपसे वादा पूरा, हम इस लेख को अपने अगले संस्करण में नहीं लेके गए हैं। और इसी के साथ जो है मुझे याद आ रहा है कि हम आपको लेके जाते हैं, इससे पहले कि हम शोले पे वापस लौटें, कि भाई दिल लगी ने दी हवा दोस्ताना, बड़ा ही जो है वो दिलकश गीत था किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज़ में। तो ये जो फिल्म थी 1980 एंड दोस्ताना, दोस्ताना के साथ भी बड़े सारे जो हैं वो वाकई जुड़े हुए हैं, वो तो हम आपको पहले बता चुके हैं। और एक प्रोग्राम भी हम इस पे जो है वो ज़रूर डेडिकेट करेंगे। फिलहाल गीत सुने और लौटें, आपका इंतज़ार कर रहा हूँ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। तो भाई हम जो है वो शोले की बात कर रहे थे। वो एक अलग सा जो यंत्र था, देसी वाद्य यंत्र जो है वैसा ट्यूब डाल के जो इस तरीके से बनाया गया था। अब इस तरीके की बातें होती रहीं, उसमें जो है वो 15 टेक के बाद जो है वो एक पर्टिकुलर साउंड निकला था। तो ये जो एक लूप बनाया गया और उसी का इस्तेमाल किया गया हर बार ध्वनि में। ब्रास पॉट नोट की शादी एक सेलो के साथ हुई थी और गब्बर की विशिष्ट थीम तैयार थी, जो उद्योग के लिए एक पूरी तरह से एक नई जो है वो ध्वनि थी। अब पृष्ठभूमि स्कोर में भी वेस्टर्न प्रभाव अधिक स्पष्ट था। शीर्षक संगीत एक फ्रांसीसी सॉन्ग के साथ शुरू हुआ, एक देहाती स्पर्श के साथ तार शहनाई के उपभेदों में घुस गई और फ्रांसीसी सींग पर वापस जो है वो चल पड़ा। लेकिन टीम ने प्रयोग भी किया। बसंती का तांगा सीन के लिए पंचम केवल एक तबला चाहते थे। कई जो है संगीतकारों ने सोचा कि ये बहुत जो है एडिशनल है, लेकिन पंचम जानते थे कि एक जो है सिर्फ तबले की ध्वनि पूरे ऑर्केस्ट्रा की तुलना में उन मादी पीछा जो हो रहा है उसको पीछे छोड़ देगी, यानी कि वो बिल्कुल सही जाएगा। इस दृश्य के लिए पंडित क्षमता प्रसाद ने तबला बजाया था। पंचम ने जय के लिए माउथ ऑर्गन बजाया था। उन्होंने सिक्का जो ध्वनि के लिए एक सिक्का भी उछाला था। अब अमजद एकमात्र अभिनेता थे जो पृष्ठभूमि रिकॉर्डिंग पर बैठे थे, बाकी सभी बहुत व्यस्त थे। एक दिन सहायकों ने उन्हें एक तरफ से जाकर जो ढोलक वादक थे देवी, उन पर एक शरारत करने के लिए कहा। अब देवी अमजद की अरे ओ सांभा लाइन की नकल करते हुए इधर उधर जो है वो मस्खरी कर रहे थे। अब अमजद ने अपना सबसे अच्छा खतरनाक रूप धारण किया और देवी के पास गए। इससे उस आदमी को उन्होंने छुआ नहीं, लेकिन पास झुककर जो गुर्राया जो अमजद ने कि मत करो। अब उभरती आकृति और परेशान आवाज़ से भयभीत देवी जो थे वो पीले पड़ गए और सिर हिलाते हुए वहाँ से भाग गए थे और फिर रिकॉर्डिंग थिएटर से बाहर भाग गए थे। अब भाई उसके बाद उन्होंने कहा जाता है कि सिगरेट छोड़ ही दी थी, उसके बाद सिगरेट तक नहीं पी थी उन्होंने कभी, लेकिन इस सीधे पंचम की कार की ओर बढ़े और अपना पैक निकाला। और भाई अब क्या कहना, हाँ कहना ये हमें है कि भाई घड़ी बिल्कुल साथ नहीं दे रही है। कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, जाने का मन नहीं कर रहा, घड़ी साथ नहीं दे रही है। पर जाते जाते मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ कब के बिछड़े हुए, लावारिस थी फिल्म किशोर कुमार की आवाज़ में, आशा भोसले जी की आवाज़ में। कब के बिछड़े से सुनते हैं, अगले हफ्ते लौटते हैं। जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हमें लिखते रहिए, गीत सुनते रहिए। अगले हफ्ते लौटते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अगले संस्करण के साथ आपका होस्ट और दोस्त अब विदा चाहता है। धन्यवाद।

0: Hi, I'm Digmanshu Dhulia. You're listening to Radio Manav Rachna 107.8 FM. Feel good, feel live.
1: Well, hello, good evening, namaskar, sat shri akal, ram ram, jai mata di, assalamu alaikum doston, main hu RJ Sagar, aaj ka hu lekar ke show Satyamev Jayate, Jai Hind, Jai Bharat. Now this show is really special, reason being ki har baar yahan par subject matter expert hote hain jinse hum baat karte hain kisi particular ek domain ki, matlab this is obviously all about the legal framework in India. उस डोमेन में अलग अलग चीजें आती हैं, लेकिन उनको यहां पर हम लोग एक्सप्लोर करते हैं. आज का हमारा टॉपिक है NDPSA, बेसिकली नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट. भारत में एक एक्ट है जो पास हुआ था, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. क्या होता है ड्रग अब्यूज, कानून क्या बोलता है, इसके प्रिवेंशन के लिए क्या चीजें हैं, ये तमाम चीजें लीगल फ्रेमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ हैं मिस निधि. निधि मैम इज असिस्टेंट प्रोफेसर एट स्कूल ऑफ लॉ, मानव रत्न यूनिवर्सिटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर शो मैम.
2: थैंक यू सो मच सागर.
1: मेरा पहला क्वेश्चन आपसे रहेगा कि व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट, आई मीन व्हाई इज देयर अ नीड टू अंडरस्टैंड कि हम ड्रग्स की बात करें, नार्कोटिक्स की बात करें, व्हाट्स द नीड?
2: तो शुरुआत में यहाँ से करूँगी कि जो ड्रग प्रॉब्लम है ये सिर्फ इंडिया का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का एक तरह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है. पूरे वर्ल्ड में इसकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, और ड्रग प्रॉब्लम अपने आप में तो एक बड़ी प्रॉब्लम है ही, साथ में ये और भी कई सारी प्रॉब्लम्स को जन्म देता है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको ड्रग्स नहीं मिल रहे तो ड्रग पाने के लिए, ड्रग को प्रोक्योर करने के लिए आप दूसरे क्राइम कमिट करते हैं, तो आप दूसरे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते जाते हैं. अगर आपको ड्रग्स नहीं मिल रहे तो उससे आपको बहुत सारे मेडिकल इशूज़ हो जाते हैं, तो जिसके वजह से आपका जो मेडिकल सिस्टम है किसी भी देश का, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, किसी भी कंट्री की इकनॉमी इम्पैक्ट होती है. तो ड्रग प्रॉब्लम, और हमें ये भी पता है कि स्मगलिंग जो है, ड्रग स्मगलिंग, अगेन इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम टू द वर्ल्ड. तो इस वजह से ड्रग प्रॉब्लम जो है और भी कई सारी समस्याओं को जन्म दे रहा है. तो ज़रूरी है कि हम इस प्रॉब्लम को देखें, समझें कि ये है क्या, और क्या वाकई में ये पॉसिबल है 100% कि हम इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं या नहीं पा सकते. तो ये सारी कुछ कई सवाल हैं जिनको हमको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम अलग अलग कानून अलग अलग देशों में पास हुए हैं जो इससे डील करता है.
1: ऑलराइट, सो अमेजिंग, थैंक यू फॉर just bringing us to the domain, bringing us to the topic. तो ये अभी तक हमने पता लग गया है कि exactly drug abuse कितनी बड़ी एक problem है, और ये मुझे बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है honestly, क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा, social media पर आपने videos देखे होंगे अलग अलग states के, पंजाब बीट, हरियाणा बीट, राजस्थान बीट, यूपी, कहीं से भी आप देख लें, आपको अलग अलग नाम जो है वो दिखाई देते हैं कि ये zombie drug है, ये वो वाला drug है. इनफैक्ट आई वॉज जस्ट वॉचिंग दिस डॉक्यूमेंट्री जहाँ पर पंजाब में एक गाँव को, एक घर को कवर किया गया. उस घर में 7 बच्चों की मौत हुई. उन पेरेंट्स के पास अब बच्चे नहीं है कोई भी, क्योंकि उनके 7 बेटे थे, 7 के 7 बेटे मर गए जस्ट बिकॉज दे वर यूजिंग ड्रग्स. और जब उनको विड्रॉल सिम्टम्स हुए, जब माँ बाप ने जबरदस्ती करके ड्रग्स छोड़वा दी, घर में बिठा दिया, तो विड्रॉल सिम्टम्स के बाद वो बच्चे सर्वाइव कर ही नहीं पाए. माँ बाप को लगा ठीक है अभी ठीक हो जाएगा 2 दिन में 4 दिन में 5 दिन में, बट जैसा निधि मैम ने कहा कि आपकी बॉडी में भी कुछ चेंजेस होते हैं, मेडिकल लेवल पर भी आपको इश्यूज होते हैं, आपका DNA ऑल्टर हो सकता है, आपकी बॉडी की ओवरऑल फंक्शनैलिटी अफेक्ट हो सकती है उससे. सो दैट्स वाई इट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस, एस्पेशली अमंग यंगस्टर्स. दिस इज द कूल थिंग एंड आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट इट. ऑलराइट, मेरा अगला प्रश्न आपसे रहेगा, प्लीज टेल अस अबाउट NDPS की एग्जैक्टली कानून क्या बोलता है इस एक्ट के बारे में, क्या है ये एक्ट?
2: सो NDPS इज नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस. ये एक्ट 1985 में पास किया गया था. इसको समझते हैं ऐसे कि पहले हम जरा इंडिया की ज्योग्राफी समझते हैं. इंडिया जो है एक बहुत, इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है. और इंडिया जहाँ सिचुएटेड है, तो हमारे लेफ्ट साइड में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान जो है, इन तीनों कंट्रीज से हमारे यहाँ काफ़ी ड्रग सप्लाई होता है. हमारे राइट हैंड साइड में म्यांमार, लाओस और कुछ कंट्रीज है जहाँ से हमारे पास ड्रग सप्लाई होता है. तो इंडिया इन दोनों के बीच में सिचुएटेड है. तो इंडिया एक तरह से एक ट्रांजिट रूट भी है, तो कहीं से भी इन कंट्री से, एंड दीज टू रीजन्स आर बिगेस्ट सप्लायर्स ऑफ ड्रग्स इन अक्रॉस द वर्ल्ड. तो जब यहाँ से कहीं ड्रग पास होता है तो वो इंडिया के थ्रू होके जाता है, तो इंडिया एक ट्रांजिट कंट्री है। दूसरी चीज़, इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट भी है, क्योंकि हमारी जो यंग पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन है, तो इंडिया में आपको कंज्यूमर भी मिल जाते हैं, इंडिया ट्रांजिट रूट भी बन जाता है। तो यहाँ पे जो ड्रग प्रॉब्लम है ये अपने आप में बहुत बड़ा रूप ले चुकी है, जिसको टैकल करना बहुत ज़रूरी था। 1985 के पहले ऐसा नहीं कि पहला लॉ था, इसके पहले भी कई सारे लॉज थे हमारे पास। वी हैड ओपियम एक्ट एंड दोज वर ऑल कॉलोनियल लॉज, तो अंग्रेज़ों के टाइम के लॉ बने हुए थे। हमें और नए लॉज की ज़रूरत थी क्योंकि नए नए ड्रग्स आते जा रहे हैं, जैसे हमने कहा नाम इसका नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है, सो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक नई कैटेगरी जन्म ले चुकी थी, तो हम पुराने लॉज पर रिलाई नहीं कर सकते थे, हमें एक नया प्रोग्रेसिव लॉ चाहिए था जो नार्कोटिक ड्रग्स को स्ट्रिक्टली डील करे। स्ट्रिक्टली डील करे का मतलब वी ऑप्टेड अ पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस, हमने कहा कि हम ड्रग्स को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें इसको पूरी तरह से बैन करना है। तो इस अप्रोच के साथ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस को इस एक्ट को इनैक्ट किया गया 1985 में। Now the basic principle of this act is that it works on the principle of strict liability, or I would say principle of deterrence. Deterrence का मतलब ये होता है कि इसमें जो पनिशमेंट है वो इतनी स्ट्रिक्ट नेचर की है जिससे हम लोगों के मन में एक डर पैदा करना चाहते हैं कि ये जो ड्रग अब्यूज़ है इसको लाइटली ना लिया जाए। अगर आप किसी भी ड्रग अब्यूज़ के केस में फंसते हैं तो उसमें आपको बहुत प्रोलॉन्ग पनिशमेंट हो सकती है, आपको इसमें बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको सालों साल कोर्ट के चक्कर काटते रहने पड़ेंगे, और इसमें कोई लीनियंसी नहीं बरती जाएगी। तो हमने इस अप्रोच के साथ इस एक्ट को हम ले करके आए थे, और अगेन जो प्रोसीजर्स इस एक्ट के अंदर बताए गए हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोसीजर है, काफ़ी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती हैं जिनके पास पावर है प्रोसीड करने की, इन्वेस्टिगेट करने की, अरेस्ट करने की। स्पेशलाइज्ड हमने टेक्निक्स इसके लिए बनाए कि किस तरह से हम लोकेट कर सकते हैं कि कहाँ क्राइम हो रहा है, किस किस तरह से लोग इन्वॉल्व हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो हम NDPS एक्ट के अंदर हमने डाली थी।
1: ऑलराइट, सो दिस इज NDPS एक्ट जो 1985 में पास हुआ, जैसा मैम ने बताया कि उसके पहले भी हमारे पास ओपीएम एक्ट था। द सोल मोटिव इज कि आपके नेबरहुड से जो ड्रग सप्लाई किए जा रहे हैं हमारे देश में उसको कैसे करके प्रिवेंट किया जा सकता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब इट बिकम्स अ प्रॉब्लम जहाँ पर लोग ड्रग्स करने के लिए ड्रग्स बेचना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दे बिकम द वेंडर्स, दे बिकम द वट एवर यू कॉल इट, जो ड्रग्स सप्लाई करते हैं वो बन जाते हैं ताकि उनके पैसे बन सके और उन्हीं पैसों से वो ड्रग्स ही खरीदते हैं। सो इट इज बिकमिंग अ लूप फॉर अस, इफ यू अंडरस्टैंड दिस। फिलहाल आई थिंक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। आगे और कुछ क्वेश्चन है मेरे जो मैं डिस्कस करूंगा, बट स्टे ट्यून्ड विद अस।

0: वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो यहाँ पर चल रहा है सत्य में विजयते, एंड ये शो हमारा बहुत स्पेशल है। आज का शो अपने आप में बहुत खास है क्योंकि आपने टर्म जरूर सुनी होगी ड्रग्स क्या होते हैं, आपने वीडियोस देखे होंगे, लोग परेशान हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो गई, कितने लोग रुक जाते हैं चलते चलते, हंसने लग जाते हैं। आई मीन सो मेनी थिंग्स आर देयर, और इसके ऊपर कितनी सारी मूवीज बनी है, डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, वेब सीरीज बनी है, बट दिस इज नॉट समथिंग कूल। आपके ब्रेन को ट्रिगर करता है, आपके दिमाग में कुछ चीजें हैं जिनको जाकर वो टेक ओवर कर लेता है, रिसेप्टर्स आपके दिमाग में बनाता है, आप बेसिकली न्यूट्रल कभी सोच ही नहीं पाते हो, आपके दिमाग को हाईजैक कर लिया गया है एक आउटर पावर के द्वारा। दैट इज द कोर फंडामेंटल। यहां पर बात करना चाहूंगा मैं नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, अगर मैं इन डिटेल इनके बारे में जानना चाहूं, क्या डेफिनेशन है कानून की?
1: देखिए, कानून की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कानून सिर्फ इतना कहता है कि नार्कोटिक ड्रग्स वो हैं जो नार्कोटिक ड्रग्स नाम से लिस्ट में दिए हुए हैं, और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस वो हैं जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस की लिस्ट में दिए हुए हैं। सो लीगल डेफिनेशन तो इतनी है, और क्योंकि ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे तो इसकी डेफिनेशन थोड़ी मेडिकल साइंटिफिक डेफिनेशन ज़्यादा है, जो शायद कोई डॉक्टर ज़्यादा डिटेल में आपको बता सकता है। बट जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि नार्कोटिक ड्रग्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो मोस्टली प्लांट डिराइव सब्सटेंसेस होते हैं, जो मोस्टली किसी नेचुरल चीज़ से डिराइव होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कैनबिस है, कैनबिस प्लांट होता है, जिस प्लांट के अलग अलग पार्ट से अलग अलग तरह के ड्रग मिलते हैं। सो फॉर एग्जांपल कैनबिस प्लांट के फ्लावर की अगर हम बात करें तो वहाँ से आपको मिलता है गांजा, और अगर जो उस प्लांट से रेजिन निकलता है उस रेजिन को हम कहते हैं चरस, और उस प्लांट के जो पत्ते होते हैं उसको हम कहते हैं भांग। तो प्लांट एक ही है, उस प्लांट के अलग अलग पार्ट से हमें अलग अलग तरह के ड्रग्स मिल रहे हैं। भांग जो है, अगेन नार्कोटिक ड्रग्स की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है, क्योंकि भांग इंडिया में बहुत ही एक सोशली एक्सेप्टेड नार्कोटिक ड्रग्स है कह सकते हैं हम, और शायद कई लोग उसको ड्रग मानते भी नहीं होंगे, क्योंकि हम भांग जो है बहुत कॉमनली यूज्ड सब्सटेंस है, होली में, शिवरात्रि में, कई जगहों पर आप देखेंगे इट इज़ वेरी कॉमन। एंड कैनबिस प्लांट जो है वो भी बहुत एक ऐसा प्लांट है जो बहुत आराम से ग्रो हो जाता है हमारे हिमालयन रीजन्स में, हिमाचल में, उत्तराखंड की पहाड़ियों में। कैनबिस प्लांट जो है बहुत कॉमनली ग्रोन प्लांट है, लेकिन अगेन इस प्लांट का एक पार्ट है जो ड्रग की डेफिनेशन से बाहर है, बाकी पार्ट जो हैं वो ड्रग की डेफिनेशन के अंडर आते हैं। वैसे ही अगर हम तो नार्कोटिक ड्रग्स क्या करते हैं, नार्कोटिक ड्रग्स आपके ब्रेन पे आपके नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करते हैं, और इसके अलग अलग इफेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई नार्कोटिक ड्रग्स है जो आपकी बॉडी को बहुत रिलैक्स कर देगा, जो एक तरह से एक पेन रिलीफ का काम करता है। सो फॉर एग्जांपल देयर इज वन नार्कोटिक सब्सटेंस विच इज मॉर्फिन, जो कि एज अ पेन रिलीफ भी काम आता है, मेडिकल यूज है जिसका। तो अगर वो आपको दिया जाता है इन कंट्रोल अमाउंट, ऑब्वियसली अंडर कंट्रोल सर्कमस्टांसेस, तो वो आपके पेन में रिलीफ करने के काम आता है। कुछ नार्कोटिक्स ऐसे होंगे जो आपको दे विल प्रोड्यूस यूफोरिया, तो यू विल फील वेरी एक्साइटेड, वेरी एनर्जेटिक। तो इस तरह से अलग अलग इम्पैक्ट होते हैं। एंड वेन वी टॉक अबाउट साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज, दे आर मोस्टली केमिकल बेस्ड सिंथेटिक सब्सटेंसेज होते हैं, जिनको फैक्ट्री में, लैब्स में मैन्युफैक्चर किया जाता है। एंड अगेन दे इम्पैक्ट योर मूड, योर परसेप्शन, योर कॉग्निटिव स्किल्स। तो इसका इम्पैक्ट कुछ इस तरह से होता है, स्लाइटली डिफरेंस हो सकता है, लेकिन वो डिफरेंस जो है वो शायद कोई डॉक्टर, शायद कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर वो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा पाएगा। बट लॉ में डेफिनेशन की बात करें तो डिफरेंस बस इतना ही है कि जो नार्कोटिक ड्रग्स की लिस्ट में है वो नार्कोटिक ड्रग्स, और जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस की लिस्ट में है वो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस।
0: All right. And I think उससे ज़्यादा परिभाषा की ज़रूरत है भी नहीं, इट्स जस्ट कि कानून के पास अपने कुछ डेफिनेशन हैं चीज़ों की, वो आपको पता होना चाहिए। ओके, अगर मैं बात करूँ किसी भी तरीके से कंजम्पशन, पोजेशन या बेचना, किसी भी तरीके से कैरी करना, इन्वॉल्व होना, क्या इस एक्ट में सब कुछ कवर होता है या कुछ एग्जेम्प्टेड है यहाँ पर?
1: सो ये एक्ट जो है एक तरह से इट कवर्स एनीथिंग एंड एवरी थिंग रिलेटेड टू नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज। तो कुछ भी आप ले लीजिए जो रिलेटेड टू ड्रग्स है, बी इट फ्रॉम कल्टिवेशन टू मैन्युफैक्चरिंग टू सेलिंग, परचेजिंग, पोजेसिंग, कंज्यूमिंग, फाइनेंसिंग, एवरी थिंग इज मेड अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। तो सब कुछ जो है वो एक ऑफेंस है। हाँ, एक्सेप्शन बस इतना है कि आप, क्योंकि ये जो ड्रग्स होते हैं इनके और भी यूसेज हैं, इनके मेडिकल यूसेज है, सो वी नीड दिस ड्रग। तो इनका जो ड्रग है अगर गवर्नमेंट अलाउ कर रहे हैं तो जो भी लोग इसको कल्टीवेट करते हैं उनको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। जो भी कंपनीज, जो फार्मा कंपनीज है जो इनको मैन्युफैक्चर कर रही है उनको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। तो अगर वो लाइसेंस्ड कंपनी है, वो लाइसेंस फार्मर है, सो दे कैन कल्टीवेट, प्रोवाइडेड कि वो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं कि कितना अमाउंट में होना चाहिए और किस तरह से उसको कंट्रोल करना, अगर वो सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं और वो लाइसेंस है तब वो ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी एक्टिविटी इनसे रिलेटेड, वो सारी एक्टिविटीज एक पनिशेबल ऑफेंस है अंडर एनडीपीएस एक्ट।
0: ऑलराइट, सो बेसिकली जिनको अगर कल्टीवेट भी करना है उसके लिए दे नीड अ प्रॉपर लाइसेंस फॉर दैट पार्ट।
1: यस,
0: अगर किसी के खेत में अपने आप, क्योंकि ये वीड जो होती है जितना मैं जानता हूँ एक घास की तरह उगती है, एक जंगली घास उसको बोला जाता है बहुत जगहों पर, अगर किसी के खेत में वो उग गई है, सो इज देयर एनी स्पेसिफिक नॉर्म फॉर दैट पार्ट?
1: देखिए, अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो कोई एक घास जो कहीं पे भी उग गई है इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ऐसी है दैट यू कैन नॉट रीच एवरीवेयर एंड कंट्रोल दिस नेचुरल ग्रोथ। बट ऐसे कई बार ड्राइव होती है जहाँ पे भेजा जाता है और लोगों के फार्म्स जला दिए जाते हैं क्योंकि उनके फार्म्स में इस तरह की नेचुरल ग्रोथ हो रही है। तो अगर ये लाइट में आया किसी अथॉरिटी के या उस टाइम पे इस तरह की अगर ड्राइव चल रही है तो ऐसा भी होता है कि पूरे के पूरे फार्म ख़त्म कर दिए जाएँ अगर वहाँ पर कुछ इस तरह का नेचुरल ग्रोथ हो रहा है। तो कई बार ये सड़क के किनारे ग्रो हो रहा है जिसके ऊपर एज सच किसी का कंट्रोल है नहीं, या हो सकता है कि वो गवर्नमेंट का ही लैंड हो और वो के उस पर किसी का नोटिस नहीं गया, तो वो हो सकता है, मतलब इट अकर्स नेचुरली और सब कुछ कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो ऑब्वियसली इन सब चीजों को रिमूव किया जा सकता है।
0: सो अमेजिंग, नाइसली सेड। ऑन दिस नोट लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, देन विल कंटिन्यू द शो। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

0: मैं हूँ आरजी सागर, शो चल रहा है यहाँ पर सत्य में भी जाते हैं। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानव वर्षा 107.8 एफएम के साथ। आज का हमारा टॉपिक है, यहाँ पर हम लोग ड्रग्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो नार्कोटिक्स है या साइकोट्रॉफिक है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज की लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश कर रहे हैं एग्जैक्टली क्या है, कानून क्या बोलता है। मेरा अगला प्रश्न रहेगा कि अगर किसी को ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है तो पनिशमेंट कैसे डिफर करती है? किसी के पास छोटी क्वांटिटी है और कोई कमर्शियल लेवल पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी लेकर क्या रहा है, क्या दोनों की पनिशमेंट अलग होगी?
1: सो NDPS एक्ट जो है ड्रग्स को क्वांटिटी के बेसिस पे डिवाइड करता है एंड देर आर थ्री क्वांटिटीज हेयर। सो वी हैव स्मॉल क्वांटिटी, वी हैव कमर्शियल क्वांटिटी एंड द थर्ड वन इज इंटरमीडिएट क्वांटिटी, जो कि स्मॉल क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी के बीच में फॉल करती है। सो फॉर एग्जांपल गांजा अगर हम बात करें तो 1 kg तक उसको हम स्मॉल क्वांटिटी कहते हैं, 1 kg के ऊपर एंड अप टू 20 kg इट इज़ इंटरमीडिएट क्वांटिटी एंड मोर देन 20 kg इट इज़ कमर्शियल क्वांटिटी। वैसे ही अगर हम हीरोइन की बात करें तो हीरोइन क्योंकि ज़्यादा सीरियस, ज़्यादा हार्मफुल ड्रग है तो उसकी स्मॉल क्वांटिटी होती है 5 ग्राम। तो 5 ग्राम तक अगर आपके पास हीरोइन है तो वो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर आएगा। 5 ग्राम से लेके 250 ग्राम तक जो है वो इंटरमीडिएट क्वांटिटी होती है और 250 ग्राम से ऊपर अगर आपके पास है तो वो कमर्शियल क्वांटिटी है।
0: 250 ग्राम
1: यस
0: ओके
1: 250 ग्राम जो है अगर इसके ऊपर आप जाते हैं तो वो कमर्शियल
0: मान लिया जाएगा। yes,
1: वो कमर्शियल क्वांटिटी है। तो डिपेंडिंग ऑन दी पोटेंसी ऑफ द ड्रग कि कोई ड्रग कितना हार्मफुल है, क्योंकि हीरोइन ज़्यादा हार्मफुल है इसीलिए उसकी कमर्शियल क्वांटिटी भी 250 ग्राम से स्टार्ट होती है और गांजा रिलेटिवली लेस हार्मफुल है तो उसकी कमर्शियल क्वांटिटी 20 kg से स्टार्ट होती है। अब पनिशमेंट भी हमारी इस क्वांटिटी के बेसिस पे है। तो अगर आपके पास स्मॉल क्वांटिटी है तो उसमें पनिशमेंट आपको 1 साल तक की हो सकती है, आपको 10,000 रुपये तक का फाइन मिल सकता है क्योंकि ये छोटा स्मॉल पेटी ऑफेंस माना जाता है अंडर NDPS एक्ट। अगर आप इंटरमीडिएट क्वांटिटी के साथ पकड़े जाते हैं तो उसमें आपकी पनिशमेंट अप टू 10 years हो सकती है। सो मैक्सिमम पनिशमेंट इज गिवन अंडर द लॉ दैट इज 10 years एंड फाइन अप टू 1 lakh rupees। तो आपका हो सकता है पनिशमेंट 2 साल भी हो, 4 साल भी हो या 10 साल भी हो और आपको फाइन भी 1 lakh rupees तक का दिया जा सकता है। अगर हम कमर्शियल क्वांटिटी की बात करें तो दैट इज़ द मोस्ट सीरियस काइंड ऑफ ऑफेंस अंडर द NDPS एक्ट और यहाँ पे जो पनिशमेंट है मिनिमम 10 years की है। तो ये एक ऐसा ऑफेंस है जहाँ पे लॉ ने एक मिनिमम मैंडेटरी सेंटेंस क्रिएट किया हुआ है, मिनिमम मैंडेटरी पनिशमेंट जो 10 साल की है और जो कि जा सकती है 20 साल तक। सो अ पर्सन हु इज़ कॉट विथ कमर्शियल क्वांटिटी विल बी पनिश्ड एटलीस्ट फॉर 10 years और मैक्सिमम 20 साल जा सकता है और फाइन उसमें मिनिमम 1 lakh rupees है और मैक्सिमम 2 lakh rupees का फाइन है। तो कमर्शियल क्वांटिटी अगेन जो है ये सबसे सीवियर कैटेगरी है ऑफेंस की जहाँ पे आपको मिनिमम आप 10 साल के लिए तो जेल में जाएंगे ही जाएंगे।
0: और एक कमर्शियल हम सारे ड्रग्स की बात कर रहे हैं, जस्ट हम गांजा की बात कर रहे हैं, हीरोइन की बात कर रहे हैं?
1: नहीं, सारे ड्रग्स, कोई भी ड्रग आपके पास है जिसकी क्वांटिटी जो लिस्ट, तो हमारे पास एक लिस्ट है NDPS एक्ट के अंदर जिसमें सारे ड्रग्स लिस्टेड हैं, सारे जो भी नोन हमारे पास नार्कोटिक ड्रग्स हैं और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस हैं वो सारे ड्रग्स लिस्टेड हैं। दूसरा, गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो टाइम टू टाइम एक नोटिफिकेशन जारी करके उसमें ड्रग्स को ऐड या उसमें से ड्रग्स को माइनस कर सकती है। तो कोई ड्रग हो सकता है कि कोई नया ड्रग आज निकल के आ गया जिसके बारे में हमें और आपको पता नहीं है, बट गवर्नमेंट की नज़र में कोई नया ड्रग आया तो वो उस लिस्ट के अंदर उस ड्रग को ऐड कर सकती है। हो सकता है कि कोई ड्रग जो है अब यूसेज में नहीं रहा है, एलिमिनेट हो चुका है, तो उस ड्रग को उस लिस्ट से बाहर किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डिसाइड कर सकती है कि कौन सा ड्रग उस लिस्ट में रहेगा। दूसरी बात, गवर्नमेंट क्वांटिटी डिसाइड करती है। तो अगर गांजा की क्वांटिटी 20 kg है तो गांजा अगर आपके पास 20 kg से ज़्यादा है आप कमर्शियल क्वांटिटी के लिए लायबल होंगे। हीरोइन अगर 250 ग्राम से ज़्यादा है तो आप कमर्शियल क्वांटिटी के लिए लायबल होंगे और दोनों की पनिशमेंट सेम होगी। तो कोई भी ड्रग जो कमर्शियल के ऊपर आता है और आपके लिस्ट में लिखा हुआ है कि वो कमर्शियल के ऊपर है, आपको उसके लिए 10 साल तक की सजा, 10 साल से शुरुआत होगी आपकी सजा की।
0: ठीक है, ये तो बात हो गई कानून की। अगर किसी इंसान को लेट्स से कि ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है, ठीक है, क्या उसके पास कोई राइट अपना बचता है उस टाइम पर कि वारंट होना चाहिए या इमिजिएटली सीज किया जाएगा? उसका कोई राइट वहां पर नहीं है जिसको अरेस्ट किया जा रहा है।
1: तो अगर देखिए, अगर आप ड्रग्स के साथ पकड़े गए तो अगर मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूं तो आपकी बहुत बड़ी समस्या वहां से शुरू हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे पुलिस के पास, क्योंकि ये जो एक्ट है ये बहुत ही स्ट्रिक्ट नेचर का एक्ट है, यहाँ पे पुलिस को या जो भी एजेंसीज है, जो एम्पावर्ड एजेंसीज है, उनको बहुत सारी पावर्स दी गई हैं। तो वहाँ पे वो आपको इमीडिएटली अरेस्ट कर सकते हैं, दे डोंट नीड एनी वारंट। और क्योंकि क्योंकि वारंट का अगर हम वेट करने लगे तो फिर तो ऐसे जो भी हमारे स्मगलर्स हैं जो एक्चुअली में डील कर रहे हैं वो हाथ से निकल जाएंगे। तो पुलिस वारंट का वेट नहीं करेगी वहाँ पे। तो पुलिस को जैसे ही कोई खबर मिली कि अभी एक घंटे के अंदर यहाँ पे कोई ड्रग्स लेकर के पहुँचने वाला है, पुलिस इमीडिएटली उस स्पॉट पर प्रोसीड करेगी और उस ड्रग को जब्त करेगी। हाँ, अक्यूज के पास ये राइट है कि पुलिस जो है उसको बताएगी कि उसका जो सर्च है, तो पुलिस अगर उसको पर्सनली सर्च कर रही है, उसकी बॉडी को सर्च कर रही है, तो वो सर्च ये अक्यूज का राइट है और ये पुलिस की जिम्मेदारी है अक्यूज को बताना या सस्पेक्ट को बताना कि आपका सर्च किसी मजिस्ट्रेट या गजेटेड ऑफिसर के सामने भी होगा। तो ये आपका राइट है, आप ये चूज कर सकते हैं। अगर अक्यूज कहता है कि नहीं मैं कंफर्टेबल हूँ, आप ही मेरा सर्च कर दीजिए, तो पुलिस उसका सर्च करेगी। पुलिस पहले उससे एक मेमो साइन करवाती है कि चलो हमने आपको आपके राइट्स के बारे में बता दिया था और आप अपना ये राइट एक्सरसाइज नहीं किया, आप कंफर्टेबल हैं, आप पुलिस से अपने सर्च करवा सकते हैं। अगर अक्यूज वो मेमो साइन कर देता है तो पुलिस उसको पर्सनली सर्च कर सकती है। लेकिन अगर अक्यूज ये कहता है कि नहीं मेरा सर्च जो है मैजिस्ट्रेट के सामने ही होना चाहिए, then it is the responsibility of the police to take the accused to the nearest magistrate or to the gazetted officer. तो फिर उसका सर्च उनके सामने होगा। तो फाइनली जब मैटर कोर्ट के अंदर जाता है तो कोर्ट में पुलिस से सवाल पूछा जाता है, एंड बाय द वे दिस इज सेक्शन 50 ऑफ द NDPS एक्ट जिसमें इस राइट के बारे में कहा गया है। तो कोर्ट पुलिस से ये सवाल पूछती है कि क्या अक्यूज को उसके राइट के बारे में इन्फॉर्म किया गया था, अक्यूज से पूछती है कि क्या तुम्हें तुम्हारे राइट के बारे में पता था कि तुम्हारा सर जो है वो मजिस्ट्रेट या फिर किसी गजेटेड ऑफिसर के सामने होना था। और अक्यूज कहता है कि नहीं उसे तो कुछ बात समझ में नहीं आई थी, पुलिस ने क्या कहा किसी और लैंग्वेज में कहा, या मुझे ये सब समझ में नहीं आता, या मुझसे कुछ साइन नहीं करवाया गया, या मुझसे कुछ बोला नहीं गया। तो उस टाइम पे ये जो है ये पुलिस के अगेंस्ट में जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी बिग राइट, बिग सेफ गार्ड गिवन टू द अक्यूज। और ये सेफ गार्ड देना अक्यूज को ज़रूरी था क्योंकि अगेन इसमें पुलिस के पास बहुत सारी पावर है, तो पुलिस हो सकता है कि कई बार अपनी पावर को मिस यूज़ भी करे, कई बार फॉल्स इम्प्लांटेशन भी हो सकता है कि आप फॉल्सली किसी के दिखा दो कि उसके पॉकेट से मिला है। तो इसीलिए इंश्योर करने के लिए ये कहा गया कि अक्यूज का ये राइट है कि वो चाहे अगर तो उसका सर्च मैजिस्ट्रेट या गजेटेड ऑफिसर के सामने किया जाएगा।
0: And by the way, that was my next question, कि पुलिस अगर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करती है। Thank you, you addressed the question in the previous question. All right, ma'am, I'm done with my questions. कोई भी ऐसी चीज़ है जो मैं ना पूछ पाया हूँ और आप कहना चाहते हो तो please feel free.
1: So, इसके अंदर मैं थोड़ा कंज्यूमर्स के बारे में बात करना चाहूँगी कि जो लोग ड्रग कंज्यूम करते हैं उनके पास भी एक राइट, हालांकि कंजम्पशन के लिए हमारे लॉ में पनिशमेंट अगेन अप टू 1 year है। तो जो अडिक्ट्स हैं, लॉ उनको लेकर के थोड़ा सा पोलाइट है और वो ये कहता है कि अगर कोई अडिक्ट है जिसको पकड़ा जाता है, वो अगर वॉलंटियर करता है डी अडिक्शन के लिए, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो अगर कोर्ट में जाकर के अर्जी देता है कि वो डी अडिक्शन के लिए वॉलंटियर कर रहा है, वो चाहता है कि वो अडिक्शन छोड़ दे अपना, तो जो भी गवर्नमेंट अफिलिएटेड रिहैब सेंटर्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं उस वो वहाँ जा कर के अपना जो डी एडिक्शन का जो पूरा मेडिकल प्रोसेस होता है वो करा सकता है। और अगर वो ये फॉर्मेलिटी पूरी करता है तो उसके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो आइडियली लॉ के अंदर ये कहा गया था कि आप जो है प्रमोट करें रिहैबिलिटेशन को भी, हालांकि रिहैबिलिटेशन का जो पार्ट है वो काफ़ी हद तक जो है ओवरलुक्ड पार्ट है। लॉ का जो मेन फोकस है वो पनिशमेंट पे ही फोकस है, लेकिन अब पूरी दुनिया जो है वो पनिशमेंट से शिफ्ट होकर के रिहैबिलिटेशन की तरफ रुख कर चुकी है। और हमारे देश में अब ये ज़रूरत है कि हम ये बात समझें कि ड्रग अडिक्शन कई बार चॉइस का मैटर नहीं रह जाता है, कई बार ये मजबूरी बन जाती है, एक ऐसा स्टेज आ जाता है जब आप चाह के भी उस एडिक्शन से पीछे नहीं हट सकते। सो ड्रग एडिक्शन इज़ अ रियलिटी। सो नाउ वी नीड टू थिंक वेदर पनिशमेंट इज द राइट सॉल्यूशन और वी नीड टू डू समथिंग एल्स और वी नीड टू गो फॉर हार्म रिडक्शन और रिहैबिलिटेशन। तो जो रिहैबिलिटेशन का पॉइंट है, आई थिंक हमें वो थोड़ा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। हमें थोड़े और इंस्टीट्यूशंस चाहिए जो रिहैब के ऊपर काम करें, जो लोगों को और अवेयर करें, मोटिवेट करें। तो यस अगेन वी नीड टू शिफ्ट फ्रॉम पनिशमेंट टू रिहैबिलिटेशन.
0: ऑलराइट, यस डेफिनेटली. मतलब पनिशमेंट इज ऑल अबाउट कि एक इंसान ने कुछ किया है, बट रिहैब इज ऑल अबाउट कि आप उसको ठीक भी कर सकते हो, उस इंसान को उस दुनिया से बाहर निकाल सकते हो, उसको एक नॉर्मल लाइफ मिल सकती है. एंड वी शुड फोकस ऑन दैट पार्ट. दैट्स सो ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच मैम फॉर डूइंग दिस. इट मीन्स अ लॉट टू अस.
1: थैंक यू सो मच सागर. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो. थैंक यू.
0: अरे दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आज हमने यहाँ पर मिस निधि से बात की, हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी एंड पर्टिकुलरली ड्रग्स की हमने बात करी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से. अब देखिए, इसमें काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं. हम लोग मॉरालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू पर जा सकते हैं, सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू पर भी हम लोग जा सकते हैं एंड अपने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को भी हम यहाँ पर कवर कर सकते हैं. बट क्योंकि ये शो एक लीगल फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करता हुआ शो है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लीगल जो एस्पेक्ट है वो हम आपको दिखाते हैं, उस नज़रिए से आज हमने बात करी. उम्मीद कर रहा हूँ शो आपके जीवन में कुछ मूल्य जोड़ पाया होगा, आप थोड़ा सा करीब से जान पाए होंगे कि ड्रग्स या जो भी आप टर्म सुनते हैं, चाहे वो गांजा है, चाहे वो चरस है, चाहे वो हेरोइन है, चाहे भांग है, उसको लेकर के कानून के पास भी अपने कुछ प्रावधान है. उम्मीद कर रहा हूँ एटलीस्ट एक इंट्रोडक्शन आपको मिला होगा. अगर ऐसा हो पाए तो 8010781078 इस कॉन्टैक्ट नंबर तक अपनी बात जरूर पहुंचाइएगा. फिलहाल मैं चलता हूँ, अपने शो को यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ. आशा करता हूँ आपको शो पसंद आया. नाउ दिस इज योर दोस्त एंड होस्ट आरजे सागर साइनिंग ऑफ.

0: अरे अरे अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में।
2: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।
3: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। और आप सभी को पता है कि मैं आपके लिए कार्यक्रम लंबे समय से लेकर आ रही हूँ, यानी महिला सशक्तिकरण पर हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन आज हम जिन महिला से बात कर रहे हैं वो न सिर्फ सशक्त हैं, निडर हैं, लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। हम आज मिलने वाले हैं ऐश्वर्या बाइकर से। जी हाँ, ऐश्वर्या जी जो कि एक बाइकर हैं और ऐसी पहली महिला है जिन्होंने 50 महिलाओं के एक बहुत ही बड़े कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज जीता। लेकिन इसके साथ साथ ये वो महिला हैं जिन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया बाइकिंग के लिए। तो आप सोच ही सकते हैं कि इन्होंने बाइकिंग को अपना प्रोफेशन, पैशन और साथ के साथ अपना जीवन बना लिया है। वैसे तो ये फाउंडर है आयरन हॉर्सेस की और साथ के साथ एक बहुत ही जानी मानी बाइकर हैं। सो ऐश्वर्या जी, करेंगे आपका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में।
4: थैंक यू सो मच भावना फॉर व्हाट अ लवली इंट्रोडक्शन। शायद मैं भी भूल गई थी मैंने इतना सब कुछ किया हुआ है लाइफ में। बट यस, मैं ऐश्वर्या एंड फॉन्डली नोन एज ऐश्वर्या बाइकर एंड पीपल नो मी एज आयरन लेडी राइडर एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर।
3: ऐश्वर्या जी, इस कार्यक्रम का नाम है वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट। और मेरा ये सवाल हर महिला से होता है जिनका मैं इंटरव्यू इस कार्यक्रम में लेती हूँ, और वो पहला सवाल है कि आपके नज़रिए में महिला सशक्तिकरण क्या है? क्योंकि मेरा ये मानना है कि महिला सशक्तिकरण या नारी सशक्तिकरण, इसकी परिभाषा या इसकी डेफिनेशन हर महिला की डिफरेंट होती है। भाई, किसी महिला को सिर्फ इतना ही सशक्तिकरण चाहिए कि वो अपने जीवन के छोटे मोटे जो डिसीजन है वो ले पाए, किसी को करियर चाहिए, किसी के एस्पिरेशन है कि वो दुनिया को बदल दें, कुछ लोग चाहते हैं सोसाइटी को बदल दें। सो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप इसे किस नज़रिए में देखती हैं?
4: देखिए, जैसे कि नाम ही बोलता है सशक्तिकरण, जिसको हम एक वुमेन एम्पावरमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये आई थिंक एक हम उस एरा में हैं, हम उस फेज़ में हैं जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि हर नारी को, हर महिला को आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। आत्मनिर्भर से मेरा मतलब है कि फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ समथिंग विच इज़ आई वुड हाईलाइट ऑन। और जैसे कि आपने कहा कि सबकी अपनी डेफिनेशन है, तो इससे पीछे यही रीज़न है कि आपका सबका एक पैशन है। हर कोई एक गॉड गिफ्ट के साथ ज़रूर आया है। आपको पहचानना है कि आपके पास क्या टैलेंट है, आपको भगवान ने वो क्या चीज़ दी है और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको करके आपको खुशी मिलती है। एक ज़िंदगी है, अपनी आइडेंटिटी बनाओ, अपने लिए पैसे कमाओ, अपना फ्यूचर प्लान करो। आई थिंक ये बहुत मस्ट हो गया है आज के एरा में। सो मेरे हिसाब से सशक्तिकरण इज़ आत्मनिर्भर होना और अपने डिसीजंस खुद लेना और अपने पैशन और अपने खुशी को दिल से फॉलो करना बहुत ज़रूरी है।
3: भाई देखिए, मैं तो हमेशा से ये कहती हूँ कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं तो सही मायने में आप सशक्त हैं। और यही नहीं, देखो एक ही जीवन है, और अगर हम इस जीवन की बात करें तो कई बार हमें ये महसूस भी करते हैं कि हम इस जीवन में कहाँ जा रहे हैं। और महिलाओं के लिए खास तौर पर मैंने देखा है कि महिलाएं अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देती हैं सिर्फ दूसरों की, परिवार की, बच्चों की केयर में। सो आप कहाँ हैं और अपने डिसीजन या फिर अपना जीवन आप कैसे जी रही हैं, इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए पूरे जीवन में। एटलीस्ट मैं ये कहती हूँ, हर रोज़ अगर आप अपने लिए 15-20 मिनट भी निकाल रही हैं ना 24 घंटे में से, सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सही सशक्तिकरण यहीं से शुरू हो जाता है। फिलहाल ले रही हूँ एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, सुनाऊंगी आपको एक बेहतरीन सा गाना, लेकिन आप कहीं मत जाना, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। और बहुत ही सशक्त महिला से आज मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ। आई एम श्योर बहुत सारी महिलाओं ने सपना देखा होगा कि कभी जीवन में वो एक बाइक को चला पाएं। अब देखिए, बहुत सारी महिलाओं का ये सपना पूरा ही नहीं हो पाता है, घर पर लोग सीखने ही नहीं देते हैं, एंड बाइक ऑफ कोर्स थोड़ा सा लगता है बैलेंस बनाना आएगा या नहीं आएगा, और उन्हें डिस्करेज कर दिया जाता है। लेकिन आज हम जिनके साथ बैठे हैं वो एक बाइकर है, ऐश्वर्य बाइकर, जो कि आयरन लेडी बाइकर भी कहलाती हैं। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर बाइकर हैं और फाउंडर हैं आयरन हॉर्सेस की। ऐश्वर्य, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बाइकिंग का आपका सफर, मतलब एक बाइकर बनने का यह सफर कहाँ से शुरू हुआ, बचपन से क्या आप बाइकर बनना चाहती हैं, और आज यहाँ, मतलब जब आप एटलीस्ट कहना चाहिए फाउंडर बन चुकी हैं आयरन हॉर्सेस की, तो यहाँ पहुंचकर आप अपने सफर को कैसे इवैल्यूएट करती हैं?
1: देखो, बाइकर बनने का ऐसे सपना तो नहीं देखा था, बट बाइकर क्या है मैं थोड़ा सा उसको एलेबोरेट जरूर करूंगी
0: जी।
1: सिर्फ बाइक चलाना आना आपको बाइकर नहीं बनाता। आप बाइकर तभी कहलाते हो जब आप एक प्रॉपर तरीके से बाइक को चलाना सीखते हो, प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हो, या समझते हो कि डिफ़िकल्ट सर्फेसेस पे या लद्दाख जैसे आप जगह पे जा रहे हो वहाँ पे आप बाइक को कैसे हैंडल कर सकते हो। बेसिकली क्राइसिस मैनेजमेंट की तैयारी होनी चाहिए। सिर्फ बाइक उठा के अनप्लान्ड राइड इज़ अनसेफ। आपकी खुद की सेफ्टी, आपका हेलमेट कैसा है, आप किस तरह से राइडिंग गेयर्स पहनते हैं, आपका राइडिंग जैकेट होना ज़रूरी है, आपका राइडिंग पैंट्स होने ज़रूरी है, आपके राइडिंग बूट्स होने ज़रूरी है, राइडिंग ग्लव्स होने ज़रूरी है, बिकॉज ये सारे आपकी सेफ्टी के लिए है। क्योंकि आप रोड पे हो, टू व्हीलर पे हो, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं छोटे मोटे फॉल्स होते रहते हैं। एंड बीइंग अ बाइकर, बिकॉज ये प्रोफेशन है, तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम राइड करते ही रहते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करें। मेरे फादर एविड बाइकर थे, वो आर्मी से रिटायर्ड कर्नल है, तो मैं तो उनके बाइक पे बैठ के पली बड़ी हूँ। तो मैं एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूँगी। सो ऐसा होता था कि आर्मी की पार्टी से हम लोग भी लेट नाइट वापस आ रहे हैं डिनर करके, तो ठंड हो जाती है कैंट में थोड़े से, वहाँ पे जैसे पेड़ वगैरह ज़्यादा होते हैं, ग्रीनरी ज़्यादा होती है, तो जनरली वहाँ पे थोड़ी सी ठंड होती ही है। तो मुझे ठंड से बचाने के लिए वो मुझे अपने जैकेट के अंदर उल्टा बिठा के हग करवाते थे और पीछे से मुझे जिप के अंदर जिप अप कर देते थे
0: जी।
1: सो मेरी शक्ल उतनी ही बाहर रहती थी जितना आई कुड ब्रीद। तो मेरे लिए वो जो मेमोरी है बाइक पे बैठना और उसकी वो दुख दुख दुख दुख दुख दुख आवाज़ में वो पापा मम्मा पोस्ट पार्टी एक एक्साइटमेंट वाली बातें करते करते और उस वॉर्म्थ में आई यूज टू स्लीप। तो आप ये बोल सकते हो कि वो जो सीडिंग है, वो स्प्राउटिंग है, वो कहीं ना कहीं शायद बचपन में हो ही गई थी, नो डाउट्स। बट जिंदगी है, बिकॉज आपको पढ़ना है, एजुकेशन है, फैमिली है, फिर किड्स कम इनटू योर लाइफ। सो आई थिंक ये सारे फेजेस भी ज़रूरी है, इट शुड कम विद टाइम। तो कहीं ना कहीं वो शायद पीछे छुपा हुआ था जो कभी बाहर निकला नहीं। मेरा प्रोफाइल बहुत अलग था, मैं प्रोफेशनल कथक डांसर हूँ और उसी के बीच फिर मुझे थिएटर्स भी करने का मौका मिला और मैंने एक्टिंग वगैरह भी सीखा, मॉडलिंग भी किया कुछ टाइम के लिए, और इवेंचुअली मुझे वही करना था बिकॉज मुझे वही अच्छा लगता था और मुझे पैशन था वो करने का। बट लाइक आई वुड से ना कि कोविड काफ़ी लोगों के लिए ब्लेसिंग भी था, बिकॉज उस टाइम लोगों के काफ़ी करियर में और प्रोफेशन में चेंजेस आए। तो आई थिंक वो फेज था जहाँ पे मुझे टाइम मिल गया सोचने का कि चलो अभी अपने लिए वो कुछ करते हैं जो आपको खुशी देती है। तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए, तो आई सेड मोटरसाइकिल ली जाए, क्योंकि ये तो मुझे कहीं ना कहीं कभी तो मन था कि मोटरसाइकिल होनी चाहिए, व्हाई कांट आई बाय मोटरसाइकिल। तो जैसे भावना ने बोला कि मैं 50 वीमेन राइडर्स में मैं फर्स्ट आई, तो वो मेरा सबसे पहला ओपनिंग था जब मैं कॉम्पिटिशन के लिए गई। मैंने वहाँ पर रेंच पर मेहनत करी और ट्रेनिंग लिया और मैंने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, वहाँ से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। फिर मैं लद्दाख गई, फिर उमलिंगला जो हाईएस्ट मोटरेबल पास है 19,024 फीट पे, सो वो जब मैं करके आई तो मुझे महसूस हुआ कि मैं फास्टेस्ट वीमेन राइडर हूँ जिसने 8 दिन में दूरी पूरी की और मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम गया। और फिर उसके बाद मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा। फिर धीरे धीरे मुझे ब्रांड से कॉल आने लग गए, फिर मेरी अपनी स्टोरीज में लोगों के साथ शेयर करने लग गई, और वहाँ पर मुझे लगा कि नाउ दिस इज़ द हाई टाइम, क्यों ना मैं और लेडीज़ को और महिलाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करूं। और मैं खुद अगर इतने अच्छे से राइडिंग करना सीख रही हूँ और मैं उस लर्निंग प्रोसेस में हूँ कि मैं सिखा सकती हूँ, तो क्यों ना और महिलाओं को इस फील्ड में लाया जाए। और वहाँ पे जन्म हुआ आयरन हॉर्सेस मोटरसाइकिल अकेडमी का।
0: जस्ट इमेजिन, सो इतनी खूबसूरत सी जर्नी है। और मज़ेदार बात यह है कि ये जो जर्नी है ना, ये हर कोई डिसाइड नहीं कर सकता, डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक आप स्ट्रगल नहीं करते हैं ना, जब तक आप ऊंचाइयों पर स्ट्रगल से नहीं पहुंचते ना, तो उस ऊंचाइयों पर पहुंचने का मज़ा भी नहीं आता है। सो आई थिंक ये एक बहुत ही खूबसूरत सा सफ़र रहा है ऐश्वर्या जी का। लेकिन देखिए, ऐसे डिसीशन ना आसानी से नहीं लिए जाते हैं। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा डिसीशन ज़रूर लीजिए जिस पर आप जिंदगी भर गर्व ज़रूर करें कि यस, आई हैव टेकन दिस डिसीशन। पूछने वाली हूँ उनके इस डिसीशन के बारे में, लेकिन तब तक के लिए आपको सुनाऊंगी एक बहुत ही प्यारा सा गाना। सो आप जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइक।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के खूबसूरत से एपिसोड में। आज हम बैठे हैं ऐश्वर्या जी के साथ। ऐश्वर्या जी जो कि एक बाइकर हैं, जो कि आयरन लेडी बाइकर कहलाती हैं, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होल्डर बाइकर हैं और फाउंडर हैं इंडियन हॉर्सेस अकेडमी की। सो ये एक ऐसी अकेडमी है जो महिलाओं को ना सिर्फ बाइक राइडिंग सिखाती है, लेकिन सही ढंग से, सही तरीके से और सेफली बाइक कैसे राइड की जाती है, इसकी पूरी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। ऐश्वर्या जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरी लाइफ को अगर आप एक रील की तरह असेस करने की कोशिश करें, सो वन दैट मोमेंट वेयर यू टुक एन एम्पावरिंग डिसीजन, हालांकि चाहे वो तब आपको लगा हो कि आई एम अ रिबेल या तब आपको लगा हो कि शायद मुझे औरों की सुन लेनी चाहिए, लेकिन उस डिसीजन के बाद नो लुकिंग बैक एंड टुडे यू आर हैप्पी दैट यस यू हैव टेकन दैट डिसीजन। सो ऐसी कोई सशक्तिकरण पूर्ण आपका कोई एक ऐसा डिसीजन रहा हो?
1: आई थिंक बाइकर बनना ही मेरा सबसे बड़ा डिसीजन था
0: वाकई,
1: बिकॉज देखो सोसाइटी में कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल को एक ना लड़कों का स्पोर्ट बना के दिखाया गया है कि ये तो लड़कों की चीज़ है। आप कभी देखना किसी लड़के को अपनी देखोगे कि कोई बाइक सीख रहा है, वो कहीं ना कहीं इधर उधर करके सीख लेते हैं, बट आपके लिए इट इज़ समथिंग विच यू कम एंड यू लर्न। वाई हम वो चीज़ लड़कियों के लिए बनी है ऐसा क्यों नहीं दिखा सकते? तो आई थिंक मैंने जो इनिशिएट किया इसको, तो मेरा मोटिव यही था कि ये बैरियर नहीं बनना चाहिए किसी जेंडर को लेके कि अच्छा मोटरसाइकिल तो सिर्फ लड़कों के लिए बनी है, क्यों लड़कियां क्यों नहीं चला सकती? मशीन को थोड़ी ना पता है कि उस पर लड़का बैठा है लड़की बैठी है।
0: एग्जैक्टली।
1: सो टुडे आई एम राइडिंग GS 310, BMW चलाती हूँ, ऑफ रोडिंग करती हूँ मैं। तो इससे पहले मैंने देखा लड़कों को चलाते हुए, उसके बाद फिर मैंने देखा, मैंने सोचा कि क्यों ना ये भी सीखा जाए, तो मैंने भी खरीद ली और मैं चला रही हूँ। और मेरी बाइक मुझे बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और बहुत अच्छे से लेके जाती है मुझे दूर दूर तक। तो आई थिंक शुरू में यस थोड़ा सा हमारा भी मेंटल ब्लॉक होता है एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट आई थिंक वो पागलपन और जो जिद होती है ना कि नहीं मुझे करना है, और कूद गए तो फिर तैरना है। Then you have to prove not to the society, not to anybody, but you have to make yourself happy. मुझे ऐसा लगता है किसी को प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद के लिए करते जाओ, आपकी जर्नी एंजॉय करते जाओ। जो अच्छे लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हैं वो आपको हमेशा ऊपर रखेंगे, आपको हमेशा अप्रिशिएट करेंगे, और जो नहीं करेंगे उनके साथ भी मुस्कुरा के बात कीजिए, लेकिन अपने काम पर हमेशा फोकस रखें।
0: ऐश्वर्या, एट वॉट एज डिड यू स्टार्ट राइडिंग? आई मीन ऑफ कोर्स 18 साल तो उम्र होती है, लेकिन आपने एग्जैक्टली सबसे पहला टू व्हीलर कौन सा चलाया, कब सीखा, एंड व्हेन वाज दिस, जब आपने ऑफिशियली एक स्पोर्ट्स बाइक ली तो व्हाट वाज द एज?
1: अच्छा देखो, बाइकर की दो डेफिनेशंस है जो मैं आज लोगों को बताना चाहूँगी। लोगों को लगता है कि मैं बाइक पे बैठ गई या बैठ गया और मुझे गियर चेंज करना आ गया तो आप बाइकर नहीं हो। आपको बाइकर बनने के लिए वो सारे क्राइटेरियाज क्वालिफाई करने पड़ते हैं जिसके बारे में मैंने अभी बात करी, कि आपको सीखना चाहिए प्रोफेशनल के अंडर, आपको प्रॉपर राइडिंग गियर्स कैसे वो चूज़ करना चाहिए, कौन से ब्रांड से क्या है, आपको पूरा ये चीज़ रिसर्च करना चाहिए
0: जी।
1: तो आई थिंक ये बहुत बहुत ज़रूरी है।
0: सो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि एट वॉट एज वॉज द फर्स्ट टाइम?
1: सो आई स्टिल रिमेम्बर, आई वॉज इन टू NCC, तो मेरा फर्स्ट ईयर था, और हम लोग संडेज को ट्रेनिंग के लिए जाते थे ग्राउंड पे परेड के लिए, तो वहाँ पे हमें स्कूटीज़ दी गई थी बिकॉज कॉलेज वाले जाना होता था, तो मेरे पास स्कूटी थी तो लड़के बाइक्स लेके आते थे। तो आई स्टिल रिमेम्बर मैंने जो पहली बाइक चलाई थी वो थी एंटाइसर।
0: ओके।
1: तो मैंने उसको बोला चला लूँ, तो उसने बोला हाँ चला ले, देख ऐसे ऐसे से करना है। तो फर्स्ट गियर में मैंने ग्राउंड की सी गेड़ी मारी और चला ली, बट दैट वॉज द टाइम मैंने फेल्ट किया ये कुछ तो है जो मुझे ना बहुत खुशी देती है, बड़ी अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए। बट प्रोफेशनली उसको सीख के चलाना और लॉन्ग राइड्स के लिए जाना, विच आई डिड, आई थिंक आई वॉज 38 37 38, बिल्कुल कोविड के आसपास मैंने इसको प्रोफेशनली सीखने की कोशिश करी, एंड टुडे आई थिंक आई एम एट द स्टेज वेयर वीमेन आर लर्निंग फ्रॉम मी। सो आई एम ब्लेस्ड कि मैंने उसको उस लेवल तक सीखा। एंड शुरू में मेरे पास रॉयल एनफील्ड थी मेटियोर 350 जो मैंने खरीदी थी जब मैंने कॉम्पिटिशन जीता था, तो मेरे पास मेटियोर 350 थी। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा राइडिंग स्किल्स अपग्रेड किया जाए, क्योंकि ऑफ रोडिंग वगैरह करने का इंटरेस्ट आ गया था बाकी लोगों को देख के, स्पेशली बॉयज़ को। सो मैंने भी ऑफ रोडिंग बाइक खरीदी। आफ्टर दैट इमीजिएटली 8-9 महीने में मैंने वो बाइक बेच दी और मैंने ऑफ रोडिंग के लिए बाइक खरीदी और मैं लड़कों के साथ अरावली हिल्स वगैरह जाके काफ़ी ऑफ रोडिंग वगैरह किया है, सीखा है, तो इट वॉज फन लर्निंग और करते रहेंगे जब तक करेंगे।
0: वाओ, बहुत अच्छा। आई मीन आई कैन रियली अंडरस्टैंड कि जब आप अपना पैशन फॉलो कर रहे होते हैं तो कितनी खुशी होती है अंदर से। बट महिलाओं के साथ कई बार ये परेशानी होती है कि पैशन तो छोड़िए, वो जो करना चाहती हैं ना उन्हें वो भी पूरा करने का मौका नहीं मिल पाता है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनसे जब कभी मैं मिलती हूँ एंड आई आस्क देम व्हाट्स योर पैशन, सो दे से याद भी नहीं, अब तो हॉबी याद नहीं तो पैशन तो भूल ही जाइए, क्योंकि शायद ज़िंदगी की इतने सारे बोझ या इतनी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, सो उन्हें पूरा करते करते भूल ही गई कि हमें भी कभी कुछ पसंद था। यही सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी है। अगर आप अपने लिए नहीं सोचेंगे तो ये पूरा ज़माना आपके लिए नहीं सोचने वाला है। सो प्लीज़ लिव फॉर योरसेल्फ और जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। आपको सुना रही एक बहुत ही प्यारा सा गाना, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, वापस लौट कर आऊँगी। टिल देन फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के खूबसूरत से कार्यक्रम में आज हम बात करें उतनी ही प्यारी और उतनी ही खूबसूरत ऐश्वर्या से। ऐश्वर्या जिनका सरनेम है बाइकर, और बाइकर इसलिए क्योंकि जैसे हमारा प्रीफिक्स होता है आरजे, सो वैसे ही क्योंकि ये बाइक चलाती हैं तो इनका सरनेम बाइकर बन चुका है। ये एक आयरन लेडी बाइकर कहलाती हैं, साथ के साथ बहुत ही गर्व की बात है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होल्डर ये हैं। और मुझे उतना गर्व इसलिए लग रहा है क्योंकि रेडियो मानव रचना की मैं अगर बात करूँ तो एशिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होल्डर पहला ऐसा रेडियो स्टेशन है पूरे विश्व में जिसने ये रिकॉर्ड बनाया है। 150 घंटे नॉनस्टॉप हमने आपको सस्टेनेबिलिटी पर बताया है, सो डेफिनेटली मैं इस रिकॉर्ड की कीमत को पहचानती हूँ, कितनी एफर्ट और कितनी एनर्जी लगती है। और साथ के साथ ये फाउंडर है आयरन हॉर्सेस की। ऐश्वर्या, मैं ना बात करती हूँ जेंडर इक्वालिटी की। कभी भी कई बार ऐसा होता है कि हम जब गाड़ी लेकर सड़क पर निकलते हैं और अगर पुरुष साथ में होते हैं, सो देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरे के पूरे या इस समाज का हर पुरुष आपको ऐसे आश्चर्य भरी नज़रों से देखेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब आप सड़क पर चलते हैं सो वो देखते हैं लड़की है तो ओवरटेक करके निकलते हैं दिखाने के लिए कि भाई दिस इज़ ये जो मशीन्स हैं या फिर ये जो गाड़ियां हैं ये पुरुषों के लिए बनी है तो हम तुमसे आगे जा सकते हैं। अच्छा, हम खुशी से उन्हें जाने देते हैं, हमें ऐसा लगता है व्हाट इज़ द पॉइंट। ऐसा ही अगर आप देखें तो टू व्हीलर्स में भी होता है। अगर आप टू व्हीलर चला रहे हैं तो कोई ना कोई एक ऐसा लड़का ज़रूर होगा जो आपके सामने से कट मारता हो और इस अंदाज में निकलेगा कि अरे यू कांट डू दिस विच आई एम डूइंग। व्हाट आई मीन टू आस्क यू इज जेंडर इनइक्वालिटी। अब एक तरफ हम कहते हैं इक्वल एजुकेशन, दूसरी तरफ हम कहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी, परवरिश के भी पूरे पूरे इक्वल कहना चाहिए पैरामीटर्स हैं, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है एक बच्ची को पैदा करके उसे परवरिश करने में और एक बेटे को। लेकिन जब हम समाज को देखते हैं, वी सी द सोसाइटी, हमें ये इनइक्वालिटी दिखती है, अपेरेंट दिखती है। सो मुझे बताइए कि क्या हम इसको बदल सकते हैं और इक्वालिटी ला सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका सड़कों से बहुत ज़्यादा लेना देना है। हालांकि देखिए कॉर्पोरेट्स में चले जाइए आज भी आप देखेंगे कि इक्वल पे वाला इशू है, मतलब बॉलीवुड चले जाइए आज भी जितना स्ट्रगल है महिलाओं को, आज भी लगता है कि भाई शाहरुख खान जितनी लेता है उतनी दीपिका पादुकोण को नहीं मिलती है, डिस्पाइट की पूरी फिल्म दीपिका पादुकोण की खूबसूरती पर टिकी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनाम है वो एक्टर्स को चला जाता है। सो ये इनइक्वालिटी है हमारे समाज में, बट क्या हम इसे ख़त्म कर सकते हैं और अगर हाँ तो कैसे।
1: देखो मैं विमेन ट्रेनर हूँ और मैं लीड भी करती हूँ, और मेरी जो पूरा ट्रिप जाता है तो हमारे इसमें बॉयज़ भी होते हैं
0: जी,
1: सो आई थिंक वो हमने एक स्टेप फॉरवर्ड कर ही लिया है जहाँ पे लड़के एक विमेन कैप्टन से इंस्ट्रक्शंस लेना शुरू कर चुके हैं, सो आई थिंक वो चेंज आया है। और हाँ बिल्कुल, एक या दो दिन में चेंज नहीं आता है, इट टेक्स लॉन्ग, धीरे धीरे धीरे धीरे चेंज आता है, बट कहीं ना कहीं आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि इसको कैसे चेंज किया जाए या क्या किया जाए, आई थिंक हमें अपना काम करते रहना चाहिए
0: जी,
1: वी शुड बी फोकस्ड। हमने हमारे अंदर ये थॉट नहीं लाना है कि ये काम मेरा नहीं, ये काम लड़कों का है, तो एटलीस्ट हम अपने आप में

0: अगर वो चेंजेस लाए और हम अपने आप आत्मनिर्भर होके हम अपने सारे काम या वो जब सब करना चाहते हैं जो लोगों ने बोला कि नहीं या लड़कियों के लिए नहीं बना है, तो आई थिंक वहीं ना वहीं से हम लोग अपने टर्म्स डिक्टेट करना शुरू कर चुके हैं। आई थिंक वी हैव डन इट, बिकॉज आज की डेट में आप देखो हम कहाँ तक नहीं पहुँचे, हम लोग स्पेस तक पहुँच चुके हैं।
1: वाकई
0: लेडी कहीं CEO है, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई है, अपने सारे मिस वर्ल्ड और जो क्राउन्ड हुए हैं, लुक एट देम, प्रियंका चोपड़ा, सुष्मिता सेन, दे हैव ऑल हैव मेड अस फील प्राउड। सो आई थिंक हम अपने अपने ग्रोथ पे फोकस करें, विद टाइम सब चेंज होगा, धीरे धीरे चेंज होगा। एंड आई नो फ्यू पीपल दिस आर रियली सपोर्टिंग। मेरे अकेडमी में भी जब लोग आते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो मैंने देखा हस्बैंड जाके वाइफ्स को ड्रॉप करके जाते हैं फॉर द ट्रेनिंग, फादर्स दे कम एंड स्टैंड एंड दे लुक एट देयर डॉटर डूइंग इट। सो है, अच्छे लोग हैं, और जो नहीं है वो अनफॉर्चुनेट है कि आई विल नॉट से आप ब्रिंगिंग ऐसी हुई है, बट है, आप क्या कर सकते हो। आप इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं कि जो हमारी जो नेक्स्ट ऑफ कीन है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उन लड़कों को हम एज पेरेंट्स, एज गार्डियंस, हम उनको एजुकेट करें या हम उनको ये सारी चीज़ें सिखाएं कि वो रिस्पेक्ट करें आगे जाके, एंड वी ऑल शुड फील सेफ एंड प्राउड टू बी देयर। सो आई थिंक हमें अपने ग्रोथ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, बाकी ये चेंजेस तो धीरे धीरे हो ही जाएंगे और होंगे ही।
1: देखिए, मैं ना हमेशा ये कहती हूँ कि महिलाओं ने तरक्की भी की और उन्होंने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अब वो कुछ कदम आगे पहुँच गई, लेकिन परेशानी हुई कि सारी दौड़ में महिलाओं ने तो बहुत स्ट्रगल किया, पुरुषों ने अपना माइंडसेट ही नहीं बदला, वो वहीं रह गए। सो अब उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वाई दीज वेमेन आर स्ट्रगलिंग, क्यों आगे पहुँच गई हैं। वो जो बैलेंस है ना, वो कहीं मिसिंग है, और वो मिसिंग कहाँ है, जब कॉर्पोरेट्स में, बोर्डरूम्स में आपको सडनली पता लगता है कि आज कोई विमेन लीडर आपको लीड करेगी, तो कहीं डीप डाउन योर सोल आपको बड़ा अजीब सा लगता है, अरे एक महिला पूरे की पूरी टीम को लीड करेगी कैसे। ऐसे ही जैसे कि ऐश्वर्या जी महसूस करती होंगी एक पूरी बाइकिंग टीम को, इमेजिन के सबसे आगे कौन है, एक महिला है, तो लोगों को लगता है अरे बाइक, मतलब ये बाइक तो पुरुषों की जागीर रही, सडनली हाउ कैन अ वुमन यू नो राइड एंड हाउ शी इज लीडिंग। सो कहीं ना कहीं बदलाव माइंडसेट का है, और अगर ये पुरुषों का माइंडसेट बदल जाएगा ना, तो ये इक्वालिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, फिर वो बाहर सड़कों पे, घर में, और अगर कहना चाहिए बोर्डरूम्स में, या फिर हमारे मॉल्स में, सब जगह आपको नजर आएगा। एंड इससे एक सबसे अच्छी चीज होगी, महिलाओं के खिलाफ होने वाले क्राइम्स बहुत हद तक कम हो जाएंगे। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। आज इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं ऐश्वर्या जी से। ऐश्वर्या जी जो कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर बाइकर हैं, फाउंडर हैं आयन हॉर्सेस की और बड़े प्यार से लोग इन्हें आयन लेडी बाइकर भी कहते हैं। बट देखिए, इनकी अगर मैं जीवन की बात करूं तो इनके जीवन की शुरुआत बाइकिंग से नहीं हुई थी। ये तो एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। इमेजिन करिए कि आप इन्हें बॉलीवुड में देख रहे होते, लेकिन आज हम इन्हें सड़कों पर बाइक चलाते हुए देखते हैं। सो हमारी ना सोच या फिर कहना चाहिए हमारी जो डेस्टिनी है वो आपको अलग अलग जगह और अलग अलग चीज़ करवाने पर मजबूर कर देती है। हम सोचते कुछ और हैं, होता कुछ और है। अब बात करेंगे महिलाओं की, और क्योंकि आप एक बाइकर हैं ऐश्वर्या जी, क्या आपको लगता है महिलाएं बाइकिंग को अपना करियर बना सकती हैं?
1: आई थिंक मैं ही एग्जाम्पल हूँ आपके सामने जिसने ये चूज़ किया है। सो बाइकिंग तो यस, क्योंकि मैं कर पाई हूँ और जर्नी इतनी ईजी नहीं थी। शुरू में थोड़े से चैलेंजेस और हार्डशिप्स होते हैं, बट अगर कोई चीज़ आसानी से मिले तो फिर क्या ही मज़ा, फिर तो हर कोई कर ले।
0: यस,
1: सो आई थिंक येस। और अभी मुझे 3-3.5 साल में आई थिंक आई हैव ट्रेन्ड ऑलमोस्ट 3000 लेडीज़। तो मुझे लगता है कि कोई कष्ट नहीं है, बिकॉज जैसे मैंने अभी पहले भी यही बोला, मशीन को थोड़ी ना पता है कि वो लेडी चला रही है।
0: येस,
1: सो बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आओ और चलाओ। और मोटरसाइकिलिंग थेरेपी है, मेरा तो एक्सपीरियंस है। इट गिव्स यू विंग्स टू फ्लाई, एंड आई हैव बीन फ्लाइंग फॉर ईयर्स, एंड होपफुली मैं और आगे भी उड़ती रहो। तो मेरे दो स्टूडेंट्स हैं जिनके बारे में मैं छोटा सा एक इंसिडेंट शेयर करूँगी। तो मेरे एकेडमी में एक लेडी आई थी सीखने के लिए, कीर्थना। सो उसका छोटा बेबी था, बट उसका बहुत पैशन था बाइक चलाना सीखने का। तो वो क्या करती थी, अपने बच्चे को प्रैम में लिटा के शी इज़ टू ट्रेन हरसेल्फ। तो कभी वो बच्चा उठ जाता था या रोता था तो बीच में बाइक लगा के शी इज़ टू गो, खाना दे दिया, पानी दे दिया, अगेन शी इज़ टू सिट ऑन द बाइक, एंड अगेन शी इज़ टू डू। अभी रिसेंटली उसने लेह लद्दाख किया है विद मेल राइडर्स। सो मेरा मोटिव ये स्टोरी नरेट करने का ये था कि जब आप में पैशन होता है ना, सब कुछ मैनेज हो जाता है, एवरीथिंग इज़ डूएबल। सो इसमें कोई वो नहीं है, बड़ा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई हवा नहीं है कि आप नहीं चला सकते। और दूसरा, हम हैं, अगर हमने कर लिया तो हम हैं ही एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए। बहुत लोग आए जिनका यू नो दे हैड मेंटल इश्यूज, दे वेर टेकिंग डिप्रेशन पिल्स एंड ऑल। सो आज की डेट में दे आर ऑफ मेडिकेशन एंड यू नो दे आर डूइंग सो वेल इन देयर राइडिंग करियर्स। तो मेरे लिए तो इट इज़ अ थेरेपी, एंड करके तो देखो एक बार, मज़ा नहीं आया तो फिर देखेंगे।
0: भाई देखिए, इस कार्यक्रम का नाम है वी, और इस वी का मतलब ये है जब महिलाएं एक दूसरे के साथ आ जाएं तो हम इस जमाने को बदल सकते हैं। सो यस, आज ऐश्वर्या जी खुद ये कह रही हैं कि अगर आपको बाइक सीखनी है और आपको बाइकिंग करनी है तो डेफिनेटली वो आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार हैं। और मैं वैसे भी मानती हूँ कि जब आप एक बाइक या कोई भी व्हीकल जब चलाते हैं ना, तो सबसे अच्छी चीज़ आपके हाथ में जो आती है ना, वो है अथॉरिटी। और पहली बार महिलाओं को वो फील होता है कि ओके, नाउ दिस इज़ अंडर मी। और जैसे टू व्हीलर की मैं बात करूँ, तो टू व्हीलर से जब आप जा रहे होते हैं तो अच्छी बात यह है कि आपके पास आपकी स्पीड है, जो कि जिंदगी में कई बार आपको नहीं मिल पाती है। आप जिंदगी की किस स्पीड पर जाना चाहते हैं वो आपका जीवन डिसाइड करता है, लेकिन टू व्हीलर पर, बाइक पर जब आप जाते हैं ना, तो उसकी स्पीड आप डिसाइड कर सकते हैं। और कई बार जिंदगी में उड़ने का दिल करता है, अगर रोड बिल्कुल साफ है और बिल्कुल आपने अपने सेफ्टी मेजर्स अपनाए हुए हैं तो थोड़ा सा उड़ने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो थ्रिल आता है और साथ में एक अथॉरिटी आती है और एक फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस जो आता है आपको, वो अपने आप में एक्चुअली बहुत ही मेस्मराइजिंग होता है, और ये अपने आप में एक थेरेपी होती है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
1: वेरी ट्रू, वेरी वेल सेड, एंड आई थिंक आई टोटली एग्री ऑन व्हाट यू सेड 100%।
0: सो भाई देखिए, महिलाएं चाहे कुछ भी करें, मैं ये नहीं कहूँगी कि जिंदगी में सिर्फ बाइक चलाना आपको सीखना चाहिए, कुछ भी करिए, बट देयर हैज़ टू बी अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट। अगर आप वो कर पा रही हैं ना अपने लिए, तो आपका जीवन बिल्कुल सफल है। और अगर आपका जीवन सफल है तो मुझे जल्दी से मैसेज करके बता दीजिए 8010781078 पर, और ये भी बताइएगा कि आप क्या करती हैं जिससे आपको अपनी बहुत सारी खुशियां मिलती हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट। और आज हम एक बाइकर के साथ बैठे हैं, ऐश्वर्या जी, जो एक बहुत ही जानी मानी बाइकर हैं। इंस्टाग्राम पर जाइए, ढूंढिए इन्हें फॉलो भी करिए। ये हैं फाउंडर आयन हॉर्सेस की, और आयन हॉर्सेस के नाम से ही आपको प्यारी सी खूबसूरत सी ऐश्वर्या जी मिल जाएंगी इंस्टाग्राम पर। मज़ेदार चीज़ ये है कि ना सिर्फ ये आपको ट्रेनिंग करके बाइक सिखाती हैं, लेकिन साथ के साथ वो कॉन्फिडेंस दिलाती हैं कि अगर आप आगे बढ़ रही हैं ना, सो आपसे आगे लीड करने के लिए मैं हूँ। ऐश्वर्या जी, हमने बहुत सारे सवाल आपसे पूछे, बड़े अहम सवाल, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। महिलाओं का सबसे बड़ा इश्यू जिंदगी में है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी हिदायतें होती हैं, सड़क पे ऐसे चलना, ये करना, स्ट्रेंजर से बात नहीं करना। सो जब आप बाइकिंग सिखा रही होती हैं ट्रेनिंग में, सो किन किन चीज़ों को आप ये इंश्योर करती हैं कि महिलाएं फॉलो करें जिससे वो सड़कों पर या बाइकिंग करते हुए सेफ रहें?
1: देखो, आप टू व्हीलर पे हो तो डेफिनेटली सिक्योरिटी और सेफ्टी का आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे रेंच में जब भी हमारी ट्रेनिंग होती है तो हम पूरे राइडिंग गेयर्स उनको प्रोवाइड करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हेलमेट टू नी गार्ड्स टू एल्बो गार्ड्स टू ग्लव्स। अभी ये सबका काम है आपके जितने जॉइंट्स हैं, जितने मोबाइल मूवमेंट्स आपके बॉडी में हैं, उसको सेफ गार्ड करना। क्योंकि नेचुरल है, आप कोई मशीन चलाना सीख रहे हो, छोटे मोटे फॉल्स तो होंगे, तो दिस विल कीप यू सेफ। और आप मोटरसाइकिल सीखने के बाद भी, आफ्टर लर्निंग एंड आफ्टर क्वालिफाइंग फ्रॉम द ट्रेनिंग, आई टेल ऑल माई स्टूडेंट्स कि वेन एवर यू आर राइडिंग मोटरसाइकिल ऑन द रोड, यू मस्ट गो विथ ऑल दी सेफ्टी गियर्स। मैं इस मामले में बहुत क्लियर हूँ और बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, बिकॉज सेफ्टी कम्स फर्स्ट। फन तो है, चलाना फन है, थ्रिल है, सब है, बट आपकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि आप मेरे एकेडमी से ट्रेन होकर निकल रहे हो तो लोग आपको ज़रूर देखेंगे, आप कहाँ से आए हो, क्या सीख के आए हो, तो आई वॉन्ट कि यू शुड कैरी फॉरवर्ड दी सेफ्टी मेजर्स वॉट यू हैव लर्न, चूजिंग अ राइट हेलमेट, चूजिंग अ राइट राइडिंग जैकेट, चूजिंग अ राइट राइडिंग पैंट, राइडिंग बूट्स, राइडिंग ग्लव्स, इट मैटर्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर सेफ्टी, बिकॉज हम लोग हाईवेज पे हमेशा पढ़ते हैं कि आप आराम से घर पहुँचो क्योंकि घर पे आपका कोई इंतज़ार कर रहा है। सो यू शुड बी सेफ ऑन रोड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ट्रेनिंग में भी हमारे बहुत से टेक्निक्स हैं जो हम आपको सिखाते हैं कि जिससे जो नॉर्मल हम कहीं इधर उधर एक्सीडेंट होने के चांसेस ना हो या फॉल्स ना हो, तो वो भी टेक्निक्स हम ट्रेनिंग में कवर करते हैं। देयर इज़ लॉट टू इट, इसमें बहुत कुछ है, बहुत साइंस इन्वॉल्व है, बट बेसिक कॉमन सेंस वाला साइंस है जो हमको पता नहीं होता है। शायद मुझे भी नहीं पता था जब तक मैं सीखने गई थी, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेरे हिसाब से अगर कोई भी टू व्हीलर सीख रहा है तो मे बी आयरन हॉर्सेज और एनीवेयर, बट आई थिंक ट्रेनिंग हर किसी को लेनी बहुत ज़रूरी है।
0: वाकई भाई, देखिए ऐश्वर्या जी से ट्रेनिंग की मैं अगर बात करूँ तो एक डिफेंस ऑफिसर की ये बेटी हैं, सो डेफिनेटली उस चीज़ का ख्याल तो वो रखती हैं। भाई, पिता ने हमारे देश को गार्ड किया है तो डेफिनेटली ये चीज़ तो इनके अंदर जेनेटिकली आई है। और साथ के साथ शी इज़ ब्लेस्ड दैट शी इज़ ऑल्सो मैरिड टू एन आर्म्ड फोर्सेज ऑफिसर। सो भाई, इनके अंदर इस चीज़ को कूट कूट के इन्होंने भरा है कि भाई सिक्योरिटी सबसे पहले होनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा ऐश्वर्या जी, आज आपने अपना कीमती समय निकाला, यू केम ऑल द वे टू आवर स्टूडियो। जाते जाते हमारे सभी लिसनर्स को कैसे मोटिवेट करना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी?
1: सी, मोटिवेशन तो आई थिंक इट कम्स फ्रॉम विद इन, बट हमारा जो एक्सपीरियंस है, मेरा या भावना, आप भी यहाँ बैठे हुए, लाइफ इज़ वन, फॉलो योर पैशन। खुशी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप कुछ भी लाइफ में कर रहे हो एंड इफ़ यू आर नॉट हैप्पी एंड इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट यू आर डूइंग, सो देयर इज़ नो पॉइंट डूइंग इट। एन्जॉय करो, बी एडवेंचरस, बी हैप्पी, गो अराउंड, मेक फ्रेंड्स, एन्जॉय योर लाइफ, बट बी सेफ एंड ऑलवेज फॉलो योर हार्ट।
0: भाई बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी दिल की सुनोगे तो ये दिल आपकी सुनेगा, और ये बहुत ज़रूरी भी है। बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज दिया है ऐश्वर्या जी ने, भाई अपनी ज़िंदगी को जी लीजिए, पता नहीं कब अंतिम क्षण आए और उसके बाद हमें ये सोचना पड़े ओ शिट, हम तो अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं पाए। इसीलिए मैं हमेशा हर किसी को एक ही बात कहती हूँ, क्योंकि हम यहाँ एक ह्यूमन बीइंग के जीवन में आए हैं, सो प्लीज़ ट्राई टू एंजॉय टू द मोस्ट। एंड खास तौर पर महिलाओं को, जो कि अपना पूरा जीवन कई बार सिर्फ सैक्रिफाइस में निकाल देती हैं, इसीलिए अपना मी टाइम ज़रूर निकालिए और अपना जीवन ज़रूर जिए। आज बहुत ही अच्छा लगा ऐश्वर्या जी से मिलकर, बहुत सारी बातें इनसे की और ज़िंदगी का एक अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिला। महिला सशक्तिकरण के इस खूबसूरत से कार्यक्रम से। फिलहाल मैं ले रही हूँ इजाजत, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप जुड़े रहने वाले अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ। अगले हफ्ते आपकी और मेरी होगी मुलाकात। टिल देन, फील गुड, फील लव।

0: नमस्कार, मैं हूँ राकेश ओम प्रकाश मेहरा और आप सुन रहे हैं 107.8 मानव रचना।
1: नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में, जिसे लेकर के आता है रेडियो मानव रचना 107.8 FM हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं किसी एक ऐसे विषय पर, ऐसे मुद्दे पर जो जुड़ा हुआ है हमारे आपके जीवन से। और ऐसा ही एक मुद्दा आज हम चर्चा के लिए लेकर आए हैं आपके बीच, जिस पर हम तलाशेंगे नई सोच के साथ नई दिशाएं। दोस्तों, आमतौर पर जब कभी भी हम किसी से बात करते हैं, किसी भी मुद्दे पर चर्चा होती है, तो वहाँ अक्सर कई बार हमारे मतों में भेद होता है, यानी मतभेद जिसको हम बोलते हैं, या हम उसे एक तरह से कह सकते हैं असहमति। लेकिन जब कभी भी इस तरह का कोई मतभेद हमारे बीच होता है, तो हमने आम तौर पर देखा है कि बहुत से लोग उस मतभेद को कब मन भेद में बदल देते हैं, यानी कि वो कितना डिफरेंसेस क्रिएट कर देते हैं अपने रिलेशंस में केवल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को लेकर के। तो आज का मुद्दा हमारा इसी विषय पर है कि आखिर मतभेद को मनभेद बना लेना, या किसी बात पर असहमत होने से किसी के प्रति मन में शत्रुता का भाव ले आना कहाँ तक उचित है। तो एक बहुत बड़ा सवाल है, किसी मुद्दे पर यदि आपसे असहमत होने वाला व्यक्ति क्या आपका दुश्मन हो जाता है? जी, आज सोशल मीडिया पर देखिए, कोई आपसे सहमत है तो अपना, और यदि असहमत है तो तुरंत गलत, बेवकूफ, देशद्रोही, अज्ञानी। यानी एक आम हमारे मन में भाव आ जाता है कि यदि ये व्यक्ति हमसे सहमत नहीं है, या इसकी राय और हमारी राय एक जैसी नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक तरह की कॉन्फ्लिक्ट हमारे बीच पैदा हो जाती है। ना कि हम उसकी भावनाओं का भी सम्मान करें, क्योंकि जिस समय पे हम उसे अपनी बात के प्रति असहमत होना देख रहे हैं, साथ ही साथ हम कहीं ना कहीं स्वयं भी उसकी कही हुई बात पर असहमति व्यक्त कर रहे हैं। यानी आप समझिए इस भाव को, कि जब कभी भी हमें लगता है कि कोई व्यक्ति हमारी किसी राय से सहमत नहीं है, यानी हमारे जो हमारा ओपिनियन है उससे कोई सहमत नहीं है, वो अपना कोई अलग ओपिनियन दे रहा है, तो उसी समय कहीं ना कहीं हम भी उसी श्रेणी में खड़े होते हैं जहाँ पर वो अमुक व्यक्ति होता है, क्योंकि हम उससे सहमत नहीं हैं। तो यदि हम इस भाव का आदर करें तो शायद स्थिति बेहतर हो जाए, लेकिन यदि हम इस बात का आदर ना करके अपने मन में कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर लेते हैं, शत्रुता भाव ले आते हैं, तो वो एक बड़ी समस्या बन जाती है आज के वातावरण में। तो हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि असहमति का मतलब केवल दुश्मनी नहीं होता, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे खूबसूरत चीज़ सिर्फ अपनी बात कहना नहीं, बल्कि दूसरे की बात सुनने की क्षमता भी है। यानी यदि हमें केवल बात कहना नहीं, बल्कि दूसरे की बात को सुनने का भी गुण अपने अंदर विकसित करना चाहिए। तो इसी मुद्दे पर दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कार्यक्रम के अगले हिस्से में। अभी आप लीजिए आनंद इस खूबसूरत से गीत का, उसके बाद हम पुनः हाजिर।

के मुझे लूट लो मेरे नजदीक आके कि मैं मौत से

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं हमारे जीवन से जुड़े हुए एक मुद्दे पर, जिसे हम बोलते हैं मतभेद को मनभेद तक ले जाने की, मतलब एक बुरी व्यवस्था जो हम समाज के अंदर पैदा होती जा रही है, खासकर हमारे युवाओं में। या हम आसपास के वातावरण की हम बात करें, जनरेशन गैप में हो जाता है, परिवार के बीच हो जाता है, दोस्तों के बीच हो जाता है, और भाइयों भाइयों के बीच भी हो जाता है। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, आखिर इस सब में समस्या है कहाँ। दोस्तों दरअसल समस्या असहमति में है ही नहीं, समस्या है हमारी सोच के साथ हमारी पहचान जुड़ जाने में। यानी जैसी हमारी थॉट होता है हमारा, तो हमारी एक आइडेंटिटी उससे मैच कर जाती है। और खासकर जब कोई हमारी राय पर सवाल करता है, तो हमें लगने लगता है कि वो हमारी इंटेलिजेंस पर, हमारी समझ पर, हमारे व्यक्तित्व पर सवाल कर रहा है। तो हमने एक बहुत बड़ा दायरा अपना बना लिया है कि जो हमने राय दे दी, जो हमने बात बोल दी, उसकी सहमति पर ही हमारी सारी चीज़ों की एक्सेप्टेंस निर्भर करती है। यानी हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारी जो समझ है, नॉलेज है, और हमारी जो पर्सनैलिटी है, वो बहुत हद तक निर्भर हो जाती है केवल इस बात पर कि जो हमने कहा वो सही है। यदि किसी ने उसको गलत ठहरा दिया, तो उसने हमारी इन सब चीज़ों पर ही सवाल उठा दिए। अब क्या होता है कि ये चर्चा धीरे धीरे बन जाती है बहस, यानी हम आर्गुमेंट की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम इसको, जो विचार विमर्श वाली जो व्यवस्था है, चर्चा है, उसको हमने कब बहस में, आर्गुमेंट में कन्वर्ट कर दिया। और बहस अपना स्वरूप बदल देती है बहुत सी।

जिक्र तकरार के ऊपर, जिसको हमने शुरू में भी कहा कि एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट और तकरार बदल जाती है दुश्मनी में। तो आप समझिए कि जहाँ ये थॉट्स दिमाग में आए कि हम, कोई दूसरा व्यक्ति हमारी राय से सहमत नहीं है, पहले हमें लगा कि हमारी पर्सनैलिटी पर चैलेंज हो गया, फिर हम उसको सेव करने के लिए बहस करने लगते हैं। जैसे वो बहस बनती है तो बहस कब तकरार में कन्वर्ट हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो बोलने का नजरी तरीका है वो बिल्कुल अलग हो जाता है, और फिर तकरार का दुश्मनी में बदल जाना बहुत ही एक स्वाभाविक बात है, ये हम सभी जानते हैं। और हम असली मुद्दे पर बात करना ही भूल जाते हैं और सामने वाले व्यक्ति को गलत साबित करने में लग जाते हैं, क्योंकि जैसे ही पहला उदाहरण वहाँ से आया कि उन्होंने आपकी बात पर सहमति व्यक्त नहीं की, तो हम तुरंत समझने लगते हैं कि अब हमें अपने आप को सही और दूसरे को गलत सिद्ध करना है। तो ये स्वरूप बदल जाता है एक आम विचार विमर्श का, एक आम राय शुमारी का, या हमारे आपस की बातचीत का। तो दोस्तों, इस विषय पर चर्चा को जारी रखेंगे छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं हमारे बीच के मतभेदों को मन भेदों में बदलने तक के सफर की। अभी हमने चर्चा की कि किस प्रकार से हम हमारी जो राय है, यदि उस पर कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती है तो हम कैसे उसको अपनी नॉलेज, अपनी पर्सनैलिटी और अपने जो समझ की बात होती है, इंटेलिजेंस की बात होती है, उसके ऊपर एक सवालिया निशान के रूप में देखने लगते हैं। आखिर इस सब में सोशल मीडिया कितना रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमारा जीवन आज के समय में अगर हम बात करें, भारत उन लोगों का देश है जो पूरे विश्व में शायद दूसरे या तीसरे स्थान पर आते हैं जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। अब हमारे जीवन में आज की डेट में सोशल मीडिया ने एक्चुअली समस्या को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, जो राय का जो फ़र्क है, जो हमारी एक मतभेद वाली जो स्थिति है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया सोशल मीडिया ने, क्योंकि वहाँ हमें अक्सर वही दिखाई देता है जो हम देखना चाहते हैं। हम उन लोगों को फॉलो करते हैं जो हमारी सोच से सहमत हैं, और इसमें बहुत हद तक रोल प्ले करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे ही आप एक प्रकार का कंटेंट देखने लगते हैं और उसको थोड़ी देर देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसकी एल्गोरिदम ये कैच कर लेती है कि आपको इस मुद्दे पर इस प्रकार की बातें करना ही पसंद है। लेकिन आपको उस समय ये नहीं पता होता, क्योंकि आपने ऐसा सेलेक्ट किया है तो वो आपको इसीलिए वो सब चीज़ें दिखा रहा है। और वो बार बार जब हमारे सामने आती हैं तो हमें कहीं ना कहीं लगने लगता है कि यही सही है, मैं भी यही सोचता हूँ और ये भी मुझे यही दिखा रहा है। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही है। तो सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ी समस्या जो है इसको और ज़्यादा विकराल रूप दे दिया है। यानी हमें लगने लगता है कि जो पूरी दुनिया है वो हमारी तरह सोचती है, और जब कोई अलग राय सामने आती है तो हमें सरप्राइज नहीं होता बल्कि गुस्सा आने लगता है। यानी जब बहुत सारी रील्स और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारे ही मत के हिसाब से चीज़ें आती हैं तो हम एक्सेप्ट करने लगते हैं कि हाँ, दुनिया ऐसी सोचती है और यही सच्चाई है। वहीं कहीं बीच में यदि कुछ ऐसा आ जाता है निकल के कि जो नेगेटिव है, जो उसके अगेंस्ट है, उससे हटके है, तो वो हमें सीधा सीधा सरप्राइज नहीं करता बल्कि गुस्सा दिलाने लगता है। हमारे जो भाव हैं वो तुरंत से बदल जाते हैं, और यहीं से डिफरेंस ओपिनियन धीरे धीरे डिफरेंट एनिमी बन जाता है। यानी कि जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हमने अभी आपको कहा कार्यक्रम के पिछले हिस्से में कि सबसे पहले मतभेद होता है, फिर धीरे धीरे बहस में कन्वर्ट हो जाती है, फिर तकरार में, और तकरार बदल जाती है दुश्मनी में। तो हमें बहुत ज़्यादा बारीकी से ध्यान देने की आवश्यकता है इसके बिल्कुल इनिशियल फेज को, और अपनी जो बुद्धिमत्ता है, जो इंटेलिजेंस है, उसको इस्तेमाल करें इन चीज़ों को चर्चा से समाप्त करने की, ना कि उसको वर्स्ट स्थिति में ले जाने की। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर चर्चा को जारी रखेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, सुनिए ये खूबसूरत सा नगमा, और फिर मिलते हैं आपसे कार्यक्रम के अगले हिस्से में।

0: बिम बम कर बिम बम कर बिम बम कर
1: तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल। आज हम बात कर रहे हैं एक हमारे जीवन के व्यवहार से जुड़े मुद्दे की, मतभेद से मनभेद को कैसे रोका जाए बदलने में, यानी किस प्रकार से एक असहमति जो होती है वो बहस में कन्वर्ट होती है, तकरार में, और फिर बदल जाती है आपस की दुश्मनी में। तो हमें समझना होगा कि हर किसी को अपनी राय को रखने का हक है। जिस प्रकार से आप अपनी राय पे दूसरे की सहमति चाहते हैं, उसी प्रकार से वो व्यक्ति असहमत होकर के अपनी राय रख करके उस पे भी आपकी सहमति की अपेक्षा रखता है। तो इसमें बहस का, तकरार का या शत्रुता भाव लाने का तो कोई स्कोप ही नहीं है। हमने बताया कि सोशल मीडिया ने कैसे इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। अब छोटा सा एक उदाहरण मैं आपके सामने लाता हूँ। मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक ने कहा कि मुझे लगता है ये फैसला सही है, लेकिन दूसरे दोस्त ने कहा कि मुझे लगता है कि दोस्त तुम्हारा ये फैसला गलत है। अब दोनों के पास एक नजरिया है अपना अपना। यदि हम एक सिक्के के पहलू की बात करें तो एक सिक्के पर एक तरफ कुछ लिखा होता है, दूसरी तरफ कुछ। यदि वो दोस्त अलग अलग जगह पर खड़े होकर के उस सिक्के को देख रहे हैं तो एक बोलेगा कि इस पर चिन्ह छपा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, दूसरा कहेगा कि इस पर भारत सरकार लिखा हुआ है। दोनों अपनी जगह सही है लेकिन दोनों की राय एक नहीं है। यहाँ पर काम करती है बुद्धिमत्ता। हमें एक दूसरे की राय को समझना चाहिए, उसकी स्थिति को समझना चाहिए और उसके बाद अपना व्यवहार उस हिसाब से ही करना चाहिए। अब यदि इसमें पहला कहे कि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है और दूसरा जवाब दे कि तुम तो बोलते ही ऐसे हो, तुम्हारी तो सोच ही घटिया है,

रिस्पेक्ट करने में या उसकी दी हुई राय को समझने में। और इसका कोई मतलब नहीं होता कि यदि आपने किसी की राय से सहमति नहीं दिखाई या आपकी राय पे कोई सहमत नहीं है तो वो कोई इंसान गलत हो गया या आप गलत हो गए। और ना ही इसका मतलब ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति आपकी राय से सहमत नहीं है तो वो आपका कोई विरोधी हो गया। तो हमें इस बात को बहुत गहराई से समझने और सोचने की आवश्यकता है। दोस्तों अभी लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक एक खूबसूरत से गीत के लिए और उसके बाद इस कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। हम चर्चा कर रहे हैं मतभेद से मनभेद या मतभेद को मनभेद में बदलने से कैसे रोका जाए या ये स्थिति जो होती है उसको कैसे ना लाया जाए हमारे आम व्यवहार में। जिस प्रकार से हमने बात की मतभेद की, असहमति जो रहती है कि किसी ने कोई राय दी, कोई बात बोली, कोई फैसला लिया, हमने उस पर असहमति दर्ज करा दी, तो आखिर असहमति जो है वो वास्तव में क्या बुरी चीज है जो एक शत्रुता का रूप ले लेती? जी नहीं, दरअसल असहमति जो होती है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो हमारी सोसाइटी के लिए और हमारे ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरी है। आपको शायद आश्चर्य होगा इस बात को जान करके, लेकिन दोस्तों आप इमेजिन कीजिए, यदि समाज का हर एक व्यक्ति एक जैसा सोचने लगे तो नए विचार कहाँ से आएंगे? कैसे बिल्कुल एक ही तरह का सोच अगर हो गई तो फिर नई सोच जो इनोवेशंस है वो कहाँ से आएगी? विज्ञान कैसे आगे बढ़ेगा? क्योंकि विज्ञान के जितने भी प्रयोग हुए या आविष्कार हुए वो केवल और केवल नई सोच के साथ हुए, और साथ ही साथ वो हुए एक नए किसी एक मतभेद की सकारात्मक शुरुआत से। आपने कहा ये चीज उड़ सकती है, दूसरे ने कहा नहीं उड़ सकती, लेकिन वो मतभेद तो था, लेकिन उसने प्रेरित किया किसी व्यक्ति को अपनी राय को सिद्ध करने के लिए, प्रयोग करने का, और आज उसका नतीजा है हम हवाई जहाज में भी उड़ते हैं। साथ ही साथ विज्ञान कैसे आगे बढ़ेगा, समाज में सुधार कैसे होगा और हमारा लोकतंत्र मजबूत कैसे बनेगा? इतिहास में बड़े बदलाव अक्सर इसलिए आए क्योंकि किसी ने प्रचलित सोच पर सवाल उठाया, यानी जो भी थॉट प्रोसेस चला आ रहा था उस पर किसी ने क्वेश्चनिंग की, तभी तो बदलाव आए, नई सोच आई, तभी हमारा समाज एक आधुनिक समाज के रूप में आज स्थापित हो चुका है। और साथ ही साथ हम वैश्विक स्तर पर यदि हम अपने विचारों की बात करें तो वो भी इसीलिए बदले हैं ताकि हम एक दूसरे की सोच को समझें, सहमति दी, कुछ लोगों को हमने अपने साथ सहमत किया और कुछ की सहमति हमने दी औरों के विचारों को लेकर के, तभी हम एक जो प्रमुख व्यवस्था है जो आगे की उसके साथ तालमेल बिठा करके आगे बढ़ पाए। तो यानी आपको समझने की जरूरत है कि यदि अगली बार कोई आपसे असहमत हो तो उसको तुरंत जवाब देने के बजाय एक सवाल पूछिए, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? हो सकता है आप उससे सहमत ना हो, लेकिन शायद आप उसे समझ जरूर पाए। यानी इस प्रश्न को पूछने का जो कारण है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, तो उसका एक उत्तर जब आपको मिलेगा तब आपको पता चलेगा कि शायद आपकी वाली जो बात थी, जो आपकी सलाह थी या आपका फैसला था या आपका कोई भी प्रयास था, उसमें गलती कहां पर थी। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा शांत होकर के बड़े ठंडे दिमाग से तरीके से चीज़ को समझने की, जैसा कि आपको मैंने एग्जांपल भी दिया था कि हमें समझना चाहिए जब दूसरा व्यक्ति किसी मुद्दे पर असहमति व्यक्त कर रहा है तो उसकी स्थिति क्या है, वो किसी चीज़ को किस नज़रिए से किस एंगल से देख रहा है, तो ये हमें समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो दोस्तों अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, सुनिए एक खूबसूरत सा गीत और उसके बाद हम फिर हाजिर होते हैं, चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर नई सोच नई दिशाएं।
1: ज्वाला समुद्र की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
2: और मैं ये कह रही हूं भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
1: ज्वाला हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
2: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
1: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
2: तो फिर एक वादा करो,
1: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
2: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
1: ज्वाला ये मेरा वादा है।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल। आज हम चर्चा कर रहे हैं मतभेद को मनभेद में बदलने से कैसे रोकें, कैसे हमें बदलना चाहिए कि जब राय की असहमति होती है तो उसको हम बहस में ना बदलें, तकरार में ना बदलें, और उसको बदलने वाली दुश्मनी में भी बदलने से रोका जाए। उसके लिए हमने बहुत सारी चर्चाएं आपसे की। हमने देखा कि इस प्रकार से सोशल मीडिया हमारे ऊपर हावी हो गया, और साथ ही हमने ये भी जाना कि जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ये कितनी ज़रूरी है हमारे समाज को विकसित बनाने के लिए, हमारे विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, और हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए। हमारा इतिहास साक्षी है कि जो भी हमारे जीवन में बड़े बदलाव आए वो केवल और केवल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से ही आए। हमारे समाज में सुधार आने के पीछे भी बहुत बड़ा कारण रहा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लेकिन तब जब हमने उसको बहुत ही सकारात्मक रूप में लिया, हमने समझा और उसके ऊपर कोई ना कोई एक बदलाव भरा हुआ फैसला लिया। अब आखिर हमें इसका पूरा जो सकारात्मक जो वातावरण बनाने के लिए या उसका फायदा लेने के लिए आखिर हमें क्या बदलना चाहिए? हमें बदलनी होगी अपनी बातचीत की भाषा। यदि हम किसी की राय पर आमतौर पर कहते हैं कि तुम गलत हो, अब यदि हम इसी की जगह उसको बोलने लगे कि दोस्त मैं इसको अलग तरीके से देखता हूं, तो आपने अपनी स्थिति स्पष्ट की कि आपका देखने का जो तरीका है वो डिफरेंट है, लेकिन तुम गलत नहीं हो। तो ये जो एक सेंटेंस का फर्क है, हालांकि आपने इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये बात बोल दी कि मैं असहमत हूं क्योंकि मेरे देखने का नजरिया अलग है, तो आपके पास एक मौका है अपनी बात को रखने का, बताने का। या आमतौर पर हम कहते हैं तुम्हें कुछ पता नहीं, उसकी जगह हम बोल सकते हैं क्या हम इस पर दूसरे नजरिए से भी सोच सकते हैं। यानी हम वहां पर एक तरह का निमंत्रण दे रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं कि हमें इस मुद्दे पर चर्चा करने की आवश्यकता है, ना कि तुम्हें कुछ पता नहीं है कह करके हम कहीं ना कहीं मतभेद वाली स्थिति को मनभेद में बदलने लगे। और सबसे ज्यादा जरूरी, जिस समय आप किसी बात को सुनते हैं तो केवल उसी समय सिर्फ जवाब देने की तैयारी मत कीजिए, सबसे पहले जो बात सुनी गई है उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दोस्तों सुनना और समझना दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे असहमत हो तो उसे हराने की कोशिश मत कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जिंदगी में हर बहस जीतना जरूरी नहीं है। कभी कभी रिश्ते बचाना, संवाद बचाना और एक दूसरे का सम्मान बचाना ज्यादा जरूरी होता है। याद रखिए, असहमति विचारों के बीच होनी चाहिए, दिलों के बीच नहीं, और शायद यही एक स्वस्थ समाज की पहचान है, जहां लोग अलग सोचते हैं लेकिन एक दूसरे का सम्मान करना नहीं भूलते। तो दोस्तों याद रखिए, मतभेद अच्छे हैं लेकिन मनभेद कभी भी अच्छा नहीं होता, और यही है हमारे आज की नई सोच और नई दिशाएं। तो दोस्तों अभी इजाजत दीजिए संदीप सिंगल को, और अगले प्रोग्राम में एक नए विषय पर आपके साथ फिर चर्चा के लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। नमस्कार दोस्तों।

0: ए सुन रुबिया, प्यार हो गया।
1: सच?
0: प्यार हो गया क्या करें?
1: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से रे।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं यादों की डायरी प्रियंका के साथ। और आज की हमारी कहानी है काली सलवार, जिसे लिखा है सादत हसन मंटो ने।
1: दिल्ली आने से पहले वो अंबाला छावनी में थी, जहां कई गोरे उसके ग्राहक थे। इन गोरों से मिलने जुलने की वजह से वो अंग्रेजी के 10-15 शब्द सीख गई थी। इनको वो आम बातचीत में इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन जब वो दिल्ली में आई और उसका कारोबार ना चला, तो एक दिन उसने अपनी पड़ोसन तमंचा चांद से कहा, दिस लाइफ वेरी बैड, यानी ये जिंदगी बहुत बुरी है जिसमें खाने को ही नहीं मिलता। अंबाला छावनी में उसका धंधा बहुत अच्छा चलता था। छावनी के गोरे शराब पीकर उसके पास आ जाते थे। वो 3-4 घंटे में ही 8-10 गोरों को निपटा कर 20-30 रुपए पैदा कर लिया करती थी। अगर वो उससे कुछ रियायत चाहते तो वो सिर हिलाकर कह दिया करती थी, साहब हमारी समझ में तुम्हारी बात नहीं आती। और अगर वो उससे जरूरत से ज्यादा छेड़छाड़ करते तो वो उनको अपनी जुबान में गालियां देना शुरू कर देती। वो हैरत में उसके मुंह की तरफ देखते तो वो उनसे कहती, साहब तुम एकदम उल्लू का पट्टा है, समझा। ये कहते वक्त अपने लहजे में गुस्सा न लाती, बल्कि बड़े प्यार से उनके साथ बातें करती। यहाँ दिल्ली में जब वो आई थी, एक भी गोरा उसके घर नहीं आया था। 3 महीने उसको हिंदुस्तान के शहर में रहते हो गए थे, जहाँ उसने सुना था कि बड़े लाट साहब रहते हैं जो गर्मियों में शिमला चले जाते हैं। मगर सिर्फ 6 आदमी उसके पास आए थे, सिर्फ 6, यानी महीने में 2। और इन 6 ग्राहकों से उसने, खुदा झूठ ना बुलवाए, तो 18.5 रुपए वसूल किए थे। 3 रुपए से ज्यादा पर कोई मानता ही नहीं था। सुल्ताना ने इनमें से 5 आदमियों को अपना रेट 10 रुपए बताया था, मगर ताजुब की बात है, इनमें से हर एक ने यही कहा, भाई हम 3 रुपए से 1 कौड़ी ज्यादा नहीं देंगे। न जाने क्या बात थी कि इनमें से हर एक ने उसे 3 रुपए के काबिल समझा। चुनांचे जब 6ठा आदमी आया तो उसने खुद उससे कहा, देखो मैं 3 रुपए 1 टाइम के लूंगी, इससे 1 धेला तुम कहो तो मैं ना लूंगी, अब तुम्हारी मर्जी, रहना है तो रहो वरना जाओ। 6ठे आदमी ने ये सुनकर तकरार ना की और उसके यहाँ ठहर गया। जब दूसरे कमरे में वो दरवाजा बंद करके अपना कोट उतारने लगा तो सुल्ताना ने कहा, लाइए 1 रुपया दूध का। उसने 1 रुपया तो न दिया, लेकिन नए बादशाह की चमकती हुई अठन्नी जेब में से निकाल कर उसको दे दी और सुल्ताना ने भी चुपचाप ले ली कि चलो जो आया गनीमत है। 18.5 रुपए 3 महीने में, 20 रुपए महीना तो इस कोठे का किराया था, जिसको मकान मालिक अंग्रेजी भाषा में फ्लैट कहता था। इस फ्लैट में ऐसा पखाना था जिसमें जंजीर खींचने से सारी गंदगी पानी के जोर से एकदम नल में नीचे गायब हो जाती थी और बड़ा शोर होता था। शुरू शुरू में तो शोर ने उसे बहुत डराया था। पहले दिन जब वो शौच जाने के लिए उस पखाने में गई तो उसकी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। फारिग होने के बाद जब वो उठने लगी तो उसने लटके हुए जंजीर का सहारा ले लिया। उस जंजीर को देखकर उसने ख्याल किया, चूंकि ये खास लोगों की रहने की जगह है इसलिए ये जंजीर लगाई गई होगी कि उठते वक्त तकलीफ ना हो और सहारा मिल जाए। मगर जैसे ही उसने जंजीर को पकड़कर उठना चाहा, ऊपर खट खट की आवाज हुई और फिर एकदम पानी इस शोर के साथ बाहर निकला कि डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई। खुदा बख्श कमरे में अपना फोटोग्राफी का सामान ठीक कर रहा था और साफ बोतलों में हाइड्रोकोलीन डाल रहा था कि उसने सुल्ताना से पूछा, क्या हुआ, ये चीख तुम्हारी थी? सुल्ताना का दिल धड़क रहा था। उसने कहा, ये मुआ पैखाना है या क्या है? बीच में ये रेलगाड़ी की तरह जंजीर क्यों लटका रखी है? मेरी कमर में दर्द था, मैंने कहा चलो इसका सहारा ले लूंगी, पर इस मुई जंजीर को छेड़ना था कि वो धमाका हुआ कि मैं तुमसे क्या कहूँ। इस पर खुदा बख्श बहुत हंसा और उसने सुल्ताना को उस पैखाने के बारे में सब कुछ बता दिया था कि ये नए फैशन का है जिसमें जंजीर हिलाने पर सब गंदगी जमीन के नीचे धस जाती है। खुदा बख्श और सुल्ताना आपस में कैसे मिले, ये एक लंबी कहानी है। खुदा बख्श रावलपिंडी का था। एंट्रेंस पास करने के बाद उसने लौरी चलाना सीखा। चुनांचे 4 साल तक वो रावलपिंडी और कश्मीर के बीच लॉरी चलाने का काम करता था। इसके बाद कश्मीर में उसके दोस्त एक औरत से हो गई। उसको भगाकर वो लाहौर ले आया। लाहौर में चूंकि उसको कोई काम ना मिला तो इसलिए उसने अपनी औरत को पेशे पर बैठा दिया। 2-3 साल तक ये सिलसिला जारी रहा और फिर वो औरत किसी और के साथ भाग गई। खुदा बख्श को मालूम हुआ कि वो अम्बाला में है। वो उसकी तलाश में अम्बाला आया जहाँ उसको सुल्ताना मिल गई। सुल्ताना ने उसको पसंद किया, चुनांचे दोनों का संबंध हो गया। खुदा बख्श के आने से सुल्ताना का कारोबार एकदम चमक उठा। औरत चूंकि अंधविश्वासी थी इसलिए उसने समझा कि खुदा बख्श बड़ा लक्की है जिसके आने से इतनी तरक्की हो गई। चुनांचे इस विश्वास ने खुदा बख्श की अहमियत उसकी नजर में और बढ़ा दी। यहाँ वो गोरों की फोटो खींचता रहता। 1 महीने के अंदर अंदर उसकी छावनी में बहुत से गोरों से जान पहचान हो गई। चुनांचे वो सुल्ताना को वहीं ले गया। यहाँ छावनी में खुदा बख्श के जरिए कई गोरे सुल्ताना के पक्के हो गए और उसकी आमदनी भी दुगनी हो गई। सुल्ताना ने कानों के लिए बूंदे खरीदे, 5.5 तोले की 8 कंगड़ियां भी बनवा ली, 10-15 अच्छी अच्छी साड़ियां भी जमा कर ली। घर में फर्नीचर वगैरह भी आ गया। कुल मिलाकर अम्बाला छावनी में वो बड़ी खुशहाल थी। मगर एकाएक न जाने खुदा बख्श के दिल में क्या समाई कि उसने दिल्ली जाने की ठान ली। सुल्ताना इनकार कैसे करती जबकि खुदा बख्श को अपने लिए बड़ा लकी समझती थी। उसने खुशी खुशी दिल्ली जाना कबूल किया। सोचा कि इतने बड़े शहर में जहाँ लाट साहब रहते हैं उसका धंधा और भी चलेगा। चुनांचे जल्दी जल्दी घर का भारी सामान बेच बाज कर वो खुदा बख्श के साथ दिल्ली आ गई। यहाँ पहुँच कर खुदा बख्श ने 20 रुपये पर एक छोटा सा फ्लैट ले लिया जिसमें वो रहने लगे। एक ही किस्म के नए मकानों की लंबी सी कतार सड़क के साथ साथ चली गई थी। म्यूनिसिपल कमेटी ने शहर का एक भाग खास वेश्याओं के लिए रख दिया था ताकि वो शहर में जगह जगह अड्डे ना बनाए। नीचे दुकानें थी और ऊपर 2 मंजिला रिहायशी फ्लैट। चूंकि सब इमारतें एक ही डिजाइन की थी इसलिए शुरू शुरू में सुल्ताना को अपना फ्लैट तलाशने में बड़ी मुश्किल होती थी। पर जब नीचे लॉन्ड्री वाले ने अपना बोर्ड घर की पेशानी पर लगा दिया तो उसको एक पक्की निशानी मिल गई। बोर्ड पर लिखा था, यहाँ मैले कपड़ों की धुलाई की जाती है। ये बोर्ड पढ़ते ही वो अपना फ्लैट तलाश लिया करती थी। इस तरह उसने बहुत सी निशानियां कायम कर ली थी। मसलन बड़े बड़े अक्षरों में जहाँ कोयले की दुकान लिखा था वहीं उसकी सहेली हीराबाई रहती थी जो कभी रेडियो घर में गाने जाया करती थी। जहाँ यात्रियों के खाने का सारा इंतजाम है लिखा था वहीं उसकी दूसरी सहेली मुख्तार रहती थी। पलंग के कारखाने के ऊपर अनवरी रहती थी जो उस कारखाने के सेठ के पास नौकर थी। चूंकि सेठ साहब को रात के वक्त अपने कारखाने की देखभाल करनी होती थी इसलिए वो अनवरी के पास ही रहते थे। दुकान खोलते ही ग्राहक थोड़ी आते हैं। चुनांचे जब 1 महीना तक सुल्ताना बेकार रही तो उसने यही सोचकर अपने दिल को तसल्ली दी। पर जब 2 महीने गुजर गए और कोई आदमी उसके कोठे पर न आया तो उसे बहुत चिंता हुई। उसने खुदा बख्श से कहा, क्या बात है खुदा बख्श, हमें आए आज पूरे 2 महीने हो गए, किसी ने इधर का रुख नहीं किया। मानते हो आजकल बाजार बहुत मंदा है पर इतना मंदा भी तो नहीं कि महीने भर में कोई शक्ल ही देखने ना आए। खुदा बख्श को भी ये बात बहुत अरसे से खटक रही थी मगर वो खामोश था। वो इसके आगे कुछ कहने ही वाला था कि सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज आई। खुदा बख्श और सुल्ताना दोनों ने इस आवाज की तरफ ध्यान दिया। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। खुदा बख्श ने लपक कर दरवाजा खोला। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये पहला ग्राहक था जिससे 3 रुपए में सौदा तय हुआ। उसके बाद 5 और आए यानी 3 महीने में 6 जिनसे सुल्ताना ने 18.5 रुपए वसूल किए। 20 रुपए महीना तो फ्लैट के किराए में ही चले जाते थे। पानी का टैक्स और बिजली का बिल अलग था। इसके अलावा घर के दूसरे खर्चे थे, खाना पीना, कपड़े लत्ते, दवा दारू और आमदनी कुछ भी नहीं थी। 18.5 रुपए 3 महीने में आए तो उसे आमदनी तो नहीं कह सकते। सुल्ताना परेशान हो गई। 5.5 तोले की 8 कंगनियां जो उसने अम्बाले में बनवाई थी आहिस्ता आहिस्ता बिक गई। आखिरी कंगनी की जब बारी आई तो उसने खुदा बख्श से कहा, तुम मेरी सुनो और चलो अम्बाले में। यहाँ क्या धरा है भाई, होंगे यहाँ लाट साहब पर हमें तो ये शहर रास नहीं आया। तुम्हारा काम भी वहाँ खूब चलता था, चलो वहाँ चलते हैं। जो भी नुकसान हुआ उसको अपना सिर सदका समझो। लो इस कंगनी को बेच कर आओ, आज रात की गाड़ी से ही यहाँ से चल देंगे। खुदा बख्श ने कंगनी सुल्ताना के हाथ से ली और कहा, नहीं जाने मन, अंबाला अब नहीं जाएंगे, यही दिल्ली में रहकर कमाएंगे। तुम्हारी चूड़ियां सब की सब वापस आएंगी। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बड़ा कारसाज है, यहाँ भी वो कोई ना कोई सबब बना ही देगा। सुल्ताना चुप हो गई, चुनांचे आखिरी कंगनी भी हाथ से उतर गई। सूने हाथ लेकर उसको बहुत दुख होता था, पर क्या करती, पेट भी तो आखिर किसी काम धंधे से भरना था ना। 5 महीने गुजर गए और आमदनी खर्च के मुकाबले चौथाई से भी कुछ कम रही तो सुल्ताना की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। खुदा बख्श भी अब सारा सारा दिन गायब रहने लगा था। सुल्ताना को इसका भी दुख था। इसमें कोई शक नहीं कि पड़ोस में उसकी 2 मिलने वालियां मौजूद थी, उनके साथ वो अपना वक्त काट सकती थी। हर रोज उनके यहाँ जाना और घंटों बैठे रहना उसको बुरा लगता था। चुनांचे आहिस्ता आहिस्ता उसने इन सहेलियों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया। सारा दिन वो अपने सुनसान मकान में बैठी रहती, कभी सुपारी काटती रहती, कभी पुराने फटे कपड़ों को सीती रहती और कभी बाहर बालकनी में आकर जंगले के पास खड़ी हो जाती और सामने रेलवे रोड में खड़े और चलते इंजनों की तरह घंटों बेमतलब देखती रहती। अंबाला छावनी में जब वो रहती थी तो स्टेशन के पास ही उसका मकान था, मगर वहाँ उसने कभी इन चीज़ों को ऐसी नज़रों से नहीं देखा था। अब तो कभी कभी उसके दिमाग में ये ख्याल आता कि ये जो सामने रेल की पटरियों का जाल सा बिछा है और जगह जगह से भाप और धुआं उठ रहा है, बहुत सी गाड़ियाँ हैं जिनको चंद मोटे मोटे इंजन इधर उधर धकेलते रहते हैं। सुल्ताना को कभी कभी ये इंजन सेठ मालूम होते थे जो कभी कभी अंबाला में उसके यहाँ आया करते थे। खुदा बख्श से उसने कई बार कहा, देखो मेरे हाल पर रहम करो, यहाँ घर में रहा करो, मैं सारा दिन यहाँ बीमारों की तरह पड़ी रहती हूँ। मगर उसने हर बार सुल्ताना को ये कहकर तसल्ली दी, जाने मन, मैं बाहर कुछ कमाने की फिक्र कर रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा तो चंद दिनों में ही बेड़ा पार हो जाएगा। पूरे 5 महीने हो गए थे मगर अभी तक ना सुल्ताना का बेड़ा पार हुआ था ना खुदा बख्श का। मुहर्रम का महीना सिर पर आ रहा था मगर सुल्ताना के पास काले कपड़े बनवाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुख्तार ने लेडी हिमल्टन की एक नए ढंग की कमीज बनवाई, उसकी आस्तीनें काली जॉर्जेट की थी, जिसके साथ मैच करने के लिए उसके पास काली सैटन की सलवार थी जो काजल की तरह चमकती थी। अनवरी ने रेशमी जॉर्जेट की एक बड़ी उम्दा साड़ी खरीदी थी, उसने सुल्ताना से कहा था वो इसी साड़ी के नीचे सफेद बॉस्की का पेटीकोट पहनेगी क्योंकि ये नया फैशन है। इस साड़ी के साथ पहनने को अनवरी ने काली मखमल का एक जूता भी लिया था जो बड़ा नाजुक था। सुल्ताना ने जब ये तमाम चीजें देखी तो उसको इस एहसास से बहुत दुख हुआ कि वो मुहर्रम मनाने के लिए ऐसा लिबास खरीदने की हैसियत तक नहीं रखती। अनवरी और मुख्तार के पास ये लिबास देखकर जब वो घर आई तो उसका दिल बहुत दुखी था। उसे ऐसा मालूम होता था कि फोड़ा सा उसके अंदर हो गया है, घर बिल्कुल खाली था। खुदा बख्श वैसे ही हमेशा की तरह बाहर था। देर तक वो दरी पर गांव तकिया सिर के नीचे रखकर लेटी रही, पर जब उसकी गर्दन ऊंचाई की वजह से अकड़ सी गई तो उठकर बाहर बालकनी में चली गई ताकि गमगीन ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दे। बाजार में ऐसे आदमी चलने शुरू हो गए थे जो ताक झाक करने के बाद चुपचाप घर का रुख करते हैं। ऐसे ही एक आदमी ने गर्दन ऊंची करके सुल्ताना की तरफ देखा। सुल्ताना मुस्कुरा दी और उसको भूल गई क्योंकि अब सामने पटरियों पर एक इंजन आ गया था। सुल्ताना ने गौर से उसकी तरफ देखना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता ये ख्याल उसके दिमाग में आया कि इंजन ने भी काला लिबास पहन रखा है। ये अजीबोगरीब ख्याल दिमाग में से निकालने की खातिर जब उसने सड़क की ओर देखा तो उसे वही आदमी बैलगाड़ी के पास खड़ा नजर आया जिसने उसकी तरफ ललचाई नजरों से देखा था। सुल्ताना ने उसे हाथ से इशारा किया। उस आदमी ने इधर उधर देखा और सुल्ताना से इशारों में पूछा, किधर से आऊं? सुल्ताना ने उसे रास्ता बता दिया। वो आदमी थोड़ी देर खड़ा रहा मगर फिर बड़ी फुर्ती से ऊपर चलाया। सुल्ताना ने उसे दरी पर बैठाया। जब वो बैठ गया तो उसने बातचीत शुरू करने के लिए कहा, आप ऊपर आते डर रहे थे? वो आदमी ये सुनकर मुस्कुराया। तुम्हें कैसे मालूम हुआ?
2: डरने की बात ही क्या थी?
1: इस पर सुल्ताना ने कहा, मैंने ये इसलिए कहा कि आप देर तक वहीं खड़े रहे और फिर कुछ सोचकर आए। वो ये सुनकर फिर मुस्कुराया। तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं तो ऊपर वाले फ्लैट की तरफ देख रहा था। वहां कोई औरत खड़ी अपने मर्द को ठेंगा दिखा रही थी, मुझे ये मंजर पसंद आया। फिर बालकनी में सब्ज बल्ब रोशन हुआ, मैं कुछ देर के लिए ठहर गया। सब्ज रोशनी मुझे बहुत पसंद है, आंखों को बहुत अच्छी लगती है। ये कहकर उसने कमरे का जायजा लेना शुरू किया। फिर वो उठ खड़ा हुआ। सुल्ताना ने पूछा, आप जा रहे हैं? आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारे मकान देखना चाहता हूँ। चलो मुझे तमाम कमरे दिखाओ। चलिए। सुल्ताना ने उसको तीनों कमरे एक एक करके दिखा दिए। उस आदमी ने बिल्कुल खामोशी से उन कमरों का मुआयना किया। जब वो फिर उसी कमरे में आ गए जहां पहले बैठे थे, तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम शंकर है। सुल्ताना ने पहली बार गौर से शंकर की तरफ देखा। वो ठीक ठाक कद, मामूली शक्ल सूरत का आदमी था, मगर उसकी आंखें सबसे अलग, साफ शफाक थी। कभी कभी उसमें एक अजीब किस्म की चमक भी पैदा होती थी। गठीला और कसरती बदन था, खाकी रंग की गर्म पैंट पहने था, सफेद कमीज थी जिसका कॉलर गर्दन पर से ऊपर को उठा हुआ था। शंकर कुछ इस तरह दरी पर बैठा था कि मालूम होता था कि शंकर की बजाय सुल्ताना ग्राहक है। इस एहसास ने सुल्ताना को थोड़ा परेशान कर दिया। चुनांचे उसने शंकर से कहा, फरमाइए। ये सुनकर वो लेट गया। मैं क्या फरमाऊं? तुम ही कुछ फरमाओ, तुम ही ने तो मुझे बुलाया है। सुल्ताना ये सुनकर चकरा गए, मगर इसके बावजूद उसे बेख्तियार हंसी आ गई। आप काम क्या करते हैं? शंकर ने जवाब दिया, यही जो तुम करती हो। क्या तुम क्या करती हो? मैं कुछ नहीं करती। तो मैं भी कुछ नहीं करता, सुल्ताना ने भन्ना कर कहा। ये तो कोई बात ना हुई, आप कुछ ना कुछ तो जरूर करते होंगे ना? शंकर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, तो तुम भी तो कुछ ना कुछ जरूर करती होगी। झक मारती हूं। तो मैं भी झक मारता हूं। तो आओ झक मारे, मैं हाजिर हूं, मगर झक मारने के दाम मैं कभी नहीं दिया करता। होश की दवा करो, ये लंगर खाना नहीं। तो मैं भी वॉलंटियर नहीं। सुल्ताना यहां रुक गई। उसने पूछा, ये वॉलंटियर क्या होते हैं? जाने तुम क्या उटपटांग बातें करते हो, बोलो रहोगे? इसी शर्त पर जो मैं पहले बता चुका हूं। सुल्ताना उठ खड़ी हुई, तो जाओ रास्ता पकड़ो। शंकर आराम से उठा, पतलून की जेबों में उसने अपने दोनों हाथ ठूंसे और जाते हुए कहा, मैं कभी कभार इस बाजार से गुजरा करता हूँ, जब भी तुम्हें जरूरत हो बुला लेना, मैं बहुत काम का आदमी हूँ। शंकर चला गया और सुल्ताना काले लिबास को भूलकर देर तक उसके बारे में सोचती रही। इस आदमी की बातों ने उसके दुख को बहुत हल्का कर दिया था। शाम को जब खुदा बख्श आया तो सुल्ताना ने उससे पूछा, तुम आज सारा दिन किधर गायब रहे? पुराने किले के पास से आ रहा हूँ, वहाँ एक बुजुर्ग कुछ दिनों से ठहरे हुए हैं, उन्हीं के पास हर रोज जाता हूँ कि हमारे दिन फिर जाएं। कुछ उन्होंने तुमसे कहा? नहीं, अभी वो मेहरबान नहीं हुए, पर सुल्ताना मैं जो उनके खिदमत कर रहा हूँ वो अकारत कभी नहीं जाएगी। अल्लाह का फजल अगर शामिल हाल रहा तो जरूर वारे न्यारे हो जाएंगे। सुल्ताना के दिमाग में मुहर्रम मनाने का ख्याल समाया हुआ था। खुदा बख्श से रोनी आवाज में कहने लगी, सारा सारा दिन बाहर गायब रहते हो, मुहर्रम सिर पर आ गया है। कुछ तुमने इसकी फिक्र की कि मुझे काले कपड़े चाहिए? घर में फूटी कौड़ी नहीं, कंगनिया थी सो वो एक एक करके बिक गई। तुम ही बताओ क्या होगा, यूं फकीरों के पीछे कब तक मारे मारे फिरा करोगे? मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ दिल्ली में खुदा ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। मेरी सुनो तो आप काम शुरू कर दो, कुछ तो सहारा हो ही जाएगा। खुदा बख्श तरी पर लेट गया और कहने लगा, पर ये काम शुरू होने के लिए भी तो थोड़ा कुछ सरमाया चाहिए। सुल्ताना ने बात काट कर कहा, तुम खुदा के लिए कुछ करो, चोरी करो या डाका मारो, पर मुझे एक सलवार का कपड़ा जरूर ला दो। मेरे पास सफेद बॉस्की की कमीज है, उसको मैं काला करवा लूंगी। सफेद निनॉन का एक दुपट्टा भी मेरे पास है, वही जो तुमने मुझे दिवाली पर लाकर दिया था, ये भी कमीज के साथ रंगवा लिया जाएगा। सिर्फ सलवार की कसर है, सो वो तुम किसी ना किसी तरह पैदा कर दो। देखो, तुम्हें मेरी जान की कसम है, किसी ना किसी तरह जरूर ला दो। मेरा मरा मुंह देखो अगर ना लाओ। मैं कहां से लाऊं? अफीम खाने के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं। कुछ भी करो, मगर मुझे 4.5 गज काली साटन ला दो। तुम अगर चाहो तो जरूर इतने पैसा पैदा कर सकते हो। जंग से पहले ये साटन 12-14 आने गज मिल जाती थी, अब 1.25 रुपए गज के हिसाब से मिलती है। 4.5 गजों पर कितने रुपए खर्च हो जाएंगे? अब तुम कहती हो तो मैं हीला करूंगा। ये कहकर खुदा बख्श उठा। चलो अब इन बातों को भूल जाओ, मैं होटल से खाना ले आऊं। होटल से खाना आया, दोनों ने मिलकर निपटाया और सो गए। सुबह हुई, खुदा बख्श पुराने किले वाले फकीर के पास चला गया और सुल्ताना अकेली रह गई। कुछ देर लेटी रही, कुछ देर सोती रही, इधर उधर कमरों में टहलती रही। दोपहर का खाना खाने के बाद उसने अपना सफेद निनॉन का दुपट्टा और सफेद बॉस्की की कमीज निकाली और नीचे लॉन्ड्री वाले को रंगने के लिए दे आई। कपड़े धोने के अलावा वहां रंगने का काम भी किया जाता था। ये काम करने के बाद उसने वापस आकर फिल्मों की किताब पढ़ी, जिसमें उसकी देखी हुई फिल्मों की कहानी और गीत छपे हुए थे। ये किताब पढ़ते पढ़ते वो सो गई। जब उठी तो 4 बज चुके थे, क्योंकि धूप आंगन में मोरी के पास पहुंच चुकी थी। नहा धोकर फ्री हुई तो गर्म चादर ओढ़कर बालकनी में आ खड़ी हुई। तकरीबन 1 घंटा सुल्ताना बालकनी में खड़ी रही। अब शाम हो गई थी, बत्तियां रोशन हो रही थी, नीचे सड़क पर रोशन के आसार नजर आने लगे थे। सर्दी थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी, मगर सुल्ताना को ये नागवार महसूस न हुई। वो सड़क पर आते जाते टांगों और मोटरों की तरफ एक अरसे से देख रही थी। अचानक उसे शंकर नजर आया। मकान के नीचे पहुंचकर उसने गर्दन ऊंची की और सुल्ताना की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। सुल्ताना ने गैर इरादी तौर पर हाथ का इशारा किया और उसे ऊपर बुलवा लिया। शंकर ऊपर आया तो सुल्ताना बहुत परेशान हुई कि उससे क्या कहे। दरअसल उसने ऐसे ही बिना सोचे समझे इशारा कर दिया था। शंकर भी ऊपर चला आया, जैसे उसका अपना ही घर हो। पहले दिन की तरह वो गांव तकिया सिर के नीचे रखकर लेट गया। जब सुल्ताना ने देर तक उससे कोई बात ना की तो उसने कहा, तो मुझे 100 दफा बुला सकती हो, और 100 दफा ही कह सकती हो कि चले जाओ। मैं ऐसी बातों पर कभी नाराज नहीं हुआ करता। नहीं, बैठो, तुम्हें जाने को कौन कहता है? शंकर इस पर मुस्कुरा दिया। तो मेरी शर्तें मंजूर हैं?
3: कैसी शर्तें?
1: सुल्ताना ने हंसकर कहा, क्या निकाह कर रहे हो मुझसे?
3: निकाह और शादी कैसी?
1: ना तुम उम्र भर किसी से निकाह करोगी ना मैं। ये रस्में हम लोगों के लिए नहीं। छोड़ दो इन फिजूल की बातों को, कोई काम की बात करो।
3: बोलो, क्या बात करूं?
1: तुम औरत हो, कोई ऐसी बात शुरू करो जिससे दो घड़ी दिल बहल जाए। इस दुनिया में सिर्फ दुकानदारी नहीं, कुछ और भी है।
3: साफ साफ कहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो?
1: जो दूसरे चाहते हैं। शंकर उठकर बैठ गया।
3: तुम में और दूसरों में फिर क्या फर्क रहा?
1: तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं, उनमें और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो पूछनी नहीं चाहिए। सुल्ताना ने थोड़ी देर तक शंकर की इस बात को समझने की कोशिश की, फिर कहा, मैं समझ गई हूँ, तो कहो क्या इरादा है?
3: तुम जीते मैं हारी, पर मैं कहती हूँ आज तक किसी ने ऐसी बात कबूल ना की होगी।
1: तुम गलत कहती हो, इस मोहल्ले में तुम्हें ऐसी सादा लो औरतें भी मिल जाएंगी जो कभी यकीन नहीं करेगी कि औरत ऐसी जिल्लत कबूल कर सकती है जो तुम बगैर किसी एहसान के कबूल करती रही हो। लेकिन इनके ना यकीन करने के बावजूद तुम हजारों की तादाद में हो। तुम्हारा नाम सुल्ताना है ना?
3: हाँ, सुल्ताना ही है।
1: शंकर उठ खड़ा हुआ और हंसने लगा। मेरा नाम शंकर है।
3: ये नाम भी उठपटांग होते हैं।
1: चलो आओ अंदर चले। शंकर और सुल्ताना दरी वाले कमरे में वापस आए तो दोनों हंस रहे थे, न जाने किस बात पर। जब शंकर जाने लगा तो सुल्ताना ने कहा, शंकर मेरी एक बात मानोगे? शंकर ने जवाब में कहा, पहले बात बताओ। सुल्ताना कुछ झेप सी गई। तुम कहोगे कि मैं दाम वसूल करना चाहती हूँ, मगर कहो कहो, रुक क्यों गई हो? सुल्ताना ने हिम्मत से काम लेकर कहा, बात यह है कि मुहर्रम आ रहा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि काली सलवार बनवा सकूं। यहाँ के सारे बखेड़े तो मुझसे सुन ही चुके हो। कमीज और दुपट्टा मेरे पास मौजूद है, जो मैंने आज रंगवाने के लिए दे दिया है। शंकर ने यह सुनकर कहा, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूं जिससे तुम काली सलवार बनवा सको?
3: नहीं, मेरा मतलब यह है कि अगर हो सके तो तुम मुझे काली सलवार बनवा दो। मेरी जेब में तो इत्तेफाक से ही कुछ होता है। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा। मुहर्रम की पहली तारीख को तुम्हें ये सलवार मिल जाएगी। लो बस, अब खुश हो गई?
1: सुल्ताना के बूंदों की तरफ देखकर शंकर ने पूछा, क्या ये बूंदे तुम मुझे दे सकती हो? सुल्ताना ने हंसकर कहा,
3: तुम इनका क्या करोगे, चांदी के मामूली बूंदे हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए के होंगे।
1: इस पर शंकर ने कहा, मैंने तुमसे बूंदे मांगे हैं, इनकी कीमत नहीं पूछी। बोलो।

और सीधा इधर ही चलाया है। सुल्ताना ने कागज खोला। साटन की काली सलवार थी, ऐसी ही जैसी वो अनवरी के पास देख कर आई थी। सुल्ताना बहुत खुश हुई। बूंदों और इस सौदे का जो अफसोस उसे हुआ था, इस सलवार ने और शंकर के वादे निभाने ने उसे दूर कर दिया था। दोपहर को वो नीचे लॉन्ड्री वाले से अपनी रंगी हुई कमीज और दुपट्टा लेकर आई। तीनों काले कपड़े जब उसने पहन लिए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो अनवरी दाखिल हुई। उसने सुल्ताना के तीनों कपड़ों की तरफ देखा और कहा, कमीज और दुपट्टा तो रंगा हुआ महसूस होता है, पर हाँ ये सलवार नहीं है। कब बनवाई? सुल्ताना ने जवाब दिया, आज ही दर्जी से लाई हूँ। ये कहते हुए उसकी नजरें अनवरी के कानों पर पड़ी। ये बुंदे तुमने कहाँ से लिए हैं? अनवरी ने जवाब दिया, आज ही मंगवाए हैं। इसके बाद उनमें कोई बात नहीं हुई।

0: खैनी गुटका जर्दा पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का। कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता। परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
1: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर

नशा तुम्हें खत्म कर देगा, रेडियो मानवरचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश।

0: सुन रुबिया प्यार हो गया,
1: सच
0: प्यार हो गया, क्या करें।
1: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से रेडियो सुनने।
2: रेडियो मानव रचना।
3: वेल हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आरजे सागर, आ चुका हूं लेकर के शो वॉइस ऑफ यूथ, एंड राइट नाउ यू आर लिसनिंग टू रेडियो मालवा 107.8 FM। हमारे शो हर एपिसोड बहुत खास लेकर के आता है, जहां पर हम आपको कुछ वैल्यूज देने की कोशिश करते हैं। सो वी ट्राई टू डिकोड मल्टीपल आर्ट फॉर्म्स, मल्टीपल स्किल सेट्स, जहां पर आपके लिए एक टेक अवे हो सकता है कि यू गेट टू नो अबाउट सो मेनी थिंग्स इन अ वन सिंगल शो। आज का शो हमारा अगेन बहुत स्पेशल होने वाला है। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल टीम यहां पर बैठी हुई है। जो टीम है ये है खरोंच, एक वेब सीरीज आई है जो यूट्यूब पर आ चुकी है ऑलरेडी, और बहुत सुंदर सुंदर कलाकार हैं, बहुत सुंदर काम किया है सभी लोगों ने। उसकी पूरी जो कास्ट है वो हमारे साथ यहां पर मौजूद है। खरोंच वेब सीरीज का नाम है, इसको डायरेक्ट किया है रजत शर्मा ने, लिखा भी रजत शर्मा ने है, और प्रोड्यूसर है इसके पंकज पलवलिया। पंकज भाई खुद एक कंटेंट क्रिएटर हैं और अभी यूट्यूब की तरफ उन्होंने रुख लिया है अपना। साथ साथ हमारे बीच मौजूद हैं मॉन्टी, मॉन्टी जो कई बार हमारे यहाँ पर आ चुके हैं, कई दफ़ा आप इनकी आवाज़ हमारे रेडियो के माध्यम से सुन चुके हैं। हरियाणा के बहुत अच्छे कलाकार हैं, पगड़ी के नाम से इन्हें बहुत जाना जाता है क्योंकि पगड़ी बांधने में बहुत मशहूर हैं। साथ साथ दो और कलाकार हैं हमारे साथ, हल्लू भाई जिनका ओरिजिनल नाम हरविंदर है, लेकिन मुझे मना किया गया है हरविंदर नाम ना लूँ क्योंकि हल्लू नाम से लोग जानते हैं, एंड साथ साथ हमारे बीच मौजूद हैं सोनू भाई। सबसे पहले मैं आप चारों का स्वागत करूँगा, शुक्रिया आने के लिए।
4: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: सबसे पहले शुरुआत में करना चाहूंगा पंकज भाई आपसे, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं, लोगों को आपके बारे में क्या पता होना चाहिए। इस टाइम पूरा फरीदाबाद और कुछ हिस्सा गुड़गांव का आपको सुन रहा है।
5: जी बेसिकली तो हम एक कंटेंट क्रिएटर ही हैं और फनी कंटेंट हम बनाते हैं। कॉमेडी की रील हमने स्टार्टिंग की थी बनाने की, तो उसको बनाते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, तो हमने सोचा कि उससे थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। उसके लिए हमने फिर से एक बार टीम जोड़ी, अपनी टीम बढ़ाई, और उसके बाद में हमने ये जो वेब सीरीज है इसमें हमें भाई मिले थे रजत शर्मा जी, जो पहले भी काम कर चुके हैं, बॉलीवुड तक भी वो काम कर चुके हैं, तो उनके साथ उनके सानिध्य में मिलकर और टीम का हमारा अच्छा प्यार बना करके हमें एक बहुत ही प्यारा सा एक प्रोजेक्ट लेकर के अभी आए हैं।
3: जी जी, हेलो भाई, आपसे मैं जानना चाहूँगा आप क्या करते हैं, अपने शब्दों में बताइए आपकी शुरुआत कैसे हुई।
4: मैं भी एक कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं भाई के साथ रहता हूँ, भाई मेरे बड़े भाई भी कह सकता हूँ, गुरुजी भी है मेरे, जिन्होंने हर चीज़ मुझे सिखाई है ऐसे ऐसे करना, एक्टिंग वगैरह जो भी। जो आज मैं खरोंच के लिए यहाँ पर आया हूँ, तो भाई ने मुझे एक ऐसा अहम किरदार दिया है जो मैं बता नहीं सकता, आप सभी को देखनी पड़ेगी उसके लिए वेब सीरीज खरोंच यूट्यूब पे जाकर। आज के टाइम में हर कोई रील तो बना ही रहा है, तो हमने सोचा कुछ हम अलग दिखाएं आपके लोगों को।
3: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मंडी जी आपसे बात करना चाहूंगा, आप बताइए अपने बारे में, आप क्या करते हैं।
6: सबसे पहले तो सारे मानव रचना के जितने भी लिसनर हैं सारे ने मेरी राम राम। इसमें हमने खरोंच वेब सीरीज जो कि यूट्यूब चैनल सत्या साचा फिल्म पर आई है, इसके 3 एपिसोड आ चुके हैं, एपिसोड 1, 2 और 3। अच्छा, बीच में से देखोगे तो स्वाद भी नहीं आवेगा, आपने शुरू तो देखोगे जब मेरा लगेगा कि भाई इसका मतलब सिस्टम है क्या, ये स्टोरी क्या है। और जैसे एक बॉलीवुड लेवल पे एक मूवी में वेब सीरीज में काम होता है, उससे भी अप लेवल का काम करने की पंकज भाई, रजत भाई ने, सुभाष भाई ने, देसी भाई ने टीम में काम करने की कोशिश करी है, और इसी में एक छोटी सी अहम भूमिका मेरे को भी निभाने का मौका मिला है।
3: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने कुछ कुछ ग्लिम्पसेस देखे थे उसके, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, सिनेमाटोग्राफी मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब वो दिखाई दिया वहाँ पर कि प्रोडक्शन कितना अच्छे लेवल का आप लोगों ने किया है, मतलब जनरली बहुत अच्छा था। पंकज भाई मेरे आपसे एक प्रश्न रहेगा, थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को कुछ नहीं पता है खरोंच के बारे में।
5: जी जी जी,
3: आप अगर इस कहानी को समअप करके इस तरीके से हमारे लोगों को बता सकें कि वो देखने पर मजबूर हो जाएं, तो प्लीज़ इस कहानी का थोड़ा बहुत एक ट्रेलर अपने मुंह से बताइए।
5: ये एक जो वेब सीरीज है, एक क्राइम के ऊपर आधारित है। इसमें क्या होता है कि ये एक गांव की स्टोरी है, और इसमें जो हमारे जो मेन किरदार है उसके साथ किसी टाइम में कुछ गलत होता है, तो वो चीज़ एक सस्पेंस के तौर पे अभी हम लेके चल रहे हैं उस चीज़ को। लेकिन इसमें क्या है कि इस गांव के अंदर कोई भी अपराध नहीं हो रहा है पिछले 5 साल से, किसी भी प्रकार का कोई अपराध, लेकिन ऐसा कोई स्थान होता नहीं है जहां कुछ ना कुछ अपराध नहीं हो। तो अपराध क्या है कि वहां पर जो एक बाबा हैं और सरपंच हैं, उनके अंडर में कोई भी चीज़ें थाने तक नहीं पहुंच पा रही है, प्रशासन के पास नहीं पहुंच पा रही है, वो दबा रहे हैं सारी चीज़ों को जो भी कुछ गांव में हो रहा है। तो उस चीज़ के जो आज के टाइम में रियलिटी भी होती है कहीं कहीं जगह पे, आप देखोगे आप थोड़ा सा बैकवर्ड में जाओगे तो वहाँ पे यही होता है कि पंचायत वगैरह में यहाँ पे दबा के या किसी भी प्रकार से प्यार से भी और उससे भी आदमी को रोक दिया जाता है। तो इसमें क्या है कि ये सारी चीज़ जो हमारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे उनको हम त्रुटि बोल सकते हैं, किसी भी प्रकार की कमी बोल सकते हैं, उनको दिखाने की मेन कोशिश इसमें की गई है। और क्राइम ऐसा है कि इसमें जो मर्डर हो रहे हैं, जितने मर्डर होंगे उसमें सस्पेंस इतना है कि ये ही नहीं समझ में आएगा आपको लास्ट तक कि ये मर्डर कर कौन रहा है। और अभी हम आपको ये बता भी नहीं सकते, उसके लिए आपको अभी स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा वो सारी चीज़ें।
7: फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारी बातें मुझे करनी है, खासतौर पर कंटेंट क्रिएटर्स जब यहाँ पर आते हैं तो मुझे बहुत मजा आता है पर्सनली। विल टॉक अबाउट ऑन सो मेनी थिंग्स, बट इन द मीन टाइम स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील लाइफ।

0: वंस अगेन वेलकम बैक, आई जस्ट होप आपको मजा आ रहा है। अगर ये गाने आपको पसंद आए तो हमें बता सकते हैं 8010781078 पर। फिलहाल हमारे पास यहाँ पर खरोंच जो सीरीज है उसकी टीम मौजूद है, और खासतौर पर कंटेंट क्रिएशन की यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा। अगला क्वेश्चन मेरा अगेन पंकज भाई आपसे रहने वाला है। प्लीज हमें बताइए कि कंटेंट क्रिएशन की जो आपकी जर्नी हुई, कब शुरुआत हुई, कब आपको ऐसा लगा कि ये मुझे करना है और ऐसे करना है?
1: ये स्टार्टिंग में इसका तो पता ही नहीं था कि ये चीज़ हमें मतलब इस लाइन में भी जाना है। जो एक्चुअल बात है तो उस टाइम क्या हुआ था, लॉकडाउन हुआ था तो छुट्टियां मिल गई थी और गांव में रहने का टाइम मिल गया था, फ्री टाइम था, और उस टाइम टिकटॉक चलता था, अभी जो बैन है। तो उस टाइम हमने छोटी छोटी रील जो हम बैठते हैं आज के टाइम में जो हमारे मनोरंजन की चीज़ होती हैं गाँव में बैठते हैं, तो वो हमने शूट करनी शुरू कर दी थी और वो शूट करके हमने अपलोड की थी। तो उस पर रिस्पॉन्स अच्छा आया था, लोग पसंद कर रहे थे उस चीज़ को। फिर उसके बाद में धीरे धीरे उस चीज़ पर हम आगे बढ़ते चले गए कि यही चीज़ करनी है। तो उसके बाद में हमने अच्छा एक टीम बनाई और टीम बनाने के बाद में हम यहाँ पर पहुँचे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं एक बार हल्लू भाई से भी बात करना चाहूँगा। आप बताइए आपकी कंटेंट क्रिएशन की जो यात्रा रही, कैसे शुरुआत हुई, कब लगा कि ये मुझे करना है?
2: जैसे कि पंकज भाई ने बताया, सेम ऐसे ही मेरा सिस्टम है। लॉकडाउन लगो, लॉकडाउन में बहुत सारे क्रिएटर निकाले हैं। उस टाइम हम पबजी खेलते थे और टिकटॉक थी, तो वैसे ही नॉर्मली रील बना लेते थे। फिर मुझे पंकज भाई के बारे में पता चला, उनकी भाई भी रील बनाते, क्यों ना मैं भाई गैल टीम में रहने लगूँ। तो मैंने भाई से संपर्क किया, भाई ने बताया कोई दिक्कत नहीं आ जाओ, तो फिर हम साथ में रह के रील बनाने लगे।
0: पंकज भाई, बहुत सारे डायनामिक्स चेंज हो गए हैं क्योंकि अब कंटेंट क्रिएशन एक फुल फ्लेज्ड इकोनॉमी निकल के सामने आई है, जहां पर आपको पैसा भी उसका मिलता है, जहां पर आपको काम भी उससे मिलता है। बहुत सारे लोग इस टाइम पर जो हमारी आवाज सुन रहे हैं वो कंटेंट क्रिएट करना भी चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे, कैसे शुरुआत की जाए, हाउ टू फिगर इट आउट?
1: ऐसा होता है स्टार्टिंग में तो हमें बहुत आसान सा लगता है कि चीज़ें हमारे पास बहुत सारे इतने कंटेंट है, हम कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन जब हम स्टार्टिंग करते हैं ना किसी भी लाइन की, या फनी हो या हमारा कोई व्लॉगिंग हो, कुछ भी हो, लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं तो फिर लगता है कि अब यार सारा कुछ खत्म हो चुका है इस पृथ्वी पर, से इस चीज़ की कुछ बची नहीं है चीज़ें। तो इसमें क्या है कि सबसे मेन है कि टीम आपकी अच्छी होनी चाहिए, और अगर आप इस चीज़ में कर रहे हो तो साइड में भी अपना कुछ कर रहे हो तो उसको करते रहो। अगर प्रॉपर इस पर डिपेंड हो जाओगे तो फिर उसमें दिक्कत आनी पॉसिबिलिटीज हैं कंटेंट क्रिएशन में। दूसरा ये है कि अगर जैसे हमने स्टार्ट किया था तो हमारा भी यही था कि स्टार्टिंग में हम भी अच्छा कर रहे थे, बाद में हमें लगने लग गया था कि अब कैसे करें आगे। फिर मुझे एक वेब सीरीज थी स्टेज ऐप की, मेवात, वहाँ काम करने का मुझे मौका मिला था। तो उससे बहुत कुछ चीज़ें हमने सीखी थी वहाँ पर कि किस प्रकार से होता है, कि समझ लो कि थिएटर तो हमने नहीं किया लेकिन उस जैसी चीज़ें बहुत सारी हमें सीखने के लिए मिली थी। तो जो भी भाई इस लाइन में अगर ट्राई कर रहे हैं तो उनसे यही कहूँगा कि अगर अपना जो काम आप कर रहे हो साइड में उसे जरूर करते रहें।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप कोई काम की शुरुआत करते हो, इनिशियली आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत आसान है, हो जाएगा। जब आप प्रोसेस में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप अब प्रोसेस में घुस चुके हैं। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है हर काम में दुनिया के, जब आपको ऐसा लगने लगता है कि यार ये नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत बहुत मुश्किल है, ये इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट, फिर वहाँ से एक नई जर्नी की शुरुआत होती है, वो एक्चुअल जर्नी होती है। जस्ट परस्यू दैट पर्टिकुलर ड्रीम एंड उस तरीके से आप वहाँ से निकल गए। अगर वहाँ तक आप पहुँच गए उस प्रोसेस तक जहाँ पर आपको ये जादू ही लगने लगता है सब, वहाँ से एक्चुअल एक यात्रा की शुरुआत होती है। चीज दैट पार्ट। फिलहाल एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद हम शो में आगे बात करेंगे। और कुछ बातें हैं जो यहाँ पर हम जानना चाहेंगे, मोंटी से जानना चाहेंगे, पंकज भाई से बात करना चाहेंगे। विल टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स, बट इन द मीन टाइम स्टे ट्यून्ड विद अस। फील गुड, फील लाइव।

0: एक और बार अपने शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं आरजे सागर, शो यहाँ पर चल रहा है वॉइस ऑफ यूथ एंड राइट नाउ वी लिसन टू रेडियो मानव प्रश्न 107.8 एफएम खरोंच। वेब सीरीज की टीम हमारे बीच में मौजूद है जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ। आइए आगे अपने इस कर्मा को लेकर के चलते हैं बातचीत के। और अगला प्रश्न मेरा मोंटी से रहने वाला है। मोंटी आप बताइए थोड़ा सा, आप क्या करते हैं एग्जैक्टली अपार्ट फ्रॉम खरोंच?
1: देखिए खरोंच तो अब हमने अब करी है, उससे पहले से ही आप को मैं पहले भी बता चुका हूँ अपनी टीम को, रेडियो मानुरचना की टीम को, कि हम शुरू से ही मतलब हरियाणवी चीज़ों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में रहे। तो मैं थिएटर भी करता था कॉलेज टाइम पे, मैंने धीरे धीरे देखा कि थिएटर में मेरे को इतना मज़ा नहीं आ रहा था जितना डांस में आता था, खासकर फोक डांस में, हरियाणवी फोक डांस। तो धीरे धीरे मैंने वहाँ पे इंटरेस्ट लेना शुरू किया, मज़ा आने लगा, करने लगा, तो धीरे धीरे चीज़ों को समझने भी लगा। फिर पता चला कि इसमें आगे मैं कुछ और अच्छा बड़ा कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे मैंने एक टीम बनाई, टीम बना के मैंने अपना एक खुद का एक ग्रुप तैयार करके उसको बाहर लेके जाना, दूसरे जगहों पर जाना, पूरा हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट में जाना, विदेश में जाना बच्चों के साथ। बड़ा अच्छा लगता है, हमारी टीम के आर्टिस्ट भी खुश होते हैं, घूमना भी मिल जाता है और काम भी हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं। हमें जब तक हम अपनी संस्कृति से जुड़े होंगे तब तक हमें ये पता होगा कि माता पिता की सेवा क्या है, बड़े छोटों का आदर सम्मान क्या है। और जो अपनी संस्कृति को छोड़ के उससे परे हो जाता है, तो आपने कई चीज़ें शहरों में सेक्टरों में ये देखी होंगी कि एक ही जगह पे सास ससुर मतलब बहुत बड़ी से बड़ी फैमिली के मेंबर और छोटे मेंबर, बहू बेटी सब ऐसे रह लेते हैं, कुछ भी पहन रहे हैं, कैसे भी रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप संस्कृति से जुड़ोगे तो हमारे जो बुजुर्ग कहते आए कि वही बहू मतलब वही ससुर की खाट वही बहू का पीसना ऐसे कुछ कहते हैं, तो वो इज्जत नहीं रह जाती। तो उन चीज़ों को हमने हरियाणवी अपनी संस्कृति में जब हम बढ़े इसमें घुसे तो समझ में आया कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा भाव क्या है, हमारा आदर सम्मान करने का तरीका क्या है। उसी के साथ मैं थोड़ी सी दो बातें पंकज भाई ने बताई थी अभी खरोंच के लिए कि मतलब एक ऐसा गांव है जहां पर पुलिस के पास कोई केस जाता ही नहीं है, लेकिन अगर आप आज से मैं कहूंगा आप सन 2000 से अब तक ऐसी बहुत सी चीज़ें रही हैं कि गांवों से लोग शहरों में गए हैं, गांवों में अभी भी रह रहे हैं, लेकिन अब चीज़ें बदली हैं, पंचायतों में फैसले नहीं होते। उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। पहले जो पंचायतों में पंच होते थे वो परमेश्वर होते थे, मतलब भगवान का रूप माना जाता था और वो सही फैसला करते थे। उनको परख करने की बड़ी अच्छी टेक्निक थी कि कौन गलत है और कौन सही। और ये सच है कि आज वो टेक्निक होते हुए भी बहुत सारी चीज़ें बढ़ी हैं। आज हमारे पास तो मतलब पहले तो बहुत सारी चीज़ें थी ही नहीं, तो फ़ोन एक ऐसी चीज़ बना दी, AI एक ऐसी चीज़ आई है जिससे बहुत सारी चीज़ों का काम भी ख़त्म हो रहा है। तो अब इतना कुछ होने के बाद भी लोग साफ साफ फैसला नहीं करना चाहते, तो इसलिए अब लोग पुलिस के पास जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि अब जब आपको कहीं भी न्याय नहीं मिलेगा तो आप कहां जाओगे? तो इसीलिए कानून बनाया है, कानून के पास जाओ। कई बार ऐसा हो जाता है, देखिए बहुत सारे लोग शायद सुन के मेरी बात को बुरा भी मान जाएं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि पुलिस के पास जाने के बाद भी इंसान को न्याय नहीं मिलता, क्योंकि अब सामने कौन बंदा सही है कौन गलत है ये फैसला इंसान नहीं करता, कागज करते हैं। जिसके पास सबूत है वो सही है, चाहे उसके वो गलत हो या सही हो वो सही है। और ऐसे बहुत सारे लोग आज भी अंदर बैठे हुए हैं, जेल के अंदर भी अपना समय काट रहे हैं बेचारे, जिनकी कोई गलती नहीं है और बिना गलती के भी वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं और कर रहे हैं। तो ये चीज़ें सामने आती हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो खरोंच के माध्यम से आपको वो सारी चीज़ें भी इसमें वही जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आपको देखने को मिलेंगी। मैंने वो चीज़ महसूस करी है 3 एपिसोड में ही, और अभी तो कारवा बाकी है।
0: बिल्कुल ज़रूर आपको खरोंच देखनी चाहिए। और यहाँ पर क्योंकि आपने संस्कृति का एक मुद्दा छेड़ा है, तो क्योंकि हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोग हरियाणा में बैठे हुए हैं और हम सब लोग हैं भी हरियाणवी, तो मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये ज़रूर जानना चाहूँगा पंकज भाई आपसे भी, मोंटी भाई आपसे भी, और आप दोनों के लिए भी फ्लोर ओपन है। ऐसा क्यों हुआ है कि बाकी तमाम जो कल्चर्स हैं, गुजराती कल्चर है, मराठी कल्चर है, बंगाली कल्चर है या पंजाबी कल्चर है, हर कल्चर को हमने कमर्शियल लेवल पर देखा है, बट अभी बीते कुछ टाइम से हरियाणवी थोड़ा सा उठ रहा है, हरियाणा कल्चर, मैं इस चीज को अग्री करूंगा। डांडा न्योलियाड़ा, सुमित पारता है, ये सारे अपने जो लोकल आर्टिस्ट हैं ये इसको लेकर के जा रहे हैं थोड़ा ऊपर लेवल पे। पहला क्वेश्चन ये है कि हरियाणवी कल्चर को इतना लेट क्यों नवाजा गया है, पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ पंकज भाई आपसे है, खास तौर पे क्योंकि आप पलवल से हैं, मैं खुद पलवल से हूँ, हमारे यहाँ की जो भाषा है पलवल फरीदाबाद की इसको अभी भी नहीं समझा गया है। आज भी अगर आप हरियाणा सुनेंगे तो आपके मुंह में वही आएगा कि केकरा है, कड़ेजा है, लेकिन एक्चुअली
2: हमारी ब्रिज में आ जाता
0: है, हमारा ब्रिज टच है, उसको हरियाणा में नहीं गिना जाता है। तो दो क्वेश्चन है मेरे।
2: पहला तो ये है कि जो अपने हरियाणा की है ये भाषा नहीं है, ये बोली है, और बोली में भी हमारे अंतर है क्योंकि एक साइड में तो बागड़ आ गया जो हमारा महेंद्रगढ़ साइड है, वहाँ की भाषा अलग है, फिर रोहतक की अलग है, फिर थोड़ा सा हम चलेंगे केथल और करनाल की, और फिर हमारा तो बिल्कुल ये गुड़गांव से आधा गुड़गांव लगा लो फरीदाबाद और पलवल का तो पूरा ही बिल्कुल ही भाषा ही अलग है, उनकी फिर भी कहीं ना कहीं टच हो जाता है। और कारण क्या रहा है कि हमारी जो लेट इस चीज़ पे हुई है कि हमारी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है वो थोड़ा सा जो ग्रो की है तो उससे हमें भी दिखना शुरू हो गया है, लेकिन हमारा जो सिनेमा है उसने बहुत लेट टाइम से स्टार्ट किया है, लेकिन अभी वो बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसका भी कहीं ना कहीं हाथ है कि अभी थोड़ा सा हम जो दिखने लग गए हैं सभी जगह। अब आप देखोगे तो हमारे जो एक्टर हैं, पहले क्या होता था कि कुछ भी जा करके बॉलीवुड में बोल दो भाई के कर रहा है, तो मतलब कि उसमें आपका हरियाणवी टच होना चाहिए, के बोल दो बस, ये होता था। अब जैसे हमारे जयदीप अहलावत भाई हैं वो क्लियर प्योर हरियाणवी बोलते हैं, पहले इनको अलाउड नहीं था। हमारे यहाँ से ही एक एक्टर थे, अभी गदर में भी उन्होंने काम किया था, हमारे गुरुजी भी हैं संदीप शर्मा जी, तो वो बता रहे थे कि ऑडिशन के लिए एक बार खुला था कि हरियाणवी बोली का एक बंदा चाहिए, तो वहाँ पर उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था कि जो लड़का दिल्ली से था जिसने बस ये बोला था अरे के कर रहा है, तो वो आदमी सिलेक्ट कर दिया इन्होंने, जब अपनी हरियाणवी बोली ना जी आपकी नहीं चल पाएगी। तो दौर ऐसा भी था कि वहाँ पर इन चीज़ों को जानते नहीं थे, अब क्या है कि थोड़ा सा सिनेमा भी रियलिस्टिक पे आ चुका कि उनको रियल चीज़ चाहिए, यहाँ की जो भाषा है वो ही चाहिए, तो उस चीज़ से भी थोड़ा सा फर्क पड़ा है। मैं मानता हूँ कि हमारे जो सिनेमा जो लेट से चला है, लेकिन अभी चौपाल और स्टेज ऐप ये वगैरह इन्होंने थोड़ा सा उठाया है इस चीज़ को जो देखना शुरू हुआ।
1: देखो बिल्कुल पंकज भाई ने बहुत सही बात कही है, कहते हैं कि घाट घाट पे पानी बदले कोस कोस पे वाणी। हर घाट पे आप जाओगे, किसी कुएं का पानी मीठा है तो उसी के बगल में दूसरे कुएं का पानी खारा भी हो सकता है, और ऐसा ही कुछ हमारे हरियाणा के साथ है। हम जब किसी भी क्षेत्र में, अब जो हमारे हरियाणा का ऐसा नहीं है कि हम अपनी बात करें, हमसे पहले बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में, हॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना नाम बना के बैठे हैं, लेकिन समय का दौर ऐसा आता है। देखिए, एक तो हमारी वाणी को, हमारी जो बोली है उसको अब लोग पसंद करने लगे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लॉकडाउन के बाद दबी हैं। भाई बॉलीवुड इंडस्ट्री डाउन चली गई थी, हॉलीवुड इंडस्ट्री तक डाउन गई, पंजाब इंडस्ट्री गानों के मामले में सबसे आगे चलती थी, धीरे धीरे वो भी डाउन गई, और एक ऐसा दौर आया कि हरियाणा का जो आदमी है ना वो आप कहीं भी देख लेना, मैं ये नहीं कहता सिर्फ भारत के अंदर, विश्व के अंदर कहीं भी रह रहा होगा ना, उस वो इतना बेहतर से अंदर से इतना स्ट्रांग होता है कि मतलब उसको जल्दी से बीमारी नहीं पकड़ती, वो जल्दी से थकता नहीं है, हार नहीं मानता। तो करते तो हम भी आ रहे हैं पीछे से, हमारे जो बहुत पुराने, जो हम जब पैदा भी नहीं हुए थे तब से जो कलाकार काम कर रहे हैं वो भी करते आ रहे हैं, अब हम हमारे बाद पहले कुछ आए हैं, फिर अब जैसा कि पंकज भाई ने बताया हम भी आए हैं। ये एक ऐसा दौर है कि हर किसी का एक दौर आता है, अब लोगों को जाके समझ में आ रहा है कि यस भारत के अंदर हरियाणा स्ट्रांग है, हरियाणवी स्ट्रांग है। अब हरियाणा की बोली को बॉलीवुड में भी तवज्जो मिल रहा है, वरना पहले हरियाणा के जितने भी आर्टिस्ट बॉलीवुड में काम करते हैं उन्होंने अपनी भाषा छोड़ी है। जैसा कि आपने बताया था अभी कि आप भी पलवल से हो और आज हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन आपका जो रोजगार है, आप बुरा मत मानिएगा, आपका जो रोजगार है वो हिंदी और इंग्लिश की जो भाषा है उसको बोलने से है, और पंकज भाई ने, रजत भाई ने, देसी भाई ने इस चीज़ की बहुत अच्छी पहल करी है कि वो जो चीज़ें हमारी होनी चाहिए। अब चाहते तो हम बेशक पलवल में शूट कर रहे हैं, खरौच कोई पर्टिकुलर पलवल का या फरीदाबाद का नाम नहीं है, एक वेब सीरीज का नाम है, जिसे आप यहाँ हरियाणा के अंदर भी बैठ के देख सकते हो, पंजाब के अंदर बैठ के भी देख सकते हो, और यूट्यूब तो विश्व में चलता है, विश्व के किसी भी कोने में जाके बैठ के देख सकते हो। लेकिन उन्होंने इस पे अपनी भाषा में काम करा है। आप जब इसको देखोगे तो इसमें जो है हरियाणवी, जो आप रोहतक की तरफ जो पश्चिम बेल्ट है उसकी तरफ चलोगे तो खड़ी बोली जो बोलते हैं अड़क अड़क, जो कई बार मैं भी बोलता हूँ, वो भाषा नहीं है। जो हमारी मातृ बोली है, हम जो बोलते हैं, जो हमारी माताएं बहनें बोलती हैं, जिनसे हमने जीवन पाया है, जो हमारे माता पिता बोलते हैं हमारे, वो भाषा हम इस खरोंच वेब सीरीज में बोल रहे हैं। और यही कारण है कि हमारे, आप देखोगे कि आसपास का जो हमारा लोकल एरिया है, लाइक पलवल मेवात तक, इधर नुहू मेवात तक, इधर आपका फरीदाबाद तक, गुड़गांवा तक, आपका नवेडा गाजियाबाद तक, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है अकॉर्डिंग टू अदर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर। तो ये कमी है। हरियाणा का आदमी अपने आप को सर्वप्रिय बताता है, तो उसी के बगल में दूसरा भी हरियाणवी बैठा, उसको तवज्जो नहीं देना चाहता। यही कारण है कि हमारी इंडस्ट्री नीचे थी। अगर हरियाणवी इंडस्ट्री ऊपर आ रही है तो अब इसका कारण ये है कि धीरे धीरे आप ये चीज़ नोट करोगे कि हरियाणा के कलाकारों में एकता बढ़ रही है, और इसीलिए लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अब माँ बाप भी आगे बढ़ के आ रहे हैं, अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब उसमें उनको चीज़ें दिखाई दे रही हैं, फ्यूचर दिखाई दे रहा है, पहले नहीं दिखता था। तो ये कारण है हरियाणा लेट ग्रो कर रहा है।
0: हाँ बिल्कुल, बहुत सही बात है, और मुझे लगता है कि इसका इतिहास भी बहुत रिच रहा है हरियाणा का। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो दादा लक्ष्मीचंद जैसे साहित्यकार हरियाणा में हुए हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस सुरेश वादकर साहब जो बॉलीवुड में इतने सारे गाने गाए हैं, उन्होंने भी हरियाणवी इंडस्ट्री में शुरुआत करी थी। उनका एक गाना था मेरे पाछा पाछा आवण का, कौन सा मतलब तेरा सा, वादकर साहब के आवाज में है। इसके अलावा भाल सिंह एक कलाकार हुए थे, दिलराज कौर एक कलाकार हुई हैं, कोशिश की गई है, चंद्रावल जैसी फिल्में बनी हैं, धाकड़ छोरा जैसी फिल्में बनी हैं, बट उसके बाद वो चीज़ें गिनी चुनी ही आपको चीज़ें उंगलियों पर याद होंगी कि ये हुई हैं। आप ऐसे बल्क में चीज़ें नहीं बता सकते हो कि इतना कुछ हुआ है। ठीक है, देर है दुरुस्त आए, बट अब लकीली वो टाइम आ रहा है यहाँ पर कि लोग इस बोली को, इस भाषा को अडेप्ट करने लगे हैं, आप लोगों को मजा आ रहा है। लेकिन अभी मैं ये बात बोलूंगा कि जो आप हरियाणवी सुनते हो वो हरियाणवी अभी भी आप वही सुन रहे हो जो खड़ी है। पलवल फरीदाबाद की भाषा ब्रिज टच है, जिसमें प्योरली बोला जाता है कहाँ जा रहो, कहाँ कू जा रहो, उसके वेरिएशन आपको हर जगह पर नजर आएंगे।
1: यस,
0: लाइक दिस। सो आई एम डन विद माय क्वेश्चन, मेरे सवाल यहाँ पर खत्म होते हैं। अगर कोई भी ऐसी चीज है जो मैं ना पूछ पाया हूँ, पंकज भाई, मोंटू भाई, हल्लू भाई, सोनू भाई, आप कहना चाहते हो तो प्लीज फील फ्री।
2: तो हम ये कहना चाहेंगे जितने भी हमारे श्रोतागण इसको सुन रहे हैं तो एक बार जा करके इस वेब सीरीज को जरूर देखें, और ये एक फैमिली वेब सीरीज है, इसमें किसी प्रकार के कोई भी अपशब्द यूज नहीं किए गए हैं, और इसमें एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। और सबसे बड़ी बात कि इसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन आपको नहीं लेना है। हमारा प्रयास यही रहा है कि हम जो ये OTT पे भी कर सकते थे, ये इसके लिए कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होती, लेकिन हमारे जो लोकल एरिया है तो वो सभी इसको देख पाएं, और बिना किसी सब्सक्रिप्शन के साथ में, और देखें, और अपना जो भी आपको लगता है कि हम क्या चीज़ इसमें अलग से कर सकते हैं, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी या क्या चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं।
1: आप मतलब अपनी लाइफ के लिए फ्री हैं, आप हमें बता सकते हो। मैं बार बार, हम जो वीडियो बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं इंस्टाग्राम पर, उसमें भी ये चीज़ें हम बोलते रहते हैं कि अगर आपको कुछ भी अच्छा या बुरा लगा हो, या जिसको हम सुधार सकते हों, या कोई भी चीज़ हम अच्छी कर सकते हों, तो सभी रेडियो मानव रचना 107.8 से मेरा निवेदन है कि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं वो ज़रूर एक बार जाएं, क्योंकि कोई भी चीज़ पैसे से खरीद के देखने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन हमने आप लोगों के लिए फ्री में करी है, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए भी कि हम जान सकते हैं कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारी वेब सीरीज़ के बारे में क्या सोच रहे हैं। आप अलग अलग आर्टिस्टों के लिए भी बोल सकते हैं किसकी आपको क्या चीज़ बेहतर लगी, किसकी क्या चीज़ बेहतर नहीं लगी, और क्या अच्छा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, इस इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े गुरुतुल्य आर्टिस्ट बैठे हुए हैं जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं।

संतों की वाणी सुनने या पढ़ने से मन या मस्तिष्क का तनाव दूर होता है। असंतों के कलाम की यह विशेषता नहीं होती। कृपया बताएं कि इसका कारण क्या है। पूछा है फारूक खान ने। पहली बात, संतों की वाणी सिर्फ वाणी नहीं, वाणी ही हो तो खोल ही है, भीतर कुछ सार नहीं। शब्द ही है, भीतर कुछ सार नहीं। संतों की वाणी वाणी से कुछ ज्यादा है। वाणी तो केवल सहारा है उसे देने का, जो और किसी ढंग से दिया नहीं जा सकता। वाणी तो वाहन है, शब्दों पर चढ़ाकर, शब्दों के घोड़ों पर चढ़ाकर जो भेजा जा रहा है वो शब्द से बहुत पार है। उसकी ही वर्षा जब हो जाती है हृदय पर तो शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, संतोष मिलेगा। असंतों की वाणी कोरी है, खाली है, जिसके मरा हुआ आदमी लाश पड़ी है, और यही आदमी जीवित था कल तक। शरीर अब भी वैसा ही है, लेकिन शरीर के भीतर से कोई चीज उड़ गई। अब तो पिंजड़ा पड़ा रह गया, पक्षी उड़ गया। असंतों की वाणी ऐसी है जैसे मरा हुआ आदमी। शब्द की देह तो है लेकिन अनुभव की आत्मा नहीं। तो असंतों की वाणी से सुगंध तो मिलनी कठिन है, दुर्गंध ही मिलेगी। संतों की वाणी से संतोष मिलेगा, क्योंकि संतोष सत्य की छाया है। यह तो बात ठीक, लेकिन एक बात याद रखना, जिनकी वाणी से संतोष मिल जाए जरूरी नहीं कि वे संत ही हों, और जिनकी वाणी से तुम्हें संतोष न मिले जरूरी नहीं कि वे असंत ही हों। जहां तक संतों की तरफ से संबंध है, संतों की वाणी से संतोष मिलना चाहिए। जहां तक असंतों का संबंध है, असंतों की वाणी से संतोष नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जो मिलता है उसमें अकेला संत थोड़ी भागीदार है, तुम भी भागीदार हो। वर्षा होती हो और घड़ा उल्टा रखा हो तो गैर भरा रह जाएगा। तो संत की भी वाणी से हो सकता है संतोष न मिले, अगर तुम उसे ग्रहण ही ना करो, अगर तुम उसे भीतर ही ना जाने दो, या तुम्हारे पूर्व पक्षपात, तुम्हारी पहले की बनाई धारणाएं रुकावट बन जाएं। तो ऐसा समझो कि जरूरी नहीं है कि संत की वाणी से संतोष मिले ही, तुम लोगे तो ही मिलेगा। और दूसरी बात भी संभव है, असंत की वाणी से भी संतोष मिल जाए अगर तुमने लेने की ही जिद कर रखी। तो जहां कुछ भी नहीं है वहां भी तुम कुछ देख लोगे, क्योंकि इस लेन देन में दो व्यक्ति सम्मिलित है, एक देने वाला और एक लेने वाला। इसलिए लेन देन की ये घटना दोनों पर निर्भर होगी।

इससे ये मत समझ लेना कि जहां से संतोष नहीं मिलता वहां संत नहीं। बौद्धों को जैनों की वाणी में संतोष नहीं है, हिंदुओं को मुसलमानों की वाणी में संतोष नहीं है, मुसलमानों को ईसाइयों की वाणी में संतोष नहीं। तो इसका क्या अर्थ हुआ है? इसका अर्थ हुआ कि संतत्व की भी तुम्हारी धारणा है, उस धारणा के अनुकूल संत पड़ता हो तो तुम संतोष लोगे, उसके अनुकूल न पड़ता हो तो तुम्हें जरा भी संतोष न मिलेगा। फिर कभी यह भी हो सकता है कि असंत तुम्हारी धारणा के अनुकूल पड़ता हो। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन भूखा प्यासा एक गांव में आया, गांव में एक भी मुसलमान नहीं था, गांव शाकाहारियों का था, और गांव का जो साधु पुरुष था उसने सारा जीवन शाकाहार की ही सेवा में लगाया था, बस मांसाहार के ही विपरीत उसका सारा जीवन समर्पित था। मुल्ला उसकी सभा में गया, वो समझा रहा था कि मांसाहार बुरा है, पशु पक्षियों में भी आत्मा है। मुल्ला बीच में खड़ा हो गया, उसने कहा बिल्कुल ठीक कहते, एक बार एक मछली ने ही मेरे प्राण बचाए थे। साधु तो बहुत प्रसन्न हुआ, उसने कहा आओ भाई आओ, ये तो बड़ा प्रमाण मिला कि एक मुसलमान भी तैयार है गवाही देने को। उन्होंने उसे पास बिठाया, उसके भोजन का भी इंतजाम करवाया और कहा कि तुम यहीं रहो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, ये प्रमाण हो गया। और रोज साधु जब समझाता लोगों को, वो कहता कि पूछो इस मुसलमान भाई से पूछो, एक मछली नहीं इसके प्राण बचाए, मछलियों में भी आत्मा है, उनको खाओ मत। दो चार दिन के बाद एक दिन सांझ को दोनों साथ बैठे थे, वो फकीर साधु कहने लगा मुल्ला नसरुद्दीन को कि तुम तो करीब करीब मेरे गुरु, यद्यपि मैंने जीवन भर शाकाहार की सेवा की, मांसाहार का विरोध किया, लेकिन अभी तक किसी पशु पक्षी ने ऐसा प्रमाण मुझे नहीं दिया जैसा तुम्हें दिया, तुम तो करीब करीब मेरे गुरु हो, अब विस्तार में मुझे कहो कि बात क्या थी, कैसे बचाए तुम्हारे प्राण। मुल्ला ने कहा विस्तार न पूछे तो अच्छा, सब ठीक चल रहा है, विस्तार की क्या जरूरत। पर साधु जिद करने लगा कि नहीं बतानी पड़ेगा, साधु ने तो पैर पकड़ ली कि गुरुदेव बताना ही पड़ेगा। तो मुल्ला ने कहा नहीं मानते तो ठीक है लेकिन हमें जाना पड़ेगा। साधु ने कहा बात क्या है, इतना रहस्य क्यों बना रहे हो? मुल्ला ने कहा बात यह है कि मैं बहुत भूखा था और मछली को खाने से मेरे प्राण बचे। उसी रात, सुबह भी नहीं, उसी रात मुल्ला निकाला गया। अभी तक इसकी वाणी में बड़ा संतोष मिल रहा था, अब इसकी वाणी में कोई संतोष न रहा। तो तुम पूछते हो कि संतों की वाणी सुनने या पढ़ने से मन या मस्तिष्क का तनाव दूर होता है, सभी संतों की, तो तुम संत हो जाओगे, तब तो तुम्हारे संत होने में फिर कोई बाधा न रही, या किन्हीं किन्हीं संतों की। पूछने वाले मित्र मुसलमान है तो तुमने और किन्हीं संतों की वाणी भी पढ़ी है जिनके विचार इस्लाम से अन्य हो, उनसे संतोष न मिलेगा। और इन्हीं मित्र ने दूसरा प्रश्न पूछा है, उससे जो मैं कह रहा हूं वो साफ हो जाएगा। इनने पूछा है किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना या किसी को इस उपाधि का स्वीकार करना क्या उचित है? फिरौन का सबसे बड़ा अपराध यही तो था कि उसने अपने को खुदा होने का दावा कर रखा था। अब इन मित्र ने इजिप्ट के फिरौन का उल्लेख किया लेकिन अल हिल्लाज मंसूर को छोड़ दिया। सच है ये बात कि इजिप्ट के सम्राट फिरौन ने घोषणा कर रखी थी कि मैं खुदा हूं, ये उसका अपराध, लेकिन अपराध इसलिए नहीं था कि उसने घोषणा की थी कि मैं खुदा हूं, अपराध का कारण दूसरा था। अपराध का कारण यह था कि वो कहता था मेरे सिवाय खुदा और कोई नहीं, मैं खुदा हूं, मेरे सिवाय और कोई खुदा नहीं। यही बात तो मंसूर ने भी कही थी जिनको मुसलमानों ने सूली दी, और मैं समझता हूं कि फारूक खां भी राजी होंगे कि सूली ठीक दी। मंसूर ने भी यही कहा था कि मैं खुदा हूं, लेकिन बड़ा फर्क था उसके कहने में। उसके कहने का मतलब था मैं खुदा हूं क्योंकि सभी खुदा हैं, खुदा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। मंसूर ने जो कहा वो संत की वाणी थी, और फिरौन ने जो कहा वो संत की वाणी नहीं थी, यद्यपि वक्तव्य दोनों के एक जैसे, दोनों ने यही कहा था मैं खुदा हूं।

लेकिन फिरौन कहता था मेरे अलावा कोई और खुदा नहीं, और मंसूर ने कहा कि मैं करूं ली क्या, खुदा होना ही पड़ेगा, उसके सिवा होने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि खुदा ही है। लेकिन मुसलमानों ने फिरौन को भी अपराधी साबित किया और मंसूर को भी सूली लगा दी। अगर मुसलमानों को उपनिषद के ऋषि मिल जाते जिन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, क्या करते तुम उनके साथ? फांसी लगाते ना, सूली लगाते। संत तो तुम्हें वो मालूम नहीं पड़ सकते थे, जो कहता है मैं ब्रह्म हूं वो कैसे संत हो सकता है? मुसलमान नाराज हैं जीसस पर, क्योंकि जीसस ने दावा किया कि मैं ईश्वर का बेटा हूं। ये भी कोई दावा है? हमारे मुल्क में लोग हैं जो कहते हैं हम ईश्वर हैं, बेटे का भी क्या दावा करना? मगर मुसलमान इससे नाराज हैं कि ईसा ने दावा किया कि मैं ईश्वर का बेटा हूं। नहीं, ये बात ठीक नहीं। तो तुम बुद्ध को क्या कहोगे, महावीर को क्या कहोगे, कृष्ण को, राम को क्या कहोगे? ये सब तो अपराधी हो गए, ये तो संत ना रहे। तो मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हारा ही दूसरा प्रश्न सबूत देता है कि संत का तुम्हारे मन में क्या अर्थ, एक धारणा होगी, संत ऐसा होना चाहिए। धारणा तुम्हारी है, उस धारणा में बैठ जाएगा तो संत, नहीं बैठा तो असंत हो जाएगा। और कौन संत तुम्हारी छोटी मोटी धारणाओं में बैठ सकता है? जो बैठ जाए वो संत ही क्या खाक, जो तुम्हारी खिड़की में बैठ जाए, तुम्हारे ढांचे के अनुकूल पड़ जाए, वो कोई संत? नकल होगा। संत की नकल ढांचों में बैठ जाती, तुम बड़ा संतोष भी ले लोगे। तुम्हें संतोष इसलिए नहीं मिल रहा है कि संत की वाणी में कुछ सार, तुम्हें संतोष इसलिए मिल रहा है कि तुम्हारा अहंकार तृप्त हो रहा है कि देखो मेरी धारणा संत की कितनी सही है। ये प्रमाण मिल गया, ये आदमी प्रमाण है मेरे संतत्व की धारणा का। तुम अपनी ही धारणा के चरणों में सिर झुका रहे। मैं एक घर में मेहमान था, एक जैन घर में, एक बूढ़े सज्जन मुझे मिलने आए, उम्र होगी कोई 80 साल की, कोई 40 साल से त्यागी का जीवन ही बिताते थे। यद्यपि घर में ही थे लेकिन न दुकान जाते न घर द्वार की बात करते, ज्यादातर सामायिक ध्यान उपवास इसमें ही समय लगाते थे। मैं गांव में आया हूं तो मुझे मिलने आए, अपने घर के बाहर भी नहीं जाते थे। तो उनके साथ 10-5 लोगों का गिरोह भी आया ये देखने कि वो कभी अपने घर के बाहर जाते नहीं, किसके दर्शन को जा रहे हैं। उन्होंने मेरी एक किताब पढ़ी थी साधना पथ, और उससे वो बहुत प्रभावित थे। वो आके मेरे चरणों में झुके और उन्होंने कहा कि आप तो मेरे लिए तीर्थंकर हैं, आपने जो किताब लिख दी उससे मुझे जो मिला है वो किसी चीज से नहीं मिला, मेरा सारा जीवन उसने बदल डाला है। ऐसे उनसे बातें हो रही थी, तभी घर की गृहिणी ने आके मुझे कहा कि अब आप भोजन कर लें, सांझ हो गई। तो मैंने उनसे कहा कि ये वृद्ध सज्जन आए हैं, अभी बीच में बाधा ना डालो, थोड़ी देर बाद भोजन कर लूंगा। वो वृद्ध सज्जन तो बहुत चौंके, उन्होंने कहा क्या सूरज ढला जा रहा है, सूरज ढलने के बाद भोजन करेंगे? मैंने कहा आप इतनी दूर से चल के आए, बूढ़े हैं, आपके पास बैठना ज्यादा आनंदपूर्ण, भोजन तो घड़ी पर बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा आप समझे नहीं, उठ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा जिस आदमी को भी यही पता नहीं कि रात्रि भोजन पाप है उसको और क्या पता हो सकता है। आए थे तो मेरे चरण छुए थे, जाते वक्त मुझे उपदेश देके गए कि कम से कम इतना तो करो कि रात्रि भोजन छोड़ दो। अब मैं निश्चित जानता हूं घर जाके किताब उन्होंने जला दी होगी या फेंक दी होगी, किसी को दी होगी, ये भी मैं नहीं मान सकता, क्योंकि ऐसे भ्रष्ट आदमी की किताब किसी को देके क्या भ्रष्ट करना है। आए थे तो मैं तीर्थंकर था, तीर्थंकर के गिरने में देर कितनी लगती, तुम तीर्थंकर को इतनी स्वतंत्रता भी तो नहीं दे सकते कि वो सूरज ढलने के बाद भोजन कर ले। तुम्हारा तीर्थंकर तुम्हारा गुलाम, तुम्हारा संत तुम्हारा गुलाम। तो गुलाम ही तुम्हारे संत हो सकते जो अपने मालिक है, शायद उनसे तो तुम्हें संतोष नहीं मिलेगा। जो अपने मालिक है वो तो तुम्हें झकझोर देंगे, वो तो आएंगे एक तूफान की तरह, आंधी की तरह तुम्हें उखाड़ देंगे, तुम्हारी सारी धारणाओं को उखाड़ देंगे। वो तो आएंगे एक झंझावात की तरह और तुम्हारे बनाए हुए सारे भवनों को गिरा देंगे, तुम्हारा सारा तत्व ज्ञान धूल धूसरित हो जाएगा। असली संत के करीब तो पहले तुम्हारी धारणाएं टूटेंगी, और अगर धारणाएं टूटने में तुम घबराए ना, परेशान न हुए,
असली संत पहले तो तुम्हें मारेगा, अगर तुम मरने से न डरे तो जरूर संतोष आएगा, और संतोष ऐसा कि फिर जाने वाला नहीं। लेकिन एक ऐसा भी संतोष है जो तुम मान लेते हो, तुम जहां भी अपनी धारणा के अनुकूल किसी को देखते हो तुम्हें संतोष मिलता है। क्या संतोष मिलता है? कि तुम मेरी धारणा ठीक है, देखो ये आदमी सबूत है। अगर अपनी धारणा का मैं सबूत नहीं हूं तो कम से कम ये आदमी सबूत है। इसलिए तुम पूछते हो कि किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना, तुम्हारे प्रश्न में भी तुम्हारी धारणा छिपी। भगवान कोई उपाधि नहीं है, भगवान कोई ऐसा नहीं कि किसी को पद्मभूषण बना दिया कि भारत रत्न बना दिया। भगवान कोई उपाधि नहीं है कि किसी विश्वविद्यालय की डिग्री है, और भगवान बनाना किसी के हाथ में नहीं है। भगवान होना हमारा स्वभाव है, ये उपाधि नहीं है। उपाधि तो बीमारी का नाम है। उपाधि के तो दो अर्थ होते हैं, डिग्री और बीमारी भी। भगवान कोई उपाधि नहीं है, भगवान तो अपने स्वभाव को पहचान लेना है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो और पहचान लेते हो कौन वहां विराजमान है, तब तुम पाओगे कि भगवान हो। भगवत्ता हमारा सामान्य धर्म है, जैसे आग का धर्म जलाना है, ऐसा आदमी का धर्म भगवान। और जब आदमी में तुम्हें भगवान दिखेगा तो धीरे धीरे तुम्हारी आंख और गहरी जाएगी, पशु पक्षियों में भी दिखेगा, फिर और आंख गहरी जाएगी और पौधों में भी दिखेगा, फिर और आंख गहरी जाएगी और चट्टानों में भी दिखेगा। और जिस दिन तुम्हें सब जगह दिखाई पड़ना शुरू हो जाए, कोई ऐसी जगह ना रहे जहां भगवान ना हो, तभी जानना कि तुम घर वापस लौटे। नानक मक्का गए तो सो गए रात, पैर करके पवित्र मंदिर की तरफ। पुरोहित नाराज हुए, उन्होंने आके कहा कि तुम्हें पैर पवित्र मंदिर की तरफ करके सोते लाज नहीं आती, और लोग कहते तुम संत। ये क्या संत हुए तुम, तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि कहां पैर करने। तो कथा बड़ी प्यारी है, कथा कहती कि नानक ने कहा मेरे पैर उस जगह कर दो जहां भगवान ना हो। तब जरा मुश्किल हो गई होगी। पुजारियों ने कहते हैं जहां भी नानक के पैर किए पाया कि काबा उसी तरफ घूम गए। ऐसा काबा घूमा हो ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन कहानी बड़ी अर्थपूर्ण है। काबा घूमा हो इसकी कोई जरूरत भी नहीं, काबा के घूमने की जरूरत नहीं, क्योंकि काबा सब तरफ है ही। इतना ही अर्थ है कहानी में। कहां करोगे पैर? जहां पैर करोगे वहीं भगवान है, सब ओर भगवान है। तो पहली तो बात तुम पूछते हो किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना, उपाधि दी तो बात गलत हो गई, ये उपाधि नहीं, और कोई किसी को दे नहीं सकता। तुम जब अपने स्रोत में उतरते हो तो ये तुम्हारा अनुभव है, या किसी का इस उपाधि को स्वीकार करना। ये उपाधि ही नहीं है, स्वीकार अस्वीकार का सवाल नहीं है। जब तुम जानोगे और पाओगे कि ऐसा है तो फिर करोगे क्या? यही तो अलहिल्लाज मंसूर के साथ हुआ। जिस दिन मंसूर को बोध हुआ उसने घोषणा कर दी, अनल हक, मैं परमात्मा, मैं सत्य हूं, मैं ब्रह्म हूं। जिन गुरु के पास मंसूर रहता था, गुरु ने कहा भीतर रख, ये बात बाहर मत निकाल। सूफी ये सदा से जानते रहे मगर मुसलमानों के डर से कहते नहीं। गुरु ने कहा कि रख, भीतर रख, मुझे भी पता है, अब तुझे भी पता हो गया, मगर बाहर मत कह, नहीं तो झंझट खड़ी होगी। झंझट खड़ी हुई। मंसूर ने कहा जो भीतर है उसको बाहर क्यों ना बहने दे, रुकावट कैसे डालूं? और फिर मैं थोड़ी कहता हूं, एक भाव दशा आती जब मेरे भीतर ये गुंजार उठता है अनल हक, मेरे भीतर ये घोषणा उठती कि मैं भगवान हूं। गुरु ने तो उनको विदा कर दिया। उन्होंने कहा अगर ये घोषणा करनी है तो तू कहीं और जा, कोई और गुरु चुन ले, किसी और गुरुकुल में रुक जा, यहां हम झंझट नहीं लेना चाहते। दूसरे गुरु के पास भी यही हुआ, तीसरे गुरु के पास भी यही हुआ, चौथे गुरु के पास। गुरु ने कहा कि हम तेरी तकलीफ समझते, जब होती है ये घटना तो कभी कभी ऐसा होता आदमी अपने वश में नहीं रह जाता, उद्घोषणा होने लगती, मगर इसे रोकना पड़ेगा अन्यथा झंझट आएगी, तू इसे रोक, नहीं तो मैं तुझसे कहता हूं तू फांसी पे चढ़ेगा। कहते हैं मंसूर ने कहा मैं उसी दिन फांसी पे चढ़ूंगा जिस दिन तुम अपना ये सूफी अंगरखा उतार दोगे, उसके पहले नहीं चढ़ूंगा।
और कहानी कहती है कि दोनों की भविष्यवाणियां सच सिद्ध हुई। खलीफा ने खबर भेजी गुरु के पास कि तुम्हारे आश्रम में एक आदमी है जो कहता है मैं ईश्वर हूं, उसे निकाल बाहर कर दो, वो अपराध कर रहा है। लेकिन गुरु ने कोई ख्याल न दिया, बात चुपचाप रखेगा। दोबारा खबर भेजी गई, तीसरी बार खबर भेजी गई। जब सातवीं बार खबर आई तो साथ में पुलिस के आदमी भी आए, नंगी तलवारें भी आईं, और उन्होंने कहा अब तुम्हें दस्तखत करके देना होगा कि यह आदमी अपराधी और इसको फांसी लगेगी। गुरु ने सोचा कि सूफी के कपड़े पहने हुए कैसे दस्तखत करूं, क्योंकि सूफी सभी जानते हैं इस बात को भीतर की ये बात सच। इसलिए अपना अंगरखा उतार के फेंक दिया। उन सिपाहियों ने कहा यह अंगरखा क्यों फेंक रहा है? उन्होंने कहा सूफी रहते हुए इस तरह की बात पर मैं दस्तखत नहीं कर सकता, यह अंगरखा मुझे उतार देने दो। और ठीक ही कहा था मंसूर ने कि अंगरखा तुम छोड़ोगे उसी दिन मुझे फांसी लगेगी। अंगरखा उतार के रख दिया और मौलवी के कपड़े पहन लिए, फिर दस्तखत कर दिए कि ठीक है ये आदमी अपराधी है और इसको जो भी सजा उचित हो दी जाए। तब मंसूर को सूली लगी। सूफी छिपाए रखे, क्योंकि मुसलमान देशों में सूफियों को प्रकट होने का उपाय नहीं था। इस देश में कोई आचरण नहीं रही, इस देश में सूफी प्रकट होके बोले। जहां सूफी भी प्रकट होकर न बोल सके वहां धर्म का क्या उद्भाव होगा, जहां उनको भी छिपा के रखना पड़े। जहां सत्य की आखिरी ऊंचाई चोरों की भांति छिपा के रखनी पड़े, वैसा देश धार्मिक नहीं हो सकता। इस देश की दूसरी परंपरा है। इस देश में बड़ा मुक्त वातावरण रहा है। इस देश में जो तुम्हारे भीतर हो उसकी उद्घोषणा की आज्ञा है। जो तुम्हारे भीतर हो, कौन है दूसरा जो तुम्हें रोके? जो तुम्हारे भीतर हो उसकी उद्घोषणा होने दो। अगर परमात्मा ने यही चुना है तुम्हारे भीतर की घोषणा करे अनल हक अहम ब्रह्मास्मि, तो करने दो घोषणा। ये कोई उपाधि नहीं है, कोई किसी दूसरे को देता लेता नहीं, न कोई स्वीकार करता है अस्वीकार करता है। ये तो तुम्हारे अंतरतम का दिया जब जलता है तब तुम जानते हो कि ऐसा है। ये तो तथ्य का अनुभव है, ये तो सत्य की प्रतीति है, ये तो साक्षात्कार है। लेकिन तुम्हारी अड़चन मैं जानता हूं, मुसलमान परंपरा में पले हो, उसी ढंग से सोचा है। इसलिए तुमने ये तो कहा कि फिरौन का सबसे बड़ा अपराध यही था कि उसने अपने को खुदा होने का दावा किया। लेकिन तुम भी चालाकी कर गए प्रश्न पूछने में भी, फिरौन को घसीट के लाए। पुराना नाम भी लोग भूल गए फिरौन का, 5000 साल पुराना इजिप्ट का बादशाह, उसको घसीट के लाए। ज्यादा जिंदा नाम, ज्यादा जिंदा आदमी अलहिलाज मंसूर के संबंध में क्या ख्याल है? फारूक खान, मंसूर को क्यों छोड़ दिया? तुम भी डरे हो गए कि इस सूफी को बीच में लाना ठीक नहीं। लेकिन तुम्हें बड़ी अड़चन होगी, अगर तुम बुद्ध को मिल जाओगे तो तुम बुद्ध को संत न मान सकोगे, अगर महावीर को मिल जाओगे तो तुम संत न मान सकोगे, राम को मिल जाओगे कृष्ण को मिल जाओगे तो तुम संत न मान सकोगे, क्योंकि ये तो अपराधी है, इनकी वाणी से तुम्हें संतोष कैसे मिलेगा? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं संतों की वाणी में जरूर अमृत है, सुधा है, लेकिन तुम जाने दोगे अपने प्राणों तक तभी ना? और तुम तभी जाने दे सकते हो जब तुम्हारे द्वार दरवाजे खुले, तुम्हारे मन पर कोई धारणाओं का जाल ना हो, तुम्हारे मन पर कोई पूर्व पक्षपात ना हो, पूर्वाग्रह ना हो, तब जरूर संतों की वाणी में बड़ा सहार है। उनका एक शब्द भी चेता सकता है, उनका एक इशारा जगा सकता है। मगर अगर तुम असहयोग करो तो संत भी सिर ठोंक ठोंक के मर जाएं, तो भी तुम्हारी नींद को नहीं तोड़ सकते। कितने तो संत हुए, तुम सोए हो तो सोए ही हो, कितने तो संत हुए सदियों सदियों में, तुम जहां हो वहीं के वहीं हो, तुम वहां से हटते नहीं। फूल खिलते हैं विदा हो जाते हैं, पत्थर अपनी जगह पड़े पड़े ही रहते, वो फूलों की सुनते नहीं। सुनने का ना कारण, सुनने के पीछे कारण है, कारण यही है कि तुम्हारे कान पहले से भरे हुए हैं। अगर तुमने मुसलमान की तरह सोचा तो तुमने सोचा ही नहीं, अगर हिंदू की तरह सोचा तो सोचा ही नहीं,
अगर जैन की तरह सोचा तो सोचा ही नहीं। सोचने वाला आदमी पहले तो ये सब लिबास उतार कर रख देता है, भूल ही जाता है कि मैं कौन हूं। अभी पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं, तो ये ऊपर ऊपर की बातें, किसी घर में पैदा हो गए, वो मुसलमान था, हिंदू था, ईसाई था, ये तो सब संयोग की बात है। उस घर में पैदा हो गए, उस घर के लोगों को जो मालूम था उन्होंने तुम्हें सिखा दिया, न उन्हें मालूम था न तुम्हें मालूम हो, उनके माँ बाप उन्हें सिखा गए थे, न उन्हें मालूम था। ऐसी सिखावन चलती जाती, संस्कार चलते जाते। बुद्ध का वचन है कि संस्कार में दुख है, ये संस्कार है। हिंदू होना, मुसलमान होना, जैन होना, ईसाई होना संस्कार, कंडीशनिंग। माँ बाप तुम्हारे सिर में भरना शुरू कर देते हैं कि तुम मुसलमान हो, कुरान तुम्हारी किताब है, मोहम्मद तुम्हारा पैगंबर है, कि तुम हिंदू हो कि वेद तुम्हारी किताब है, कि तुम ईसाई हो कि बाइबल तुम्हारी किताब है। ऐसा माँ बाप भरना शुरू कर देते, छोटा बच्चा, कोमल चित्त, ये सारी बातें इकट्ठी होती चली जाती। सोच विचार पैदा होने के पहले ही मन पर खूब संस्कार और जमघट जम जाता, भीड़ पैदा हो जाती। फिर जीवन भर आदमी उन्हीं संस्कारों से देखता है। तो तुमसे मैं कहूंगा, रंग ऐसा भरो ना रंग नफरत का हो, ना रंग मजहब का हो। रंग ऐसा भरो जिसके छींटों में बस प्यार ही प्यार हो। दूरियां सब मिटे, पास इतने मिले, एक छाया बने, तन से तन भी मिले, मन से मन भी मिले। पांव ऐसे धरो, रंग ऐसा भरो जिसकी आहट में भी प्यार ही प्यार हो। सबकी आंखों में हो, सबकी सांसों में हो, सबकी साधों में हो। एक ही बस गगन, एक ही बस लगन, डोर ऐसी गहो जिसकी गांठों में बस प्यार ही प्यार हो। रंग ऐसा भरो न रंग नफरत का हो, न रंग मजहब का हो। रंग ऐसा भरो जिसके छींटों में बस प्यार ही प्यार हो। तो तुम देख पाओगे सत्य क्या है। संत का अर्थ होता है जहां सत्य अवतरित हुआ है। संत का अर्थ होता है जहां सत्य ने देह धरी। संत का अर्थ होता है जिस देह में सत्य सिंहासन पर विराजमान हुआ है। अगर तुम निष्पक्ष मन, कोरे मन, शून्य मन संत के पास जाओगे, परम संतोष होगा। और संतोष ऐसा कि फिर मिटेगा नहीं, संतोष धारणा का नहीं, मान लिया ऐसा नहीं, सांत्वना जैसा नहीं, संतोष अनुभव का, सुख के अनुभव का। और वैसा संतोष तुम्हें भी संत बनाने लगेगा। रंगे जाने लगोगे, उस रंग में डूबने लगोगे। यहां ऐसे ही रंग को भरने की कोशिश चल रही है, ऐसे ही रंग को रंगने की कोशिश चल रही है। पानी से धुल जाए ऐसे भी रंग क्या, एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो। जैसा था बचपन में, जैसा था यौवन में, माटी का रंग अभी वैसा ही है। पलकों के आसपास मंडराते दर्द कई, सपनों का रंग अभी वैसा ही है। थोड़े से हिस्से को रंगने से क्या होगा, एक शहर रंग जाए ऐसा रंग डालो। पानी से धुल जाए ऐसे भी रंग से क्या, एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो। रंगों के अंदर भी रंग हुआ करते, रंगों के भीतर जाकर के देखो, बिंबों के अंदर भी सांस हुआ करते। दर्पण के भीतर जाकर देखो, बासंती देहों को रंगना है कायरता। पतझर भी रंग जाए रंग ऐसा डालो, पानी से धुल जाए ऐसे भी रंग क्या, एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो। संत का अर्थ है सत्य को उंडेल दे तुम्हें, संत का अर्थ है जो उसे हुआ है उसमें रंग दे तुम्हें, संत का अर्थ है रंगरेज, संत का अर्थ है तुम्हें एक डुबकी लगवा दे उसमें जो अभी तुम्हारे सामर्थ्य के बाहर है। संत का अर्थ है जो उसने देखा है अपनी आंखों के पीछे तुम्हें खड़ा करके थोड़ा अपनी आंखें उधार दे दे, कहे कि जरा मेरी आंखों से देख लो, जो मुझे दिखता है वो देख लो। संत का अर्थ है कि थोड़ी देर को अपना हृदय तुम्हें दे दे, और अगर तुम राजी हो तो ये घट जाता है, इसमें देर नहीं लगती। यहां घट रहा है, तुम अगर राजी हो
तो कभी भी किसी भी क्षण जहां राजीपन पूरा होता है, अचानक तुम्हारे हृदय की जगह मेरा हृदय धड़केगा, तुम मेरी आंख से देखने लगोगे और तब सब चीजें और ही हो जाती, तब सब कुछ और ही ढंग से दिखाई पड़ने लगता है। संत को तुमने जानना सीखा, देखना सीखा, जब तुम्हें हिंदू का संत हो कि मुसलमान का कि ईसाई का कि बौद्ध का, सभी का संत पहचान में आने लगे, तब तुम समझे कि संत क्या है। और तब जो संतोष मिलेगा वो संक्रांति है, वो तुम्हें रूपांतरित कर जाएगी, वो तुम्हें नया कर जाएगी, वो तुम्हें द्विज बना देगी, एक नया जन्म देगी। निश्चित ही ये बात असंतों की वाणी में कैसे हो सकती है, वाणी खाली कोरी, वहां कुछ प्राण कहां है, पिंजड़ा है पक्षी तो नहीं, तो पिंजड़ों के लिए तुम चलते रहो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लोग पिंजड़ों को लिए ही चलते रहते और मान के चलते कि पक्षी है, होना चाहिए क्योंकि बाप ने कहा, क्योंकि बाप के बाप ने कहा, होना चाहिए क्योंकि भीड़ कहती, समाज कहता, मौलवी कहता, पंडित कहता, होना चाहिए। अपनी तरफ से नहीं देखते कि है या नहीं, डरते भी हो कि कहीं ऐसा ना हो कि ना हो, इसलिए देखते ही नहीं, अपने पिंजड़े को खूब ढांक के रखते हो कि कहीं दिखाई ना पड़ जाए। तुम्हें भी कभी कभी शक तो आता होगा कि है या नहीं, लेकिन ये शक तुम टिकने नहीं देते, तुम कहते हो शक तो अच्छी बात नहीं, होना चाहिए ही। कोई माता पिता झूठ तो ना बोलेंगे, पंडित पुरोहित झूठ तो ना बोलेंगे, समाज परिवार झूठ तो ना बोलेगा, ये सब लोगों को झूठ बोलने में क्या रखा है, ये क्यों झूठ बोलेंगे सब, होना ही चाहिए। तो तुम कभी उठा के देखते भी नहीं पर्दा के पीछे कोई है, कि तुम खाली मंदिर की पूजा कर रहे, तुम्हारे 100 संतों में से 99 खाली मंदिर है जिनके भीतर कुछ भी नहीं, लेकिन उनकी पूजा चल रही। अक्सर तो ऐसा होता है कि जिनके भीतर कुछ है उनकी पूजा बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि जिनके भीतर कुछ है वो तुम्हारी धारणाएं तोड़ देते, जिनके भीतर कुछ है वो तुम्हारे गुलाम थोड़ी, वो तुम्हारी लीक पर थोड़ी चलते हैं, जिनमें कुछ नहीं है वही लीक पर चलते। उधार वही होता है जिसके पास अपनी नगद संपदा नहीं है। उधारी ऊपर ऊपर से ठीक लगती हो, भीतर भीतर अर्थहीन होती। मैंने सुना एक बड़े धनपति यहूदी के घर के सामने यहूदी बैठा है अपने महल में, उसके दरवाजे पर लोहे के सीखों का बना दरवाजा है, एक फकीर एक गरीब आदमी अपनी पीठ खुजला रहा है, दरवाजे के सीखों से अपनी पीठ खुजला रहा है। उस अमीर को बड़ी दया आई, उसने फकीर को भीतर बुलाया, अपने नौकरों को आज्ञा दी कि इसे खूब स्नान करवाओ, खूब धो धो के मालिश करो इसकी। उसको खूब धुलवाया गया, खूब स्नान करवाया गया, ऐसे साबुन जो उसने कभी देखे भी न थे, पानी के फवारे के नीचे बिठाया गया, ठंडे गर्म पानी में नहलाया गया, इत्र फूले तेल से उसकी मालिश की गई, अच्छे कपड़े पहनाए गए, और जब वो आया तो उसे भोजन करवाया गया, और कुछ रुपयों को भी उस धनपति ने उसे दिया और कहा कि जाओ। ये बात तो गांव भर में फैल गई, दो आदमियों ने सोचा ये तो बड़े गजब की बात है। वो दोनों भी आके दरवाजे पर खड़े होकर पीठ खुजलाने लगे। धनपति ने देखा, उसने अपने आदमी भेजे, कहा कि दोनों को जंजीरें डाल के मेरे सामने ले आओ। वो दोनों को जंजीरें डाल के लाया गया, वो दोनों चिल्लाने लगे कि बात क्या है, क्योंकि अभी अभी तो व्यवहार कुछ और किया गया था, मेरे हाथों में जंजीरें, हमारे हाथों में जंजीरें क्यों डाली जा रही है। वो घसीट के लाए गए और उस धनपति ने कहा कि यहां से भाग जाओ, कभी दोबारा यहां मत आना, क्योंकि वो अकेला था और अगर उसके पीठ में खुजान उठी थी तो वो खुजा भी नहीं सकता था। तुम तो दो हो, एक दूसरे की पीठ क्यों नहीं खुजला ले, तुम्हें इतनी तो अकल होनी चाहिए। अब भाग जाओ, कभी दोबारा इस तरफ मत आना। अक्सर ऐसा होता है। महावीर को ज्ञान हुआ, वो नग्न खड़े हो गए। बहुतों को लगा कि नग्न खड़े होने से ज्ञान हो जाता है, तो बहुत अभी तक दरवाजों पर पीठ खुजला रहे, वो नग्न खड़े हो गए। नग्न खड़े होने से ही जैन, दिगंबर जैन, दूसरा कोई नहीं, श्वेतांबर जैन भी नहीं, दिगंबर जैन पूछता है, क्योंकि वो मानता है नग्नता संत का लक्षण। महावीर नग्न हुए थे तो उसने संत की परिभाषा कर ली,
जैसे महावीर पर संत की परिभाषा चुक जाती है, संत की परिभाषा चुकती ही नहीं, और संत कभी दो एक जैसे हुए नहीं और होंगे भी नहीं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति संतत्व के शिखर को उपलब्ध होता है तो अद्वितीय हो जाता है, अकेला बेजोड़, उस जैसा फिर कभी दोबारा दूसरा आदमी नहीं होगा। इसका यह अर्थ नहीं कि कोई संत ना होगा, संत होंगे लेकिन फिर अपने जैसे होंगे। सब संत अनूठे होते, बस एक संत एक बार एक जैसा होता, दोबारा फिर नहीं होता। तो हजारों लोग नग्न होकर खड़े, उनमें कुछ भी नहीं है, लेकिन दिगंबर उनको पूछेगा, क्योंकि उसके संतत्व की परिभाषा में नग्नता जुड़ गई। इसलिए दिगंबर जैन किसी और को नहीं पूछ सकता जो कपड़े पहने हो, क्योंकि कपड़े पहने हुए तो संत हो ही नहीं सकता। दिगंबर जैन के सामने तुम मोहम्मद को खड़ा करो, वो कहेगा कि हजरत अभी कपड़े पहने हुए, अभी तक कपड़े पहने हुए तो ज्ञान हुआ ही नहीं, क्योंकि महावीर को जब ज्ञान हुआ तो कपड़े छोड़ गए, आप अभी तक कपड़े पहने हुए। ये बात जैन को नहीं जचेगी, वो मोहम्मद को तो मान ही नहीं सकता। मेरी एक किताब एक जैन मुनि को भेंट की गई, जिन मित्र ने भेंट की उन्होंने मुझे आके बताया कि बड़ी अजीब बात हो गई। उन्होंने किताब पलट के देखी, उन्होंने कहा और तो सब ठीक है, इसमें मोहम्मद का नाम कैसे आया। किताब फेंक दी, किताब महावीर पर थी, किताब फेंक दी क्योंकि इसमें मोहम्मद का नाम कैसे आया, कहां महावीर और कहां मोहम्मद। उनको ये बर्दाश्त के बाहर हो गया कि मोहम्मद का नाम महावीर के साथ आया, और मेरी तो आदत खराब है, मैं तो जोड़ ही देता हूं। उनको ये बात बिल्कुल जची नहीं, मोहम्मद सांसारिक आदमी ग्रस्त। अब अगर तुम जैनी के हिसाब से सोचो तो लगेगा भी, कितनी पत्नी है मोहम्मद की। दिगंबर जैन तो महावीर की एक पत्नी थी उसको भी इनकार करते। महावीर की सच में एक पत्नी थी और एक लड़की भी हुई और दमान भी था, ये ऐतिहासिक तथ्य है। लेकिन दिगंबर जैन अपनी किताबों में लिखते हैं उन्होंने कभी विवाह नहीं किया, क्योंकि ये बात ही उनको अखरती कि महावीर और विवाह करे। हालांकि अज्ञान की अवस्था में करने तो हर्ज क्या है, फिर ज्ञानी तो बाद में हुए, मगर वो मानते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। महावीर तो अज्ञान की अवस्था में भी इतनी ऊंचाई पर थे कि वो विवाह तो कर ही नहीं सकते, इसलिए हुए विवाह को भी इंकार कर दिया है। लड़की पैदा हुई ये तो मान ही नहीं सकते, क्योंकि लड़की पैदा हुई तो उसका मतलब वो उन्होंने संभोग किया होगा। महावीर और संभोग करें, जरा सोचो, ये बात जस्ती नहीं। तो दिगंबर जैन ने ये बात ही जड़ से काट दी कि विवाह ही नहीं हुआ, न रहा बांस न बजेगी बांसुरी। अब इधर मोहम्मद 9 विवाह किए, ये बात जरा जस्ती नहीं। लेकिन मोहम्मद की तरफ से सोचो, मोहम्मद को सीधा सोचो, तो मोहम्मद ने 9 विवाह किए और इस किसी विवाह में कोई कामवासना नहीं है। अरब देश लड़ा के देश थे, आदमी तो लड़ते और कट जाते और स्त्रियों की संख्या बढ़ती चली गई, पुरुष कम होते चले गए। जिस समाज में पुरुषों की संख्या कम हो जाए और स्त्रियों की संख्या ज्यादा हो जाए, उस समाज में बड़ा व्यभिचार फैल जाता है, फैल ही जाएगा, क्योंकि इतनी स्त्रियां कामातुर होकर भटकने लगेंगी और पुरुष तो कामातुर है ही, अब स्त्रियां इतनी उपलब्ध हो जाएंगी तो उपद्रव होने वाला है। तो मोहम्मद ने नियम बनाया कि हर मुसलमान कम से कम 4 विवाह करे। अब ये किसी दूसरे को जिस देश में कभी स्त्री पुरुषों की संख्या में इतना बड़ा अंतर नहीं पड़ा, ये बात बेहूदी लगेगी, लेकिन उस ऐतिहासिक क्षण में ये बात बड़ी सार्थक थी। इन 4 विवाह ने मुसलमान देशों की नैतिकता बचा ली, नहीं तो ये डूब जाते, ये नष्ट हो जाते। खुद मोहम्मद ने 9 विवाह किए, ठीक ही है, अगर शिष्यों से 4 विवाह करवाने हो तो गुरु को 9 करने पड़े, ये बात बिल्कुल तर्कयुक्त है, इसी भी गणित की है। मोहम्मद 2 कदम आगे गए तब तो कहीं तुम चलोगे थोड़ा बहुत, नहीं तो तुम चलोगे नहीं। आदमी एक ही पत्नी से काफी परेशान रहता है, 4 पत्नियां तुम सोचते हो कोई छोटी मोटी साधना। मैं तुमसे कहता हूं कि ब्रह्मचारी की साधना उतनी कठिन नहीं जितनी 4 पत्नियों वालों की साधना कठिन है। मुल्ला नसुद्दीन एक चोरी में पकड़ा गया, मजिस्ट्रेट ने उसने कहा कि तू भला आदमी है और पहली दफे चोरी में पकड़ा गया, तू खुद ही बोल दे क्या सजा। मुल्ला ने कहा जो भी देना हो सजा दे दे, बस एक ही सजा मत देना, 2 विवाह करने की सजा मत देना। तो मजिस्ट्रेट बोला कि ये भी कोई सजा होती 2 विवाह करने की, बात क्या है तू इसको सार को खोल के कह। तो उसने कहा बात ये है कि मैं पकड़ाते ही नहीं,
इस आदमी की दो औरतें, 2 बजे रात इसके घर में घुसा, उधर मारपीट हो रही थी। एक औरत इसको ऊपर की तरफ खींच रही थी, वो ऊपर रहती, और एक औरत इसको नीचे की तरफ खींच रही थी, वो नीचे रहती। एक इसकी टांगें पकड़ी थी, एक इसके हाथ पकड़े थी, ये सीढ़ियों पे अटका था। इसकी ये घबराहट देख के और ये घर की हालत देख के मैं छिप के बैठ गया ये कोने में, कभी इस निपट जाए तो या तो मैं कुछ चोरी करूं या निकल भागूं, मगर ये निपटे ही नहीं। सुबह हो गई, मैं घर से निकल ना सका, क्योंकि वो ही सीढ़ियां उतरने का एकमात्र रास्ता था। इसलिए मैं पकड़ा गया, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं जो सजा देनी हो दे देना, मगर 2 औरतों से विवाह करने की सजा मत देना। तुम सोचते हो कि ब्रह्मचर्य ही साधना है, तो तुम गलती सोचते हो। 4 स्त्रियों का साथ विवाह करना भी साधना ही है, बड़ी साधना हो सकती है। और मोहम्मद का विवाह तुम सोचते हो, मोहम्मद ने एक विवाह किया, पहला विवाह तो अपनी से दुगनी उम्र की, पहले विवाह में तो जो स्त्री थी वो करीब करीब बूढ़ी हो रही थी, और मोहम्मद अभी जवान थे, उससे विवाह किया। कोई पुरुष अपने से बड़ी उम्र की स्त्री से विवाह करना पसंद नहीं करता। बड़ी उम्र की तो तुम छोड़ दो, तुमसे अगर 1 इंच ऊंची औरत हो तो भी तुम उससे विवाह करना पसंद नहीं करते। अपने से किसी भी स्थिति में बड़ी स्त्री से कोई विवाह करना नहीं पसंद करता। तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो तुम पसंद नहीं करते, तुमसे ज्यादा अनुभवी हो तो पसंद नहीं करते, उम्र ज्यादा हो तो पसंद नहीं करते, क्योंकि कम उम्र की स्त्री ही काफी कब्जा जमा लेती, बड़ी उम्र का तो कहने ही क्या। 5-7 साल पीछे की स्त्री भी तुम्हें धकेल देती, तुम्हारी सब समझदारी रखी रह जाती। तो अगर बड़ी उम्र की स्त्री हुई, ज्यादा अनुभवी हुई, ज्यादा पढ़ी लिखी हुई, तो अड़चन आएगी, बहुत अड़चन आ जाएगी। यद्यपि वैज्ञानिक हिसाब से ज्यादा उम्र की स्त्री से ही विवाह होना चाहिए। क्यों कहता हूं वैज्ञानिक हिसाब से, क्योंकि सारे संसार के आंकड़े ये बात कहते हैं कि स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा जीती, 5 साल से 7 साल ज्यादा। तो अगर तुम 75 साल जियोगे तो तुम्हारी पत्नी 80 या 82 साल जिएगी। अब तुम 5-7 साल छोटी उम्र की स्त्री से विवाह करोगे तो तुम्हारे मरने में, तुम्हारी पत्नी के मरने में 10 साल का फासला होगा, तुम 10 साल के लिए उसे विधवा छोड़ जाओगे। ये अवैज्ञानिक। अगर विज्ञान की बात समझो तो तुम्हें अपने से 5-7 साल उम्र बड़ी स्त्री से विवाह करना चाहिए, ताकि तुम दोनों करीब करीब संसार से विदा हो। 75 साल के तुम होगे, 80 की वो हो जाएगी, दोनों करीब करीब मरोगे, ज्यादा दुख नहीं होगा, ना तुम अकेले छूटोगे ना वो अकेली छूटेगी। मोहम्मद ने बड़ी हिम्मत की कि अपने से बड़ी उम्र की स्त्री से विवाह कर लिया। मोहम्मद की परिस्थिति अलग, मोहम्मद के सोचने के ढंग अलग, मोहम्मद की बात अलग। फिर मोहम्मद जिन लोगों से बोल रहे थे वे लोग बिल्कुल ही खानाबदोश, एकदम गैर पढ़े लिखे लोग। उनको तो छुड़ाना था अभी मूर्ति से, अभी तो उनका सबसे बड़ा उपद्रव यही था कि वो मूर्तियों की पूजा में लगे थे, और 1-2 मूर्ति की नहीं, 365 मूर्तियां बना रखी थी काबा में। एक दिन के लिए 1 मूर्ति थी, हर दिन नई मूर्ति की पूजा चल रही थी। अभी तो वो बहुत नीचे धर्म में पड़े थे, उनको मूर्ति से किसी तरह छुटकारा दिलाना था। अभी उनसे ये घोषणा करनी कि अहम ब्रह्मास्मि हूं बात ही पागलपन की होती, ये तो वो समझ ही नहीं पाते। ये तो पाठ बहुत आगे का है, ये तो भारत में संभव हो सका, क्योंकि ये पाठ के लिए काफी लंबी परंपरा चाहिए, 1000 साल की परंपरा चाहिए। ये तो धर्म के विश्वविद्यालय की आखिरी कक्षा है जहां घोषणा की जा सकती है अहम ब्रह्मास्मि, और लोग समझेंगे और नाराज ना हो जाएंगे। तो अलग परिस्थितियां, अलग व्यक्तित्व, अलग ढंग। जैन राजी नहीं होगा कि मोहम्मद ज्ञान को उपलब्ध हुए, और मुसलमान राजी नहीं होंगे कि महावीर ज्ञान को उपलब्ध हुए, नंगे खड़े हो गए। ये बात तो जस्ती नहीं, ये तो ठीक नहीं, ये तो अशिष्ट, ये तो असामाजिक। कोई किसी दूसरे के संत से तो राजी नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे संत की एक निश्चित धारणा है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं सब धारणा छोड़ के तुम शून्य भाव से, शांत भाव से, मौन भाव से देखो तो तुम चकित हो जाओगे। मोहम्मद भी उसी महिमा को उपलब्ध हुए जिसको महावीर, बुद्ध भी उसी को उपलब्ध हुए जिसको क्राइस्ट। ये अलग ढंग है, अलग ढंग होने ही चाहिए। और एक व्यक्ति एक ही बार होता है, दोबारा दोहराया नहीं जाता है। परमात्मा इस संसार में किसी को दोहराता नहीं। आदमियों की तो छोड़ दो, तुम एक कंकड़ उठा लो
और सारी पृथ्वी खोज डालो तो भी वैसा ही दूसरा कंकड़ ना पा सकोगे। एक पत्ता तोड़ लो इस बगीचे का और सारे जंगल खोज डालो, ठीक वैसा ही दूसरा पत्ता ना पा सकोगे। परमात्मा कार्बन कॉपी बनाते ही नहीं, परमात्मा मूल बनाता, मौलिक। प्रत्येक वस्तु नई और अद्वितीय। तो जब छोटी छोटी जीव के संबंध में ये सच है तो क्राइस्ट या मोहम्मद या महावीर या बुद्ध जैसे व्यक्ति तो परम आखिरी है, ये तो अद्वितीय, इन जैसा दूसरा कोई होता नहीं। नकल में पढ़ना मत, किसी जैसे बनने की कोशिश करना मत। तुम ही बन सको तो ही तुम परमात्मा को उपलब्ध हो सकोगे, और जब तुम अपनी परिपूर्णता में स्वयं हो जाते हो तब तुम्हारे भीतर एक नाद उठने लगता है, वो नाद है अहम ब्रह्मास्मि अनल हक। फिर ओम गलत कहता था क्योंकि उसने ये कहा कि मैं परमात्मा हूँ और कोई नहीं, और मंसूर ने ठीक कहा कि मैं परमात्मा हूँ क्योंकि सिर्फ परमात्मा है और तो कोई है ही नहीं, परमात्मा ही है। पत्थर भी परमात्मा है तो मैं भी परमात्मा हूँ। इन दोनों वक्तव्यों की समानता के साथ साथ इनके भीतर छिपा हुआ भेद भी ठीक से देख लेना। तीसरा प्रश्न, किसी बुद्ध पुरुष के वचनों के मार्मिक अर्थ को समझ पाना क्या ध्यान को उपलब्ध हुए बिना संभव है? क्या तत्व ज्ञान और ध्यान की स्थिति के बीच कोई गहरा नाता है? इस विषय पर प्रकाश डालने का अनुग्रह करें। किसी बुद्ध पुरुष के वचनों को पूरा पूरा समझना हो तो ध्यान के बिना कोई उपाय नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी झलक मिल सकती है ध्यान के बिना भी, थोड़ी थोड़ी भनक पड़ सकती है बिना ध्यान के भी। और अगर ये भनक न पड़ती होती तो फिर तुम चलोगे ही कैसे? तब तो तुम कहोगे जब ध्यान होगा तब समझ में आएगा, और जब तक समझ में नहीं आया तब तक चलें कैसे? और जब तक चलोगे नहीं तब तक ध्यान कैसे होगा? तब तो तुम एक बड़े चक्कर में पड़ जाओगे, एक दुष्ट चक्कर में पड़ जाओगे। तो दो बातें ख्याल रखना, ना तो ये ही बात सच होती है कि जो बुद्ध पुरुष कहते हैं वो तुमने सिर्फ सुन लिया बुद्धि से और समझ में आ जाएगा, नहीं। अगर इतने से ही समझ में आ जाए तो फिर ध्यान की कोई जरूरत ही ना रहेगी। और ना ही दूसरी बात सच है कि जब ध्यान होगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि अगर ध्यान होगा तभी समझ में आएगा तो तुम ध्यान भी कैसे करोगे? क्योंकि बुद्ध पुरुषों में कुछ रस आने लगे तभी तो ध्यान में लगोगे ना। तो बुद्ध पुरुषों की वाणी सुनते समय पूरी तो समझ में नहीं आती, कभी नहीं आती। पूरी तो तभी समझ में आएगी जब तुम भी बुद्ध पुरुष हो जाओगे, जब तुम भी उन जैसे हो जाओगे तभी पूरा अनुभव होगा, लेकिन अभी थोड़ी भनक तो पड़ सकती। जब छोटा बच्चा चलना शुरू करता है तभी दौड़ नहीं सकता है, ये बात सच है। लड़खड़ा तो सकता है, और अगर तुम कहो कि अभी लड़खड़ा भी नहीं सकता तो फिर कभी चल ही ना सकेगा। छोटा बच्चा जब पहले कदम उठाता है तो देखा कैसा डरा डरा सहारे की आकांक्षा रखता है, माँ हाथ पकड़ ले, माँ का हाथ पकड़ के हिम्मत करके दो कदम चल लेता है। छोटे बच्चे के पास पैर तो है, उसके शरीर को संभालने योग काफी पैर है। तुम्हारे बराबर पैर नहीं तो तुम्हारे बराबर शरीर भी नहीं, लेकिन अनुपात ठीक उतना ही है जितना तुम्हारा। तुम्हारे बड़े शरीर को संभालने के लिए बड़े पैर हैं, उसके छोटे शरीर को संभालने के लिए छोटे पैर, लेकिन उसके शरीर को संभालने के लिए पर्याप्त पैर है, मगर अभी अनुभव नहीं। उसे ये भरोसा नहीं कि मैं खड़ा हो सकूंगा, उसे ये आत्मविश्वास नहीं। तो माँ का हाथ पकड़ के चल लेता है। गुरु का हाथ पकड़ के चलने का इतना ही अर्थ होता है कि जहाँ तुम अभी नहीं चले हो, यद्यपि चल सकते हो लेकिन तुमने कभी प्रयास नहीं किया है, तो कोई जो चल चुका है, कोई जो चल रहा है, तुम उसका हाथ पकड़ लेते हो। फिर धीरे धीरे माँ अपना हाथ छुड़ाने लगती है, फिर उंगली ही पकड़ रखती है, फिर धीरे धीरे उंगली भी खींच लेती है। एक दिन बच्चा पाता है कि अरे वो तो खुद ही खड़ा होकर चल सकता है। जब पहली दफा बच्चे चलते हैं तो तुमने देखा वो रुकते ही नहीं, वो बैठते ही नहीं। तुम लाख उपाय करोगे, तू थक गए आप तू बैठ जा, मगर वो चक्कर मार रहे हैं। इतना आनंद उनको अनुभव होता है कि एक अपूर्व घटना हाथ लग गई कि मैं भी चल सकता हूँ। ऐसी ही घटना ध्यान के मार्ग पर भी घटती। बुद्ध पुरुषों की वाणी पहले तो सिर्फ झलक देगी, जरा सी देर के लिए बिजली कौन जाएगी, एक किरण उतर जाएगी, मगर किरण तुम्हें प्यास से भर जाएगी
और तुम्हें ये आश्वासन मिलने लगेगा, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इस व्यक्ति को हुआ है तो मुझे क्यों नहीं हो सकता, मुझ जैसे ही व्यक्ति को तो हुआ है, आखिर बुद्ध के हड्डी मांस मज्जा तुम्हारे जैसे ही है, कुछ भेद तो नहीं, तुम्हारे जैसे आंख कान नाक, तुम जैसा भूख लगते तो भोजन करते और तुम जैसे रात थक के सो भी जाते, तुम जैसे ही जवान हुए, तुम जैसे ही बूढ़े हुए, तुम जैसे ही एक दिन मर भी गए, तो बुद्ध पुरुष ठीक तुम जैसे बीमार भी होते, रुग्ण भी होते, स्वस्थ भी होते, बूढ़े हो गए तो बाल भी सफेद हो गए, बूढ़े हो गए तो हाथ पैर भी कपने लगे, ये सब तुम जैसा ही है, लेकिन तुम जैसे इस मनुष्य में भी कुछ घटा है जो तुम में लगता है अभी नहीं घटा। इससे हिम्मत बंधती है कि अगर मेरे जैसे व्यक्ति में ये हो सका है तो शायद मुझ में भी हो सके, शायद मैं भी एक संभावना अपने भीतर लिए चल रहा हूँ, एक बीज जिसको ठीक भूमि नहीं मिली, शायद मैं भी अपने भीतर एक संभावना लिए चल रहा हूँ जिस पे मैंने कभी प्रयोग नहीं किया और वास्तविक बनाने की चेष्टा नहीं की। किसी गायक को गीत गाते देखकर तुम्हें याद आ जाती अपने कंठ की कि कंठ तो मेरे पास भी है, और किसी नर्तक को नाचते देखकर तुम्हें याद आ जाती अपने पैरों की कि पैर तो मेरे पास भी है, चाहूं तो नाच तो मैं भी सकता हूं। किसी चित्रकार को चित्र बनाते देखकर तुम्हें भी याद आ जाती है कि चाहूं तो चित्र मैं भी बना सकता हूँ। ऐसे ही किसी बुद्ध को देखकर तुम्हें याद आ जाती है कि चाहूं तो बुद्धत्व मैं भी पा सकता हूँ। बस यही चाह, ये समझ नहीं है पूरी, प्यास शुरू हुई, उजाला सा बिखर जाता है, चाहे जैसा भी हो हर वक्त गुजर जाता है, बात रह जाती है पर ढेर बिखर जाता है। गम में वैसाख के सूरज की तपन होती है, ऐसे मौसम में समंदर भी उतर जाता है। रोज दिन भर तो अंधेरों में सफर करते हैं, शाम होते ही उजाला सा बिखर जाता है, टूट जाता है हर एक तसलसल यारो, कोई लम्हा कभी ऐसा भी गुजर जाता है, कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती, दिल से कुछ देर को हर बोझ उतर जाता है, उजाला सा बिखर जाता है, कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती। बुद्ध पुरुषों के पास, तीर्थंकरों के पास, सदगुरुओं के पास, परमहंसों के पास, सूफियों के पास कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती, दिल से कुछ देर को हर बोझ उतर जाता है, कुछ देर को ही, क्षण भर को ही सही, कोई पूरा सूरज नहीं उगता लेकिन एक किरण चौंक जाती, लेकिन उस किरण में तुम्हें अपना भविष्य दिखाई पड़ जाता है कि ये हो सकता है। टूट जाता है हर एक तसलसल यारो, कोई लम्हा कभी ऐसा भी गुजर जाता है, कोई लम्हा एक क्षण भर को, एक पल भर को आंख खुल जाती फिर बंद हो जाती, लेकिन वो एक पल जीवन को बदल देने वाला पल सिद्ध होता है। पूछते हो किसी बुद्ध पुरुष के वचनों के मार्मिक अर्थ को समझ पाना क्या ध्यान को उपलब्ध हुए बिना संभव है, हाँ भी और नहीं भी। हाँ, इस अर्थ में झलक मिलती है, एक किरण सी उतरती है, एक उमंग जग जाती, एक प्यास उठने लगती, एक अज्ञात खिंचाव पैदा हो जाता है, इसलिए हाँ और नहीं, इसलिए कि सुन के ही कहीं पूरी बात थोड़ी हो जाती है, चलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, बहुत कूड़ा करकट है वो जला देना पड़ेगा, आग से गुजरना होगा ताकि सोना निखर जाए। बुद्ध पुरुषों की बात सुन के यात्रा शुरू होती, मंजिल नहीं आ जाती, मंजिल तो आएगी तभी जब ध्यान पूरा होगा, और जब ध्यान पूरा होगा तभी पूरी बात भी समझ में आएगी, क्योंकि पूरी बात समझने का एक ही अर्थ हो सकता है कि जो उनका अनुभव था वो मेरा भी अनुभव हो गया। जब अनुभव एक जैसे हो जाते हैं तभी बात समझ में आती। चौथा प्रश्न, भगवान जिस दिन मैं पालूंगा उस दिन कैसे आपको धन्यवाद दूंगा। अब अभी से व्यर्थ की फिक्र में मत पड़ो, जब पाले नहीं जैसी अपूर्व घटना घट जाएगी तो धन्यवाद भी खोज ही लोगे। ये तो छोटी सी बात रही, उतनी बड़ी बात हो जाएगी तो क्या तुम सोचते हो धन्यवाद देने का कोई ढंग ना खोज पाओगे? भगवान को खोज लोगे और धन्यवाद देने का ढंग ना खोज पाओगे? हो ही जाएगा, तुम उसकी फिक्र मत करो, और अभी से कोई अभ्यास थोड़ी करना है।
कि धन्यवाद का अभ्यास करोगे। अभ्यास करोगे तो झूठा होगा, और झूठा अभ्यास अगर रहा तो उस मौके पर भी शायद झूठे अभ्यास से ही धन्यवाद दोगे। उस धन्यवाद को तो कम से कम स्वस्फूर्त रहने दो, उसकी तो तैयारी मत करो, उसका तो रिहर्सल मत करो। मुल्ला नसुद्दीन एक दिन रेल यात्रा से वापस लौटा तो मुझसे कहने लगा कि रास्ते में एक टिकट चेकर उसे बड़े अजीब ढंग से घूर रहा था। तो मैंने पूछा, अजीब ढंग से क्या मतलब तुम्हारा नसुद्दीन? तो उसने कहा कि यानी वह ऐसे घूर रहा था जैसे मेरे पास टिकट हो ही नहीं। तो मैंने पूछा, फिर तुमने क्या किया नसुद्दीन? उसने कहा, मैं क्या करता, मैं भी उसे ऐसे घूरने लगा जैसे सचमुच मेरे पास टिकट हो। अब ऐसे अभ्यास चल रहे, टिकट चेकर तुम्हें घूर रहा है कि जैसे तुम्हारे पास टिकट ना हो, तुम ऐसे घूर रहे हो जैसे तुम्हारे पास टिकट हो। झूठे अभ्यासों में मत पड़ो, ये बात पूछो ही मत। धन्यवाद निकलेगा उस अनुभव से, सभ्य स्नान अभी अभी नहाया हुआ ताजा, जैसे कोंपल फूटती नई, जैसे सुबह सूरज उगता नया, ऐसा धन्यवाद उगेगा। और उस धन्यवाद की बात ही कुछ और है।

हाय दोस्तों, मैं हूं रूप कुमार राठौड़ और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना पर 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक कथाओं और प्रसंगों के बारे में जिनसे बहुत सारा ज्ञान हमें प्राप्त होता है, और यही ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद है रागलेखा दासी जी, चरणाशी युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: हरे कृष्ण
0: जी। श्रोताओं, हमने प्रारंभ कर दिया था महाभारत काव्य, जो ये ग्रंथ है इसके बारे में हमने चर्चा पिछले कई एपिसोड से शुरू कर दी थी, और पिछले एपिसोड में हमने रागलेखा दासी जी से एक कथा जानी जिसमें पक्षीराज जो गरुड़ हैं वो कैसे पक्षीराज बने और वो किस तरह से अमृत लेने पहुंच गए थे अपनी माता जी को दासत्व से मुक्त कराने के लिए, हमने ये कथा रागलेखा दासी जी से जानी। तो आज एक नई कथा, एक नया प्रसंग हम इस महाभारत की कथाओं के अंतर्गत जानते हैं रागलेखा दासी जी से। जी रागलेखा दासी जी,
1: अब शौनक आदि जो ऋषि थे उन्होंने पूछा है, सूत नंदन, जब सर्पों को ये बात मालूम हो गई कि माता कद्रु ने हमें शाप दे दिया, तब उन्होंने उसके निवारण के लिए क्या किया? तो उग्र शवाद जी कहते हैं, क्योंकि ये संवाद चल रहा है, शौनक आदि ऋषि जो 88,000 है और उग्र शवाद जी जो सूत गोस्वामी जी के पुत्र है, उग्र शवा सूत, तो उनके बीच में चल रहा है। तो उग्र शवाद जी कह रहे हैं कि उन सर्पों में से एक शेष नाग भी थे, उन्होंने कद्रु और अन्य सर्पों का साथ छोड़ के कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। ये केवल हवा पी कर रहते थे और अपने व्रत का पूर्ण पालन करते थे। ये अपनी इंद्रियों को वश करके गंध मादन, बद्रिका आश्रम, गोकर्ण, हिमालय आदि की तराई में एकांत वास करते और पवित्र तीर्थों और धामों की यात्रा भी करते। ब्रह्मा जी ने देखा शेषनाग के शरीर का मांस, त्वचा, नाड़ियां सब सूख गई है, क्योंकि उनका सच्चा धैर्य और तपस्या देखकर वे उनके पास आए और बोले, शेष, तुम अपनी तीव्र तपस्या से प्रजा को संतप्त क्यों कर रहे हो? इस घोर तपस्या का उद्देश्य क्या है? कोई प्रजा के हित का काम क्यों नहीं करते? बतलाओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? शेष जी ने कहा, भगवान मेरे सब भाई मूर्ख हैं, इसलिए मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता, आप मेरी इस इच्छा का अनुमोदन कीजिए। विनीता और उसके पुत्र गरुड़ और अरुण से द्वेष करते हैं, इसलिए मैं उनसे उब कर तपस्या कर रहा हूँ। विनीता नंदन, गरुड़ निसंदेह हमारे भाई है, अब मैं तपस्या करके शरीर छोड़ दूंगा। मुझे चिंता है तो बस इस बात की कि मरने के बाद उन दुष्टों का संग ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, मुझसे तुम्हारे भाइयों की करतूत छुपी नहीं है, अब तुम उनकी चिंता छोड़कर अपने लिए जो चाहो वर मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि सौभाग्यवश तुम्हारी बुद्धि धर्म में अटल है, तुम्हारी बुद्धि सर्वदा ऐसी ही बनी रहे। शेष ने कहा, पितामा, मैं यही वर चाहता हूँ कि मेरी बुद्धि धर्म, तपस्या और शांति में संलग्न रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, मैं तुम्हारे इंद्रियों और मन के संयम से बहुत प्रसन्न हूँ, मेरी आज्ञा से तुम प्रजा के हित के लिए काम करो। ये सारी पृथ्वी, पर्वत, वन, सागर, ग्राम, विहार, नगरों के साथ हिलती डुलती रहती है, तुम इसे इस प्रकार धारण करो कि इससे वह अचल हो जाए। शेष ने कहा, मैं इस पृथ्वी को इस प्रकार धारण करूंगा जिससे वह हिले डुले नहीं, आप इसको मेरे सिर पर रख दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, पृथ्वी तुम्हें मार्ग दे देगी, तुम उसके भीतर घुस जाओ, तुम पृथ्वी को धारण करके मेरा बड़ा प्रिय कार्य करोगे। आज्ञानुसार शेष ने भूविवर में प्रवेश करके नीचे चले गए और समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी को चारों ओर से पकड़कर सिर पर उठा लिया। तभी से स्थिर भाव में स्थित है। माता का श्राप सुन के वासुकी नाग को बड़ी चिंता हुई, वे सोचने लगे कि इस प्रकार श्राप का प्रतिकार क्या है। उन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और सबसे सलाह करने लगे। अश्विन कहा, भाइयों, विपत्ति आने से पहले हमें उपाय करने से काम बन सकता है। तब ठीक है कहकर सभी बुद्धिमान और चतुर सर विचार करने लगे। हम लोग ब्राह्मण बनकर जन्मे जय के इससे भिक्षा मांगे कि तुम यज्ञ मत करो। कुछ ने कहा, हम मंत्री बनकर ऐसी सलाह दे कि जिससे यज्ञ ही ना हो पाए। कुछ ने कहा कि हम बादल बनकर यज्ञ की आग बुझा देंगे। कुछ बोले, हम यज्ञ की सामग्री ही

नाम का एक नाग था। उसने सब सर्पों और वासुकी की सम्मति सुनकर कहा कि भाइयों, उस यज्ञ का रुकना और अथवा जन्मेजय का मान जाना संभव नहीं है। जिस समय माता ने श्राप दिया था, उस समय डरकर मैं उसी की गोदी में छिप गया था। वह क्रूर श्राप सुनकर देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, भगवान कठोर हृदय का ध्रुव को छोड़कर ऐसा कौन स्त्री होगी जो अपने मुंह से अपनी संतान को श्राप दे डाले। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, इस समय जगत में सब बहुत बढ़ गए हैं, क्रोधी, डरावने, विषैले हैं। प्रजा के हित के लिए मैंने कद्रु को रोका नहीं और इस श्राप से शूद्र प्राप्ति जहरीले सांपों का ही नाश होगा। धर्मात्मा सर्प सुरक्षित रहेंगे। ये बात भी है कि दयावर वंश में जरतकारु नाम के एक ऋषि होंगे। उनके पुत्र का नाम होगा आस्तिक। वही जन्मेजय का सर्प यज्ञ बंद करा सकेंगे, तब जाकर धार्मिक सर्पों का छुटकारा होगा। जरतकारु की पत्नी का नाम भी जरतकारु ही होगा। वह सर्प राज वासुकी की बहन होगी। उसके घर से आस्तिक का जन्म होगा और वही सर्प उसको मुक्त करेगा। सर्पराज वासुके, मेरे विचार से आपकी बहन जरतकारु का विवाह उस जरतकारु ऋषि से ही होना चाहिए, और जिस समय दीक्षा के समान पत्नी की याचना करें, उसी समय उन्हें आप अपनी बहन दे दें। यही इस विपत्ति से रक्षा का उपाय है। मिला पत्र की बात सुनकर सभी सर्पों ने प्रसन्नचित्त से कहा, ठीक है ठीक है। तभी से वासुकी नाग बड़े प्रेम से अपनी बहन की रक्षा करने लगे। उसके थोड़े दिनों बाद ही समुद्र मंथन हुआ, जिसमें वासुकी नाग को नेती मतने वाली रस्सी बनाया गया। वासुकी ने सर्पों को जरतकारु ऋषि की खोज में नियुक्त कर दिया और उनसे कहा कि जिस समय जरतकारु ऋषि विवाह करना चाहे, उसी समय शीघ्र से शीघ्र आकर मुझे सूचित करना। हम लोगों के कल्याण का यही सुनिश्चित उपाय है। शौनक ऋषि ने पूछा, सूत नंदन, आपने जिन जरतकारु ऋषि का नाम लिया, उनका जरतकारु नाम क्यों पड़ा और उनके नाम का अर्थ क्या है और उनसे आस्तिक का जन्म कैसे हुआ? विश्ववाद जी कहते हैं, जरा शब्द का अर्थ है क्षय, कारु का अर्थ है दारुण। तात्पर्य यह है कि उनका शरीर पहले बड़ा दारुण हट्टा कट्टा था, इसे उन्होंने तपस्या करके उसको जीर्ण शीर्ण कर दिया, इसी से उनका नाम जरतकारु पड़ा। वासुकी नाग की बहन भी पहले वैसी ही थी, उसने भी शरीर को तपस्या के द्वारा क्षीण कर लिया, इसलिए उसका नाम भी जरतकारु हुआ। अब आस्तिक के जन्म की कथा सुनिए। जरतकारु ऋषि बहुत दिनों तक ब्रह्मचर्य धारण करके तपस्या में संलग्न रहे। वे विवाह करना नहीं चाहते थे, जब तब स्वाध्याय में लगे रहते थे, निर्भय होकर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी का विचरण करते। उन दिनों परीक्षित का राजत्व काल था, राज्य था। जरतकारु का नियम था कि जहाँ सायकाल हो जाता वे वहीं ठहर जाते और पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करते और ऐसे कठोर नियमों का पालन करते जिनको पालना विषय लोलो पुरुषों के लिए असंभव है। ये केवल वायु की कर निराहार रहते। इस प्रकार उनका शरीर सूख सा गया। एक दिन यात्रा करते समय उन्होंने देखा कि कुछ पितर नीचे की ओर मुंह करे हुए एक गड्ढे में लटक रहे हैं। वे एक खसका तिनका पकड़े हुए हैं और वो केवल वही केवल बच भी रहा था। उसी तिनके की जड़ को भी धीरे धीरे चूहा उतर रहा था। पितृगण निराहार थे, दुबले और दुखी थे। जरतकारु ने उनके पास जाकर पूछा, आप लोग जिस खसके तिनके का सहारा लेके लटक रहे हैं, उसे एक चूहा कुतरता जा रहा है, आप लोग कौन हैं और अब इस खस की जड़ कट जाएगी, तब आप लोग नीचे की ओर मुंह किए गड्ढे में गिर जाएंगे। आप लोग को इस अवस्था में देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप लोग मेरी तपस्या के चौथे तीसरे आधे भाग से विपत्ति से बचे तो बताएं, और तो और क्या, मैं अपनी सारी तपस्या का फल देकर भी आप लोग को बचाना चाहता हूँ, आप आज्ञा कीजिए। पितरों ने कहा, आप बूढ़े ब्रह्मचारी हैं, हमारी रक्षा करना चाहते हैं, किंतु हमारी विपत्ति तपस्या के बल से नहीं कर सकती। तपस्या का फल तो हमारे पास भी है, किंतु वंश परंपरा के नाश के कारण हम लोग घोर नरक में गिर रहे हैं। इसलिए हमारी बात सुनिए, हम लोग जजावर नाम के ऋषि हैं, वंश परंपरा क्षीण हो जाने से हम लोग पुण्य लोकों से नीचे गिर गए हैं। हमारे वंश में अब केवल एक ही व्यक्ति रह गया है, वह भी नहीं के बराबर है, वह तपस्वी हो गया है, उसका नाम जरतकारु है। वह वेद वेदांगों का विद्वान तो है ही, संयमी, उदार और व्रतशील भी है। तपस्या के लोभ से हमें संकट में डाल दिया है उसने। उसके कोई भाई बंधु अथवा पत्नी पुत्र नहीं है, इसीलिए हम लोग बेहोश होकर अनाथ की तरह गड्ढे में लटक रहे हैं। यदि आपको कहीं मिले तो उसे

0: स्वीकार करना जरत कारू। तुम्हारे पितर नीचे मुंह लटका कर गड्ढे में लटक रहे हैं। तुम विवाह करके संतान उत्पन्न करो, जब हमारे वंश की के तुम ही एक आश्रय हो। ब्रह्मचारी जी, ये जो आपने घस की जड़ देख रहे हैं, यही हमारे वंश का सहारा है। हमारी वंश परंपरा के जो लोग नष्ट हो चुके हैं, वही उसकी जड़ी हुई कटी हुई जड़े हैं। ये अधकटी जड़ ही जरत्कारी है। आप जो कुछ देख रहे हैं, ये सब जरत्कारी से कहिएगा और उससे कृपा करके ये बतलाइए कि आप कौन हैं और हमारे बंधु की तरह हमारे लिए क्यों शोक कर रहे हैं। जरत्कारी ने पितरों से कहा कि आप लोग मेरे ही पिता और पितामह हैं। आप लोगों को अपराधी पुत्र जरत्कारी हूँ मैं। आप लोग मुझे अपराधी को दंड दीजिए और मेरे करने योग्य काम बतलाइए। पितरों ने कहा, बेटा, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम संयोग वश यहाँ आ गए। मैं अखंड ब्रह्मचार्य का पालन करके स्वर्ग प्राप्त करूँ। जरत्कारी ने कहा, मेरा अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, परंतु आप लोगों को उल्टे लटकते देखकर मैंने अपना ब्रह्मचार्य का निश्चय पलट लिया। अब मैं आप लोगों के लिए निसंदेह विवाह करूंगा और यदि मुझे मेरे ही नाम की कन्या मिल जाएगी तो वह भी भिक्षा की तरह, तो मैं उस पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूंगा, परंतु उसके भरण पोषण का भार नहीं उठाऊंगा। ऐसी सुविधा मिलने पर ही विवाह करूंगा, अन्यथा नहीं। आपके कल्याण के लिए मुझसे पुत्र होगा, वह आप परलोक में सुखी सुख से रहने देगा। जरत्कारी अपने पितरों से इस प्रकार कहकर पृथ्वी पर विचरने लगे, परंतु एक तो उन्हें बुरा समझकर उन्हें कोई अपनी कन्या ब्याना नहीं चाहता था और दूसरे उनके अनुरूप कन्या मिलती भी नहीं थी। जरत्कारी सोचने लगे, मैं पितरों का दुख उठाने के लिए उनकी प्रेरणा से कन्या की भीख मांग रहा हूँ, जिस कन्या का नाम मेरा ही हो, जो भिक्षा की तरह मुझे दी जाए और जिसके भरण पोषण का भार मुझ पर ना रहे, ऐसी कन्या मुझे प्रदान करो। वासुकी नाग के द्वारा नियुक्त सर्प जरत्कारी की बात सुनकर नागराज के पास गए। उन्होंने चट चट अपनी बहन लाकर भिक्षा के रूप में जरत्कारी ऋषि को समर्पित की। वासुकी से पूछा इसका क्या नाम है और साथ ही ये भी कहा कि मैं इसके भरण पोषण नहीं करूंगा। वासुकी नाग ने कहा, मैं इसका भरण पोषण और रक्षण करूंगा। इसके अतिरिक्त एक शर्त यह है कि ये कभी मेरा अप्रिय कार्य न करे, करेगी तो मैं इसे अवश्य छोड़ दूंगा। जरत्कारी ऋषि अपनी पत्नी जरत्कारी के साथ वासुकी नाग के श्रेष्ठ भवन में रहने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी को भी अपनी शर्त की सूचना दे दी कि मेरे रुचि के विरुद्ध ना हो, ना तो कुछ करना है और ना कहना, ऐसे करूंगी तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। उनकी पत्नी ने स्वीकार कर लिया और वह सावधान रह के उनकी सेवा करने लगी। समय पर उसे गर्भ रह गया और वह धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन की बात है, जरत्कारी ऋषि कुछ खिन्न होकर अपनी पत्नी के गोद में सर रहकर सोए हुए थे। वे सो ही रहे थे कि सूर्यास्त का समय हो आया। उसी पत्नी ने बड़ी मधुर वाणी से कहा, महाबाग उठिए, सूर्यास्त हो गया है, आचमन करके संध्या कीजिए, ये अग्निहोत्र का समय है। ऋषि जरत्कारी जगे, क्रोध के मारे उनका होंठ कांपने लगा। उन्होंने कहा, सर्पिनी, तूने मेरा अपमान किया है, अब मैं तेरे पास नहीं रहूंगा, जहाँ से आया हूँ वही चला जाऊंगा। मेरे हृदय में दृढ़ निश्चय है कि मेरे सोते रहने पर सूर्यास्त नहीं हो सकता, अपमान के स्थान पर रहना अच्छा नहीं है, अब मैं जाऊंगा। अपने पति के हृदय में कपकपी पैदा करने वाली बात सुनकर ऋषि पत्नी ने कहा, भगवान, मैंने अपमान करने के लिए आपको नहीं जगाया, आपके धन का लोप ना हो, मेरी यही दृष्टि थी। जरत्कारी ऋषि ने कहा, एक बार जो मुंह से निकल गया वह झूठा नहीं हो सकता। मेरे जाने के बाद अपने भाई से कहना कि वे चले गए और यह भी कहना कि मैं यहाँ बड़े सुख से रहा, मेरे जाने के बाद तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना। ऋषि पत्नी शोकग्रस्त हो गई, मुंह सूख गया और वाणी गदगद हो गई।
1: और एक बहुत ही सुंदर प्रसंग हम अभी रागलेखा दासी जी से जान रहे थे, अभी बहुत प्यारा सा भजन सुना हमने, उसके बाद हम इस कथा को आगे जारी रखते हैं। जी रागलेखा दासी जी, कहानी आप पूरी कीजिए।
0: जी, तो ऋषि पत्नी जो थी, उसकी पत्नी जो थी जरत्कारी की जो पत्नी थी, उसका नाम भी जरत्कारी था, तो बोली कि हमारे जाति भाई कद्रु माता के श्राप से ग्रस्त है, आपसे एक संतान उत्पन्न होने की आवश्यकता है, उसी से हमारी जाति का कल्याण होगा। आपका और मेरे संयोग निष्फल नहीं होना चाहिए, अभी आप मेरे घर से संतान भी तो नहीं हुई है। पत्नी की बात सुनकर ऋषि ने कहा, तुम्हारे पेट में अग्नि के समान तेजस्वी गर्भ है, वह बड़ा विद्वान और धर्मात्मा ऋषि होगा। ये कहकर जरत्कारी ऋषि चले गए। समय आने पर वासुकी की बहन जरत्कारी ने के गर्भ से एक दिव्य कुमार का जन्म हुआ। उसके जन्म से ही मातृवंश और पितृवंश दोनों का भय जाता रहा। तमस्या बड़ा होने पर उसने चवन मुनि से वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। जब वे गर्भ में था तभी पिता ने उसके संबंध में अस्थि है पद का उच्चारण किया, इसलिए उसका नाम आस्तिक हो गया। उग्रश्रवादी ने कहा, राजा जन्मेजय ने अपने मंत्रियों से पूछा कि मेरे पिता के जीवन में कौन सी घटना घटित हुई, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई थी। मैं उनकी मृत्यु का वृतांत सुनकर वही करूंगा जिससे जगत का लाभ हो। क्योंकि परीक्षित महाराज की मृत्यु हो गई थी तो राजा जन्मेजय उनके पुत्र है, तो अब वो जानना चाहते है कि मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई। मंत्रियों ने कहा, महाराज आपके पिता बड़े धर्मात्मा, उदार और प्रजापालक थे। हम बहुत संक्षेप में उनके चरित्र को सुनाते हैं। वे सारी पृथ्वी की ही रक्षा करते थे, उनकी प्रजा हष्ट पुष्ट रहती थी। भगवान श्री कृष्ण आपके पिता के प्रति बड़ा प्रेम रखते थे। जन्मेजय ने कहा, मैं तो अपने पिता की मृत्यु का कारण जानना चाहता हूँ। मंत्रियों ने कहा कि उन्होंने एक बाण से एक हिरण को मारा और उसके भागने पर उसका पीछा किया। वे अकेले ही पैदल बहुत दूर तक वन में हिरण को ढूंढते हुए चले गए, परंतु उसे पा नहीं सके। वे 60 वर्ष के हो चुके थे, इसलिए थक गए और उन्हें भूख भी लग गई। उसी समय एक मुनि का दर्शन हुआ, वे मौनी था। उन्होंने उसी से प्रश्न किया, परंतु वे कुछ नहीं बोले। उसी समय राजा भूखे और थके माने थे, इसलिए मुनि को कुछ ना बोलते देख कर उनका तिरस्कार करने के लिए धनुष की नोक से मरा हुआ सांप उठाकर उनके कंधे पर डाल दिया। मौनी ऋषि श्रमिक के पुत्र थे श्रृंगी। उन्होंने हाथ में जल लेकर आपके पिता को श्राप दिया, जिसने मेरे निरपराध पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप डाल दिया। वह दुष्ट को तक्षक नाग क्रोध करके अपने विष से 7 दिन के भीतर ही जला देगा। श्रमिक मुनि ने यह सब सुनकर अच्छा नहीं समझा। तक्षक अपने विष से 7 दिन के भीतर ही आपको जला देगा, आपके पिता सावधान हो गए। 7वें दिन जब तक्षक आ रहा था, उसने कश्यप नामक एक ब्राह्मण को देखा। उसने सोचा, ब्राह्मण देवता आप इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। कश्यप ने कहा, मैं जहाँ जा रहा हूँ परीक्षित को, राजा परीक्षित को तक्षक सांप जलाएगा, मैं वही जा रहा हूँ, उसे तुरंत जीवित कर दूंगा। मेरे पहुँच जाने पर तो सर्प उसे जला भी नहीं सकेगा। तक्षक ने कहा, मैं ही तक्षक हूँ, आप मेरे डसने के बाद इस राजा को क्यों जीवित करना चाहते हैं? मेरी शक्ति देखिए, मेरे डसने के बाद आप उसे जीवित नहीं कर सकेंगे। ये कहकर तक्षक ने एक वृक्ष को डस लिया। उसी क्षण वृक्ष जलकर राख हो गया। कश्यप ब्राह्मण ने अपनी विद्या के बल से उस वृक्ष को उसी समय हरा भरा कर दिया। उसने कहा, तुम जो चाहो मुझसे ले लो। ब्राह्मण ने कहा, मैं तो धन के लिए वहां जा रहा हूँ। तब तक्षक ने कहा कि तुम उस राजा से जितना धन लेना चाहते हो मुझसे ले लो और यहीं से लौट जाओ। ऐसा कहने पर कश्यप ब्राह्मण मुंह मांगा धन लेकर लौट गए। उसके बाद तक्षक स्थल से आया और उसने आपके महल में बैठे और सावधान धार्मिक पिता को विष के आग से भस्म कर दिया। तदनंतर आपका राज्य अभिषेक संपन्न हुआ। तक्षक ने आपके पिता को डसा है और उत्तंग ऋषि को भी बहुत परेशान किया है, अब जैसा उचित समय करे। मंत्रियों ने कहा, महाराज तक्षक ने जिस वृक्ष को डसा था उस पर पहले से ही एक मनुष्य सूखी बस्तियों के लिए चढ़ा हुआ था। ये बात तक्षक और कश्यप दोनों के बीच दोनों में से किसी को मालूम न थी। तक्षक के डसने पर वृक्ष के साथ वह मनुष्य भी भस्म हो गया। कश्यप के मंत्र के प्रभाव से वृक्ष के साथ वह भी जीवित हो गया। तक्षक और कश्यप की बातचीत उसी से सुनी थी और वहां से आकर उसने हम लोगों को सूचित किया था। अपने पिता की मृत्यु का इतिहास सुनकर जन्मेजय को बड़ा दुख हुआ। वे क्रुद्ध होकर हाथ से हाथ मलने लगे। शोक के कारण उनकी लंबी और गर्म सांस चलने लगी, आंखें आंसू से भर गईं। वे दुख शोक और क्रोध में भरकर आंसू बहाते हुए हाथ में जल लेकर बोले, वे पिता किस प्रकार स्वर्गवासी हुए, ये बात मैंने विस्तार के साथ सुन ली है। मेरे पिता की मृत्यु में सारा अपराध तक्षक का ही था, इसलिए मैं उससे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प करता हूँ। देवताओं ने आपके लिए एक महायज्ञ निर्माण कर रखा है, ऋषिकों ने कहा, हमें इस यज्ञ की विधि मालूम है। राजा ने कहा ब्राह्मणों से, मैं वही यज्ञ करूंगा, आप लोग इसके लिए सामग्री संग्रह कीजिए। इसी समय एक विचित्र घटना घटित हुई। सूत जी ने कहा, जिस स्थान और समय में यज्ञ मंडप मापने की क्रिया प्रारंभ हुई, उसे देखकर ये मालूम होता था कि किसी ब्राह्मण के कारण ये यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकेगा।
1: जी जी, बहुत ही सुंदर कथा। हम जान रहे हैं कि किस तरह से अब जन्मेजी जो हैं, उन्होंने ये सोच लिया है कि वो उनके पिता की मृत्यु कैसे हुई पता चलने के बाद बदला लेंगे। और अब इस कथा में आगे क्या होगा ये हम जानेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त आपसे इजाजत लेने का हो चुका है। तो रागले खदासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए।
0: हरे कृष्ण
1: जी। तो श्रोताओं, इस महाभारत काव्य और इस ग्रंथ के अंदर जितनी भी कथाएं हैं वो हम आपको बताते रहेंगे अपने एपिसोड्स में, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए रेडियो मनोरचना 107.8 के साथ, और भी कार्यक्रम तो आप इंजॉय कर सकते हैं रेडियो मनोरचना 107.8 FM के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए RMR 107.8। फील गुड, फील लाइव।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन। अपना रेडियो।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मैं हूं आपके कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला और हम आपके लिए लाए हैं शिव पुराण। दोस्तों, शिव पुराण सुनवाने का जो हमारा उद्देश्य है वह है भक्ति का प्रचार प्रसार करना और जन जन के दुखों का विनाश करना, उनका सरल से सरल उपाय ढूंढना। और वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो बताएगा हमें शिव पुराण। और शिव पुराण सुनाएंगी हमको डॉक्टर लीना सिन्हा जी। तो लीना सिन्हा जी आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। लीना जी, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: लीना जी, आपने पिछले एपिसोड में हमारे श्रोताओं को बहुत ही मनोरम दृश्य का वर्णन प्रसंग ऐसा सुनाया था कि मन अभी तक भी उन्हीं दृश्यों में खोया हुआ है। और बहुत से फ़ोन आए कि जो दृश्य शिव पुराण में भगवान शिव और माँ आदि शक्ति के विवाह का सुनाया गया, अभी तक भी हम उस पर चिंतन करते रहते हैं, उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। आपने बताया कि पहले तो मैं ना तैयार नहीं हो रही थी माँ पार्वती की माँ, लेकिन जब सब विष्णु जी ने समझाया और नारद जी ने शिव को कहा कि आप अपने वास्तविक रूप में आइए, तो मैं ना हैरान हो गई थी उनकी सुंदरता देखकर। तब रत्नों से सुशोभित संसार के देवता को अपने सामने पाकर मैं ना अचंभित सी हो गई थी।